हर जत्यो हर प्रभ वडफा सतगुर बचन सुखाने ही अर हर धारी हर प्रभ कृपफा मेरे मन भज राम नाम।

अर्थ कहै साध संग स्नेह सत्यं सुखियं बसंत नान कहै मिथ्यंत देहं खीणंत बलनं बरधंत जरुआ।

अहो जास्य रखेन गोपाल है, नानक रोम ना छेदेते। बहु जतन करता बलवंत कारी, सेवंत सूरा चतुर दिस है। विखम थान बसंत ऊच है, नह सिमरंत मरणं कदांच है। होवन

मनोरथ कोए ना पूरे चाले ऊठ निराश। कबीर हर का सिमरन जो करे सो सुखिया संसार, इत उत कत है न।

ਸਤ ਸਤ ਹਰ ਸਤ ਸਤ ਸੱਤੇ ਸਤ ਪਣੀਐ ਦੂਸਰੇ ਆਨ ਨਾ ਅਵਰ ਪੁਰਖ ਪਉ ਰਾਤਨ ਸੁਣੀਐ।

बिनत करो अरदास सुनो जे ठाकुर पहावे देहो दर्श मन चाओ भगत इहो मन ठहरावे भले चिराग अंध्यार में सब कल उधरी एक नाम धर्म प्रगट सगल हर पवन में जन नानक गुर पार ब्रह्म सवैया।

जिन हुक्म सब सृष्ट सवारी। ब्रह्मांड खंड पूर्ण ब्रह्म गुण निर्गुण समझाण्यो, जप कल सुजस नानक गुर सहज योग जिन माण्यो।

शब्द गुर श्रवण है सुनियो, बिखते अमृत होयो नाम सतगुर मुख पण्यो, लोहो होयो लाल नदर सतगुर जद।

पुन दुखन नास सुखदायक सूरो जो धरत ध्यान बस तेह नेरे पूरो पुरख हृदय हर सिमरत मुख देखत अग जाहे परेरे जो हर बुद्ध रिद सिद्ध चाहत गुरु गुरु गुर कर मन मेरे।

जंगम सर्प है जग के रिया बिखमाए, बिख का मारन हर नाम है गुरगरड़ शब्द मुख पाए। जिनको पूर्व लिखिया तिन सतगुर मिलिया आए, मेरे सतगुर निर्मल होए।

सुहाग है मस्तक मणि लिखिया हर हर नाम उरत हरिया हर हृदय कमल प्रगास सतगुर सेवन।

जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी।

फेर के अग्गे रखिए जित दिसै दरबार, मोह के बोलन बोलिए जित सुन करे प्यार। अमृत वेला सच नाओ वड्याई विचार, करमी आवे कपड़ा नदरी मोख द्वार। नानक एवे जानिए सब आपे सच्यार, थापिया ना जाए कीता ना होए, आपे आप निर

दुख पर हर सुख कर ले जाए। गुरुमुख नादं गुरुमुख वेदं गुरुमुख रया समाई, गुर ईश्वर गुर गोरख बर्मा गुर पार्वती माई। जे हो जाना आखा नाही कहना कथन न जाई, गुरा इक देव जाई सबना जिया का इक दाता, सो मैं विसर न जाई। तीरथ नावा जे तिस भावा विन पाने के नाय करी, जेती सिर्ठ उपाई वेखा विन कर्मा के मिले लई। मत विच रतन जवाहर माणिक जे इक गुर की सिख सुनी, गुरा इक देह बुझाई सबना जिया का इक दाता, तो मैं विसर न जाई। जे जुग चारे आर जा होर दसूनी होए, नवा खना विच जानिए नाल चले सब कोए। चंगा नाम रखाए कै जप कीरत जगले, जे तिस नजर ना आवई ता बात ना पुछे के। कीटा अंदर कीट कर दोषी दोस्तरे, नानक निर्गुण गुण करे गुणवंतिया गुण दे। तेहा कोई न सुजई जे तिस

मान सुनिया मनिया मन कीता भाव अंतरगत तीरथ मलनाओ सब गुण तेरे मैं नाही कोए विण गुण कीते भगत न होए स्वस्थ आस बाणी बरमाओ सत सुहान सदा मन चाओ कवन सो वेला वक्त कवन कवन छिच कवन वार कवन से रुती महा कवन जित हो आकार वेल न पाया पंडती जे होवे लेख पुराण वक्त न पायो काजिया जे लिखन लेख कुरान सित वार न जोगी जाने रुत महा न कोई जा करता सिर्फी को साजे आपे जाने सोई किव कर आखा किव साला ही क्यों वरनी किव जाना नानक आखन

नानक जे को आपो जाने अगे गया ना सो है। पाताला पाताल लख आगासा आगास ओड़क ओड़क पाल थके वेद कहन इकवात सैस अठारह कहन कतेबा अपनू इक तात लेखा होए ता लिखिए लेखे होए विनाश नानक वड्डा आखिए आपे जाने आप। साला ही साला है एती सुरत न पाया नदियां अत्ते वाहा पवे समुंद ना जानिए समुंद सहा सुल्तान गिरहा से ती माल तन कीड़ी तुल न होनी जे तिस मनो न विसरे अंत न सिकती कहन न अंत अंत न करने देन न अंत अंत न देखन सुनन न अंत अंत न जापे क्या मन मंत अंत न जापे कीता आकार अंत न जापे पारावार अंत कारण के ते बिललाहे ताके अंत न पाए जाहे एहो।

ऊंचा नाव एवड ऊंचा होवे कोए तिस ऊंचे को जाने सोए जेवड आप जाने आप नानक नदरी करमी दात बहुता कर्म लिखिया ना जाए वड्डा दाता तिल ना समाए केते मंगे जोद अपा।

ताके रूप ना कथने जाहे ना ओहे मरे ना ठागे जाहे जिनके राम वसे मन माहे तिथे भगत वसे के लो करें आनंद सच्चा मन सोए सत खंड वसे निरंकार कर कर वेखे नजर निहाल तिथे खंड मंडल वर पांड जे को कथे।

ने गावन सुधनो पवन पानी बैसंतर दावे राजा तरम द्वारे गावन सुधनो चित गुपत लिख जानन लिख लिख तरम विचारे गावन सुधनो ईश्वर ब्रह्मा देवी सोन तेरे सदा सवारे गावन सुधनो इंद्र इंद्रासन बैठे देवतिया दरनाले गावन सुधनो सिद्ध समाधि अंदर गावन सुधनो साध विचारे गावन सुधनो जति सती संतोखी गावन सुधनो वीर करारे गावन सुधनो पंडित पढ़न रखी सर जुग जुग वेदा नाले गावन सुधनो मोहनिया मनमोहन सुर्ग मच पयाले गावन सुधनो रतन उपाय तेरे अठ की रतनाले गावन सुधनो जोध महाबल सूरा गावन सुधनो खानी चारे गावन सुधनो खंड मंडल ब्रह्मंडा कर कर रखे तेरे धारे ते तुदनो गावन जो तुद भावन रते तेरे भगत रसाले होर के ते तुदनो गावन से मैं चितना आमन नानक क्या बिचारे सोई सोई सदा सत साहेब साचा साची नाई है भी होती जाए न जाती रचना जिन रचाई रंगी रंगी भांसी कर कर जिनसी माया जिन उपाई कर कर देखे की ता अपना ज्योतिष दी वड्याई ज्योतिष भावे सोई करसी फिर हुक्म न करना जाई सो पाता हो सा पत साहिब नानक रहन जाई आसा महला पहला सुन वड्डा आखे सब कोए केवट वड्डा दिशा होए कीमत पाए ना कहया जाए कहने वाले तेरे रहे समाए वड्डे मेरे साहिबा गहर गंभीरा गुणी गहीरा कोई न जाने।

विसरै मर जाऊं। आखण औखा साचा नाऊ, साचे नाम की लागे पूख, उत पूख है खाए चलिए दुख। तो क्यों विसरै मेरी माए, साचा साहिब साचे नाए राव। साचे नाम की तिलवट आई, आप थके कीमत नहीं पाई। जे सब मिलके आखण पाए, वदा न हो वह काट न जाए।

सो पुरख निरंजन हर पुरख निरंजन हर अगमा अगम अपारा सब त्यावे सब त्यावे तुद जी हर सच्चे सृजनहारा सब जी तुम्हारे जी तू जिया का दातारा हर त्यावो संतो जी सब दुख विसारण हारा हर आपे ठाकर हर आपे सेवक जी क्या नानक जंत विचारा तू कट कट अंतर सर्व निरंतर जी हर एको पुरुष समाना एक दाते एक पेखारी जी सब तेरे चोज विडाना तू आपे दाता आपे पुगता जी हम कुछ बिन अवर न जाना तू पार ब्रह्म बेअंत बेअंत जी तेरे क्या गुण आख वखाना जो सेवे तुझ जी जन नानक तिन कुर्बाना हर त्यावे तुझ जी से जन जुग में सुखवासी से मुकत पै जिन हर त्याया जी तिन टूटी जम की फांसी जिन निरपो जिन हर निरपो त्याया जी तिन का पौ सब गवासी जिन सेविया मेरा हर जी ते हर हर रूप समासी से तन जिन हर त्याया जी जन नानक तिन बल जासी तेरी पगत पंडार जी परे बेअंत बेअंता तेरे पगत सलाहन तुझी हर अनक अनेक अनंता तेरी अनक करें हर पूजा जी तप तापे जपे बेअंता तेरे अनेक परें बहु सिमरत सास जी कर क्रिया खट कर्म।

से भगत परे जन नानक जी जो पावे मेरे हर भगवंता। तू आद पुरख अपरंपर करता जी तुझ जेवड अवर न कोई। तू जुग जुग एको सदा सदा तू एको जी। तू निचल करता सोई तुझ आपे पावे सोई वरते जी। तू आपे करे सोई तुझ आपे सिरज सब उपाय जी। तुझ आपे सिरज सब गोई जन नानक गुण गावे करते के जी। जो सबसे का जन होई आसा मेला चौथा तू करता सत्यार मैं।

कृपा करें तिन नाम रतन पाया। गुरमुख लादा मनमुख गुआया, सुध आप विछोड़िया आप मिलाया। तू दरियाओ सब तुझी माहे, तुझ बिन दूजा कोई नाहे। जी जंत सब तेरा खेल, विजोग मिल विछड़िया संजोगी मेल। जिसनो तू जाना है सोई जन जाने, हर गुण सद ही आख वखाने। जिन हर सेविया तिन सुख पाया।

खबर न कोए, तू कर कर वेखे जाने सोए, जन नानक गुरमुख प्रगट होए, आसा महला पहला, तित सरवर ले पहले निवासा, पानी पावक तिन्हे किया, पंकज मोह पग नहीं चाले, हम देखा तह डूबी अले, मन एक न चेतक मूर मना, हर बिसरत तेरे गुण गलिया, रहाओ ना हूं जति पति नहीं पड़िया, मूर्ख मुगदा जन्म पया, प्रणवत नानक तिनकी सरणा, जिनकू नाही विसरिया, आसा महला पंजवा, पई प्राप्त मानुख दे हुरिया, गोविंद मिलन की ए तेरी बरिया, अवर काज तेरे किते न काम, मिल साध संगत पज केवल नाम, संग जाम लागे पव जल तरन के, जन्म बिरथा जात रंग माया के, रहाओ जप तप संयम तर्म ना कमाया, सेवा साधना जान्या हर राया, कहो नानक हमनी।

जाओ। नित नित जियड़े संभालियन देखेगा देवनहार, तेरे दाने कीमत ना पवे तिस दाते कौन सुमार। संबत साहा लिखिया मिलकर पावो तेल, देवो सज्जन।

छह गुर छह उपदेश गुर गुर एको वेश अनेक बाबा जय कर करते कीरत होए हो कर राख वडाई तोए रहाओ रित्वे चस्या घड़िया पहरा थित्ती वारी माओआ सूरज एको रुत अनेक नानक करते के तेवेश राग तना श्री मैला पहला गगन में थाल रल चंद दीपक बने तारका मंडल जनक मोती रूप मल्यान लो पवन चवरो करे सगल बन राय फूल अंत ज्योति कैसी आरती होए पव खंडना तेरी आरती अनहता शब्द वाजंत बेरी राव सहस तव नैन नन नैन है तोय कहो सहस मूरत नन्ना एक तो ही सहस पद विमल नन एक पद गंध बिन सहस तव गंध इव चलत मोही।

चानन होए, गुर साखी जोत प्रगट होए, जो सिस पावे सो आरती होए, हर चरण कवल मकरंद लोभित मनो, अंधिनो मुहे आई प्यासा, कृपा जल दे नानक सारंग को, होए जाते तेरे नाए वासा, रागौड़ी पूर्वी मैला चौथा, काम क्रोध नगर बहु परया, मिल साधु खंडल खंडा है, पूरब लिखत लिखे गुर पाया, मन हर लिव मंडल मंडा है, कर साधु अंजलि पुन वड्डा है, कर दंडौत पुन वड्डा है, रहाओ साकत हर रस साधना जानिया, तिन अंतर हो मैं कंडा है, ज्यो ज्यो चले चुभे दुख पावे, जम काल सह सिल डंडा है, हर जन हर हर नाम समाने, दुख जन्म मरण पाव खंडा है, अविनाशी पुरुष पाया परमेश्वर, बहु शोभ खंड ब्रह्मंडा है, हम गरीब मस्कीन प्रभ तेरे, हर राख राख वड वड्डा है, जन नानक नाम

सुनो मेरे मीता संत टहल की बेला, इहां खाट चलो हर लाहा, आगे बसन सुहेला, औद कटे दिन सुरहारे, मन गुरु मिल काज सवारे रहाओ, ए संसार विकार संसे में तरयो ब्रह्म ज्ञानी, जिसे जगाए पियावे एहो रस, अकथ कथा तिन जानी, जा को आए सोई बिहाजो, हर गुरते मने बसेरा, निज कर महल पा

आओ मत देख पूला विसरे तेरा चितना आवे ना हर बिन जियो जल बल जाओ मैं अपना गुर पूछ देखे।

रंग पसाओ मत देख पूला विसरे तेरा चितना आवे ना सिद्ध होवा सिद्ध लाई रिद्ध आखा आओ गुप्त प्रगट होए बैसा लोक राखे पाओ मत देख पूला विसरे तेरा चितना आवे ना सुल्तान होवा मेल लश्कर तख्त राखा पाओ हुक्म हासिल करी बैठा नानका सब वाओ मत देख पूला।

साचा निरंकार निज काए, सुन सुन आखन आखना जे पावे करे तमाए। रहाओ कुसा कटिया।

लेखे बोलन बोलना, लेखे खाना खाओ, लेखे वाट चलाया, लेखे सुन वे खाओ, लेखे सालवाई है, पढ़े के पुछन जाओ, बाबा माया।

रोवन वाले जेतड़े सब बन्ने पंड पराल सबको आखे बहुत बहुत काट ना आखे कोए कीमत किने ना पाया कहन ना वड्डा होए साचा साहिब।

कह कच नाम निवास। जित बोले पत पाये सो बोलिया परवान। फिका बोल विगुचना सुन मूरख मन अजान। जो तिस पावे से पले होर के कहन वखान। तिन मत तिन पत तिन तन पल्ले जिन हृदय रहा समाए। तिन का क्या सालाना अवर स्वाल्यो काए। नानक नदरी बाहरे राचे दान ननाए। श्री राग महला पहला अमल गलोला कूड़ का दित्ता देवनहार। मत्ती मरण विसारिया खुशी की ती दिन चार। सच मिलिया तिन सोफिया राखन को दरबार। नानक साचे को सच जान जित सेवे सुख पाये। तेरी दरगह चले मान रहाओ सच सरा गुड़ बाहरा जिस

तामन खीवा जानिए जा मैली पाए थाओ नाओ नीर चंगे आईया सत परमल तनवास तामुख हो वै उजला लख दाती इक दात दुख तिसे पे आखिए सुख जिसे ही पास सो क्यों मनो

कारमंदर खुशी नाम की नजर तेरी परवार। हुकम सोई तुद पावसी होर आखन बहुत अपार। नानक सच्चा पातशाह पूछ ना करे विचार। बाबा होर सोना खुशी कुआर जित सुत्ते।

ता अगर वास तन पास अफसर तीरथ का मुख टिक्का तित कप मत विगास ओत मत्ती सालाहना सच नाम गुणतास।

सच मिले सच उपजे सच में साथ समाए सुरत होवे पत उगवे गुरु बचनी पौ खाए नानक सच्चा पात।

तात मिले फुन तात कहो सुस्ती सुस्त समाए। लाल गुलाल जय बरा सच्चा रंग चढ़ाओ। सच मिले संतोषिया हर जप एक।

प्यार गुरुमुख मन समझाइए आत्म राम विचार तिद कर्म कमाइए आस अंदेशा होए क्यों गुर बिन त्रिकुटी छुटसी सहज मिले सुख होए निज कर मैल पछानिए नदर करे मल तोए।

सच मिले गुरमत पल्ले पाए सुर नर जमे ना मरे ना आवे ना जाए नानक दर प्रधान सो दर्दे पैदा जाए। श्री राग महला पहला। तन जल बल माटी भया मन माया मोह मनूर

आगे देखो डोजन है पाछे हरे अंगूर, जिससे उपजे तिससे दिल से काट काट सच परपूर, आपे मेल मिला वही साचे महल हदूर। साए साए तुझ संभला कदे ना विसारे हो, जो जो साहिब मन वसे गुरमुख अमृत पियो, मन तन तेरा तू तनी गर्भ निवार समय।

ओ बेपरवाह अतोलवा गुरमत की मत सार लख सियाणप जे करे लक्ष्यों प्रीत मिलाप बिन संगत साधना प्रापिया बिन नावे दुख संताप हर जप जिये रे।

हर गुर सरवर सेव तू पावे दरगे मान राव। राम नाम जप दिन सरात गुरमुख हर तन जान। सब सुख हर रस भोगणे संत सभा मिल ज्ञान। नित एनस हर प्रभ सेव।

तीसरे रोग वड्डा मन माहे क्यों दर्गे पत पाई है जहाँ हर नव से मन माहे गुर मिले सुख पाई है अगन मरे गुण माहे मन रे एनिस हर गुण सा

तो प्रभ सेज पतार चारे अग्न निवार मर गुरुमुख हर जल पाए अंतर कमल प्रगाशिया अमृत पड़या अघाए नानक सतगुरु मीत कर सच पावे दरगे जाए। श्री राग महला पहला हर हर जपो प्यारिया गुरमत ले हर बोल मन सच कसवटी लाइए तुलिए पूरे तोल कीमत किने न पाइए रिद मानक मोल।

दुर्मुख कूड न पावै, सच रत्ते सच भाए, साकते सच न भावै, कूड़े कूड़ी पाए, सच रत्ते गुर मेले है, सच्चे सच समाए, मन में मानक लाल नाम, रतन पदार्थ हीर, सच वखर तन नाम है, कट कट गहर गंभीर, नानक गुरमुख पाई है, दया करे हर हीर, श्री राग महला पहला, परने पाए ना विजवै, जे पावै दिशंतर देश,

मिल सत्संगत हर पाए, गुरुमुख हर निवलाए, आप गया सुख पाया, मिल सलल सलल समाए। जिन हर हर नाम न चेत्यो, सो अवगुण आवे जाए, जिस सतगुरु पुरख न पेट्यो, सो पाउ जल पचे पचाए। ए मानक जियो निर्मूल है, क्यों कौडी बदले जाए। जिना सतगुरु

कैसी वस्त्र विसाहिए, जैसी निभ नाल अजैसा सुजान है, लैसी वस्त समाल। पाई रे राम कहो चित लाए, हर जस वखर ले।

आते सेज पतार रंग रता मेरा साहिब रव रहा भरपूर राव आपे माछी मछली आपे पानी जाल आपे जाल मनकड़ा आपे अंदर लाल आपे बहुविध रंग।

पाने मन के शान हर हृदय जमाए ले क्यों पावस पद निर्वाणे काहे गर्भ समूढ़े माया पित सुतो सगल काल त्र माता तेरे हो है ना अंत सखाया रहाओ विषय विकार दुष्ट किरखा करे इन तज आत्मे होए त्याय जप तप संयम हो है जब राखे कमल बिकसै मद आश्रमाय बीस सप्ताह रो बासुरो संग्रे तीन खोड़ा नित काल सारे दस अठार में अपरम्परो चीने कह नानक इव एक तारे।

जाने नाम खुदाई। जे बहु तेरा पढ़िया होवे को रह ना परिये पाई। सोई काजी जिन आप तजिया

आपे नेड़े दूर आपे ही आपे मंझ न्यानो आपे वे खै सुने आपे ही कुदरत करे जहानो जो तिस पावे नानका हुक्म सोई।

आपे सच पावे तो सच, अंधा कच्चा सच न सच रहाओ, जाके रुख बिरख आराओ, जे ही ताप ते हाथ नाओ, फूल पाओ फल लिखिया पाए,

सतगुर मन कामना तीर्थ है, उसनु दे बुझाए मन चिंदिया वर पावना, जो इच्छा सो फल पाए, नाउ तिया ये

मान अंतर हर रस लग रहा चूका मन अभिमान हृदय कमल प्रकाशिया लागा सहज ध्यान मन निर्मल हर रव रहा पाया दरगे मान सतगुरु सेवन अपना ते विरले संसार हौ मैं ममता मार के हर राखिया उधार हौ तिन के बलिहार ने जिना नामे लगा प्यार सही सुखिए चहु जुगी जिना नाम अखुट अपार गुर मिले नाम पाई है चूके मोह प्यास हर सेती मन रव रहा कर ही मन उदास जिन्ना हर का साध आया हो तिन बलिहारे जास नानक नगरी पाई है सच नाम गुणतास श्री राग महला तीजा बो पेश कर परमाई है मन हृदय कपट कमाए हर का मेल न पावे मर गुस्ता माए समाए मन रे ग्रेही माए उदास सच संजम करनी सो करे गुरमुख होए प्रगास राव गुर के शब्द मन जीतिया गत मुक्त करे में पाए हर का नाम त्याई है सत संगत मेल मिलाए जे लख स्त्रियां पोग करे नवखंड राज कमाए बिन सतगुर सुख न पावे फिर जोनी पाए हर हार कंठ जिनी तहरिया गुर चरणी चित लाए तिना पिछे रिद सिर फिरे ऊ ना तिल ना तमाए जो प्रभु पावे सोचिए अवर न करना जाए जन नानक जीवे नाम ले हर देवो सहज सुवाए।

आए जिसनो आप दयाल होए सो गुरुमुख नाम समाए। पर पढ़ पंडित जोत की वाद करें विचार मत बुद्ध पवि न बुझई अंतर लोभ विकार लख चौरासी परम दे परम परम होए खुआर पूरब लिखिया कमावना कोई न मेटन हार। सतगुर की सेवा गाखड़ी सिर दीजे आप गवाए शब्द मिले ताहर मिले सेवा पवे सब थाए पारस परसे पारस होए ज्योति ज्योत समाए जिनको पूरब लिखिया तिन सतगुर मिलिया आए। मन पुखा पुखा मत करें

चुप कट है परदास। मन मेरे हर हर निर्मल ध्याए, तुर मस्तक जिनको लिखिया से गुरमुख रहे लिवलाए। राव हर संतो देखो नदर कर,

नानक गुरमुख हर पाया सदा हर नाम समाए। श्री राग महला तीजा सुख सागर हर नाम है गुरमुख पाया जाए। अंदिन नाम त्याए सहजे नाम समाए। अंदर रचे हर सच स्यों रसना हर गुण गाए। पाई रे जग दुखिया दूजे भाए गुर शरणाई सुख लहे। अंदिन नाम त्याए रहाओ साचे मैल ना ला गई मन निर्मल हर त्याए। गुरमुख शब्द पछाणिए हर अमृत नाम समाए। गुर ज्ञान प्रचंड बलाया अज्ञान अंधेरा जाए। मन मुख मैले मल परे हौ मैं तृष्णा विकार। बिन शब्द मैल ना उतरे मर जम्मे होए खुआर। तातुर बाजी पलस रहे ना उरवार ना पार। गुरमुख जप तप संजमे हर के नाम प्यार। गुरमुख सदा त्याई है।

ऐनस भगत करे दिन राती, होमे मार निचिंद वड्डे भाग सत्संगत पाई, हर पाया सहज आनंद सो साधु बैरागी सोई, हृदय नाम वसाए अंतर लाग ना तामस मूले, विचों आप गवाए नाम निधान सतगुरु।

गुर प्रसादी मन वसे हों मैं दूर करे एहो मन ताव तां रहे जा आपे नदर करे पाई रे गुरमुखर नाम ते आए नाम निधान सद मन वसे महली पावे थाओ रहाओ मन मुख मन तन अंध है तिसनो ठौर न ठाओ बहु जोनी पौंदा फिरे ज्यों सुन्ये कर काओ गुरमति कट चा।

आए लाहा हर हर नाम मिले सहजे नाम समाए बिन गुर महल ना पाईए नाम ना प्राप्त होए ऐसा सतगुर लोड़ लहो जिद्दू पाईए सच सोए असुर संगारे सुख वसे जो तिस पावे सो होए जेहा सतगुर कर जानिया ते हो जेहा सुख होए एहो सहसा मूले नाही पाओ लाए जन कोए नानक एक जो

अपना धर्म गवावे बूझे नाही अंधन दुख विहानी मन मुख अंध न चेत ही डूब मोए बिन पानी मन रे सदा पजो हर सरनाई गुर का शब्द अंतर वसे ता हर विसर न जाई रहाओ इहो शरीर माया का पुतला विच हो मैं दुष्टि पाई आवन जाना जम्मन मरना मन मुख पत गवाई सतगुर सेव सदा सुख पाया ज्योति ज्योत मिलाई सतगुर की सेवा अत सुखाली जो इच्छे सो फल पाए जत सत तप पवित्र शरीरा हर हर मन वसाए सदा आनंद रहे दिन राती मिल प्रीतम सुख पाए जो सतगुर की शरणागति हौं तिन कै बल जा।

पाई रे गुर बिन भगत ना होए, बिन गुर भगत ना पाई है, जे लोचे सब कोए रहाओ। लख चौरासी फेर पया कामन दूजे भाए, बिन गुर नींद ना आवई दुखी रहन विहाए, बिन शब्द है।

जो हर तुर छोड़िया लाए। श्री राग महला तीजा, गुरमुख कृपा करे भगत की जय, बिन गुर भगत ना होई, आपे आप मिलाए बूझे ता निर्मल होवे सोई, हर जियो साचा साची बाणी।

सतगुर सेव सुख पाया विचों गया गुमान दर सेवन संत जन खड़े पायन गुणी निदान मेरे मन गुरमुख त्याए हर सोए गुर का शब्द मन वसै मन तन निर्मल होए रहाओ कर कृपा कर आया आपे मिलिया आए गुर शब्दी सालाई है रंगे सह सुवाए सच्चे सच समाया मिल रहे न विछड़ जाए जो किस करना सो कर रहा अवर न करना जाए चिरी विछुन्ने मेलियन सतगुर पन्ने पाए आपे कार कराए सी।

अंत ना पाया जाए, कतनी बदनी ना पाई है, हों मैं विच्चों जाए, सतगुर मिले है सद पैर चै, आप बसे मन आए, पाई रे गुरमुख बूझे कोए, बिन बूझे कर्म कमावणे।

सबद समाए। आपे दे ता पाईए होर करना किछु ना जाए। देवन वाले के हाथ दात है गुरु द्वारे पाए। जेहा की तुन तेहा हुआ जेहे कर्म कमाए। जत सत संजम नाम है।

पाए गुर कै शब्द जीवत मरे हर नाम वसै मन आए। सुन मन मेरे पाच सत गुर सरना गुर प्रसादी छुट्टी है बिख पवजल शब्द गुर तरना। रहाओ त्रै गुण सभा तात है दूजा पाओ विकार पंडित पढ़े बंधन मोह बाधा ने बूझे बिखिया प्यार। सतगुर मिले तृप्ति छूटे चौथे पद मुक्त द्वार गुर ते मार्ग पा

गुर पाये हर नामो दे दृढ़ाए, बिन गुर किने न पायो बिरथा जन्म गवाए, मन मुख कर्म कमावणे दरगे मिले सजाए, मन रे दूजा पाव चुकाए, अंतर तेरे हर वसे गुर सेवा सुख पाए, रहाओ सच बाणी सच शब्द है जा सच तरे प्यार, हर का नाम मन वसे होमे क्रोध निवार, मन निर्मल नाम से आई है ता पाए मोख द्वार, होमे विच जग बिन सदा।

विचार। सतगुर सेव मन निर्मला हौ मैं तज विकार, आप छोड़ जीवत मरे गुर के शब्द विचार। तंदा तावत रह गए लादा साच प्यार, सच रते मुख उजले तित साचे दरबार। सतगुर पुरख ना मन्यो शब्द ना लगो प्यार, इस्नान दान जेता करें दूजे पाए खुआर। हर जियो अपनी कृपा करें ता लागे नाम प्यार, नानक नाम संभाल तू गुर कहे अपार। श्री राग महला तीजा। किस हो सेवी क्या जप करी सतगुर पूछो जाए, सतगुर का पाना मन लई विच्चों आप गवाए। एहा सेवा चाकरी नाम वसै मन आए, नामे ही ते सुख पाईए।

आया त्यों जाए। मनमुख जन्म बिरथा गया क्या मोह देसी जाए। सब किछ आपे आप है हौ मैं विच कहन ना जाए। गुर कै शब्द पछाणिए दुख हौ मैं विचों गवाए। सतगुर सेवन अपना।

मन तन शीतल सास स्यों सास न बिरथा तोए। मेरे मन हर का नाम ध्याए साची भगत तांसी है जा हर वसै मन आए। रहाओ सहजे खेती राही है सच नाम बीज।

राम ते आये विनकर्मा पाया न जाए पूरे पाग सत्संगत लहे सतगुर पेटे जिस आए अंदिन नामे रत्या दुख बिखिया विच्चों जाए नानक शब्द मिलावड़ा नामे नाम समाए श्री राग महला तीजा अपना पाओ तिन पायोन जिन गुर का शब्द विचार सत्संगति सदा मिल रहे सच्चे के गुण सार दुबदा मैल चुकायन हर राखिया उरदार सच्ची बाणी सच मन सच्चे नाल प्यार मन मेरे हो मैं मैल पर नाल हर निर्मल सदा सोना शब्द सवारन हार रहाओ सच्चे शब्द मन मोहया प्रभ आपे ले मिलाए अंदिन नामे रत्या ज्योति ज्योत समाए ज्योति हूँ प्रभ जापदा बिन सतगुर बूझ न पाए जिनको पूरब लिखिया सतगुर पेटिया तिन आए विण नावे सब डुमणी दूजे पाए खुआए तिस बिन कड़ी ना जीवदी दुखी रहन विहाए परम पुलाणा अंदर

सच्ची वाणी हर पाई है, हर स्यों रह समाए रहाओ। सच्ची भक्ति मन लाल थिया, रत्ता सह सुवाए। गुर शब्दी मन मोहया, कहना कछु न जाए। जेवा रत्ती शब्द सच्चे, अमृत पीवे रस गुण गाए। गुरमुख एहो रंग पाये, जिसनो कृपा करे र जाए। संसार एहो संसार है, सुतिया रहन विहाए। एक अपने पाने कढ लयन, आपे लेउन मिलाए। आपे ही आप मन वसिया, माया मोह चुकाए। आप वडाई दितियन, गुरमुख दे बुझाए। सबना का दाता एक है, पुलिया ले समझाए। एक आपे आप खुआयन, दूजे छड़ियन लाए। गुरमती हर पाई।

अवगुणवंती गुण को नहीं, बैन न मिले हदूर, मनमुख शब्द न जाने, अवगुण सो प्रभ दूर, जिन्नी सच पछाणिया, सच रते भरपूर, गुर शब्दी मन वेदिया, प्रभ मिलिया आप हदूर। आपे रंगन रंगियोन, शब्दे लयोन मिलाए, सच्चा रंग ना उतरे, जो सच रते लिवलाए, चारे कुंडा पाव थके, मन मुख बूझ न

मिल प्रीतम दुख कटिया शब्द मिलावा होए, सच खटना सच रास है सच्चे सच्ची सोए, सच मिले से ना बिछड़े नानक गुरमुख होए।

बिना सुखे सुख विहाय। ज्ञान विहूणी पिर मुतिया पिरम न पाया जाए, अज्ञान मति अंधेर है बिन पिर देखे पुख ना जाए।

तो नदर करे खसम पछाणे आपना तन मन आगे दे कारवर पाया आपना हों में दूर करे नानक सो बावंतिया सुहागणी अंदिन भगत करे श्री राग महला तीजा एक पिर रावे आपना हों

किस दूर, जिन पिर संगे जानिया पिर रावे सदा हदूर। मुंदे तू चल गुर कह पाए, अंदिन रावे फिर अपना सहजे सच समाए। रहाओ शब्द रतिया सुहागणी सच्चे शब्द सिंगार, हर वर पायन कर अपने गुर कह हेत प्यार। सेज सुहावी हर रंग रवे भगत परे पंडार, सो प्रभ प्रीतम मन वसे जे सबसे दे आधार। फिर सालाहन अपना तिनके हो सद बलिहारे।

नानक सच समाए। श्री राग महला तीजा। हर जी सच्चा सच तू सब किश तेरे चीरे, लख चौरासी तरस दे फिरे बिन गुर पेटे पीरे। हर जियो बख्शे।

गुरुमति नाम सलाह है, दूजा अवर न कोय रहाओ। धर्म राय नो हुक्म है, बह सच्चा धर्म विचार। दूजे पाए दुष्ट आत्मा, ओ तेरी सरकार। अध्यात्मी हर गुण तास, मन जपे एक मुरार। तिनकी सेवा धर्म राय करे, तन सवारण हार। मन के विकार मनह तजे, मन चूके मोह अभिमान। आत्म राम पछाणिया, सहजे नाम समान। बिन सतगुरु मुक्त ना पाये, मन मुख फिरे दीवान। शब्द नाची ने कथनी बदनी करे, बिख्या माए समान। सब किछ आपे आप है, दूजा अवर ना कोए। ज्यों बोलाए त्यों बोलिए, जा आप बुलाए सोए। गुरमुख बाणी ब्रह्म है, शब्द मिलावा होए। नानक नाम समाल तू, जित सेवे सुख होए। श्री राग महला तीजा। जग हो मैं मैल दुख पाया, मल लागी दूजे भाए। मल हो मैं तोती किवे ना उतरे, जेसो तीर्थ नाए। बहुविध कर्म कमाव

गुर शरण आवे ता निर्मल होए। मनमुख हर हर कर थके मैल न सकी तोए। रहाओ मन मैले भगत ना हो वही नाम ना पाया जाए। मनमुख मैले मैले मोए जासन पत गवाए। गुर प्रसादी मन वसे मल हो मैं जाए समाए। ज्यों अंधेरे दीपक बालिए त्यों गुर ज्ञान अज्ञान तजा।

रंग ना होए, कूड़ कपट किने न पायो, जो बीजे खावे सोए, सबना तेरी आस प्रभ, सब जी तेरे तू रास, प्रभ तुद्दो खाली को नहीं, दर गुरमुखा नो सावास, बिख पौजल डुबदे कड ले, जन नानक की अरदास, श्री राग महला चौथा, नाम मिले मन तृप्ति है, बिन नामे त्रिग जीवास, कोई गुरमुख सज्जन जे मिले, मैं दसे प्रभ गुणतास, हौं तिस विट्टो चौखनी है, मैं नाम करे परगास, मेरे प्रीतमा हौं जीवा नाम ते आए, बिन नामे जीवन ना थी है, मेरे सतगुर नाम दृढ़ाए, रहाओ नाम अमोलक रतन है, पूरे सतगुर पास, सतगुर सेवे लग्या, कड रतन देवे प्रगास, तन वड़ पागिया, जो आए मिले गुर पास, जिना सतगुर पुरख ना पेटेओ, से पागीन बस काल, ओए फिर जोन पवाईए, विच विस्ता कर विकराल, ओना पास दुआस ना पिटिए, जिन अंसर क्रोध चंडाल, सतगुर पुरख अमृत सर, वड़ पागी नावे आए, उन जन्म जन्म की मैल उतरे, निर्मल नाम दृढ़ाए, जन नानक उत्तम पद पाया, सतगुरु की लिवलाए, श्री राग महला चौथा, गुण गावा गुण विथरा, गुण बोली मेरी माए, गुरमुख सज्जन गुण कारिया।

गावा त्रिपत मन होए, अंतर प्यास हर नाम की, गुर तुस मिलावे सोए रहाओ। मन रंगो वड पागी हो, गुर तुठा करे पसाओ, गुर नाम दृढ़ाए रंग स्यो, हों सतगुर के बल जाओ, बिन सतगुर हर नाम न लब्बई, लख कोटी कर्म कमाओ। बिन पागा सतगुर ना मिले, कर बैठिया निकट नित पास, अंतर अज्ञान दुख परम है, विच पड़दा दूर पयास। बिन सतगुर पेटे कंचन नासिए, मन मुख लो बूढ़ा बेड़ी पास। सतगुर बोहित हर नाम है, कित बिद चढ़िया जाए, सतगुर के पाने जो चले, विच बोहित बैठा आए। तन तन वड पागी नानका, जिना सतगुर ले मिलाए। श्री राग महला चौथा। हाँ।

सतगुरु नो सब को लोचदा जेता जगत सब कोए बिन पागा दर्शन ना थिए पागहीन बैरोए जो हर प्रभ पाना सोचिया तुर लिखिया ना मेटे कोए आपे सतगुर आप हर आपे मेल मिलाए आप दया कर मेल सी गुर सतगुर पीछे पाए सब जग जीवन जग आप है नानक जल जलें समाए। श्री राग महला चौथा। रस अमृत नाम रस अत पला कित बिद मिले रस खाए जाए पुछो सुहागनी तुसा क्यों कर मिलिया प्रभु आए ओए वे परवा ना बोलनी हौ मल मल तो वा तिन पाए पाई रे मिल सज्जन हर गुण सार।

ज्ञान आए, सतगुरु वचन रतन है, जो मन्ने सो हर रस खाए, सेवड पागी वड जानिए, जिन हर रस खादा गुर पाए, एहो हर रस वण तिण सबत है, पागहीन नहीं खाए, बिन सतगुरु पल्ले ना पवे, मन मुख रहे बिल लाए, ओए सतगुर आगे नानिवे, ओना अंतर क्रोध बलाए, हर हर हर रस आप है, आपे हर रस होए, आप दया कर देवसी, गुरमुख अमृत चोए, सब तन मन हरिया होया, नानक हर वसिया मन सोए, श्री राग महला चौथा, दिन चढ़े फिर आठवें, रैन सवाई जाए, आव कटे नर न बुझे, नित मूसा लाज चुकाए, गुड़ मिठा माया पसरिया, मन मुख लग माखी पचै पचाए, पाई रे मैं मीत सखा प्रभ सोए, पुत कलत मोह बिख है, अंत बेली कोई ना होए, रहाओ गुरमत हर लिव उबरे, अलिपत रहे सरनाए, ओनी चलन सदा निहालिया, हर खर्च लिया पत पाए, गुरमुख दर गए मनिए, हर आप ले गल लाए, गुरमुखानो पंथ प्रगटा, दर ठाक न कोई पाए, हर नाम सलाहन नाम मन, नाम रहन लिव लाए, अनहद तुनी दर वजदे, दर सच्चे सोबा पाए, जिनी गुरमुख नाम सलाया, तिना सब को कहे सवा।

रस भोगे खुशिया करें, माने रंग अपार, बोध करें फुरमाइसी, वरते हुए अपार, करता चितना आवई मनमुख अंध गवार। मेरे मन सुखदाता हर सोए, गुर प्रसादी पाये, कर्म प्राप्त होए रहाओ, कपड़ भोग लपटाया, सोयना रूपा खाक, हैवर गैवर बहुरंगे किए रथ अखाक, किसी चित न पावही बिसरे।

ना शोषण तुझे अनित, अहंकार करें अहंकारिया व्याप्या मन की मत, तिन प्रभु आप पुलाया ना तिस जात ना पत, सतगुर पुरख मिलाया इको सज्जन सोए, हर जन का राखा एक है क्या मानस हो मैं रोए, जो हर जन पावे सो करे दर फेर न पावे कोए, नानक रता रंग हर सब जग में चानन होए। श्री राग महला पंजवा। मन विलास बहु रंकना दृष्ट पूल खुशिया, छत्र तार बादशाहियां विच सहसे परिया, पाई रे सुख साध संग पाया, लिखिया लेख तिन पुरख विदाते दुख सहसा मिट गया, रहाओ जेते थान सनंतरा तेते पव आया, तन पाती वड भूमिया मेरी मेरी कर परया, हुक्म चलाए निसंग होए वरते अफरिया, सबको वसगत कर लेन बिन नामे खाक रलिया, कोट तेपी सेवका सिद्ध साधक दर खरिया, गिरमबारी वड साहेबी सब नानक सुपंथिया। श्री राग महला पंजवा। पलके उठ पपोलिए बिन बुझे मुग्ध अजान, सो प्रभ चित न आयो छुटेगी बेबान, सतगुर से ती चित लाए सदा सदा रंगमान, प्राणी तू आया लाहा लेन लगा कित कु पकड़े।

हाथ जन्म पदार्थ सफल है जे सच्चा शब्द कथ गुरते महल प्राप्ते जिस लिखिया हो वह मत मेरे मन एकस्यों चित लाए एकस बिन सब तंद है सब मिथ्या मोह।

तिन सतगुर चरण गहे। सफल मूरत सफला करी जित सच्चे नाल प्यार, दुख संताप ना लग गई जिस हर का नाम आधार। बां पकड़ गुर काढ़े।

अपना आठ पहर प्रभ त्याय तू गुण गोविंद नित गाओ रहाओ तिसकी सरनी परमना जिस जेवड अवरना कोए जिस सिमरत सुख होए कणा दुख दर्द ना मूले होए सदा सदा कर चाकरी प्रभ साहिब सच्चा सोए साध संगत होए निर्मला कटिए जम की फास सुख दाता पह पंजनो।

उपाव स्यान सगल छड़ गुर की चरणी लाग तिसे प्राप्त रतन होए जिस मस्तक होवे पाग तिसे प्राप्त पाई हो जिस देवे प्रभु आप सतगुर की सेवा सो करे जिस बिन सहो मैं ताप नानक कहो गुर पेटिया बिन से सगल संताप। श्री राग महला पंजवा। एक पछाणु जी का इको रखनहार इकस का मन आसरा इको प्राण आधार तिस शरणाई सदा सुख पार गम करतार मन मेरे सगल

जियो पिंड सब तिसकार, ज्योतिष पावे सो होए, गुरपुर पूरा भया, जप नानक सच्चा सोए। श्री राग महला पंजवा, जिना सतगुर स्यों चित लाया से पूरे प्रधान, जिनको आप दयाल होए तिन उपजे मन ज्ञान, जिनको मस्तक लिखिया तिन पाया हर नाम, मन मेरे एको नाम से आए।

काल, साधु संगत निर्मला आप करे प्रतपाल। जन्म मरण की मल कटी है गुरु दर्शन देखने हाल, थान थान अंतर रब रहे आप।

मेरे मन गुर सबदी सुख होए, गुर पूरे की चाकरी बिरथा जाए न कोए। रहाओ मन किया इच्छा पूरिया, पाया नाम निधान, अंतर जामी सदा।

पाया लाहा लाभ नाम पूरन होए काम, कर कृपा प्रभ मेलिया दिया अपना नाम। आवन जाना रह गया आप हुआ मेरवान, सच महल कर पाया गुर का शब्द पछान। भगत जना को राखदा अपनी कृपा तार, हलत पलत मुख उजने।

वड पागी मिल संगति सच्चा शब्द विसाहो कर सेवा सुख सागर है सिरसाहा पास साहो चरण कमल का आसरा दूजा नाही ठाओ मैं तर तेरी पार ब्रह्म तेरे तान रहाओ निमाणया प्रभु मान तू तेरे संग समाओ हर जपिए आराधिए आठ पहर गोविंद जी प्राण तन तन रखे कर कृपा राखी जिंद नानक सगले दोख उतारियन प्रभ पार ब्रह्म बख्शिंद श्री राग महला पंजवा प्रीत लगी तिस सच्यों मरे ना आवे जाए ना वे छोड़िया विछड़े सब मैं रहा समाए दीन दर्द दुख पंजना सेवक कै सत भाए अचरज रूप निरंजनो गुर में लाया माए पाई रे मीत करो प्रभ सोए माया मोह प्री त्रिग सुखी ना दिसे कोए रहाओ दाना दाता सीलवंत निर्मल रूप अपार सखा सहाय अत वड़ा ऊंचा वड़ा अपार बालक बिरद ना जानिए

फिरें मन तन होवे शांत, एक मन एक त्याये मन की लाए भ्रांत। गुण निधान नव तन सदा, पूरन जाकी दात। सदा सदा आराध्य दिन विसरो नहीं रात। जिनको पूरब लिखिया तिनका सखा गोविंद, तन मन तन अर्पी सबो सगल वारिय एह जिंद। देखे सुने हदूर सद कट कट ब्रह्म रविंद, अकिर्त कणा नो पालदा प्रभ नानक सद बख्शिंद। श्री राग महला पंजवा, मन तन तन जिन प्रभ दिया रखिया सह सवार। सर्व कला कर था प्या अंतर ज्योत अपार, सदा सदा प्रभ सिमरिय अंतर रत उधार। मेरे मन हर बिन अवर न कोय, प्रभ शरणाई सदा रहो दुख ना व्यापे कोय। रहाओ रतन पदार्थ मान।

मनमुख पस ना पाक। अंतर बाहर रव रहा तिसनो जाने दूर, तृष्णा लागी रच रहा अंतर हो मैं कूर। भगती नाम विहुणिया आवे मंजे पूर, राख ले हो प्रभ करणहार जी जंत कर दया। बिन प्रभ कोई ना रखन हार महा बिकट जम पया। नानक नाम ना विसरो कर अपनी हर मया। श्री राग महला पंजवा। मेरा तन अर तन मेरा राज रूप मैं देश, सुतदारा बनता अनेक बहुत रंग अरवेश। हर नाम हृदय न वसई कारज किते न लेख। मेरे मन हर हर नाम ते आए कर संगत नित साधकी। गुरचरणी चित लाए रहाओ नाम निधान ते आई है मस्तक हो वै पाग। कारज सब सवारियां।

अठसठ तीरथ नाओ। जियो प्राण मन तन हरे साचा एहो सुआओ। ऐसे मिले वडियाईया दरगे पावे थाओ। करे कराए आप प्रभ सब किछ तिस ही हाथ। मार आपे जी वालदा अंतर बाहर साथ। नानक प्रभ शरणागति सर्व कटा के नाथ। श्री राग महला पंजवा। शरण पे प्रभ अपने गुरु होआ कृपाल। सतगुर के उपदेश है बिनसे सर्व जंजाल। अंदर लगा राम नाम अमृत नदर निहाल। मन मेरे सतगुर सेवा सार। करे दया प्रभ अपनी एक निमख ना मनो विसार। रहाओ गुण गोविंद नित गाविए अवगुण कट्टन हार। बिन हर नाम ना सुख होए कर डिठे।

तन खाट संत संग हर सिमरना मल जन्म जन्म की काट मन मेरे राम नाम जप जाप मन इच्छे फल पुंच तू सब चूके सोग संताप रहाओ जिस कारण तन तारिया सो प्रभ डिठा नाल जल तल मैयल पूरिया प्रभ अपनी नजर निहाल मन तन निर्मल होया लागी साच परीत चरण पजे पार ब्रह्म के सब जप तप तिन ही कीत रतन जवे हर माणका अमृत हर का नाओ सुख सहज आनंद रस जन नानक हर गुण गाओ श्री राग महला पंजवा सोई सासत सौन सोए जित जपिए हर नाओ चरण कमल गुर तन दिया मिलिया निथावे थाओ साची पूंजी सच संजमो आठ पहर गुण गाओ कर कृपा प्रभ पेटिया मरण न आवन जाओ मेरे मन हर पज सदा इक रंग कट कट अंतर रव रहा सदा सहाई संग रहाओ सुखा की मित क्या गणी जा सिमरी गोविंद जिन चाखिया से तृप्ता सिया ओह रस जाने जिंद संता संगत मन वसै प्रभ प्रीतम बख्शिंद जिन सेव्या प्रभ आपना सोई राज नरिंद अवसर हर जस गुण रमन जित कोट मज्जन स्नान रसना उचरै गुणवती कोय न पुजै दान दृष्ट तार मन तन वसै दयाल पुरख मेहरवान जियो पिंड तन तिसदा हौ सदा सदा कुर्बान मिलिया कदे ना विछड़े जो मेलिया करतार दासा के बंधन कटिया साचे सिरजनहार पूला मार्ग पायुन।

रसना सच्चा सिमरिए मंतन निर्मल होए। मात पिता साथ अगले तिस बिन अवर न कोए। मेर करे जे आपनी चसा न विसरै सोए। मन मेरे साचा सेव जिचर सास, बिन सच्चे सब कूड़ है अंते होए विनाश। रहाओ साहेब मेरा निर्मला तिस बिन रह न जाए। मेरे मन तन पुख अत अगली कोई आन मिलावे माए। चारे कुंडा पालिया सह बिन अवर न जाए। तिस आगे अरदास कर जो मेले करतार, सतगुर दाता नाम का पूरा जिस भंडार। सदा सदा सालाही है अंत न पारावार। परवदगार सालाही है जिस दे चलत अनेक। सदा सदा आरा

गुरपुरे ते पाईए अपनी नदर निहाल, करम प्राप्त तिस होवे जिसनो होए दयाल। मेरे मन गुर जेवड़ अवर ना कोए, दूजा थाओ ना को सुजै, गुर मेले सच सोए रहाओ। सगल पदार्थ तिस मिले जिन गुर डिठा जाए, गुर चरणी जिन मन लगा सेवड़ पागी माए। गुरदाता समरथ गुर, गुर सब में रहा समाए, गुर परमेश्वर पार ब्रह्म गुर डुबदा लय तराए। कित मुख गुर सालाही है करण कारण समरथ, से मथे नहीं चल रहे जिन गुर तारिया हाथ। गुर अमृत नाम पिया लिया जन्म मरण का पथ, गुर परमेश्वर सेविया पै पंजन दुख लथ। सतगुर गहर गंभीर है सुख सागर अगखंड, जिन गुर सेविया अपना जमदूत ना लागे डंड। गुर नाल तुल ना लगई खोज डिठा ब्रह्मंड, नाम निदान सतगुर दिया सुख नानक मन में।

मन बैराग भया दर्शन देखने का चाओ तन सो तेरा थान रहाओ। जिचर वस्या कंत कर जियो जियो सब का हाथ जा उठी चलसी कंतड़ा ता कोई ना पूछे तेरी बात। पेई अरणै सौ सेव तू सौ रणै सुख वस गुरमिल चज अचार सिख तुद कदे ना लगे दुख। सबना सोहरे वंजना सब मुकलावन हार नानक तन सुहागणी जिन सै नाल प्यार। श्री राग महला पंजवां कर छेवां।

दुख कलेश ना पाओ व्यापै, गुरु मंत्र हृदय होए, कोट जतना कर रहे गुरु बिन तरयो ना कोए, देख दर्शन मन साधारण है, पाप सगले जाहे, हौं तिनके बलिहारणे जे गुर की पैरी पाहे, साध संगत मन वसे साच हर का नाओ, सेवड पागी नानका जिना मन एहो पाओ। श्री राग महला पंजवा। संच हर तन पूज सतगुर छोड़ सगल विकार, जिंतु साज सवारिया हर सिमर होए उधार, जप मन नाम एक अपार, प्राण मन तन जिन्हें दिया हृदय का आधार। रहाओ काम क्रोध अंकार माते व्याप्या संसार, पौ संत सरणी लाग चरणी मिटे दुख अंधार, सत संतोख दया कमावे ए करनी सार, आप छोड़ सब होए रेणा जिस दे प्रभ निरंकार, जो दिसे सो सगल तू है पसरिया पासार, कहो नानक गुर परम काटिया।

रहाओ। सतगुर विटों वारिया जिन दिता सच नाओ, अंदिन सच सलाहना सच्चे के गुण गाओ, सच खाना सच पहनना सच्चे सच्चा नाओ, सास गिरास ना विसरे सफल मूरत गुर आप, गुर जेवड़ अवर ना दिसई आठ पहर तिस जाप, नदर करे ता पाई है सच नाम गुणतास, गुर परमेश्वर एक है सब में रहा समाए, जिनको पूर्व लिखिया सही नाम से आए नाम।

पाखंड प्रेम ना पाइए, खोटा पाज खुआर हर जियो त्यों फिर रावे नार। तुद पावन सुहागणी अपनी कृपा लह सवार। रहाओ गुर शब्दी सिगारिया, तन मन फिर कै पास, दोए कर जोड़ खड़ी तकै।

मन वेदिया हो सद बलिहार जाओ सा तन रंड न बैसई जे सतगुर माए समाए फिर रिसालू नौ तनो साचो मरे न जाए नित रवे सुहागणी साची नजर जाए साच तड़ी तन मांडिये कापड़ प्रेम सिगार चंदन चीत वसाया मंदर दसवां द्वार दीपक शब्द विगासिया राम नाम उरहार नारी अंदर सोहणी मस्तक मणि प्यार शोभा सुरत सुहावणी साचे प्रेम अपार बिन पिर पुरख न जाने साचे गुर कै हेत प्यार निस अंधियारी सुतिए क्यों फिर बिन रैन विहाय अंक जलो तन जालियो मन तन जल बल जाए जा तन कं

को पूछो जाए, सतगुर मेली पैवसी नानक प्रेम सखाए। श्री राग महला पहला, आपे गुण आपे कथे, आपे सुन विचार, आपे रतन परख तू, आपे मोल अपार, साचो मन महत तू, आपे देवनहार, हर जियो तू करता करतार, ज्यो पावे त्यों राख तू, हर नाम मिले आचार, रहाओ आपे हीरा निर्मला, आपे रंग मजीत, आपे मोती उजलो, आपे भगत बसीठ, गुर कै शब्द सलाहना, कट कट डीठ अडीठ, आपे सागर बोहेथा, आपे पार अपार, साची वाट सुजान तू, शब्द लंगावन हार, निडरिया डर जानिए, बाज गुरु गुबार, अस्थिर करता देखिए, होर केती आवे जाए, आपे निर्मल एक तू, होर बंदी तंदे पाए, गुर राखे से उबरे, साचे स्यों लिवलाए। हर जियो शब्द पछाणिए, सांच रते गुरवाक, तितन मैल ना लग गई, सच कर जिस ओताक, नजर करे सच पाईए, बिन नावे क्या साक, जिन्नी सच पछाणिया।

सी त्यों मानसा पवे अचिंता जाल रहाओ। सब जग बादो काल को बिन गुर काल अफार, सच रते से उबरे दुबदा छोड़ विकार। हाँ तिनके बलिहारण दर सच्चे सच्यार, सीचाने ज्यो पंखिया जाली बद्धक हाथ। गुर राखे से उबरे होर फाथे चोगे साथ, बिन नावे चुन सुटिए कोई न संगी साथ। सच्चो सच्चा आखिए सच्चे सच्चा थान, जिनी सच्चा मन्या तिन मन सच ध्यान। मन मुख सूचे जानिए गुरमुख जिना ज्ञान, सतगुर अगे अरदास कर साजन दे मिलाए। साजन मिले सुख पाया जम दूत मुखाए, नावे अंदर हों वसा नाव वसै मन आए। बाज गुरु गुबार है बिन शब्द बूझ न पाए, गुरमति प्रगास होए सच रह लिव लाए। तिथे काल न संचर ज्योति ज्योत समाए, तू है साजन तू सुजान तू आपे मेलनहार। गुर शब्दी साला ही है अंत ना पारावार, तिथे काल न अपड़े जिथे गुर का शब्द अपार। हुक्मी सबे उपजे हुक्मी कार कमाहे, हुक्मी काले वस है हुक्मी साथ समाहे। नानक जो तिस पावे सोथिए इना जनता वस किछ नाहे।

चार वाद विरोध सलाहने वादे आवन जान बिन गुर कर्म न छुटसी कह सुन आख वखान सब गुणवंती आखिए मैं गुण नाही कोए हर वर नार सुहावनी मैं पावे प्रभ सोए नानक शब्द मिलावड़ा नावे छोड़ा होए श्री राग महला पहला जप तप संजम साधिए तीरथ की चैवास पुन दान चंगियाईया बिन साचे क्या तास जे हारा दे तेहा लुणे बिन गुण जन्म विनाश मुंदे गुणदासी।

होए। अवगण त्याग समाई है गुरमत पूरा सोए रहाओ। विन राशि वापारिया तके कुंडाचार, मूल न बुझे अपना वस्त रही कारबार। विन वखर दुख अगला कूड़ मुठी कूड़ियार, लाहा एनस नौतना परखे रतन विचार। वस्त लह कर अपने चले कारज सार, वन जा रहा स्यो वनज कर गुरमुख ब्रह्म विचार। संता संगत पाई है जे मेले मेलनहार, मिलिया होए ना विछुड़े जिस अंतर जोत अप

त्रिभवन सो प्रभु जानिए साचो साचे नाए सातन खरी सुहावनी जिन पिर जाता संग मैली मैल बुलाये सो पिर रावे रंग सच सुहागन सापली पिर मोही गुण संग पूली पूली थल चढ़ा थल चढ़ डूगर जाओ बन में पूली जे फिरा बिन गुर बूझ।

कर ठाक न होए, नानक एको रव रहा दूजा अवर न कोए। श्री राग महला पहला, गुर ते निर्मल जानिए निर्मल देह शरीर, निर्मल साचो मन वसै सो जाने अब पीर, सहजै ते सुख अगलो ना लागे जमतीर। पाई रे मैल नाही निर्मल जल नाए, निर्मल साचा एक तू होर मैल परी सब जाए। रहाओ हर का मंदर सो

अंजन पै पंजना देख निरंजन पाए। गुपत प्रगट सब जानिए जे मन राखे ठाए। ऐसा सतगुरु जे मिले ता सहजे ले मिलाए। कस कस वट्टी लाई है परखे हित चित लाए। खोटे ठौर न पाए नी खरे खजाने पाए। आस अंदेसा दूर कर क्यों मल जाए समाए। सुख को मांगे सबको दुख ना मांगे कोए। सुख है को दुख अगला मन मुख बूझ ना होए। सुख दुख सम कर जानिए शब्द पेद सुख होए। वेद पुकारे वाचिए बाणी ब्रह्म व्यास। मुन जन सेवक साधका नाम रते गुणतास। सच रते से जिन गए हो सद बलिहारे जास। चौ जुग मैले मल परे जिन मुख नाम ना होए। भगती पाए विहूनिया मुह काला पथ खोए। जिन्नी नाम विसारिया अवगुण मुठी रोए। खोजत खोजत पाया डर कर मिले मिलाए। आप पछाने कर वसे हो मैं तृष्णा जाए। नानक निर्मल उजले जो राते हरनाए। श्री राग महला पहला। सुन मन पूले बावरे गुर की चरणी लाग। हर जप नाम से आए तू जम डर पे दुख पाग। दुख कणों दोहागनी क्यों थिर रहे सुहाग।

तिस बिन कड़ी ना जीवऊ, बिन नावे मर जाओ। मैं अंधले नाम ना विसरे, टेक टिकी कर जाओ। गुरु जिना का अंधला, चेले नाही ठाओ। बिन सतगुरु नाव ना पाये, बिन नावे क्या सुआओ। आए गया पछतावना, ज्यो सुन्ने कर काओ। बिन नावे दुख देहोरी, ज्यो कलर की पीत। तब लग महल न पाई है, जब लग साच न चीत। शब्द रपे कर पाई है, निर्बाणी पदनीत। हों गुर पूछो अपने, गुर पुछ कार कमाओ। शब्द सलाही मन वसै, हों मैं

मिलाओ। सबदरते से निर्मले तज काम क्रोध अहंकार, नाम सलाहन सद सदा हर राखे उर्धार, सो क्यों मनो विसारिय सब जिया का आधार। शब्द मरे सो मर रहे फिर मरे ना दूजी वार, शब्द ही ते पाये हर नामे लगे प्यार, बिन शब्द जग पूला फिरे मर जन्मे वारो वार। सब साला है आपको वढ़ो वडेरी होए, गुर बिन आप ना चीनिए कहे सुने क्या होए, नानक शब्द पछाणिए हो मैं करे न कोई। श्री राग महला पहला। बिन फिर तन सिगारिये जोबन बाद खुआर, ना माने सुख सेजड़ी बिन फिर बाद सिगार, दुख कणो दोहागणी ना कर सेज पतार। मन रे राम जपो सुख होए, बिन गुर प्रेम ना पाइये शब्द मिले रंग होए, रहाओ गुर सेवा सुख पाइये हर वार सह सिगार। सच माने फिर सेजड़ी गूड़ा हेत प्यार, गुरमुख जान सियाणिए गुर मेली गुणचार। सच मिलो वर कामणी फिर मोही रंग लाए, मन तन साच विकसिया कीमत कह न जाए, हर वर कर सुहागणी निर्मल साचे नाए। मन में मनुआ जे मरे ता फिर रावे नार, इकत तागे रल मिले गल मोतियन का हार, संत सवा सुख उपजे गुरमुख नाम आधार। खिन में उपजे खिन खपे खिन आवे खिन जाए, शब्द पछाणे रव रहे ना तिस काल संताए। साहिब अतुल ना तोलिए कथन ना पाया जाए, वापारी बन जा रहा

ज्ञान ध्यान तुन जानिए अकथ कहावे सोए सफल्यो बिरख हरि आवला छाव कनेरी होए लाल जवे हरमान की गुर पंडारे सोए गुर पंडारे पाईए निर्मल नाम प्यार साचो वखर संचिए पूरे कर्म अपार सुखदाता दुख मेटनो सतगुर असुर संगार पवजल बिखम डरावनो ना कंदी ना पार ना बेड़ी ना तुलहड़ा ना तिस वंज मलार सतगुर पैका बोहे था नदरी पार उतार एक तिल प्यारा विसरे दुख लागे सुख जाए जेवा जलो जलावनी नाम ना जपै रसाए कट बिन सह दुख अगलो जम पकड़े पछताए मेरी मेरी कर गए तन तन कलत न साथ बिन नामे तन बाद है पूलो मार गयाथ साचो साहिब सेवी है गुरमुख अकथो काथ आवे जाए पुआई है पय किरत कमाए।

ऐ बिन जल मरण तिने हे। मन रे क्यों छूटे बिन प्यार, गुरुमुख अंतर रल रहा, बक्से भगत पनार रहाओ। रे मन ऐसी हर्षों प्रीत करे, जैसी मछली नीर, ज्यों अधिको त्यों सुख कनो, मन तन शांत।

ताकी कीमत ना पवे, जे लोचे सब कोए, गुरमत होए तब पाये सच मिले सुख होए। सच्चा नेहो नाथ तई जे सतगुर पेटै सोए, ज्ञान पदार्थ पाई।

जग थग्या लब लोभ अहंकार मोह ठगौली हों मुई सावर कै संसार मेरे प्रीतमा मैं तुझ बिन अवर न कोए मैं तुझ बिन अवर न पावई तू पावे सुख होए रहाओ नाम सलाही रंग स्यों गुर कै सबद संतोख जो जी सह सोचल सी कूड़ा मोह न वेख वाट वटानू आया नित चलदा साथ देख आखन आखे केतड़े गुर बिन बूझ न होए नाम वडाई जो मिले सत रपे पत होए जो तुद पावे से पले खोटा करा न कोए गुर शरणाई छुटी है मन खोटी रास अष्ट तात पाप साहती करिए सब

जिन कन मन साज सुधारिया तुस सुरती निगलाए रहाओ। तन दे संतर होमिए इक रत्ती तोल कटाए, तन मन समदा जे करी अंदिन अगन जलाए, हर नामे तुल

सबको ऊंचा आखी है नीच ना दूसे कोई। इतने पांडे साजे है इक चानन के हो लोए। कर्म मिले सच पाये थोर बख्त ना मेटे कोई। साध मिले साधु जने संतोख वसे गुर पाए। अकथ कथा विचारी है जे सतगुर माहि समाए। ई अमृत संतोखिया दरगह पैदा जाए। कट कट वाजे किंगुरी अंदिन शब्द सुभाए। विरले को सोजी पई गुरमुख मन समझाए। नाम

ऊंचो पर्वत गाखड़ो ना पौड़ी तिस पास, गुरमुख अंतर जानिया गुरमेली तरियास। पाई रे पाउजल बिखम डराओ, पूरा सतगुर रस मिले।

नारी सेज पतार, चोआ चंदन लाइए, कापड़ रूप सिगार, केहू खेर लाइए, छोट चले कारबार, महर मलूक कहाइए, राजा राव के खान, चौधरी राव सदाइए, जल बली

आओ आपे हर जग जीवन दाता आपे बख्श मिलाए जी जंत एक आवे चारे क्या को आप सुनाए गुरमुख आपे दे वडियाए आपे से कराए देख पुटंब मोह लुभाना चल दिया नाल ना जाए सतगुरु सेव गुण निधान पाया।

जग जीवन दाता मन मुखपत गवाई, बिन सतगुरु को मग न जाने अंधे ठौर न काई, हर सुख दाता मन नहीं वसिया अंत गया पछताई। तेयड़े जग जीवन दाता गुरमत मन वसाया, अंग दिन भगत करे दिन राती हों मैं मोह चुकाया, जिस्यों राता तैसो होवे सच्चे सच समाया। आपे नदर करे पाओ लाए गुर शब्दी विचार, सतगुर सेवे सहज उपजे हों मैं तृष्णा मार, हर गुण दाता सद मन वसे सच रखिया उद्धार। प्रभु मेरा सदा निर्मला मन निर्मल पाया जाए, नाम निधान हर मन वसे हों मैं दुख सब जाए, सतगुर शब्द सुनाया हों सद बलिहार रह जाऊं। अपने मन चित कहे कहाए दिन गुर आप ना जाए, हर जियो भगत वचन सुख दाता कर कृपा मन वसाई, नानक सोबा सुरत दे प्रभ आपे गुरमुख दे वलियाई। श्री राग महला तीजा, हो मैं कर्म कमाव दे जम दंड लगे तिन आए, जे सतगुर सेवन से उबरे हर सेती लिवलाए, मन रे गुरमुख नाम ते आए तुर पूरब करते लिखिया किना गुरमत नाम समाए, रहाओ जिन सतगुर प्रतीत ना आवई नाम ना लागो पाओ, सुपने सुख ना पावई दुख में सवै समाए, जे हर हर की कै बहुत लोची है किरत ना मेटे आ जाए, हर का पाना भगती मन्या से भगत पै दर खाए। गुर शब्द दिलावे रंग स्यों बिन कृपा लिया न जाए, जो सो अमृत नीरिय पी दिख फल लागे ताए, से जन सच्चे निर्मले जिन सतगुरु नाल प्यार, सतगुरु का पाना

हर का नाम निधान है, जिस अंत ना पारावार, गुरुमुख से ही सो दे जिन कृपा करे करतार। नानक दाता एक है दूजा और न कोए, गुर प्रसादी पाए कर्म प्राप्त होए। श्री राग महला तीजा पंखी दीर्घ सुहावड़ा,

हुक्म ना जाने बपुने पूले सिरे गवार मन हट कर्म कमाउंदे नित नित होए कुआर अंतर शांत न आवई ना सच लगे प्यार गुरमुखिया मोह सोने गुर के हेत प्यार सच्ची भगती सच रते दर सच्चे सच्यार आए से परवान।

होए, नानक नाम वडाइया कर्म प्राप्त होए। श्री राग महला तीजा, गुरुमुख नाम से आये मनमुख बूझ न पाए, गुरुमुख सदा मुख उजले हर वस्या मन आए, सहजे ही सुख पाये सहजे रह समाए। पाई रे दासन दासा होए, गुरु की सेवा गुरु भक्त है विरला पाए कोए। रहाओ सदा सुहाग सुहागनी जे चले सतगुरु भाए, सदा फिर निचल पाये ना ओ मरे न जाए, शब्द मिली ना बिछड़े फिर कै अंक समाए। हर निर्मल अप उजला बिन गुरु पाया न जाए, पाठ पढ़े ना बुझई तेखी परम पुलाए। गुरुमति हर सदा पाया रसना हर रस समाए, माया मोह चुकाया गुरुमति सह सुवाए। बिन सौदे जग दुखिया फिरे मन मुखा नो गई खाए, सबदे नाम ते आये सबदे सच समाए। माया पूले सिद फिरे समाज ना लगे सुवाए, पीने लो व्यापत है अधिक रही लपताए। बिन गुरु मुक्त न पाए।

बिन शब्द परम न चूके न विचों हो मैं जाए, बिन प्रीति भगत न हो वही, बिन शब्द छाए न पाए, शब्द हो मैं मारिये माया का परम जाए, नाम पदार्थ पाये गुरमुख सह सुवाए, बिन गुर गुण न जापनी, बिन गुण भगत न होए, भगत वत्सल हर मन वस्या, सहज मिलिया प्रभ सोए, नानक शब्द हर्षा लाहिए कर्म प्राप्त होए, श्री राग महला की जा। माया मोह मेरे प्रभ कीना, आके परम पुलाए।

सबद अपार आपे बख्श मिलायन पूरे गुर करतार सहजे अदिष्ट पछाणिए निरपौ ज्योत निरंकार सबना जिया का इक दाता ज्योति ज्योत मिलावन हार पूरे सबद सलाह।

पूरे शब्द सब सोजी होई, हर नामे रह समाए, मन मेरे सब गुरसियो चित लाए, निर्मल नाम सद नवतनो आप वसे मन आए। रहाओ हर जियो राखो अपनी शरणाई, ज्यो राखे त्यों रहना, गुर कै शब्द जीवत मरे गुरमुख पव जल तरना। वड्डे पाग नौ पाईए गुरमुख शब्द सुहाई, आपे मन वसिया प्रभ करता सहजे रहा समाई। इतना मनमुख शब्द न पावे बंधन बंद पवाया, लक्ष्यो राशि फिर आवे दिखा जन्म गवाया। भगता मन आनंद है सच्चे शब्द रंग राते, अंगिन गुण गावे सद निर्मल सहजे नाम समाते। गुरुमुख अमृत बाणी बोले सब आत्म राम पछाणी, एको सेवन एक आराधे गुरुमुख अकथ कहानी। सच्चा साहिब सेवी है गुरुमुख वसे मन आए।

रोए। सतगुरु जिनी ना सेवियो सेवित आए संसार, जम दर बदे मारिए फूक न सुने पुकार। बिरखा जन्म गवाया मर जमे वारो वार। एहो जग जलता देख के पज पे सतगुर शरणा, सतगुर सत दिलाया सदा सत संजम रहना। सतगुर सच्चा है बोहिखा सबदे पवजल करना। लख चौरासी फिर दे रहे बिन सतगुर मुक्त न होई, पर पंडित मोनी थके दूजे पाए पट होई।

नंग भुख की तीर दमड़ा पल्ले ना पवे ना को देवे तीर स्वार्थ स्वाओ ना को करे।

विचरे तपे तपी सर जोगिया तीर्थ गमन करे खट कर्मा के दुगने पूजा करता नाए रंग न लगी पार ब्रह्म ता सर पर नरके जाए राज मिलक सिकदारिया रस ओगन विस्तार बाग सुहावे सोने चले हुक्म आसार रंग तमाशे बहुविधि चाहे लग रहा चितना आयो पार ब्रह्म ता सर्प की जून गया बहुत तनाद अचार वंत शोभा निर्मल रीत मात पिता सुत पाई।

एक लूक न देवे दर्शा, एक मन ही जाता काट ना सिन ही कहाया, सब कहते हैं पाया जिसमें ले सो पगता, सगल उकत उपावा त्याग शरण पावा, नानक गुरचर।

आपो तुद खुआया पर पाप लगा दोहाजनी पाग जिना के ना हो जियो दोहाजनी क्या निशानिया खसमो कुथिया फिर निमानिया मैले वे उसकिना कामनी दुखी रहन विहाय जियो सुहागनी क्या कर्म कमाया पूर्व लिखिया फल पाया नदर करे कै आपनी आपे ले मिलाए जियो हुकम जिनानो मनाया तिन अंतर शब्द वसाया सैया से सुहागनी जिनसे नाल प्यार जियो जिना पाने का रस आया तिन विच्चों परम चुकाया नानक सतगुर ऐसा जानिए जो सबसे ले मिलाए जियो सतगुर मिले फल पाया जिन विच्चों ए करम चुकाया दुर्मत का दुख कटिया भाग बैठा मस्त

सतगुरु बाज न पायो सब सच्ची कर्म कमाए जियो। औ सतगुरु विटो कुमाया जिन परम पुला मार्ग पाया नदर करे जे आपनी आपे लहे रलाए जियो। तू सबना माहे समाया तिन करते आप लुकाया नानक गुरमुख प्रगट होया जाको जोत करी सरकार जियो। आपे खसम निवाजिया जियो पिंड दे साजिया अपने सेवक की तैज रखिया दोए कर मस्तक तार जियो। सब संजम रहे स्यान पा मेरा प्रभ सब कुछ जानदा प्रगट प्रताप वरतायो सब लोक करे जयकार जियो। मेरे गुण अवगुण ना विचारिया प्रभ अपना बिरज समारिया कंठ लाए कह रखियो न लगे न तकी वाओ जियो। मैं मन तन प्रभु ते आया जिए इच्छेड़ा फल पाया सा पाप सा सिर खसम तू जप नानक जी वै नाओ जियो। तुद आपे आप उपाया दूजा खेल कर दिखलाया सब सच्चो सच वर्तदा जिस पावे किसे बुझाए जियो। गुर प्रसादी पाया तिथे माया मोह चुकाया कृपा करके अपनी आपे ले सा।

निर्मल जोत तिन प्राणिया ओए चले जन्म सवार जियो तेरिया सदा सदा चंगियाईया मैं रात देह वडियाईया अनमंगिया दान देवना कहो नानक सच समार जियो। श्री राज महला पंजवा तै पाए मनाई सोई जियो सतगुर पुरख मिलाया किस जेवड अवर न कोई जियो रहाओ गोसाई महिंदा इछड़ा अम अबे थावो मिछड़ा तैन पाई सब सजना तुझ जेहा नाही कोई जियो तेरे हुक्मे सामने आया मैं सत का हल जो आया नाव बीजन लगा आस्कर हर बोल बख्श जमाए जियो हौ गुर मिल इक पछाणदा दोया कागले चित न जानदा हर इक तै काणे लायो ने ज्यो पावे तिवे निभाए जियो तुसी पोजो पुंचो पाइयो गुर दीवान कवाए तैनाइयो हौ होआ महर पिंड दा बन आंदे पंज शरीक जियो हौ आया सामै तिहंडिया पंज किरसान मुजेरे मेहंडिया कन कोई कद न हंगई नानक बुठा कुग गिरा।

मन सिंधी सो फल पाइंदा सबे काज सवारियन लायन मन की सुख जियो मैं सदिया सबो तंगड़ा गोसाई सेवी सचड़ा नौ निज नाम निदान हरे मैं पल्ले बद्दा छिक जियो मैं सुखी हूँ सुख पाया गुर अंतर समद वसाया सतगुर पुरख बिखा लिया मत्सत तर कह।

ਲੱਗਾ ਪਾਏ ਜੀਓ। ਸੁਣ ਗੱਲਾਂ ਗੁਰ ਕਹਿ ਆਇਆ, ਨਾਮਦਾਨ ਇਸ ਨਾਮ ਦਿੜਾਇਆ।

तप अंतर करे वन जा रहा मित्रा खत्म से ती अरदास खत्म से ती अरदास वखाने उर्द ध्यान लिव लागा नामर जाद आया कल पीतर बाहुर जासी नागा जैसी कलम बुड़ी है मस्तक तैसी जीड़े पास कहो नानक प्राणी पहले पहरे हुकुम पया गरवास दूजे पहरे रहन कैवन जा रहा मित्रा विसर गया ध्यान हखो हथ नचाए वन जा रहा मित्रा ज्यो जसदा कर कान हखो हथ नचाए प्राणी माप कहे सुत मेरा चेत अचेत मूर मन मेरे अंत नहीं कछ तेरा जिन रच रचिया तिसे न जाने मन भीतर कर ज्ञान कहो नानक प्राणी दूजे पहरे विसर गया ध्यान तीजे पहरे रहन कैवन जा रहा मित्रा तन जोबन स्यो चित हर का नाम न चेत ही बन जा रहा मित्रा बद्दा छुटे जित हर का नाम न चेत प्राणी विकल पया संग माया तन स्यो रता जोबन मता अहला जन्म गवाया धर्म से की वापार ना की तो कर्म ना की तो मित

जा जम पकड़ चलाया वन जा रहा मित्रा किसे न मिलिया पेट पेट चेत हर किसे न मिलियो जा जम पकड़ चलाया झूठा रुदन हुआ दो आले खिन में पया पराया साई वक्त प्राप्त होई।

ज्ञान ध्यान गुण संयम नाही जन्म मरोगे झूठे। कीरत वर्त सुच संयम नाही कर्म तर्म नहीं पूजा नानक पाए भगत निस्तारा दुबदा व्यापे दूजा। तीजे पैरे रैन कैवन जा रहा मित्रा सर हंस उलखड़े आए जोबन कटे जरुआ जिने बन जा रहा मित्रा आव कटे दिन जाए। अंतकाल पछतासी अंदले जहां जम पकड़ चलाया सब किछ अपना कर कर राखिया खिन में पया पराया। बुद्ध विसर्जी गई सियानप कर अवगुण पछताए कहो नानक प्राणी तीजे पहरे प्रभ चेतो लिवलाए। चौथे पहरे रहन कैवन जा रहा मित्रा बिरद पया तन खीन अखी अंधना दी सही बन जा रहा मित्रा कन्नी सुने नवैन। अखी अंध जीव रस नाही रहे परा को ताना गुण अंतर नाही।

चोट ना खावे ना किस जमन मरना काल जाल जम जोहे ना साके पाए भगत पै तरना पप खेती जावे सहल समावे सगले दुख मिटावे कहो नानक प्राणी।

मेरा मेरा कर पालिया वन जा रहा मित्रा ले मात पिता गल लाए लावे मात पिता सदा गल सेती मन जाने खट खवाए जो देवे तिसे ना जाने मूड़ा जिते नो लपटाए कोई गुरमुख होवे सो करे विचार हर त्यावे मन

तन चितवै तन संचवै वन जा रहा मित्रा हर नामा हर ना समाल हर नामा हर हर कदे ना समाल जे होवे अंत सखाई त्यो तन संपै माया झूठी अंत छोड़ चलिया पछताई जिसनो कृपा करे गुर मेले सो हर हर नाम समाल कहो नानक की जय पहरे प्राणी से जाए मिले हर नाल चौथे पहरे रहन कैवन जा रहा मित्रा हर चलन वेला आदि का सेवो पूरा सतगुरु बन जा रहा मित्रा सब चली रहन विहादी हर सेवो खिन खिन टिल मूल न करहो जित अस्थिर जुग जुग होवो हर सेती सद मानो रलिया जन्म मरण दुख खोवो गुर सतगुर स्वामी भेद न जानो जित मिल हर

कर्म कमाने जैसा लिख तुर पाया, मात पिता पाई सुख बनता तिन कीतर प्रभु संजोया। कर्म सो कर्म कराए आपे इस जंते वस किछ।

गुरमुख नाम संभाल पुराणी अंके होए सखाई। इहो मोह माया तेरे संग ना चाले झूठी प्रीत।

गुरुमुख नाम से आया। हर पुरुख ना कभी बिन सै जावे, नित देवे चढ़े सवाया। नानक संत संत हर एको, जप हर

गोविंद नाम समा ले। मन प्यारिया जी मित्रा हर निभे तेरे नाले, संग सहाई हर नाम त्याई, बिरथा कोई न जाए। मन सिंदे से ही फल पावे, चरण कमल चित लाए। जल थल पूर रहा बनवारी, कट कट नदर निहाले। नानक सिख दे मन प्रीतम, साध संग प्रम जाले। मन प्यारिया जी मित्रा हर बिन झूठ पसारे, मन प्यारिया जियो मित्रा बिख सागर संसारे। चरण कमल कर बोहित करके, सहसा दुख न व्यापे। गुरपुरा पे तैवड़ पागी, आठ पहर प्रभ जापे। आप जुगादि सेवक स्वामी, पगता नाम आधारे। नानक सिख दे मन प्रीतम, बिन हर झूठ पसारे। मन प्यारिया जियो मित्रा हर लगदे खेप सवली। मन प्यारिया

रूप में ताया। चित्रगुप्त का कागद फारिया, जम दूता कछु न चली। नानक सिख दे मन प्रीतम, हर लदे खेप सवली। मन प्यारिया जियो मित्रा, कर संता संग निवासो। मन प्यारिया जियो मित्रा, हर नाम जपत परगासो। सिमर स्वामी सुखे गामी, इच्छ सगली पुनिया। पुर्बे कमाए श्री रंग पाए, हर मिले चिरी विचुनिया। अंतर बाहर सर्वत रविया, मन उपजिया दिशासो। नानक सिख दे मन प्रीतम, कर संता संग निवासो। मन प्यारिया जियो मित्रा, हर प्रेम भगत मन लीना। मन प्यारिया जियो।

मिलियो हो, आपे ही आप मोहे हो, जस नानक आप सुनियो हो, संत प्रेम खगौरी पायरी जाए गोविंद मन मोहया जियो, संतन के प्रसाद अगाद कंठे लग सोया जियो, हर कंठ लग सोया दोख सब जोया, भगत लखन कर वस भये मन सर्व सुख उठे गोविंद तुठे, जन्म मरना सब मिट गए, सखी मंगलो गाया इच पुजाया, बहुर न माया होया, कर गैली ने नानक प्रभ प्यारे, संसार सागर नहीं पोया दखना, साई नाम अमोल।

हर हर उत्तम नाम है जिन श्रेया सब कोए जियो। हर जी सबे प्रतपाल दा कट कट रमैया सोए। सो हर सदा त्याई है तिस बिन अवर न कोए। जो मोहे माया चित लाए दे से छोड़ चले दुख रोए। जन नानक नाम ते आया हर अंत सखाई होए। मैं हर दिन अवर न कोए। हर गुरसरण आई पाई है मन जारिया मित्रा। वड भाग प्राप्त होए रहाओ। संत जना विण पाया हर किने न पाया नाओ। विच हो मैं कर्म कमाव दे ज्यों वेसुआ पुत ने नाओ। पिता जात ता होई है गुर तुठा करे पसाओ। वद पागी गुर पाया हर एनस लगा पाओ। जन नानक ब्रह्म पछाणिया हर कीरत कर्म कमाओ। मन हर हर लगा चाओ गुर पूरे नाम दृढ़ाया। हर मिलिया हर प्रवनाओ रहाओ। जब लग जोबन सांस है तब लग नाम से आए। चल दिया।

नाम न चेत्यो से अंत गए पछताए। दुर्मस्तक हर प्रभ लिखिया जन नानक नाम से आए। मन हर हर प्रीत लगाए वडपागी गुर पाया गुर सब्जी पार लगाए। रहाओ हर आपे आप उपायदा हर आपे दे वैले हर आपे परम पुलायदा हर आपे ही मत दे। गुरमुखा मन प्रगास है से विरले के ही के। हों बलिहारी तिन कौ जिन हर पाया गुरमते जन नानक कमल प्रगासिया मन हर हर उठड़ा है। मन हर हर जपन करे हर गुर शरणाई पद पो जिंदु सब किलिक दुख पर हरे। रहाओ कट कट मैया मन वसे क्यों पाये कित पत गुर पूरा सतगुर पेटिये हर आए वसे मन चित। मैं तार नाम आधार है हर नाम में ते गत मत मैं हर हर नाम विसाहो है हर नामे ही जत पत। जन नानक नाम सिराया रंग रतड़ा हर रंग रत हर त्यावो हर प्रभ सत गुरु बचनी हर प्रभ जानिया सब हर प्रभ ते उत्पत। रहाओ जिनको पूर्व लिखिया से आए मिले गुर पास सेवक पाए बन जा रहा मित्रा गुर हर हर नाम प्रगास। तन तन वणज व्यापारिया जिन वखर लगेड़ा हर रास गुरमुखा दर मुख उजले से आए मिले हर पास। जन नानक गुर तिन पाया जिना आप तुथा गुणतास हर त्यावो सास गिरास मन प्रीत लगी।

त्याग है। जे सच तरे प्यार सदा हर सच मन वसे नेचल मत अपार। रतन अमोलक पाया गुरखा शब्द विचार। जेवा सच्ची मन सच्चा सच्चा शरीर आकार। नानक सच्चे सतगु सेवे है सदा सच व्यापार। महला तीजा और बिरहा सब तात है जब लग साहिब प्रीत न होए। एहो मन माया मोया वेखण सुनन ना होए। सह देखे बिन प्रीत ना उपजे अंधा क्या करे। नानक जिन अखी लीतिया सोई सच्चा दे। पौड़ी हर इको करता इक इको दीवान हर। हर इक सैदा है अमर इको हर चित तार। हर किस बिन कोई ना है डर परम पौ दूर कर। हर किसे नो साला है जे तुद रखे बार कर। हर जिसनो हुए दयाल सो हर जप पौ बिखर।

मेरे मन हर चेत सोदर है जे पाप कमावदा धर्मी विगसेत तू सच्चा आप न्याओ सच ता दरिया केत जिना नानक सच पछा।

लिखण वाला जल बलो जिन लिखिया दूजा पाओ नानक पूरब लिखिया कमावना अवर ना करना जाए महला तीजा होर कूड़ पढ़ना पूर बोलना माया नाल प्यार नानक बिन नामे को थिर नहीं पढ़ पढ़ हो एक वार पौड़ी हर की वड्याई वड्डी है हर कीर्तन हर का हर की वड्याई वड्डी है जा न्याओ है धर्म का हर की वड्याई वड्डी है जा फल है जी का हर की वड्याई वड्डी है जा ना सुनई कहा चुगल का हर की वड्याई।

नानक जन्म सकार था जे तिनके संग मिला। पौड़ी तू आपे जल मीना है आपे आपे ही आप जाल तू आपे जाल बताएदा आपे विच सेवाल तू आपे कमल अलिप्त है सह हथा विच गुलाल तू आपे मुक्त कराएदा एक निमक कड़ी कर ख्याल हर तुदो बार किच नहीं गुर सब्दी वेख निहाल। श्लोक महला तीजा हुक्म ना जाने बहुता रोवे अंदर तोखा नींद ना सोवे जे तन खसमे चले रजाई दर कर शोभा महल बुलाई नानक करमी ए मत पाई गुर प्रसादी सच समाई। महला तीजा मन मुख नाम विहूनिया रंग कुसुम्बा देख ना पुल इक्का रंग दिन खोड़िया सोचा इसदा मुल दूजे लगे पत मोए मूरख अंध गवार।

पौड़ी शिष्ट उपाय सब तुद आपे रिजक समाया एक वल छल करके खाव दे मुंह कूर कुसत तिन्नी ताया तुद आपे पावे सो करें तुद ओते कम कोई लाया इकना सच बुझायोन तिना अतुट पंडार देवाया हर चेत खाए तिना सफल है अचेता हथ तदाया। श्लोक महला तीजा पढ़ पढ़ पंडित वेद बखाने माया मोह सुआए दूजे पाए हर नाम विसारिया मन मूरख मिले सजाए जिन जियो पिंड दिता तिस कभू न चेते जो देंदा रिजक समाए जम का पाथा गलो न कटिए फिर आवे जाए मन मुख किछु न सूजे अंधले पूरब लिखिया कमाए पूरे पाग सतगुर मिले सुख दाता नाम वसे मन आए सुख माने सुख पहनना सुखे सुख विहाए नान सो नाओ मनो ना।

आए। सो ऐसा हर नाम जपिए मन मेरे, जो मन की तृष्णा सब भुख गवाए। सो गुरुमुख नाम जपिया वड पागी, तिन निंदक दुष्ट सब कैरी पाए। नानक नाम अराध सबना ते वड्डा, सब नाम अग्गे आन निवाए। श्लोक महला तीजा। वेश करे कुरूप कुलखणी, मन खोटे कूड़ियार। तिर के पाने ना चले, हुक्म करे गावार। गुर के पाने जो चले, सब दुख निवारण हार। लिखिया मेट न सकिए, जो तुर लिखिया करतार। मन तन सौंपे कंत को, सब दे तरे प्यार। बिन नावे किने न पाया, देखो हृदय विचार। नानक सा सुवालियो सुलखणी, जे रावी सिरजनहार। महला तीजा। माया मोह गुवार है, तिसदा ना दिसे उरवार ना पार। मन मुख अज्ञानी मा दुख पाए दे, डुबे हर नाम विसार। पलके उठ बहु कर्म कमावे, दूजे पाए प्यार। सतगुर सेवे अपना, पौजल उतरे पार। नानक गुरमुख सच समावे, सच नाम उरधार। पौड़ी। हर जल तल मैयल भरपूर, दूजा नाहे कोए। हर आप बह करे न्याओ, कुड़ियार सब मार कडोए। सचियारा दे वड्याई, हर धर्म न्याओ की ओए। सब हर की करो उस्तत, जिन गरीब अनाथ राख लियो।

सतगुर कै पाए प्यार, सदा रावे फिर आपना सच्चे प्रेम प्यार। अस सुआलियो सुंदरी शोभावंती नार, नानक नाम सुहागनी मेली मेलनहार। पौड़ी हर तेरी सब करें उस्तक जिन फाफे काढ़िया, हर तुदनो करें सब नमस्कार जिन पापे ते राखिया। हर निमाणिया तू मान, हर डाडी हूँ तू डाडिया, हर अंकारिया मार निवाए मनमुख मूड साध्या। हर भगता दे वड्याई गरीब अनाथिया। श्लोक महला तीजा, सतगुर कै पाणे जो चले तिस वड्याई वड्डी होए, हर का नाम उत्तम मन वसै मेट न सके कोए। कृपा करे जिस आपनी तिस कर्म प्राप्त होए, नानक कारण करते वस है गुरमुख बूझै कोए। महला तीजा, नानक हर नाम जिनी आराध्या अंदिन हर लिवतार, माया बंदी खत्म की तिन अगे कमावे कार। पूरे पूरा कर छोड़िया हुक्म सवारण हार, गुर प्रसादी जिन बुझिया तिन पाया मोख द्वार। मनमुख हुक्म ना जाननी तिन मारे जम जंदार, गुरमुख जिन्नी आराध्या तिन्नी तरिया पौजल संसार। सब अवगण गुणी मिटाया गुर आपे बख्शनहार। पौड़ी हर की भगता प्रतीत हर सब किछ जानदा, हर जेवड़ नाही कोई जान हर धर्म विचारदा। कारा अंदेसा क्यों कीजे जा नाही अतर्म मारदा, सच्चा साहिब सच न्याओ पापी नर हारदा। साला हो

सो प्रभ सदा सदा गुर कहे प्यार, नानक जिस नजर करे तिस मेल ले, साई सुहागण नार महला तीजा। गुर सेवा ते हर पाई है जा को नजर करे, मानस ते देवते पे त्याया नाम हरे। हौ मैं मार मिलायन गुर कै शब्द तरे, नानक सहज समायन हर अपनी कृपा करे पौड़ी।

कबुद डूमणी कुदया कसायण पर निंदा कट चूड़ी मुठी क्रोध चंडाल तारी कड़ी क्या की है जा चारे गैठिया नाल सच संजम करनी कारा नावन नाव जपेही नानक अगे उतम सही जे पापा पंद न देही मैला पहला क्या हंस क्या बगुला जाको नदर करे जो तिस पावे नानका कागो हंस करे पौड़ी कीता लोड़ी है कम सो हर पै आखी है कारज देसवार सतगुर सच साखी है संता संग निधान अमृत चाखी है तै पंजन मेरवान दास की राखी है नानक हर गुण गाए अलख प्रभलाखी है श्लोक महला तीजा जियो पिंड सब तिसका सबसे दे आधार नानक गुरमुख सेवी है सदा सदा दातार हौ बलिहारी तिन को जिन त्याया हर निरंकार ओना के मुख सद उजले ओना नो सब जगत करे नमस्कार महला तीजा सतगुरु मिले है उल्टी भई नवनिध खर्चियो खाओ अठारह सिद्धि पिछे लगिया फिरन निज कर वसे निज खाए अनहद तुनी सद वज दे उन मन हर लिव लाए नानक हर भगत तिना कै मन वसे जिन मस्तक लिखिया तुर पाए पौड़ी हौं ताडी हर प्रभ खसम का हर कै दर आया हर अंदर सुनी पुकार टाडी मुख लाया हर पुछिया टाडी सद कै कित अर्थ तू आया नित देवो दान दयाल प्रभ हर नाम ते आया हर दाते हर नाम जपाया नानक पैन आया सुध

इतना को ना जाने जे दिन दिन अवध कटत है। मोर मोर कर अधिक लाड कर, देखत ही जमराव हसे, ऐसा तैं जग परम लाया, कैसे बूझे जब मोया है माया। रहाओ कह कबीर छोड़ बिखिया रस, इस संगत ने चो मरना, रमैया जपो प्राणी अनंत जीवन बाणी, इन विद पव सागर तरना, जात पावे ता लागे पाओ, परम पुलावा विचों जाए, उपजे सहज ज्ञान मत जागे, गुर प्रसाद अंतर लिव लागे, इत संगत नाही मरना, हुकम पछाण ता कसमे मिलना, रहाओ दूजा श्री राज त्रिलोचन का, माया मोह मन अगलड़ा प्राणी, जरा मरण पौ विसर गया, कुटुंब देख बिगसे कमला ज्यों, पर कर जो है कपट नरा, दूरा आयो हो जमे तना, तिन आगलड़े में रहन न जाए, कोई कोई साजन आए कहे, मिल मेरे बीसला ले बाहरी वलाए, मिल मेरे रमैया मैं ले छड़ाए। रहाओ अनक अनक भोग राज बिसरे प्राणी, संसार सागर पे अमर पया, माया मूठा चेतस नाही, जन्म गवायो आलसिया, बिखम कोर पंथ चालना प्राणी, रव सप तैना परवेसं, माया मोह तब बिसर गया, जा तजियले संसारं। आज मेरे मन प्रगट भया है, पेखियले तर्म राओ, तह कर दल करन महाबली, तिन आग लड़े में रहन न जाए, जे को मुंह उपदेश करत है, ता वन त्रिन रतड़ा नारायण, ए जी तू आपे सब किछ जानदा, बदत त्रिलोचन रामैया। श्री राग भगत कबीर जीओ का। अचरज एक सुनो रे पंडिया, अब किछ कह न जाए, सुर नर गण गंधर्व जिन मोहे, त्रिभुवन मेखली लाए, राजा राम अनहद किंगरी बाजे, जाकी दिस्त नाद लिव लागे। रहाओ पाठी गगन सिंगिया अर चुंगिया, कनक कलश इक पाया, तिस में तार चुए अत निर्मल, रस में रसन चुआया, एक जो बात अनूप बनी है, पवन प्याला साजिया, तीन पवन में एको जोगी, कहो कवन है राजा, ऐसे ज्ञान प्रगटिया पुरखोत्तम, कहो कबीर रंग राता, और दुनी सब परम पुलानी, मन राम रसायन माता। श्री राजबाणी भगत बेणी जियो की।

रे नर गर्भ कुंडल जब आचत उर्द ध्यान लिव लागा मृतक पिंड पद मद ना एनस एक अज्ञान सोनागा ते दिन सम्मल कष्ट महा दुख अब चित अधिक पसारया गर्भ छोड़ मृत मंडल आया तो नरहर मनो बिसारया फिर पछतावेगा मूड़या तू कवन कुमत परम लागा चेत राम नाही जमपुर जाहेगा जन बिचरे अनरादा रहाओ बाल विनोद चिंद रस लागा खिन खिन मोह व्यापे रस मित मेद अमृत दिख चाकी तो पंच प्रगट संतापे जप तप संजम छोड़ सुकृत मत राम नाम ना आराध्या उछलिया काम काल मत लागी तो आन सकत गल बांधिया तरुण तेज परत्रय मुख जो है सर अफसर ना पछाणिया उन्मत काम महा बिख पूले पाप पुन ना पछाणिया सुत संपत देख एव मन गर्भिया राम हृदय ते खोया अवर मर्त माया मन तोले तो पग मुख जन्म विगोया कुंडर केस कुसुम ते तौले सपत पताल की बाणी लोचन समय बुद्ध बल नाथी ता काम पवस माधानी ताते बिखे पई मत पावस काया कमल कुम लाना अवगत बाण छोड़ मृत मंडल तो पाछे पछताना निकुटी देह देख तुन उपजे मान करत नहीं बूझे लालच करे जीवन पद कारण लोचन कछु न सूझे साका तेज उड़िया मन पंखी कर आंगन ना सुखाई बेनी कह सुनो रे भक्तो मरण मुकत किन पाई श्री राग तो ही मोही मोही तो ही अंतर कैसा कनक कटक जल तरंग जैसा जो पे हम ना पाप करंता अहे अनंता पतित पावन नाम कैसे हुंता रहाओ तुम जो नायक आछो अंतर।

हर हर नाम में हर मन भाया, वड पागी हर नाम ते आया। गुरपूरे हर नाम सिद्ध पाई, को विरला गुरमत चले जियो। मैं हर हर खर्च लिया बन पल्ले, मेरा प्राण सिखाई सदा नाल चले। गुरपूरे हर नाम दृढ़ाया, हर नेचल हर तन पल्ले जियो। हर हर सज्जन मेरा प्रीतम राया, कोई आन मिलावे मेरे प्राण जीवाया। हों रह ना सका बिन देखे प्रीतमा, मैं नीर वहे वह चले जियो। सतगुर मित्र मेरा बाल सखाई, हों रह ना सका बिन देखे मेरी माई। हर जियो कृपा करो गुर मेलो, जन नानक हर तन पल्ले जियो। माज महला चौथा। मधुसूदन मेरे मन तन प्राणा, हों हर बिन दूजा अवर ना जाना। कोई सज्जन संत मिले वड पागी, मैं हर तक प्यारा दसे जियो। हों मन तन खोजी पाल पलाई, क्यों प्यारा प्रीतम मिले मेरी माई। मिल सत संगत खोज दसाई, विच संगत हर प्रभु वसै जियो। मेरा प्यारा प्रीतम सतगुर रखवाला, हम बारिक दीन करो प्रतिपाला। मेरा मात पिता गुर सतगुर पूरा, गुर जल मिल कमल विकसै जियो। मैं बिन गुर देखे नींद ना आवे, मेरे मन तन वेदन गुर बिरहो लगावे। हर हर दया करो गुर मेलो, जन नानक गुर मिल रह सै जियो। माज महला चौथा। हर गुण पढ़िए हर गुण गुणिए, हर हर नाम कथा नित सुनिए। मिल सत्संगत हर गुण गाए, जग पौजल दुत्तर करिए जियो। आओ सखी हर मेल करेहा, मेरे प्रीतम का मैं दे स्नेहा। मेरा मित्र सखा सो प्रीतम भाई, मैं दसे हर नर हरिए जियो। मेरी बेदन हर गुर पूरा जाने, हों रह ना सका बिन नाम वखाने। मैं औखद मंत्र दीजे गुर पूरे, मैं हर हर नाम उधरिए जियो। हम चात्रिक दीन सतगुर शरणाई, हर हर नाम बूंद मुख पाई। हर जल निद हम जल के मीने, जन नानक जल बिन मरिए जियो। माज महला चौथा। हर जन संत मिलो मेरे भाई, मेरा हर प्रभ दसो मैं भूख लगाई। मेरी श्रद्धा पूर जग जीवन दाते, मिल हर दर्शन मन पी जय जियो। मिल सत्संग बोली हर बाणी, हर हर कथा मेरे मन भाणी। हर हर अमृत हर मन पावे, मिल सतगुर अमृत पी जय जियो। वड पागी हर संगत पावे, पागहीन प्रम चोटा खावे। बिन पागा सत्संग न लब्बे, बिन संगत मैल परी जय जियो। मैं आए मिलो जग जीवन प्यारे, हर हर नाम दया मन तारे। गुरमत नाम मीठा मन पाया, जन नानक नाम मन पी जय जियो। माज महला चौथा। हर गुर ज्ञान हर रस हर पाया, मन हर रंग राता हर रस पी आया। हर हर नाम मुख हर हर बोली, मन हर रस टुल टुल पौदा जियो। आवो संत मैं गल मेल आईए, मेरे प्रीतम की मैं कथा सुनाईए। हर के संत मिलो मन देवा, जो गुरबाणी मुख चौदा जियो। वड पागी हर संत मिलाया, गुरपूरे हर रस मुख पाया। पागहीन सतगुर नहीं पाया, मन मुख गर्भ जूनी नित पौदा जियो। आप दयाल दया प्रभ तारी, मल हों मैं बिखिया सब निवारी। नानक हट पट्टन विच काया, हर लेंदे गुरमुख सौदा जियो। माज महला चौथा। हों गुण गोविंद हर नाम ते आई, मिल संगत मन नाम वसाई। हर प्रभ अगम अगोचर स्वामी, मिल सतगुर हर रस की चै जियो। तन तन हर जन जिन हर प्रभ जाता, जाए पुछा जन हर की बाता। पाप मलोवा मलमल तोवा,
मिल हर जन हर रस पीचै जीओ। सतगुर दातै नाम दिड़ाया, वड पागी गुर दर्शन पाया। अमृत रस सच अमृत बोली, गुर पूरे अमृत लीचै जीओ। हर सत्संगत सतपुरख मिलाइए, मिल सत्संगत हर नाम ते आइए। नानक हर कथा सुनी।

तारियां जो मेरा प्रीतम दसे तिसके हों वारियां मिल सत्संगत लद्दा हर सज्जन हों सतगुरु विट्टो कुमाइया जियो जै जै देखा तै तै स्वामी तू कट कट रविया अंतर जामी गुरपूरे हर नाल दिखा लिया हों सतगुरु विट्टो सदवारिया जियो एको पवन माटी सब एका जोत सबाइया सब इका जोत वरते पिन पिन ना रलई किसे दीर लाइया गुर प्रसादी इक नदरी आया हों सतगुर विट्टो बताया जियो जन नानक बोले अमृत बाणी गुर सिखा कै मन प्यारी पानी उपदेश करे गुर सतगुर पूरा गुर सतगुर पर उपकारिया जियो सत चौपदे महले चौथे के माज महला पंजवा चौक दे कर पहला मेरा मन लोचे गुर दर्शन ताई बिल्प करे चात्रिक की न्याई त्रिखा ना उतरे सांस ना आवे बिन दर्शन संत प्यारे जियो हों कोली जियो कोल कुमाई गुर दर्शन संत प्यारे जियो रहाओ तेरा मुख सुहावा जियो सह तुन बाणी चिर होआ देखे सारंग पानी तन सो देश जहां तू वस्या मेरे सज्जन मीत मुरारे जियो हों कोली हों कोल कुमाई गुर सज्जन मीत मुरारे जियो रहाओ एक कड़ी ना मिलते ता कल युग होता हुण कद मिली है प्रिय तुद भगवंता मोहे रैन ना बिहावे नींद ना आवे बिन देखे गुर दरबारे जियो हों कोली जियो कोल कुमाई तिस सच्चे गुर दरबारे जियो रहाओ पाग हुआ गुर संत मिलाया प्रभ अविनाशी कर में पाया सेव करी पल चसा ना बिछड़ा जन नानक दास तुम्हारे जियो हों कोली जियो कोल कुमाई जन नानक दास तुम्हारे जियो रहाओ राग माज महला पंजवा सारुत सुहावी जित तुद समाली सो कम सुहेला जो तेरी काली सो रिदा सुहेला जित रिदय तू उठा सबना के दातारा जियो तू सांझा साहिब बाप हमारा नौ निध तेरे अखुट पंडारा जिस तू दे सो त्रिपत अघावे सोई भगत तुम्हारा जियो सबको आसे तेरी बैठा कट कट अंतर तू है उठा सबे सांझी वाल सदाइन तू किसे न दिसे बहरा जियो तू आपे गुरमुख मुक्त कराए तू आपे मनमुख जन्म पवाए नानक दास तेरे बलिहार है सब तेरा खेल दसहरा जियो माज महला पंजवा अनहद वाजे सहज सुहेला शब्द आनंद करे सद केला सहज गुफा में

पाणे हर गुण गुरमुख गावा, पाणे परम पवे बहु जूनी, सब किछ तिसे रजाई जियो, ना को मूरख ना को स्याणा, वरते सब किछ तेरा पाणा, अग अगोचर बे अंक।

दर्शन पेखत मन आघावे, नानक मिलन सुभाई जियो। माज महला पंजवा। दुख तदे जा विसर जावे, उख व्यापे बहु विदतावे, सिमरत नाम सदा सुहेला, जिस देवे दीन दयाला जियो। सतगुरु मेरा वड समरथा, जी संभाली ता सब दुख लथा, चिंता रोग गई हौ पीड़ा, आप करे प्रतपाला जियो। बारिक वांगी हौ सब किछ मंगा, देन दे तोट नाही प्रभ रंगा, पैरी पै पै बहुत मनाई, दीन दयाल गोपाला जियो। हौ बलिहारी सतगुरु पूरे, जिन बंधन काटे सगले मेरे, हृदय नाम दे निर्मल किए, नानक रंग रसा।

ऊंच नीच करे प्रतपाला, नाम रसायन मंत्र पतायन, गुरमुख अमृत पीवा जियो। दुख सुख प्यारे तुद त्याई, ए सुमत गुरु ते

मेरे मुख लागी दुर्मत बिनसी कुबुद अपागी सच कर बैस रहे गुण गाए नानक बिनसे कूरा जियो माज महला पंजवा विसरना ही एवड दाते कर कृपा भगतन संग राते दिन सरैन ज्यों तुद त्याई एहो दान मोहे करना जियो माटी अंधी सुरत समाई सब किश दिया पलिया जाई अनद बिनोद चोज तमासे तुद पावे सो होना जियो जिस दा दिता सब किश लेना छत्ती अमृत भोजन खाना सेज सुखाली शीतल पवना सहज केल रंग करना जियो सा बुद्ध दीजै जित विसरे नाही सा मत दीजै जित तुद त्याई सास सास तेरे गुण गावा ओट नानक गुर चरणा जियो माज महला पंजवा सिफत सलाहन तेरा हुक्म रजाई सो ज्ञान ध्यान जो तुद पाई सोई जप जो प्रभ जियो पावे पाणे पूर ज्ञाना जियो अमृत नाम तेरा सोई गावे जो साहिब तेरे मन पावे तू संतन का संत तुम्हारे संत साहिब मन माना जियो तू संतन की करे प्रतपाला संत खेले तुम संग गोपाला अपने संत तुद खरे प्यारे तू संतन के प्राणा जियो उन संतन के मेरा मन कुर्बाने जिन तू जाता जो तुद मन पाने तिनके संग सदा सुख पाया हर रस नानक तृप्त अघाना जियो माज महला पंजवा तू जल निद हम मीन तुम्हारे तेरा नाम बूंद हम चात्रिक तिखारे तुमरी आस प्यासा तुमरी तुम ही संग मन लीना जियो ज्यो बारिक पी खीर अगावे ज्यो निर्धन तन देख सुख पावे त्रिखावंत जल पीवत ठंडा त्यों हर संग इहो मन पीना जियो ज्यो अंधियारे दीपक परगासा परता चितवत पूरन आसा मिल प्रीतम ज्यो होत आनंदा त्यों हर रंग मन रंगीना जियो संतन मोको हर मार्ग पाया साध कृपाल हर संग गिजाया हर हमरा हम हर के दासे नानक शब्द गुरु सच दीना जियो माज महला पंजवा अमृत नाम सदा निर्मलिया सुखदाई दुख बिडारन हरिया अवर साध चट

सो तृप्तावे, अमर होवे जो नाम रस पावे, नाम निधान तिसे प्राप्त, जिस शब्द गुरु मन बुठा जियो। जिन हर रस पाया सो तृप्त अघाना, जिन हर साध पाया सो नाए डुलाना, तिसे प्राप्त हर हर नामा, जिस मस्तक पागी था जियो। हर इक हाथ आया वरसाने बहु तेरे, तिस लग मुक्त पय कनेरे, नाम निधाना गुरुमुख पाये, कहो नानक बिरली डीठा जियो। माज महला पंजवा, निद सिद्ध रिद हर हर हर मेरे, जन्म पदार्थ गैर गंभीर है, लाख कोट खुशियां रंग रावे, जो गुर लागा पाई जियो। दर्शन पेखत पय पुनीता, सगल उधारे पाई मीता, अगम अगोचर स्वामी अपना, गुर कृपा ते सच त्याई जियो। जहां को खोजे सर्व उपाय, वड पागी दर्शन को विरला पाए, ऊंच अपार अगोचर थाना, ओ महल गुरु देखाई जियो। गहर गंभीर अमृत नाम तेरा, मुक्त पया जिस हृदय वसेरा, गुर बंधन तिनके सगले काटे, जन नानक सहज समाए जियो। माज महला पंजवा, प्रभ कृपा ते हर हर त्यावो, प्रभु दया ते मंगल गावो, उठत बैठत सोवत जागत, हर त्याये सगल अवरदा जियो। नाम औखद मोको साधु दिया, किलबिख काटे निर्मल थिया, आनंद पया निकसी सब पीरा, सगल बिना से दर्दा जियो। जिसका अंग करे मेरा प्यारा, सो मुक्ता सागर संसारा, सत करे जिन गुरु पछाता, सो काहे को डरदा जियो। जब ते साधु संगत पाए, गुर पेटत हो गई बलाए, सास सास हर गावे नानक, सतगुरु टाक लिया मेरा पड़दा जियो। माज महला पंजवा, ओत पोत सेवक संगराता, प्रप्रत पाले सेवक सुखदाता, पानी पखा पीसो सेवक कै, ठाकुर ही का आहार जियो। काट सिलक प्रभ सेवा लाया, हुकम साहिब का सेवक मन पाया, सोई कमावे जो साहिब पावे, सेवक अंतर बाहर माहर जियो। तू दाना ठाकुर सब विद जाने, ठाकुर के सेवक हर रंग माने, जो किछ ठाकुर का सो सेवक का, सेवक ठाकुर ही संग जाहर जियो। अपने ठाकुर जो पहराया, बहुर न लेखा पुछ बुलाया, तिस सेवक के नानक कुर्बानी, सो गहर गंभीरा गहर जियो। माज महला पंजवा, सब किछ कर में बाहर नाही, बाहर टोले सो परम पुलाही, गुर प्रसादी जिन अंतर पाया, सो अंतर बार सुहेला जियो। चिम चिम वरसे अमृत धारा, मन पीवे सुन शब्द विचारा, अनद विनोद करे दिन राती, सदा सदा हर के लाजियो। जन्म जन्म का बिछड़िया मिलिया, साध कृपा ते सूका हरिया, सुमत पाए नाम ते आए, गुरमुख होए मेला जियो। जल तरंग ज्यो जले समाया, त्यों ज्योति संग ज्योत मिलाया, कहो नानक प्रम कटे किवाड़ा, बहुड़ना होई है जौला जियो। माज महला पंजवा, तिस कुर्बानी जिन तू सुनिया, तिस बलिहारी जिन रसना पणिया, वार वार जाई तिस विटो, जो मन तन तुद आरा दे जियो। तिस चरण पखाली जो तेरे मार्ग चाले, नैन निहाली तिस पुरख दयाले, मन देवा तिस अपने साजन, जिन गुर मिल सो प्रबला दे जियो। सेवड पागी जिन तुम जाने, सब के मदे अलिपत निर्बाणे, साध के संग उन पौजल तरिया, सगल दूत उन सा दे जियो। तिनकी शरण परया मन मेरा, मान पान तज मोह अंधेरा, नाम दान दीजे नानक को, तिस प्रभ अगम अगा दे जियो। माज महला पंजवा, तू पेड़ साख तेरी फूली,
तू सूखम होआ अस्थूली, तू जल निध तू फेन बुदबुदा, तुद बिन अवर न पालिय जियो। तू सूत मणिये भी तू है, तू गंठी मेर सिर तू है, आद मद अंत प्रभ तोई, अवर न कोई दिखा लिए जियो। तू निर्गुण सरगुण सुख दाता, तू निर्माण रसिया रंग राता, अपने कर सब आपे जाने, आपे तुद संभालिय जियो। तू ठाकुर सेवक फुन आपे, तू गुपत प्रगट प्रभ आपे, नानक दास सदा गुण गावे, इक पोरी नदर निहालिय जियो। माज महला पंजवा, सफल सोबाणी जित नाम वकाणी, गुर प्रसाद किने विरले जानी, तन सोवेला जित हर गावत सुनना, आए ते परवाना जियो। से नेत्र प्रवान जिनी दर्शन पेखा, से कर पले जिनी हर जस लेखा, से चरण सुहावे जो हर मार्ग चले, हौ बल तिन संग पछाणा जियो। सुन साजन मेरे मीत प्यारे, साध संग खिन माहे उदारे, किलविक काट हुआ मन निर्मल, मिट गए आवन जाना जियो। दो कर जोड़ एक बिनो करी जाए, कर कृपा डुबदा पत्थर लीजे, नानक कहो प्रभ भय कृपाला, प्रभ नानक मन पाणा जियो। माज महला पंजवा, अमृत बाणी हर हर तेरी, सुन सुन होवे परम गत मेरी, जलन बुझी शीतल होए मनुआ, सतगुरु का दर्शन पाए जियो। सुख पया दुख दूर पराना, संत रसन हर नाम वखाना, जल थल नीर परे सर सुबर, बिरथा कोई न जाए जियो। दया तारी तिन सृजन हारे, जी जंत सगले प्रत पारे, मेहरवान कृपाल दयाला, सगले तृप्त अघाए जियो। वन त्रिण त्रिभवन की तोन हरिया, करण हार खिन पीतर करिया, गुरमुख नानक तिसे अरादे, मन की आस पुजाए जियो। माज महला पंजवा, तू मेरा पिता तू है मेरा माता, तू मेरा बंदक तू मेरा प्राता, तू मेरा राखा सबनी थाई, ताबो के आकारा जियो। तुमरी कृपा ते तुद पछाणा, तू मेरी ओत तू है मेरा माणा, तुझ बिन दूजा अवर न कोई, सब तेरा खेल अखाड़ा जियो। जी जंत सब तुद उपाए, जित जित पाणा तित तित लाए, सब किछ कीता तेरा होवे, नाही किछ असाड़ा जियो। नाम ते आए महा सुख पाया, हर गुण गाए मेरा मन सीत लाया, गुरपूरे वजी वधाई, नानक जिता विखाड़ा जियो। माज महला पंजवा, जी प्राण प्रभ मने अधारा, भगत जीवे गुण गाए अपारा, गुण निधान अमृत हर नामा, हर त्याय त्याय सुख पाया जियो। मनसा तार जो करते आवे, साध संग जन्म मरण मिटावे, आस मनोरथ पूरे होवे, पेटत गुर दर्शाया जियो। अगम अगोचर किछ मित नहीं जानी, साधक सिद्ध त्यावे ज्ञानी, खुद ही मिटी चूका पोलावा, गुर मन ही मैं प्रगटाया जियो। आनंद मंगल कल्याण निधाना, सुख सहज हर नाम वखाना, होए कृपाल स्वामी।

प्रीतम ठाकुर अतपारी तुमरे कर्तव्य तुम ही जानो तुमरी ओट गोपाला जियो। गुण गावत मन हरिया होवे कथा सुनत मल सगली खोवे पेटत संग साध संतन कै सदा जपो दयाला जियो। प्रब अपना साथ साथ समारो ए मत गुर प्रसाद मन तारो तुमरी कृपा ते हुए परगाता सर्व मया प्रतपाला जियो। सत सत सत प्रभ सोई सदा सदा सद आपे होई चलत तुम्हारे प्रगट प्यारे देख नानक पै निहाला जियो। माज महला पंजवा हुक्मी वर्षण लागे मेहा साजन संत मिल नाम जपेहा शीतल शांत सहज सुख पाया ठांड पाई प्रभ आपे जियो। सब किछ बहुतो बहुत उपाया कर कृपा प्रभ सगल रजाया दात करो मेरे दातारा जी जंत सब त्रापे जियो। सच्चा साहिब सच्ची नाई गुर प्रसाद तिस सदा त्याई जन्म मरण पै काटे मोहा बिनते सोग संतापे जियो। सास सास नानक साला है सिमरत नाम काटे सब पाहे पूरन आस करी खिन पीतर हर हर हर गुण जापे जियो। माज महला पंजवा आओ साजन संत मीत प्यारे मिल गावे गुण अगम अपारे गावत सुनत सदे ही मुक्ते सो त्याये जिन हम किए जियो। जन्म जन्म के किल बिख जावे मन चिंदे से ही फल पावे सिमर साहिब सो सच स्वामी रिजक सबस को दिए जियो। नाम जपत सर्व सुख पाये सब पौ बिन से हर हर त्याये जिन से व्या सो पार ग्रामी कारज सगले थिए जियो। आए पया तेरी शरणाई ज्यों पावे त्यों लह मिलाई कर कृपा प्रभ भक्ति लावो सच नानक अमृत पिए जियो। माज महला पंजवा पय कृपाल गोविंद गोसाई मेघ वर्षे सबनी थाई दीन दयाल सदा कृपाला ठाड पाई करतारे जियो। अपने जी जंत प्रत पारे ज्यो बार माता सम्मारे दुख पंजन सुख सागर स्वामी देत सगल आहारे जियो। जल थल पूर रहा मेरवाना सद बलिहार जाये कुर्बाना रैन दिन सत्य सदा ते आई जे खिन में सगल उधारे जियो। राख लिए सगले प्रभ आपे उतर गए सब सोग संतापे नाम जपत मन तन हरियावल प्रभ नानक नदर निहारे जियो। माज महला पंजवा जिथे नाम जपिए प्रभ प्यारे से अस्थल सोइन चुबारे जिथे नाम ना जपिए मेरे गोइंदा से नगर उजाड़ी जियो। हर रुखी रोटी खाए समाले हर अंतर बाहर नदर निहाले खाए खाए करे बद फैली जान विसु की वाड़ी जियो। संता सेती रंग न लाए साकत संग विकर्म कमाए दुलब दे कोई अज्ञानी जड़ अपनी आप उपाड़ी जियो। तेरी शरण मेरे दीन दयाला सुख सागर मेरे गुरु गोपाला कर कृपा नानक गुण गावे राखो शर्म असाड़ी जियो। माज महला पंजवा चरण ठाकुर के हृदय समाने कल कलेश सब दूर पयाने सांत सुख सहज तुन उपजी साधु संग निवासा जियो। लागी प्रीत ना टूटे मूले हर अंतर बार रहा पर पूरे सिमर सिमर सिमर गुण गावा काटी जम की फासा जियो। अमृत वर्ष है अनहद बाणी मन तन अंतर सांत समाणी त्रिपक अघाए रहे जन तेरे सतगुर किया दिलासा जियो। जिसका साथ तिसते फल पाया कर कृपा प्रभ संग मिलाया आवन जान रहे वट पागे नानक पूरन आसा जियो। माज महला पंजवा मियो पया परमेश्वर पाया जी जंत सब सुखी वसाया दया कलेस पया।

सर्व जिया को देवनहारा, गुर प्रसादी नदर निहारा, जल थल मैयल सब तृप्ताने, साधु चरण पखाली जियो। मन की इच्छे पुजावन हारा, सदा सदा जाई बलिहारा, नानक दान किया दुख पंजन, रते रंग रसाली जियो। माज महला पंजवा, मन तन तेरा तन भी तेरा, तू ठाकुर स्वामी प्रभ मेरा, जियो पिंड सब रास तुम्हारी, तेरा जोर गोपाला जियो। सदा सदा तू है सुखदाई, निव निव लागा तेरी पाई, कार कमावा जे तुझ पावा, जा तू दे दयाला जियो। प्रभ तुम ते लेना तू मेरा गहना, जो तू दे सोई सुख सहना, जिथे रखे बेकुंठ सिथाई, तू सबना के प्रतपाला जियो। सिमर सिमर नानक सुख पाया, आठ पहर तेरे गुण गाया, सगल मनोर

जल फल मैयल दैदिश्वर साया, सांत पई बुझी सब कृष्णा, आनंद पया सब थाई जियो। सुखदाता दुख पंजन हारा, आपे बख्श करे जी सारा, अपने की तेनो आप प्रतपाले, तै पैरी तिसे मनाई जियो। जा की शरण पया गत पाये, साफ साफ हर नाम ते आये, तिस बिन होर ना दूजा ठाकुर, सब तिसे किया जाई जियो। तेरा मान तान प्रभ तेरा, तू सच्चा साहिब गुणी गहेरा, नानक दास कह बेनंती, आठ पहर तू त्याई जियो। माज महला पंजवा, सबे सुख परे प्रव तुठे, गुरपूरे के चरण मन उठे, सह समाध लगी लिव अंतर, सो रस सोई जाने जियो। अगम अगोचर साहिब मेरा, कट कट अंतर वरते मेरा, सदा अलिप्त जिया का दाता, को विरला आप पछाने जियो। प्रभ मिलने की ए निशानी, मन इको सच्चा हुकुम पछाने, सहज संतोष सदा तृप्ता से, आनंद खसम कह पाने जियो। हथ की दिखी प्रभ देवन हारे, जन्म मरण रोग सब निवारे, नानक दास किए प्रभ अपने, हर कीर्तन रंग माने जियो। माज महला पंजवा, तीनी दया गोपाल गुसाई, गुर के चरण वसे मन माही, अंगीकार किया तिन करते, दुख का डेरा काया जियो। मन तन वसिया सच्चा सोई, बिखड़ा थान न दिसे कोई, दूत दुश्मन सब सज्जन होए, एको स्वामी आया जियो। जो किस करे सो आपे आपे, बुद्ध सियाणप किछु ना जापे, अपने संतानो आप सहाय, प्रभ परम पुलावा लाया जियो। चरण कमल जन का आधारो, आप पैर राम नाम वपारो, सहज आनंद गावे गुण गोविंद, प्रभ नानक सर्व समाया जियो। माज महला पंजवा, सो सत मंदर जित सच त्याई है, सो रिदा सुहेला जित हर गुण गाई है, सा करत सुहावी जित वसे हर जन सच्चे नाम वितो कुर्बानो जियो। सत वडाई कीम ना पाई, कुदरत कर्म ना कहना जाई, त्याए त्याए जीवे जन तेरे, सत शब्द मन मानो जियो। सत सालाहन बड़ पादमी पाई है, गुर प्रसादी हर गुण गाई है, रंग रते तेरे तुद पावे, सच नाम निशानो जियो। सच्चे अंत ना जाने कोई, थान संतर सच्चा सोई, नानक सच त्याई।

मेला जप अमृत नाम संत संग मेला करी मूरत सिमरत पल वंजे जीवन सफल तिथाई जियो सिमरत नाम दोख सब लाथे अंतर बाहर हर प्रभु साथे तै पाओ परम खोया गुरपूरे देखा सबनी जाई जियो प्रभ समरथ वड ऊंच अपारा नौ निज नाम परे पंडारा आद अंत मद प्रभ सोई दूजा लवे न लाई जियो कर कृपा मेरे दीन दयाला जाचक जाचे सादर वाला देह दान नानक।

थापे, खुद बिन अवर न कोई करते, मैं तर ओत तुम्हारी जियो। रसना जप जप जीवे स्वामी, पार ब्रह्म प्रभ अंतर जामी, जिन सेवया तिन ही

शांति रह पाया, जन्म जन्म का रोग गवाया, हर कीर्तन गावो दिन राती, सफल एहा है कारी जीओ। दृष्ट तार अपना दास सवारिया, कट कट अंतर पार ब्रह्म नमस्कारिया, इकत विण होर दूजा नाही, बाबा नानक ए मत सारी जीओ। माज महला पंजवा, मन तन रत्ता राम प्यारे, सर्व सु दीजे अपना वारे, आठ पैर गोविंद गुण गाये, बिसरना कोई सासा जीओ। सोई साजन मीत प्यारा, राम नाम साध संग बिचारा, साधु संग तरी जय सागर, कटिये जम की फासा जीओ। चार पदार्थ हर की सेवा, पार जात जप अलख अतेवा, काम क्रोध किल दुख गुर काटे, पूरन होई आसा जीओ। पूरन पाग पै जिस प्राणी, साध संग मिले सारंग पानी, नानक नाम वस्या जिस अंतर, परवान गृहस्थ उदासा जीओ। माज महला पंजवा, सिमरत नाम हृदय सुख पाया, कर कृपा पंक्ति प्रगटाया, संत संग मिल हर हर जपिया, बिन से आलस रोगा जीओ। जा कै गृह नव निध हर पाई, तिस मिलिया जिस पूर्व कमाई, ज्ञान ध्यान पूरन परमेश्वर, प्रभ सबना गल्ला जोगा जीओ। किन मैं थाप उथापन हारा, आप इकंती आप पसारा, लेप नहीं जग जीवन दाते, दर्शन डिठे लहन विजोगा जीओ। अंचल लाए सब सिस्त्राई, अपना नाव आप जपाई, गुरबो हित पाया कृपा ते, नानक तुर संजोगा जीओ। माज महला पंजवा, सोई करना जे आप कराए, जिथे रखे सा पली जाए, सोई सियाना सो पतवंता, हुक्म लगे जिस लीठा जीओ। सब परोई इकत तागे, जिस लाए ले सो चरणी लागे, ऊंद कवल जिस होए परगासा, तिन सर्व निरंजन जीठा जीओ। तेरी महिमा तू है जाने, अपना आप तू

जिन देखे सब उतरे कलमल, नानक नाम त्याय त्याय जीवे, दिन श्या परम पौ तीथा जियो। माज महला पंजवा, चूठा मंगन जे कोई मांगे, तिसको मरते करी ना लागे, पार ब्रह्म जो सद ही सेवे, सो गुरमिल ने चल कहना। प्रेम भगत जिसके मन लागी, गुण गावे अनदिन नित जागी, बाह पकड़ तिस स्वामी मेले, जिसके मस्तक लहना। चरण कमल भगता मन उठे, बिन परमेश्वर सगले मुठे, संत जना की तूड़ नित बांचे, नाम सच्चे का गहना। उठत बैठत हर हर गाय, जित सिमरत वर ने चल पाये, नानक कौ प्रभु होए दयाला, तेरा कीता सहना। राग माज अष्टपदिया, महला पहला कर पहला, इक ओंकार सतगुरु प्रसाद। शब्द रंगाए हुक्म सवाए, सच्ची दरगे मैल बुलाए, सच्चे दीन दयाल मेरे साहिबा, सच्चे मन पति आवणिया। हों वारी जियो वारी सब सुहावणिया, अमृत नाम सदा सुखदाता, गुरमति मन वसावणिया। रहाओ ना को मेरा हों किस केरा, साचा ठाकुर त्रिभुवन मेरा, हों मैं कर कर जाए कनेरी, कर अवगुण पछोतावणिया। हुकम पछाणे सो हर गुण वखाणे, गुर के शब्द नाम निशाने, सबना का दर लेखा सके, छूटत नाम सुहावणिया। मन मुख पूला ठौर ना पाए, जम दर बद्दा चोटा खाए, बिन नामे को संग ना साथी, मुक्ते नाम ते आवणिया। साकत कूड़े सच ना पावे, दुबदा बांदा आवे जावे, लिखिया लेख

सच कमाए सतगुर सेवन से तनवंते ऐथे ओथे नाम समावणिया तै पाए सिंगार बनाए गुर प्रसादी महल कर पाए अन दिन सदा रवे दिन राती मजीठे रंग बनावणिया सबना पिरवसै सदा नाले गुर प्रसादी को नदर निहाले मेरा प्रभ अत ऊचो ऊचा कर कृपा आप मिलावणिया माया मोए इहो जग सुत्ता नाम विसार अंत विगुत्ता जिसे सुत्ता सो जा गाए गुरमत सोजी पावणिया अप्यो पिए सो परम गवाए गुर प्रसाद मुक्त गत पाए भगती रखा सदा बैरागी आप मार मिलावणिया आप उपाए संदै लाए लख चौरासी रिजक आप अपड़ाए नानक नाम से आए सच राते जो तिस पावे सो कार करावणिया माज महला तीजा अंदर हीरा लाल बनाया गुर के शब्द परख परखाया जिन सच पल्ले सच वखाने सच कसवटी लावणिया होवारी जियो वारी गुर की बाणी मन वसावणिया अंजन माहे निरंजन पाया ज्योति ज्योत मिलावणिया रहाओ इस काया अंदर बहुत पसारा नाम निरंजन अत अगम अपारा गुरमुख हो वै सोई पाए आपे बख्श मिलावणिया मेरा ठाकुर सच दिड़ाए गुर प्रसादी सच चित लाए सचो सच वरत सबनी थाई सच्चे सच समावणिया वे परवाहो सच मेरा प्यारा किलविख अवगुण काटन हारा प्रेम प्रीत सदा त्याई है पै पाए भगत दृढ़ावणिया तेरी भगत सच्ची जे सच्चे पावे आपे दे ना पछो तावे सबना जिया का एको दाता सब दे मार जीवावणिया हर तुद बाजो मैं कोई नाही हर तुद है सेवी तै तुद सलाही आपे मेल लहो प्रभ साचे पूरे कर्म तू पावणिया मैं होर न कोई तुद है जेहा तेरी नदरी सीजस देहा अंदिन सार समाल हर राखे गुरमुख कह समावणिया तुद जेवड मैं होर न कोई तुद आपे सिरजी आपे गोई तू आपे ही कर पन सवार नानक नाम सुहावणिया माज महला तीजा सब कट आपे भोगण हारा अलख वरते अगम अपारा गुर के शब्द मेरा हर प्रभ त्याये सहजे सच समावणिया हों वारी जियो वारी गुर शब्द मन वसावणिया शब्द सूजे ता मन स्यों लूजे मनसा मार समावणिया रहाओ पंच दूत मुहे संसारा मनमुख अंधे सुध ना सारा गुरमुख हो वैसो अपना कर राखे पंच दूत शब्द पचावणिया एक गुरमुख सदा सच्चे रंग राते सहजे प्रभ सेवे अंदिन माते मिल प्रीतम सच्चे गुण गावे हर दर शोभा पावणिया एकम एक आप उपाया दुबदा दूजा त्रिविद माया चौथी पौड़ी गुरमुख ऊची सच्चो सच कमावणिया सब है सच्चा जे सच्चे पावे जिन सच जाता सो सह समावे गुरमुख करनी सच्चे सेवे साचे जाए समावणिया सच्चे बाजो को अवर ना दुआ दूजे लाग जग खप खप मुआ गुरमुख हो वैसो एको जाने एको सेव सुख पावणिया जी जंत सब शरण तुम्हारी आपे तर देखे कच्ची पक्की सारी अन दिन आपे कार कराए आपे मेल मिलावणिया तू आपे मेले वेखे हदूर सब मैं आप रहा भरपूर नानक आपे आप वरते गुरमुख सोजी पावणिया माज महला तीजा अमृत बाणी गुर की मीठी गुरमुख विरले किने चख दीठी अंतर प्रगास महारस की वह दर सच्चे शब्द बजावणिया हों वारी जियो वारी गुर चरणी चित लावणिया सतगुर है अमृत सर साचा मन नावे मैल चुकावणिया रहाओ तेरा सच्चे किने अंत न पाया गुर प्रसाद किने विरले चित लाया तुझ सला है न रजा कबहू सच्चे नावे की पुख लावणिया एको वेखा अवर न बिया गुर प्रसादी अमृत पिया गुर के शब्द तिखा निवारी सहजे सुख समावणिया
रतन पदार्थ पलर त्यागे, मन मुख अंधा दूजे पाए लागे, जो बीजे सोई फल पाए, सुपने सुख न पावणिया, अपनी कृपा करे सोई जन पाए, गुर का शब्द मन वसाए, अंदिन सदा रहे तै अंदर, तै मार परम चुकावणिया, परम चुकाया सदा सुख पाया, गुर प्रसाद परम पद पाया, अंतर निर्मल निर्मल बाणी, हर गुण सहजे गावणिया, सिमरत शास्त्र वेद वखाणे, परमे पूला तत न जाने, बिन सतगुर सेवे सुख न पाए, दुखो दुख कमावणिया, आप करे किस आखे कोई, आखन जाइए जे पूला होई, नानक आपे करे कराए, नामे नाम समावणिया, माज महला तीजा, आपे रंग हर रंग चढ़ाए, मन तन रत्ता रसना रंग चलूली, पै पाए रंग चढ़ावणिया, हौ वारी जियो वारी निरपौ मन वसावणिया, गुर कृपा से हर निरपौ त्याया, बिख पौजल सब तरावणिया, रहाओ मन मुख मुग्ध करें चतुराई, नाता तोता थाए ना पाई, जेहा आया तेहा जाती, कर अवगण पछोतावणिया, मन मुख अंधे किछु न सूजे, मरण लिखाए आए नहीं बूझे, मन मुख कर्म करे नहीं पाए, बिन नावे जन्म गवावणिया, सच करनी शब्द है सार, पूरे गुर पाईए मोख द्वार, अंदर बाणी शब्द सुनाए, सच राते रंग रंगावणिया, रसना हर रस राती रंग लाए, मन तन मोहया सह सुभाए, सहजे प्रीतम प्यारा पाया, सहजे सहज मिलावणिया, जिस अंदर रंग सोई गुण गावे, गुर कै शब्द सहजे सुख समावे, हौं बलिहारी सदा तिन विटो, गुर सेवा चित लावणिया, सच्चा सच्चो सच पति जै, गुर प्रसादी अंदर पीजे, बैठ सुखान हर गुण गावे, आपे कर सत मनावणिया, जिसनो नजर करे सो पाए, गुर प्रसादी हो मैं जाए, नानक नाम वसे मन अंतर, दर सच्चे सोबा पावणिया, माज महला तीजा, सतगुर सेवे वड्डी वड्याई, हर जी अचिंत वसे मन आई, हर जियो सफल्यो बिरख है अमृत, जिन पीता तिस तिखा लहावणिया, हौ वारी जियो वारी सत संगत मेल मिलावणिया, हर सत संगत आपे मेल है, गुर सबदी हर गुण गावणिया, रहाओ सतगुर सेवी शब्द सुहाया, जिन हर का नाम मन वसाया, हर निर्मल हो मैं मैल गवाए, दर सच्चे शोभा पावणिया, बिन गुर नाम न पाया जाए, सिद्ध साधक रहे बिन लाए, बिन गुर सेवे सुख न होवी, पूरे पाग गुर पावणिया, एहो मन आरसी कोई गुरमुख वेखे, मोर्चा ना लागे जाहो मैं सोखे, अनहत बाणी निर्मल शब्द बजाए, गुर शब्दी सच समावणिया, बिन सतगुर क्यों ना देखिया जाए, गुर कृपा कर आप जिता दिखाए, आपे आप मिल रहया, सहजे सहज समावणिया, गुरमुख होवे सो इक्कस क्यों लिवलाए, दूजा परम गुर शब्द जलाए, काया अंदर वणज करे वापारा, नाम निधान सच पावणिया, गुरमुख करनी हर कीरत सार, गुरमुख पाए मोख द्वार, अंदिन रंग रता गुण गावे, अंदर महल बुलावणिया, सतगुरु दाता मिले मिलाया, पूरे पाग मन शब्द वसाया, नानक नाम मिले वडियाई, हर सच्चे के गुण गावणिया, माज महला तीजा, आप बंजाए ता सब किछ पाए, गुर सबदी सच्ची लिवलाए, सच वनन जै सच संग्रह, सच व्यापार करावणिया, हौ वारी जियो वारी हर गुण अंदिन गावणिया, हौ तेरा तू ठाकुर मेरा, शब्द वड्याई देवणिया, रहाओ वेला वक्त सब सुहाया, जित सच्चा मेरे मन भाया, सच्चे सेवे सच वड्याई, गुर कृपा ते सच पावणिया, पाओ भोजन सतगुरु तुथे पाए, अनरस चूके हर रस मन वसाए, सत संतोख सहज सुख बाणी, पूरे गुरते पावणिया।
सतगुर ना सेवै मूरख अंध गवारा, फिर ओए किथों पाइन मोख द्वारा, मर मर जमै फिर आवे जमदर चोटा खावणिया। शब्दे साफ जाने ता आप पछाने, निर्मल बाणी शब्द वखाने, सच्चे सेव सदा सुख पाइन नौ निध नाम मन वसावणिया। सो थान सुहाया जो हर मन भाया, सत संगत बह हर गुण गाया, अन दिन हर साला है साचा निर्मल नाद वजावणिया। मन मुख खोटी रास खोटा पासारा, कूर कमावन दुख लागे पारा, परमे पूले फिरन दिन राती, मर जन्मे जन्म गवावणिया। सच्चा साहिब मैं अत प्यारा, पूरे गुर के शब्द आधारा, नानक नाम मिले वडियाई, दुख सुख सम कर जाननिया। माज महला तीजा, तेरिया खानी तेरिया बाणी, बिन नावे सब परम पुलानी, गुर सेवा ते हर नाम पाया, बिन सतगुर कोई न पावणिया। हौ वारी जियो वारी हर सेती चित लावणिया, हर सच्चा गुर भगती पाई है, सहजे मन वसावणिया। रहाओ सतगुर सेवे ता सब किछ पाए, जे ही मनसा कर लागे तेहा फल पाए, सतगुर दाता सबना वस्तु का पूरे पाग मिलावणिया। एहो मन मैला इक ना त्याए, अंतर मैल लागी बहु दूजे पाए, तट तीरथ दिसंतर पवे अहंकारी, होर वधेरे हौ मैं मल लावणिया। सतगुर सेवे ता मल जाए, जीवत मरे हर स्यो चित लाए, हर निर्मल सच मैल न लागे, सच लागे मैल गवावणिया। बाज गुरु है अंग गुवारा, अज्ञानी अंधा अंध अंधारा, बिस्ता के कीड़े बिस्ता कमावे, फिर बिस्ता माए पचावणिया। मुक्ते सेवे मुक्ता होवे, हौ मैं ममता सबदे खोवे, अंदिन हर जियो सच्चा सेवी, पूरे पाग गुर पावणिया। आपे बख्शे मेल मिलाए, पूरे गुरते नाम निध पाए, सच्चे नाम सदा मन सच्चा, सच सेवे दुख गवावणिया। सदा हजूर दूर न जानो, गुर सबदी हर अंतर पछाणो, नानक नाम मिले वडियाई, पूरे गुरते पावणिया। माज महला तीजा, ऐसे साचे सो आगे साचे, मन सच्चा सच्चे शब्द राचे, सच्चा सेवे सच कमावे, सच्चो सच कमावणिया। हौ वारी जियो वारी सच्चा नाम मन वसावणिया, सच्चे सेवे सच समावे, सच्चे के गुण गावणिया। रहाओ पंडित पढ़े साध न पावे, दूजे पाए माया मन परमावे, माया मोह सब सुध गवाई, कर अवगुण पछो तावणिया। सतगुरु मिले तां तत पाए, हर का नाम मन वसाए, शब्द मरे मन मारे अपना, मुक्ति का दर पावणिया। किलविख काटे क्रोध निवारे, गुर का शब्द रखे उधारे, सच रते सदा बैरागी, हौ मैं मार मिलावणिया। अंतर रतन मिले मिलाया, त्रिविध मनसा त्रिविध माया, पढ़ पढ़ पंडित मोनी छके, चौथे पद की सार न पावणिया। आपे रंगे रंग चढ़ाए, से जन राते गुर शब्द रंगाए, हर रंग चढ़िया अथ पारा, हर रस रस गुण गावणिया। गुरमुख रिद्ध सिद्ध सच संजम सोई, गुरमुख ज्ञान नाम मुक्त होई, गुरमुख कार सच कमावे, सच्चे सच समावणिया। गुरमुख थापे थाप उथापे, गुरमुख जात पत सब आपे, नानक गुरमुख नाम ते आए, नामे नाम समावणिया। माज महला तीजा, उत्पत परलो सब दे होवे, सब दे ही फिर ओपत होवे, गुरमुख वरते सब आपे सच्चा, गुरमुख उपाय समावणिया। हौ वारी जियो वारी गुर पूरा मन वसावणिया, गुर ते सांत भगत करे दिन राती, गुण कह गुणी समावणिया। रहाओ गुरमुख तरती गुरमुख पाणी, गुरमुख पावन बैसंतर खेले विडाणी, सो निगुरा जो मर मर जमे, निगुरे आवन जावणिया। तिन करते इक खेल रचाया, ताया शरीर है विच सब किछ पाया, शब्द पेद कोई महल पाए, महले महल बुलावणिया।
सच्चा साओ सच्चे बन जा रे, सच वनन जय गुर हेत अपारे, सच विहा जय सच कमावे, सचो सच कमावण्या। बिन राशि को वत क्यों पाए, मन मुकूले लोक सवाए, बिन राशि सब खाली चले, खाली जाए दुख पावण्या। एक सच वनन जय गुर सबद प्यारे, आप करें सगले कुल तारे, आए से परवान होए मिल प्रीतम सुख पावण्या। अंतर वस्त मूड़ा बार पाले, मन मुख अंधे फिरे बेताले, जिथे वत होवे तिथो कोई न पावे, मन मुख परम कुलावण्या। आपे देवे सबद बुलाए, महली महल सहज सुख पाए, नानक नाम मिले वड्याई, आपे सुन सुन त्यावण्या। माज महला तीजा, सतगुर साची सिख सुनाई, हर चेतो अंत होए सखाई, हर अगम अगोचर अनाथ अजूनी, सतगुर कह पाए पावण्या। हों वारी जियो वारी आप निवारण्या, आप गवाए ता हर पाए, हर स्यो सह समावण्या। रहाओ पूर्व लिखिया सो कर्म कमाया, सतगुर सेव सदा सुख पाया, बिन पागा गुर पाईए नाही, सबदे मेल मिलावण्या। गुरमुख अलिपत रहे संसारे, गुर के तकिए नाम आधारे, गुरमुख जोर करे क्या तिसनो, आपे खप दुख पावण्या। मनमुख अंधे शुद्ध न काई, आत्म काती है जगत कसाई, निंदा कर कर बहु पार उठावे, बिन मजूरी पार पहुंचावण्या। एहो जग वाड़ी मेरा प्रभ माली, सदा संभाले को नाही खाली, जे ही वासना पाए ते ही वरते, वासु वास जनावण्या। मन मुख रोगी है संसारा, सुखदाता विसरिया अगम अपारा, दुखिए नित फिरे बिल्ला दे, बिन गुर सांत न पावण्या। जिनकी ते सोई विद जाने, आप करे ता हुकम पछाणे, जेहा अंदर पाए तेहा वरते, आपे बाहर पावण्या। तिस बाजो सच्चे मैं होर न कोई, जिस लाए लय सो निर्मल होई, नानक नाम वसे कट अंतर, जिस देवे सो पावण्या। माज महला तीजा, अमृत नाम मन वसाए, हौ मैं मेरा सब दुख गवाए, अमृत बाणी सदा सलाहे, अमृत अमृत पावण्या। हौ वारी जियो वारी, अमृत बाणी मन वसावण्या, अमृत बाणी मन वसाए, अमृत नाम ते आवण्या। रहाओ अमृत बोले सदा मुख वैणी, अमृत वेखे परखे सदा नैनी, अमृत कथा कहे सदा दिन राती, अवरा आख सुनावण्या। अमृत रंग रता लिव लाए, अमृत गुर प्रसादी पाए, अमृत रसना बोले दिन राती, मन तन अमृत पियावण्या। सो किछ करे जो चित न होई, किसदा हुक्म मेट न सके कोई, हुक्मे वरते अमृत बाणी, हुक्मे अमृत पियावण्या। अजब कम करते हर केरे, एव मन पूला जांदा फेरे, अमृत बाणी क्यों चित लाए, अमृत शब्द बजावण्या। खोटे खरे तुद आप उपाए, तुद आपे परखे लोक सवाए, खरे पर खजाने पाए, खोटे परम पुलावण्या। क्यों कर वेखा क्यों सलाही, गुर प्रसादी शब्द सलाही, तेरे पाने विच अमृत वरसे, तू पाने अमृत की आवण्या। अमृत शब्द अमृत हर बाणी, सतगुर सेवे हृदय समाणी, नानक अमृत नाम सदा सुखदाता, पी अमृत सब कुख ले जावण्या। माज महला तीजा, अमृत वरसे सह सुवाए, गुरमुख विरला कोई जन पाए, अमृत पी सदा तृप्ता से, कर कृपा तृष्णा बुझावण्या। हौ वारी जियो वारी, गुरमुख अमृत पियावण्या, रसना रस चाख सदा रहे रंग राती, सहजे हर गुण गावण्या। रहाओ गुर प्रसादी सहज को पाए, दुबदा मारे इक स्यों लिवलाए, नदर करे ता हर गुण गावे, नदरी सच समावण्या। सदना उपर नदर प्रभ तेरी, किसे थोड़ी किसे है कनेरी, तुझते बाहर किछ न होवे, गुरमुख सोजी पावण्या। गुरमुख तत है बिचारा,
अमृत परे तेरे पंडारा, बिन सतगुर सेवे कोई न पावे, गुर कृपा ते पावणिया। सतगुर सेवे सो जन सो है, अमृत नाम अंतर मन मोहे, अमृत मन तन बाणी रत्ता, अमृत सह सुनावणिया। मन मुख पूला दूजे पाए खुआए, नाम ना लेवे मरे बिख खाए, अंदिन सदा विस्ता में वासा, बिन सेवा जन्म गवावणिया। अमृत पीवे जिसनो आप पियाए, गुर प्रसादी सहज लिव लाए, पूरन पूर रहा सब आपे, गुरमत नदरी आवणिया। आपे आप निरंजन सोई, जिन फिर जी तिन आपे गोई, नानक नाम समाल सदा तू, सहजे सच समावणिया। माज महला तीजा, से सच लागे जो तुद पाए, सदा सच सेवे सह सुभाए, सच्चे सब सच्चा सलाही, सच्चे मेल मिलावणिया। हों वारी जियो वारी सच सलाणिया, सच त्याएन से सच राते, सच्चे सच समावणिया। रहाओ जह देखा सच सबनी थाई, गुर प्रसादी मन वसाई, तन सच्चा रसना सच राती, सच सुन आख वखानणिया। मनसा मार सच समाणी, इन मन दीठी सब आवन जानी, सतगुर सेवे सदा मन नहीं चल, निज कर वासा पावणिया। गुर कै शब्द हृदय दिखाया, माया मोह शब्द जलाया, सचो सच्चा वेख सलाही, गुर शब्दी सच पावणिया। जो सच राते तिन सच्ची लिव लागी, हर नाम संभाले सेवड पागी, सच्चे शब्द आप मिलाए, सत संगत सच गुण गावणिया। लेखा पढ़िए जे लेखे विच होवे, ओ अगम अगोचर शब्द शुद्ध होवे, अंदिन सच शब्द सलाही, होर कोई ना कीमत पावणिया। पर परखा के सांत ना आई, तृष्णा जाले शुद्ध ना काई, बिख बिहाजे बिख मोह प्यासे, कूर बोल बिख खावणिया। गुर प्रसादी एको जाना, दूजा मार मन सच समाना, नानक एको नाम वरते, मन अंतर गुर प्रसादी पावणिया। माज महला तीजा, वर्ण रूप वरते सब तेरे, मर मर जमे फेर पवे कनेरे, तू एको ने चल अगम अपारा, गुरमती बूझ बुझावणिया। हों वारी जियो वारी राम नाम मन वसावणिया, तिस रूप न रेखिया वरन न कोई, गुरमती आप बुझावणिया। रहाओ सब एका जोत जाने जे कोई, सतगुर सेवे प्रगट होई, गुप्त प्रगट वरते सब थाई, ज्योति जोत मिलावणिया। तिसना अगन जले संसारा, लोभ अभिमान बहुत अहंकारा, मर मर जन्मे पत गवाए, अपनी बिरथा जन्म गवावणिया। गुर का शब्द को विरला बूझे, आप मारे।

गुर के सबद सदर है समाए सच सलाहे सब कट अंतर सचो सच सुहावणिया सच सलाही सदा हजूरे गुर के सबद रहा पर पूरे गुर प्रसादी सच नदरी आवे सच्चे ही सुख पावणिया सच मन अंदर रहा समाए सदा सच निश्चल आवे न जाए सच्चे लागे सो मन निर्मल गुरमति सच समावणिया सच सलाही अवर न कोई जित सेवे सदा सुख होई नानक नाम रते विचारी सचो सच कमावणिया माज महला तीजा निर्मल शब्द निर्मल है बाणी निर्मल जोत सब माहे समाणी निर्मल बाणी हर सलाही जप हर निर्मल मैल गवावणिया हों वारी जियो वारी सुख दाता मन वसावणिया हर निर्मल गुर सब सलाही सबदो सुन पिसा मिटावणिया रहाओ निर्मल नाम वस्या मन आए मन तन निर्मल माया मोह गवाए निर्मल गुण गावे नित साचे के निर्मल नाद बजावणिया निर्मल अमृत गुर ते पाया विच्चों आप मुआ सिखे मोह न माया निर्मल ज्ञान ध्यान अत निर्मल निर्मल बाणी मन वसावणिया जो निर्मल सेवे सो निर्मल होवे होमे मैल गुर शब्दे तोवे निर्मल वाजे अनहद तुन बाणी दर सच्चे सोबा पावणिया निर्मल ते सब निर्मल होवे निर्मल मनुआ हर शब्द पर होवे निर्मल नाम लगे बड़ पागी निर्मल नाम सुहावणिया सो निर्मल जो शब्दे सो है निर्मल नाम मन तन मोहे सच नाम मल कदे न लागे मुख उजल सच करावणिया मन मैला है दूजे पाए मैला चौका मैले छाए मैला खाए फिर मैल वधाए मन मुख मैल दुख पावणिया मैले निर्मल सब हुक्म सवाए से निर्मल जो हर साचे भाए नानक नाम वसै मन अंतर गुरमुख मैल चुकावणिया माज महला तीजा गोविंद उजल उजल हंसा मन बाणी निर्मल मेरी मनसा मन उजल सदा मुख सो है अत उजल नाम ते आवणिया हों वारी जियो वारी गोविंद गुण गावणिया गोविंद गोविंद कह दिन राती गोविंद गुण शब्द सुहावणिया रहाओ गोविंद गावे सह सुबाए गुर कै पै उजल होमे मन जाए सदा आनंद रहे भगत करें दिन राती सुन गोविंद गुण गावणिया मनुआ नाचे भगत दृढ़ाए गुर कै शब्द मने मन मिलाए सच्चा ताल पूरे माया मोह चुकाए शब्दे नृत करावणिया ऊंचा कूके तने पछाड़े माया मोह जोहया जमकाले माया मोह इस मने नचाए अंतर कपट दुख पावणिया गुरुमुख भगत जा आप कराए तन मन दाता सह सुभाए बाणी वजे शब्द वजाए गुरुमुख भगत साए पावणिया बहुताल पूरे वाजे वजाए ना को सुने ना मन वसाए माया कारण पिड़ बंद नाचे दूजे पाए दुख पावणिया जिस अंतर प्रीत लगे सो मुक्ता इंद्री वस सच संजम जुगता गुर कै शब्द सदा हर त्याए एहा भगत हर पावणिया गुरमुख भगत जुग चारे होई होरत भगत ना पाए कोई नानक नाम गुर भगती पाईए गुर चरणी चित लावणिया माज महला तीजा सच्चा सेवी सच सलाही सच्चे नाए दुख कभी नाही सुख दाता सेवन सुख पायन गुरमत मन वसावणिया हौ वारी जियो वारी सुख सह समाध लगावणिया जो हर सेवे से सदा सोहे सोबा सुर सुहावणिया रहाओ सबको तेरा भगत कहाए से भगत तेरे मन पाए सत बाणी तुदे सलाहन रंग राते भगत करावणिया सबको सच्चे हर जियो तेरा गुरमुख मिले ता चूके फेरा जा तुद पावे ता नाए रचावे तू आपे नाओ जपावणिया
गुरमति हर मन वसाया, हरख सोग सब मोह गवाया, इक स्यों लिव लागी सदी हर नाम मन वसावणिया। भगत रंग राते सदा तेरे चाए, नौ निद नाम वखरा मन आए, पूरे पाग सतगुर पाया सबदे मेल मिलावणिया। तू दयाल सदा सुखदाता, तू आपे मेले गुरमुख जाता, तू आपे देवे नाम वडाए, नाम रते सुख पावणिया। सदा सदा साचे तुद सलाहे, गुरमुख जाता दूजा को नाही, एक स्यों मन रहा समाए, मन मने मन है मिलावणिया। गुरमुख होवे सो साला है, साचे ठाकुर वे परवाहे, नानक नाम वसे।

होए तू कर कर वेखे जाने सोए आपे करे कराए करता गुरमत आप मिलावणिया कामन गुणवंती हर पाए पै पाए सिगार बनाए सतगुरु सेव सदा सुहागण सच उपदेश समावणिया शब्द विसारण तिना ठौर न ठाओ तम पूले जो सुन्य कर पाओ हलत पलत तिनी दोवे गवाए दुखे दुख विहावणिया लिखदिया कागद मस होई दूजे पाए सुख पाए न कोई कूड़ लिखे ते कूड़ कमावे जल जावे कूड़ चितलावणिया गुरमुख सच्चो सच लिखे विचार से जन सच्चे पावे मोख द्वार सच कागज कलम मसवाणी सच लिख सच समावणिया मेरा प्रभ अंतर बैठा वेखे गुर प्रसादी मिले सोई जन लेखे नानक नाम मिले वड्याई पूरे गुरते पावणिया माज महल है तीजा आत्म राम प्रवास गुरते होवे हों मैं मैल लागी गुर शब्दी खोवे मन निर्मल अंदिन भगती राता भगत करे हर पावणिया हों वारी जियो वारी आप भगत करन अवरा भगत करावणिया तिना भगत जना को सदा नमस्कार कीजे जो अंदिन हर गुण गावणिया रहाओ आपे करता कारण कराए जित पावे तित पारे लाए पूरे भाग गुर सेवा होवे गुर सेवा ते सुख पावणिया मर मर जीवे ता किछ पाए गुर प्रसादी हर मन वसाए सदा मुक्त हर मन वसाए सहजे सहज समावणिया बहु कर्म कमावे मुक्त न पाए।

परम पद पाए, सतगुर आपे मेल मिलाए, मिल प्रीतम सुख पावणिया। एक कूड़ लागे कूड़े फल पाए, दूजे पाए बिरथा जन्म गवाए, आप डूबे सगले कुल डूबे, कूड़ बोल बिखावणिया। इस तन में मन को गुरमुख देखे, पाले पगत जाहों में सोख है, सिद्ध साधिक मोन तारी रहे लिव लाए, तिन भी तन में मन ना दिखावणिया। आप कराए करता सोई, होर के करे कीते क्या होई, नानक जिस नाम देवे सो लेवे, नामो मन वसावणिया। माज महला तीजा, इस गुफा में अखुट पंडारा, तिस विच वसे हर जियो अलख अपारा, आपे गुप्त प्रगट है आपे, गुर सब्दी आप जावणिया। हौ वारी जियो वारी, अमृत नाम मन वसावणिया, अमृत नाम महा रस मीठा, गुरमती अमृत पियावणिया। रहाओ हौ में मार बजर कपाट खुलाया, नाम अमोलक गुर प्रसादी पाया, बिन शब्द नाम न पाए कोई, गुर कृपा मन वसावणिया। गुर ज्ञान अंजन सच नेत्री पाया, अंतर चामन अज्ञान अंधेर गवाया, ज्योति ज्योत मिली मन मान्या, हर दर शोभा पावणिया। शरीरों पालन को बाहर जाए, नाम नाल है बहुत व्यवहार दुख पाए, मन मुख अंधे सूजे नाही, फिर किर आए गुरमुख वत पावणिया। गुर प्रसादी सच्चा हर पाए, मन तन वेखे हो में मैल जाए, बैठ सुतान सद हर गुण गावे, सच्चे सबद समावणिया। नौ दरखा के तावत रहाए, दसवें निज करवासा पाए, ओथे अनहद शब्द बजे दिन राती, गुरमती शब्द सुनावणिया। बिन शब्द अंतर आनेरा, ना वसल है ना चूके फेरा, सतगुर हथ कुंजी होरत दर खुले नाही, गुर पूरे पाग मिलावणिया। गुप्त प्रगट तू सबनी थाई, गुर प्रसादी मिल सोजी पाई, नानक नाम सलाहे सदा तू, गुरमुख मन वसावणिया। माज महला तीजा, गुरमुख मिले मिलाए आपे, काल न जो है दुख न संतापे, हौ में मार बंधन सब तोड़े, गुरमुख शब्द सुहावणिया। हौ वारी जियो वारी, हर हर नाम सुहावणिया, गुरमुख गावे गुरमुख नाचे, हर से ती चित लावणिया। रहाओ गुरमुख जीवे मरे प्रवाण, आर जा ना छीजे शब्द पछाण, गुरमुख मरे न काल न खाए, गुरमुख सच समावणिया। गुरमुख हर दर शोभा पाए, गुरमुख विच्चों आप गवाए, आप करे कुल सगले तारे, गुरमुख जन्म सवारणिया। गुरमुख दुख कदे ना लगे शरीर, गुरमुख हौ में चूके पीर, गुरमुख मन निर्मल फिर मैल ना लागे, गुरमुख सह समावणिया। गुरमुख नाम मिले वड्याई, गुरमुख गुण गावे शोभा पाई, सदा आनंद रहे दिन राती, गुरमुख शब्द करावणिया। गुरमुख अन दिन सब दे राता, गुरमुख जुग चारे है जाता, गुरमुख गुण गावे सदा निर्मल, शब्दे पवित करावणिया। बाज गुरु है अंध अंधारा, जम काल गरठे करे पुकारा, अन दिन रोगी बिस्ता के कीड़े, बिस्ता में दुख पावणिया। गुरमुख आपे करे कराए, गुरमुख हृदय उठा आप आए, नानक नाम मिले वड्याई, पूरे गुरते पावणिया। माज महला तीजा, एका जोत जोत है शरीरा, सबद दिखाए सतगुर पूरा, आपे फर्क की तोन कट अंतर, आपे बनत बनावणिया। हौ वारी जियो वारी, हर सच्चे के गुण गावणिया, बाज गुरु को सहज न पाए, गुरमुख सहज समावणिया। रहाओ तू आपे सो है, आपे जग मोहे, तू आपे नदरी जगत परोवे, तू आपे दुख सुख देवे करते, गुरमुख हर देखावणिया। आपे करता करे कराए, आपे शब्द गुर मन वसाए, शब्दे उपजे अमृत बाणी, गुरमुख आप सुनावणिया।
आपे करता आपे पुगता, बंधन तोड़े सदा है मुक्ता, सदा मुक्त आपे है सच्चा, आपे अलख लखाणिया। आपे माया आपे छाया, आपे मोह सब जगत उपाया, आपे गुण दाता गुण गावे, आपे आप सुनावणिया। आपे करे कराए आपे, आपे थाप उठापे आपे, तुझते बाहर कछु न होवे, तू आपे कारे लावणिया। आपे मारे आप जीवाए, आपे मेले मेल मिलाए, सेवा ते सदा सुख पाया, गुरुमुख सहज समावणिया। आपे ऊंचा ऊंचो होई, जिस आप विखाले सो वेखे कोई, नानक नाम वसै कट अंतर, आपे वेख विखालणिया। माज महला तीजा, मेरा प्रभ पर

जग जीवन मन हसावणिया, हर जग जीवन निरपौ दाता, गुरमत सह समावणिया, रहाओ कर मैं करती तौल पताला, कर ही मैं प्रीतम सदा है बाला, सदा आनंद रहे सुख दाता, गुरमत सह समावणिया, काया अंदर हो मैं मेरा, जमन मरण ना चूके फेरा, गुरमुख हो वैसो हो मैं मारे, सच्चो सच त्यावणिया, काया अंदर पाप पुन दोए पाई, दोही मिलके श्रिष्ट उपाई, दोवे मार जाए इक्कत कर आवे, गुरमत सह समावणिया, कर ही माहे दूजे पाए अनेरा, चानन होवे छोड़े हो मैं मेरा, प्रगट सब रह सुखदाता, अंदर नाम ते आवणिया, अंतर जोत प्रगट पासारा, गुर साखी मिटिया अंधियारा, कमल विगास सदा सुख पाया, ज्योति जोत मिलावणिया, अंदर महल वतनी परे पंडारा, गुरमुख पाए नाम अपारा, गुरमुख वन जे सदा वपारी, लाहा नाम सब पावणिया, आपे वस राखे आपे दे, गुरमुख वणजे केई के, नानक जिस नजर करे सो पाए, कर कृपा मन वसावणिया, माध महला तीजा, हर आपे मेले सेव कराए, गुर के शब्द पाओ दूजा जाए।

सच्चा नाम सदा है निर्मल, गुर शब्दी मन वसावण्या रहाओ। आपे गुरदाता कर्म विधाता, सेवक सेवे गुरमुख हर जाता। अमृत नाम सदा जन सोवे, गुरमत हर रस पावण्या। इस गुफा में एक थान सुहाया, पूरे गुर हों में परम चुकाया। अंदिन नाम सलाहन रंग राते, गुर कृपा ते पावण्या। गुर के शब्द एहो गुफा विचारे, नाम निरंजन अंतर वसे मुरारे। हर गुण गावे शब्द सुहाए, मिल प्रीतम सुख पावण्या। जम जागाती दूजे पाए कर लाए, नामों पुल्ले देश जाए। करी मोहत का लेखा लेवे, रतियो मासा।

माया मोह जलाए सो हर्ष्यों चित लाए, हर दर मैली सो बापावण्या रहाओ। देवी देवा मूल है माया, सिमरत सास जिन उपाया, काम क्रोध पथरिया संसारे, आए जाए दुख पावण्या। तिस विच ज्ञान रतन इक पाया, गुर प्रसादी मन वसाया, जप सत संजन सच कमावे, गुर पूरे नाम त्यावण्या। पेयड़े तन परम पुलाणी, दूजे लागी फिर पछो ताणी, हलक पलक दोवे गवाए, सुपने सुख न पावण्या। पेयड़े तन कंत संभाले, गुर प्रसादी वेखे नाले, फिर कैसे रह रंग राती, शब्द सिंगार बनावण्या। सफल जन्म जिना सतगुर पाया, दूजा पाओ गुर शब्द जलाया, एको रव रहा कट अंतर, मिल सत संगत हर गुण गावण्या। सतगुर ना सेवे सो काहे आया, त्रिग जीवन बिरथा जन्म गवाया, मन मुख नाम चेतना आवे, बिन नावे बहु दुख पावण्या। जिन शिष्ट साजी सोई जाने, आपे मेले शब्द पछाने, नानक नाम मिलिया तिन जन को, जिन तुर मस्तक लेख लिखावण्या। माज महला चौथा, आद पुरख अपरंपर आपे, आपे थापे थाप उथाप।

गुरुमुख सदा रहे रंग राती मिल सच्चे शोभा पावणिया। मन मुख कर्म करे अंकारी जुए जन्म सब बाजी हारी अंतर लोभ महा गुबारा फिर आवन जावणिया। आपे करता दे वडिआई जिनको आप लिखत तुर पाई नानक नाम मिले पौ पंजन गुर शब्दी सुख पावणिया। माद महला पंजवा कर पहला अंतर अलख ना जाई लखिया नाम रतन लै गुजा रखिया अगम अगोचर।

कौन सो चाल जित पार ब्रह्म ते आए, किन विद कीर्तन गाए जियो। गुरुमुख मुक्ता गुरुमुख जुगता, गुरुमुख ज्ञानी गुरुमुख बक्ता, तन गिर ही उदासी गुरुमुख, गुरुमुख कीमत पाए जियो। होमे बांदा गुरुमुख चूटा, गुरुमुख आन जान टूटा, गुरुमुख कर्म गुरुमुख ने कर्मा, गुरुमुख करे सो सुभाए जियो। गुरुमुख सुखिया मनमुख दुखिया, गुरुमुख सनमुख मनमुख वे मुखिया, गुरुमुख मिलिए मनमुख विचरे, गुरुमुख विद प्रगटाए जियो। गुरुमुख अक्षर जित तारत रहता, गुरुमुख उपदेश दुख सुख सम सहता, गुरुमुख चाल जित पार ब्रह्म ते आए, गुरुमुख कीर्तन गाए जियो। सगली बणत बनाई आपे, आपे करे कराए थापे, इकस से होयो अनंता, नानक एकस माए समाए जियो। माज महला पंजवा, प्रभ अविनाशी ता क्या काड़ा, हर परवंता ता जन खरा सुखाला, जी प्राण मान सुख दाता, तू करे सोई सुख पावनिया। हों वारी जियो वारी, गुरुमुख मन तन पा।

मस्तक जिस दे पाग जियो मन मंदे प्रभ अवगाहिया ए रस पोगण पातशाहिया मंदा मूल ना उपजियो तरे सच्ची कारे लाग जियो करता मन वसाया जन्मे का फल पाया मन पावंदा कंत हरे तेरा थिर हुआ सुहाग जियो अटल पदार्थ पाया पै पंजन की शरण आया लाए अंचल नान।

हर जप जपे मन फीरे रहाओ, सिमर सिमर गुरुदेव मिट गए पै दूरे। शर्म आवे पार ब्रह्म की ता फिर काहे चूरे, चरण सेव संत साध के सगल मनोरथ पूरे। कट कट एक वर्तदा जल थल महियल पूरे, पाप विनाशन सेविया पवित्र संतन की दूरे। सब छदाई खसम आप हर जप पई थरूरे, करते किया कपाव सो दुष्ट मोए होए मूरे। नानक रत्ता सत नाए हर वेखे सदा हजूरे। बारह माह मांझ महला पंजवा कर चौथा

राम। जल बिन साख कुमलावती उपजे नाही दाम, हर ना न मिलिए साजने कत पाए विश्राम। जित पर हर कंस ना प्रगटे पथ नगर से ग्राम, सर्व सिगार तंबोल रस।

युमानन हर जेठ रंगीला तिस्तनी जिसके पाग मथन असार तपंदा तिस लगे हर नाव न जिन्ना पास असार तपंदा तिस लगे।

पास कब तुद बिन दूजा को नहीं नानक की अरदास आषाढ़ सुहंदा किस लगे जिस मन हर चर

नानक जीवे जप हरि दोख सबे ही हंत दिन रैन जिसना विसर सो हरिया होवे जंत। सर्व कला प्रभ पूर्णो मंद निमानी थाओ हर ओट दही मन

खेड, पंजवें खान पीन की तात, छेवें कामना पुछे जात, सतवें संज किया परवास, अठवें क्रोध हुआ तन नाश।

हैं, आप श्रेष्ठ उपाति रंग परंग उपार्जना बहु बहुविध पाती, तू जाने जिन उपाय सब खेल तुमाती, एक आवे एक जाहे उठ बिन नावे मर जाती, गुरुमुख रंग चलूलिया रंग हर रंग राती, सो सेवो सत निरंजनो हर पुरख विदाती, तू आपे आप सुजान है वड पुरख वडाती, जो मन चित तुद त्याय दे मेरे सच्चा बल बल हों तिन जाती।

जिन रच रचिया किसे न जाने अंधा अंध कमाए जा पजे ता ठीक होवे कारक करी न जाए नानक गुर बिन नाहे पत पत बिन पार न पाए। महला दूजा देंगे थावो दिता चंगा मनमुख ऐसा जानिए सुरत मत चतुराई ताकि क्या कर आंख वखाणिए अंतर बह के कर्म कमावे सोचो कुंडी जानिए जो कर्म कमावे तिस कर्म नाव होवे पाप कमाने पापी जानिए। तू आपे खेल करे सब करते क्या दूजा आंख वखाणिए जिचर तेरी जोत तिचर ज्योति विच तू बोले विन ज्योति कोई किछ करो दिखा सियानिए नानक गुरमुख नदरी आया हर इको सुगड़ सुजानिए। पौड़ी तुद आपे जगत उपाय कै तुद आपे तंदे लाया मोठ गौली पाए कै तुद आपो जगत खुआया।

मर जमे आया जाया दिन सतगुर मोह न टूटई सब थके कर्म कमाया गुरमति नाम ते आई है सुख रजा जा तुद पाया कुल उधारे अपना तन जने दी माया शोभा सुरत।

का रहलाया, उत्कलप कुटुंब है, इक अलिपत रहे जो तुद पाया, ओह अंदरों बारों निर्मले सच्चे नायक समाया। श्लोक महला पहला।

संजोग मेल मिलाया, तिन्ही किया विजोग जिन उपाया, मूर्ख भोगे भोग दुख सवाया, सुखों उठे रोग पाप कमाया, हर्षों सोग विजोग उपाय खपाया, मूर्ख गणत गणाए चगड़ा पाया, सतगुर हथ निबेड़ चगड़ चुकाया, करता करे सो होग न चले चलाया। श्लोक महला पहला। ऊर बोल मुर्दार खाए, अवरी नो समझावन जाए, मुठा आप मुहाए साथ है, नानक ऐसा आगू जापे। महला चौथा। जिस दे अंदर सच है, सो सच्चा नाम मुख सच अलाए, ओ हर मार्ग आप चलदा, होर नानो हर मार्ग पाए। जे अग्गे तीर्थ होए ता मल लहे, छप्पर नाते सगरी मल लाए, तीर्थ पूरा सतगुरु जो अंदिन हर हर नाम के आए, ओ आप छुटा कुटुंब स्यो दे हर हर नाम सब सृष्टि छदाए, जन नानक तिस बलिहारण जो आप जपे अवरा नाम जपाए। पौड़ी। एक कंद मूल चुन खाए वन खंड वासा, एक पगवा वेश कर फिरे जोगी सन्यासा, अंदर तृष्णा बहुत छादन भोजन की आशा, बिरथा जन्म गवाए न गिरही ना उदासा, जमकाल सिरों ना उतरे त्रिविद मनसा, गुरमति काल ना आवे नेड़े जा होवे दासन दासा, सच्चा शब्द सच मन कर ही मह उदासा, नानक सतगुर सेवन अपना से आशा ते निराशा। श्लोक महला पहला। जे रत लगे कपड़े जामा होए पलीत, जो रत पीवे मानसा तिन क्यों निर्मल चीत, नानक नाम खुदाई का।

सोए, क्या मेवा क्या क्यों गुड़ मिठा, क्या मैदा क्या मांस, क्या कपड़ क्या सेज खाली कीजे भोग विलास, क्या लश्कर क्या नेब खवासी आवे महली वास, नानक सच्चे नाम विन सबे तोल विनाश। पौड़ी जाति दे क्या हाथ सच परखिए, मोहरा होवे हाथ मरिए चखिए, सच्चे की सरकार जुग जुग जानिए, हुक्म मने सिरदार दर दीवानिए, फुरमानी है कार खसम पठाया, तबल बाज बिचार सबक सुनाया, इक होए असवार इतना साखती,

श्लोक। मच्छी तारु क्या करे, पंखी क्या आकाश, पत्थर पाला क्या करे, खुसरे क्या घरवास, कुत्ते चंदन लाई है, 300 कुत्ती ताट, बोला जे समझ।

एक गंड वरते संसार मूरख गंड पवे मोह मार नानक आखे एवो विचार सिफती गंड पवे दरबार पौड़ी आपे कुदरत साज के आपे करे विचार एक खोटे एक खरे आपे परखन हार।

सतगुर पिछे पज पवे एहा करनी सार, सतगुर खोट्यो खरे करे शब्द सवारन हार, सच्ची दरगे मनियन गुर के प्रेम प्यार, गणत तिना दी को क्या करे जो आप बख्शे करतार। श्लोक महला पहला, हम जे जिमी दुनिया पीरा मसालता राया, मेरवद बादशाह अफजू खुदाए, एक तू ही महला पहला, ना देव दानवा नरा, ना सिद्ध साधका तरा, अस एक जिगर कोई, एक तू ही महला पहला, ना दादे दिहंग आदमी, ना सप्त जेर जिमी, अस एक जिगर कोई, एक तू ही महला पहला, ना सूर सस मंगलो, ना सप्त दीप नह जलो, अन पौन फिर ना कोई, एक तू ही महला पहला, ना रिजक दस्त आकसे, हमारा एक आसवसे, अस एक जिगर कोई, एक तू ही महला पहला, परंगे ना गिरा जर, द्रप्त आब आस्कार।

पौड़ी सच्चा तेरा हुक्म गुरमुख जानिया गुरमति आप गवाए सच पछाणिया सच तेरा दरबार शब्द निशानिया सच्चा शब्द विचार सच समाणिया मन मुख सदा कूड़ियार परम कुलाणिया विष्टा अंदर वास साध ना जानिया गिन नामे दुख पाए।

काओ खान तिना मास्थ वाले एह चलाए राहा नदियां विच टिब्बे जे खाले थली करे असदा कीड़ा खात दे पात साई लश्कर करे स्वाहा जेते जी जीवे ले साहा जीवाले ताके असाहा नानक ज्यों ज्यों।

कार कर्म कमाई है, गुरमति आप गवाए नाम से आई है, दूजी कार है लग जन्म गवाई है, बिन नाम है सब विश्व कह जय खाई है, सच्चा सबल सलाह है सच समाए।

करम पूरे पूरा गुरु पूरा जा का बोल, नानक पूरा जे करे कटे नाही तोल। पौड़ी जा तू ता क्या होर मैं सच सुनाई है, मुठी तंदे चोर महल ना पाई है, इने चित कठोर सेव गवाई है, जित काट सच ना पाए सो पन कढ़ाई है, क्यों कर पूरे वट तोल तुलाई है, कोई ना आखे तत हो मैं।

ताकी बहुर ना पाई ताओ सती पैरी सत पला बही है पर पास उथे पाप पुन बिचारी है कूड़े कते रास उथे खोटे सती है खरे की चैसा बास बोलन।

की विया सब सवारी आस अमृत की विया। श्लोक महला पहला। मारू मी ना तृप्तिया अग्नि लह न पुख राजा राज ना तृप्तिया साय

गोविंद ते सागरंग संसार से गुरु प्रसादी तरह के करण कारण समरथ है कहो नानक विचार कारण करते वस है जिन कल रखी तार पौड़ी खसने के दरबार टाडी वसिया सच्चा खसम कलान कमल विकसिया खसमो पूरा पाए मनो रहस्या दुश्मन कड्डे मार सज्जन सरसिया सच्चा सतगुरु सेवन सच्चा मार्ग दसिया सच्चा शब्द विचार काल विदुषिया ताडी कथे अकथ शब्द सवारिया नानक गुण गहरास हर जियो मिले प्यारिया श्लोक महला पहला खत्यो जम्मे खत्ते करनित खत्या विच पाहे होते मूल ना उतरे जो सो तोन पाहे नानक बख्शे बख्शिये नाहे तपाई पाए महला पहला नानक बोलन चखना दुख छद मंगिये सुख सुख दुख दोए कर कपड़े पैरे जाए मनुख जिथे बोलन हाई है तिथे चंगी चुप पौड़ी चारे कुंडा देख अंदर पालिया सच्चे पुरब अलख सिरज निहालिया उजड़ पुले रहा गुर वे खा लिया सतगुर सच्चे वाहो सच समा लिया पाया रतन कराहो दीवा बालिया सच्चे सबल सलाहे सुखिये सच वालिया निदरिया डर लग गर्व से गालिया नावो पुला जग फिरे बेतालिया श्लोक महला तीजा पैर जमे पै मरे पीपो मन में।

तू सच्चा दातार नित देवे चरे सवाया नानक मंगे दान जो तुद पाया। श्लोक मैला दूजा दीखिया आख बुझाया सुस्ती सच समेओ।

ताली सच्चे महल खसम बुलाया, सच्ची सिफत सलाह कपड़ा पाया, सच्चा अमृत नाम भोजन आया, गुरमति खादा रज तिन सुख पाया, ताली करे पसाओ शब्द बजाया, नानक सच सलाहे पूरा पाया सुध।

सिर पर चलिए सही है पार, नगरी कर्मी गुर विचार। कै बिन कोई ना लंगस पार, कै पाओ राख्या पाए सवार। रहाओ कै तन अगन पखे पै नाल, कै पाओ कड़िए सब दुसवार। कै बिन कारत कच निक

सच्चा अंधी सट बुद्धि बाजी उपजे चाओ सह स्याणप पवे न पाओ नानक मन मुख बोले।

डर डर जाए, सो डर के हाँ जित डर डर पाए, तुद बिन दूजी नाही जाए, जो किछ वरते सब तेरी रजाए। डरिए जे डर होवे होर, डर डर डरना मन का सोर, रहाओ ना जियो मरे ना डूबे तरे, जिन किछ किया सो किछ करे, हुक्मे आवे हुक्मे जाए, आगे पाछे हुक्म समाए। हंस हेत आसमान, इस विच पूत बहुत ने

तू सबना का सोए जाके जी जंत तन माल नानक आखण बिकम विचार। गौड़ी महला पहला माता मत पिता संतोख

देही माटी बोले कौन, गुजरे ज्ञानी मुआ है कौन, मुई सुरत बाद अंकार, ओ नाम हुआ जो देखनहार, जय कारण तट तीरथ जाही, रतन पदार्थ कट ही माही, पढ़ पढ़ पंडित बाद वखाने, पीकर हो दी वचन जाने, हौ नाम हुआ मेरी मुई बलाए, ओह नाम हुआ जो रहा समाए, कहो नानक गुरु ब्रह्म दिखाया, मरता जाता नजर न आया। गौड़ी मेला पहला दखनी, सुन सुन गूजे माने नाओ, ताके सब बलिहारे जाओ, आप पुलाए ठौर न ठाओ, तू समझावे मेल मिलाओ, नाम मिले चल।

हुकम संजोगी गण दस द्वार पंच वसे मिल जोत अपार आप तुले आपे वनजार नानक नाम सवारन हार गौड़ी महला पहला जातो जाए कहां ते आवे कह उपजे कह जाए समावे।

मन से उपजे मन माए समाए, गुरुमुख मुक्तो बंद न पाए, शब्द विचार छुटे हर नाए, तरवर पंखी बहु निस्वास, सुख दुखिया मन मोह विनाश, साज बिहाग तक है आगास, देह दिस पारे कर्म लिखियास। नाम संजोगी गोयल खाट, काम क्रोध फूटे बिखमाट, बिन वखर सुनो कर हाट, गुर मिल खोले बजर कपाट, साध मिले पूरब संजोग, सच रहसे पूरे हर लोग, मन सन दे ले सहज सुभाए, नानक तिनके लागू पाए। गौड़ी महला पहला।

वाहो वाहो साचे मैं तेरी टेक, हो पापी तू निर्मल एक राव, अग्न पानी बोले पड़वाओ, जेवा इंद्री एक सुआओ, दिस्त विकारी ना।

परपंच व्याप रहा मन दोए, फिर नारायण करे सोहोए। बोहित चढ़ो जावे वार, ठाके बोहित दरगे मार, सत्साला ही तन गुरुद्वार, नानक दर कर एकंकार। गौड़ी महला पहला, उल्ट्यो कमल ब्रह्म विचार, अमृत तार गगन।

जय रहाओ। जन्म जीत मरण मन मानिया, आप मुआ मन मन ते जानिया, नजर पई कर करते जानिया, जप सत तीरथ मज्जन नाम, अजक विचार करो किस काम, नर नारायण अंतर जाम, आन मनो तो पर कर जाओ, किस जाचो नाही को खाओ, नानक गुरु।

मरण रहन रस अंतर पाए, गर्भ निवार गगनपुर पाए, मरण लिखाए आए नहीं रहना, हर जप जाप रहन हर शरणा रहाओ, सतगुरु मिले त दुबदा पागे, कमल विगास मन हर प्रभु।

किरत पया नह मेटे कोए क्या जानो क्या आगे होए जो तिस पाना सोई हुआ अगर न करने वाला दुआ न जाना कर्म केवड़ तेरी दात कर्म कर्म तेरे नाम की जात रहाओ तू एवड़ दाता देवन हार सोत नाही खुद भगत पंडार किया गर्द न आवे रात जियो पिंड सब तेरे पास तू मार जीवाले बख्श मिलाए जो पावी त्यो नाम जपाए तू दाना बीना साचा सिर मेरे गुरमत दे परोसे तेरे तन में मैल नाही मन राता गुरबचनी सच शब्द पछाता तेरा तान नाम की वड्याई नानक रहना भगत शरणाई गौड़ी महला पहला जिन अपख कहाया अप्योपी आया हम कह विसरे नाम समाया क्या डरिए डर डरे समाना पूरे गुर के शब्द पछाना रहाओ जिस नर राम हृदय हर वास सहज सुभाए मिले सावास जाए सवारे सांस बिहाल इत उत मन मुख बांधे काल एनस राम हृदय से पूरे नानक राम मिले परम दूरे गौड़ी महला पहला।

हर जान राम तगत गुर सेवा करना बहुड़ जन्म ना होए है मरना रहाओ। चार पदार्थ कहे सब कोई सिमरत शास्त्र पंडित भुक्सोई बिन गुर अर्थ विचार न पाया मुक्त पदार्थ भगत हर पाया। जाऊ कह हृदय वस्या हर सोई गुरुमुख भगत प्राप्त होई हर की भगत मुक्त आनंद गुरुमत पाए परमानंद। जिन पाया गुरु देख दिखाया आशा माहे निराश बुझाया दीना नाथ सर्व सुख दाता नानक हर चरणी मन राता। गौड़ी चेती महला पहला अमृत काया रह सुखाली बाजी एहो संसारो लब लोभ मुक्त।

हाँ तुद आसा मेरी काया तू सुन सिखामारी निंदा चिंदा करे पराई झूठी लाए तबारी वेल पराई जो है जियड़े करें चोरी बुरियारी हंस चलिया तू पिछे रहिए छुटर होई है नारी तू काया रही है सुपनंतर तुद क्या कर्म कमाया कर चोरी मैं जा किछ लिया तामन पल्ला पाया हल्त न सोबा पल्त न टोई एला जन्म गवाया हाँ खरी दुहेली होई बाबा नानक मेरी।

सुन मूरख मन अजाना, भोग तिसे का पाना रहाओ। साओ हमारा ठाकुर पारा, हम तिसके वन जा रे। जियो पिंड सब रास तिसे की, मार आपे जी वाले। गौड़ी चेती महला पहला, अगर पंच हम एक जना, क्यों राखो कर बार मना। मारे लूटे नीत नीत, किस आगे करी पुकार जना। श्री राम नामा उचरमना, आगे जम बल विखम कणा रहाओ। उसार मरोली राखे द्वारा, पीतर बैठी सातना। अमृत केल करे नित कामन, अवर लुटेन सो पंच जना। ताहे मरोली लूटिया देहोरा, सातन पकड़ी एक जना। जम डंडा

मुंदरा ते कट पीतर मुंदरा काया की जय खिंसाता पंच चेले वश की जय रावल इहो मन की जय डंडाता जोग जुगत इव पावसता एक शब्द दूजा होर नास्त कंद मूल मन लावस्ता रहाओ मुंड मुंडाए जे गुर पाये हम गुर की नी गंगा पार त्रिभवन सारण हार स्वामी एक न चेतस अंधाता कर पटंब गली मन लावस संसा मूल न जाविस्ता एक चरणी दे चित लावे लब लोभ की तावस्ता जपस निरंजन रचस मना काहे बोले जोगी कपट खना रहाओ काया कमली हंस आना मेरी मेरी करत बिहानी ता प्रणवत नानक नागी दाजे फिर पाछे पस्तानी ता गौड़ी चेती महला पहला औखद मंत्र मूल मन एक है जे कर दृढ़ चित की जय रे जन्म जन्म के पाप कर्म के पातन हारा ली जय रे मन एको साहिब।

राख नेरी सूजस नाही लज टूकस मूसा पाई रे। मन मुख करे ते का दुख लागे गुरमुख मिले बढ़ाई रे। जो तिन किया सोई हुआ कितना मेटिया जाई रे। सुबर भरे ना होवे उने जो राते रंग लाई रे। तिन की पंख होवे जे नानक तो मूड़ा किछ पाई रे।

ते पंख उड़ाए। हट पटन बिज मंदर पन्ने कर चोरी कर आवे, अगो देखे पिछो देखे तुझते कहां छपावे। तट तीरथ हम नव खंड देखे, हट पटन बाजारा लेके तकड़ी को।

करे अंश न चाहे आ जाए अंश को चाहन जो गए से आए अंश गवाए आपन लिया जे मिले ता सबको पाग होए कर्मा ऊपर निबड़े जे लोचे सब कोए नानक करना जिन किया सोई सार करे हुक्म न जाती खत्म का किसे बढ़ाई दे गौड़ी बैरा गुण मेला पहला हरणी होवा बन बसा कंद मूल चुन खाओ गुर प्रसादी मेरा सौ मिले वार वार हो जाओ जियो मैं बन जारन राम की तेरा नाम वखरवा पार जी रहाओ कोकिल होवा अंब बसा सहज सबद विचार सहज सुबह मेरा सौ मिले दर्शन रूप अपार मछली होवा जल बसा जी जंत सब सार उर्वार पार मेरा सौवत है हो मिलोगी बाप पार नागन होवा तरवसा शब्द वसै कौ जाए नानक सदा।

साहिब से मेल कर कर एहो पहुंचा सदड़े नित पवन सदन हारा सिमरिए नानक से दे अवन रा गौड़ी गुआरे री मैला तीजा चौक दे।

न पारा वार, मेरा प्रभु बख्शे बख्शन वार। गुरु मिले सब मत बुद्ध होए, मन निर्मल वसे सब सोए, साच वसे साची सब कार, उत्तम करनी शब्द विचार। गुर ते साची सेवा होए, गुरमुख नाम पछाने कोए, जीवे दाता देवन हार, नानक हर नामे लगे प्यार। गौड़ी ग्वारे री महला तीजा।

पूरे पाग मिले गुर आए साचे सहज साप कमाए रहाओ गुर मिले कृष्णा अग्न बुझाए गुर ते सांत वसे मन आए गुर ते पवित्र पावन सुच होए गुर ते शब्द मिलावा होए बाज गुरु सब परम पुलाई बिन नामे बहुता दुख पाई गुरमुख हो वैसो नाम से आए दर्शन सत्य सच्ची पत होए किसनो कही है दाता इक सोई कृपा करे शब्द मिलावा होई मिल प्रीतम साचे गुण गावा नानक साचे सा।

सब किछ साचा आपे आप है। कर्म होवे सत्संग मिलाए, हर गुण गावे बैस सुखाए, रहाओ जलो एह जेवा दूजे पाए, हर रस न चाखे फीका आलाए, बिन बूझे तन मन फीका होए, बिन नावे दुखिया चलिया रोए। रसना हर रस चाखिया सहज सुदाए, गुर कृपा ते सत समाए, साचे राती गुर शब्द विचार, अमृत पीवे निर्मल तार। नाम समावे जो पांडा होए, उंदे पांडे टिके ना कोए, गुर शब्दी मन नाम निवास, नानक सच पांडा जिस शब्द प्यास।

गावत रहे जिस सतगुरु पावे मन संराता नाम सुहावे रहाओ एक गावे एक भगत करे नाम न पावे बिन असनेह सच्ची भगत गुर शब्द प्यार अपना तिर राख्या सदा उद्धार भगत करे मूर्ख आप जनावे नच नच टपे बहुत दुख पावे नचिए टपिए भगत न होए शब्द मरे भगत पाए जन सोए भगत वचल भगत कराए सोए सच्ची भगत विचों आप खोए मेरा प्रभु साचा सब विद जाने नानक बक्से नाम पछाने गौड़ी ग्वारे री महला तीजा मन मारे तात मर जाए बिन मुए कैसे हर पाए मन मरे दारू जाने कोए मन शब्द मरे बूझे जन सोए जिसनो बख्शे देवड़े आई गुर प्रसाद हर वसे मन आई रहाओ गुरमुख करनी कार कमावे ता इस मन की सोजी पावे मन में मत मैगल मित धारा गुर अंकत मार जीवा लनहारा मन असाध साधे जन कोए अचर चरे ता निर्मल होए गुरमुख एव मन।

नानक गुरमुख नाम पछाणे गौरी ग्वारे री महला की जा। होमे विच सब जग बोराना दूजे पाए परम फुलाना बहुत चिंता चितवे आप न पछाना संदा करत्या अन दिन विहाना हृदय राम रमो मेरे पाई गुरमुख रसना हर रसन रसाई। रहाओ गुरमुख हृदय जिन राम

हर कृपा ते हर वसै मन आए। राम राम करत्या सुख सांस शरीर, अंतर वसै न लागे जंपीर, आपे साहिब आप वजीर, नानक सेव सदा।

समाना, जित सेवे दरगे पत परवाना, हर के नाम विटो बल जाओ, तू विसरे तद ही मर जाओ, रहाओ तिन तू विसरे जे तुझ आप भुलाए, तिन तू विसरे जे दूजे पाए, मन मुख अज्ञानी जो नी पाए, मन मुख अज्ञानी जो नी पाए, जिन एक मन तुठा से सतगुरु सेवा लाए, जिन एक मन तुठा तिन हर मन वसाए।

आई कहा गुपत प्रगट प्रभ बनत बनाई आपे सुतिया देह जगाई किसकी कीमत किने न होई कह कह कथन कहे सब कोई गुर शब्द समावे बूझे हर सोई सुन सुन वेखे शब्द मिलाए वड्डी वड्याई गुर सेवा ते पाए नानक नाम रते हर नाम समाए नानक नाम रते हर नाम समाए गौड़ी ग्वारे री महला तीजा मनमुख सूता माया मोह प्यार गुरमुख जागे गुण ज्ञान विचार से जन जागे जिन नाम प्यार सहजे जागे समय न कोए पूरे गुर से बूझे जन कोए रहाओ असंत अनाड़ी कदे न बूझे कथनी करे ते माया नाल लूझे अंध अज्ञानी कदे न सीजे इस जुग में राम नाम निस्तारा बिरला को पाए गुर शब्द विचारा आस करे सगले कुल उधारा इस कल युग में कर्म कर्म ना कोई कली का जन्म चंडाल कह कर होई नानक नाम बिना को मुक्त न होई गौड़ी महला तीजा ग्वारे री सच्चा अमर सच्चा पातशाह हो मन साचे राते हर वे परवाहो सच्चे मैल सच नाम समाहो सुन मन मेरे शब्द विचार राम जपो पल जल उतरो पार रहाओ करमे आवे करमे जाए के जग जन्मया दूजे पाए मन मुख न चेते आवे जाए आप फुला के प्रत आप फुलाया इहो जियो विडानी चाकरी लाया मां दुख खटे बिरसा जन्म गवाया कृपा कर सतगुरु मिलाए एको नाम चेते विच्चों परम चुकाए नानक नाम जपे नाव नौ निद पाए गौड़ी ग्वारे री महला तीजा।

जिना गुरमुख त्याया तिन पूछो जाए, गुर सेवा ते मनपति आए, से तनवंत हर नाम कमाए, पूरे गुर ते सो जी पाए, हर हर नाम जपो मेरे पाई, गुरमुख सेवा हर काल साए पाई, गुरमुख सेवा हर काल साए पाई रहाओ। आप पछाणे मन निर्मल होए, जीवन मुक्त हर पावे सोए, हर गुण गावे मत उत्तम होए, सहजे सहज समावे सोए, दूजे पाए ना तेरे आ जाए, हों मैं माया महा बिख खाए, पुत कुटुंब गृह मोहया माए, मनमुख अंधा आवे जाए, हर हर नाम देवे जन सोए, अंजन भगत गुर सबदी होए, गुरमत विरला बूझे कोए, नानक नाम समावे सोए, नानक नाम समावे सोए, गौड़ी ग्वारे री महला तीजा, गुर सेवा जुग चारे होए, पूरा जनकार कमावे कोई, अखुट नाम तन हर कोट न होई, ऐसे सवा सुख दर शोभा होई, ए मन मेरे परम न कीजै, गुरमुख सेवा अमृत रस पीजै रहाओ। सतगुर सेवे से महापुरुष

सतगुर सेवे सदा मन दासा, होमे मार कमल परगासा, अनहद वाजे निज कर वासा, नाम रते कर माहे उदासा। सतगुर सेवे तिनकी सच्ची बाणी, जुग जुग पवती आस वखाणी, हम दिन जपे।

हर रस कोग गुरुमुख प्राणी नाम हर चाहे जन्म जीत लाहा नाम पाए रहाओ ज्ञान स्यान गुर शब्द है मीठा गुर कृपा से किने विरले चख लीठा कर्म कांड बहु करे अचार बिन नावे त्रिग त्रिग अहंकार बंधन बांधियो माया पास जन नानक छूटे गुर प्रगास महला तीजा गौड़ी बैरागन जैसी धरती ऊपर मेघुला बरसत है क्या धरती मजे पानी नाही जैसे धरती मजे पानी प्रगासिया बिन पगा बरसत फिराही।

पुरुष होए के क्या होए कर्म समाही, नाना रूप सदा है तेरे तुझ ही माहि समाही। इतने जन्म फूल परे थे जा पाया ता फूले नाही, जा का कार्य सोई पर जाने जे गुर के सबल समाही। तेरा शब्द तू है आपे परम कहाई, नानक तत तत क्यों मिलिया उमरप जन्म न आही। गौरी बैरागन महला तीजा, सब जग काले वस है बांदा दूजे पाए, हो मैं कर्म कमाऊं दे मन मुख मिले सजाए, मेरे मन गुर चरणी चित लाए, गुरमुख नाम निदान ले दरगे ले छबाए। रहाओ लक्ष चौरासी परम दे मन हट आवे जाए, गुरु का शब्द न कीने हो फिर जो नहीं पाए, गुरमुख आप पछाणिया हर नाम वसिया मन आए, हम दिन भगती रत्या हर नामे सुख समाए। मन शब्द मरे प्रतीत होए हो मैं तजे विकार, जन नानक करमी पायन हर नामा भगत पंडार। गौरी बैरागन महला तीजा, कई अड़े दिन चार है हर हर लिख पाया, सोगावंती नार है गुरमुख गुण गाया, तेव कड़े गुण समले सौरे वास पाया, गुरमुख सहज समानिया हर हर मन पाया। ससुरे पेय फिर वसे करो कित विद पाये, आप निरंजन अलख है आपे मेलाये। रहाओ आपे ही प्रभु देह मत हर नाम ते आये, गढ़पागी सतगुरु मिले मुख अमृत पाये। हो मैं दुबदा बिनस जाए सहजे सुख समाये, सब आपे आप वर्तदा आपे नाए लाये। मन मुख गर्भ न पायो अज्ञान ए आने, सतगुर सेवा ना करें फिर पछताने। गर्भ जो नी वास पाए दे गर्भे गल जाने, मेरे करते ए वह पामदा मन मुख परमाने। मेरे हर प्रभ लेख लिखाया दुर्मस्तक पूरा, हर हर नाम से आया पेटिया गुरसूरा। मेरा पिता माता हर नाम है, हर बंधक बीरा हर हर बस मिलाए प्रभु जन नानक कीरा। गौरी बैरागन महला तीजा, सतगुर ते ज्ञान पाया हर सत बिचारा, मत मलीन प्रगट पई जत नाम मुरारा, शिव सकत मिटाया चूका अंधियारा। तुर मस्तक जिन को लिखिया तिन हर नाम प्यारा, हर कित विद पाई संत जनो जिस देखो जीवा, हर बिन चसाना जीवती गुर मेलियो हर रस पीवा। रहा हो हर गुण गावा नित हर सुनी, हर हर गपकीनी हर रस गुर के पाया, मेरा मन तन लीनी तन तन गुर सतपुरख है जिन भगत हर दीनी, जिस गुर ते हर पाया सो गुर हम कीनी। गुण दाता हर

हर शरणागत राखले हो, मूड मुगद निस्तारे सहज आनंद सदा गुरमति, हर हर मन प्याया सज्जन हर प्रभ पाया, हर सोहेला गाया हर दया तार प्रभ बेनती, हर हर चेताया जन नानक मंगे तूर तिन, जिन सतगुर पाया गौड़ी ग्वारे री महला चौथा, चौथा चौक दे इको अंकार सतगुरु प्रसाद। पंडित खास सिमरत पढ़िया, जोगी गोरख गोरख करिया, मैं मूरख हर हर जप पढ़िया, ना जाना क्या गत राम हमारी, हर पद मन में

सूद वैस पर किरत कमावे, मैं मूरख हर नाम छुड़ावे। सब तेरी सृष्ट तू आप रहा समाई, गुरमुख नानक दे वड्याई। मैं अंधले हर टेक टिकाई, मैं अंधले हर टेक टिकाई। गौड़ी ग्वारे री महला चौथा, निर्गुण कथा कथा है हर की। पज मिल साधु संगत जन की, तब पौजल अकथ कथा सुन हर की। गोविंद सत संगत में लाए, हर रस रसना राम गुण गाए। रहाओ जो जन प्यावे हर हर नामा, तिन बासन दास करो हम रामा। जन की सेवा उत्तम कामा, जो हर की हर कथा सुनावे। सो जन हमरे मन चित पावे, जन पग रेण वड पागी पावे। संत जना स्यों प्रीत बने आई, जिनको लिखत लिखिया तुर पाई। ते जन नानक नाम समाई, ते जन नानक नाम

प्रीत गुरसिख मुख पाए। ते हर जन हर मेलो हम प्यारे, जिन मिलिया दुख जाए हमारे। रहाओ जो मिल बछरे गौ प्रीत लगावे, कामन प्रीत जा फिर कर आवे। हर जन प्रीत जा हर जस गावे, सारंग प्रीत बसे जल तारा। नरपत प्रीत माया देख पसारा, हर जन प्रीत जपे निरंकारा। नर प्राणी प्रीत माया तन खाटे, गुरसिख प्रीत गुर मिले गलाटे। जन नानक प्रीत साध पग चाटे, जन नानक प्रीत साध पग चाटे। गौड़ी ग्वारे महला चौथा, पीखक प्रीत पीख प्रभ पाए। भूखे प्रीत होवे अन खाए, गुरसिख प्रीत गुर मिल आघाए। हर दर्शन दे हो हर आस तुम।

लागे गुर सिख प्रीत गुरु मुख लागे बछरे प्रीत खीर मुख खाए हृदय बिबसै देखे माए गुर सिख प्रीत गुरु मुख लाए और सब प्रीत माया मोह काचा बिनस जाए पूरा कछ पाचा जन नानक प्रीत त्रिपत गुर साचा जन नानक प्रीत त्रिपत गुर साचा। गौरी ग्वारे री महला चौथा सतगुर सेवा सफल है बनी जित मिल हर नाम ते आया हर तनी जिन हर जपिया तिन पीछे छूटी कणी गुर सिख हर बोलो मेरे भाई हर बोलत सब पाप लह जाई राव जब गुर मिलिया तब मन वस आया तावत पंच रहे हर त्याया अंदिन नगरी हर गुण गाया सतगुर पग तूर जिना मुख लाई तिन कूर त्यागे हर लिव लाई ते हर दरगे मुख उजल पाई गुर सेवा आप हर पावे कृष्ण बल कद्र गुर पग लग त्यावे नानक गुरमुख हर आप तरावे नानक गुरमुख हर आप तरावे। गौरी ग्वारे री महला चौथा हर आपे जोगी डंडा तारी हर आपे रब रहा बनवारी हर आपे तप

चौथा साहो हमारा तू कणी जैसी तू रास दे तैसी हम ले हर नाम बनन जय रंग से हो जे आप दयाल होए दे हम बन जा रे राम के हर वंज करावे दे रास रे रहाओ लाहा हर तगत तन खटिया हर सच्चे सा मन पाया हर जप हर वखर लद्या जम जा गाती नेड़ ना आया और वंज करे वपारिये अनंत तरंगी दुख माया ओए जे है वंज हर लाया फल से हा तिन पाया हर हर वंज सो जन करे जिस कृपाल होए प्रभ दे जन नानक सा।

आए। हल जोते उद्यम करे मेरा पुत ती खाए। त्यों हर जन हर हर जप करे हर अंत छाए। मैं मूरख की गत की जय मेरे राम गुर सतगुर से।

सतगुरा जब गुरु बोले तब विषम होए जाए। हम जैसे अपराधी अवर कोई राख है, जैसे हम सतगुरु राख लिए छड़ाए। तू गुरु पिता तू है गुरु माता, तू गुरु बंदब मेरा सखा।

तन तन गुरु नानक जन केरा, जित मिले चूके सब सोग संतापे, गौरी बैरागन महला चौथा। कंचन नारी में जियो लुबत है मोह मीठा माया, कर मंदर खोल खुशी मन अन रस लाया, हर प्रभ चित न आवई क्यों छूटा मेरे हर राया। मेरे राम ए नीच कर्म हर मेरे, गुणवंता हर हर दयाल कर कृपा, बख्श अवगुण सब मेरे। रहाओ किछ रूप नहीं किछ जात नहीं, किछ ढंग न मेरा, क्या मोह ले बोले गुण विहून नाम जपया ना तेरा। हम पापी संग गुर उबरे पुन सतगुर केरा, सब जियो पिंड मुख नक दिया, बर्तन तो पानी अन थाना कपड़ पहनन दिया, रस अन पोगानी, जिन दिए सोचित न आवे।

गौड़ी बैरागन महला चौथा। जो जननी सुत जन पालकी राखे नगर मझार, अंतर बाहर मुख दे गिरास खिन खिन पोचार। त्यों सतगुर गुर सिख राखता हर प्रीत प्यार, मेरे राम हम बारिक हर प्रभु के हैं इयाने। तन तन गुरु गुर सतगुर पादा।

जरा मरा ताप सिरत साप सब हर कै बस है, कोई लाग न सके बिन हर का लाया। ऐसा हर नाम मन चित नित त्यावो, जन नानक जो अंति औस

कर कृपा हर मेलिया मेरा सतगुर पूरा इच पुनी जन केरिया ले सतगुर तूरा हर भगत दृढ़ आवे हर भगत सुने तिस सतगुर मिलिए तोटा मूल न आवे हर लाभ नित दृढ़िए जिसको हृदय विगास है पाओ दूजा नाही नानक तिस गुर मिल उदरे हर गुण गावाही महला चौथा गौरी पूर्वी हर दयाल दया प्रभ कीनी मेरे मन तन मुख हर बोली गुरमुख रंग पाया अत गूड़ा हर रंग पीनी मेरी चोली अपने हर प्रभ की हौ बोली जब हम हर सेती मन मानिया कर दीनो जगत सब गोल अमोली रहाओ करो विवेक संत जन पाई खोज हृदय देख टंडोली हर हर रूप सब जोत सवाई हर निकट वसै हर कोली हर हर निकट वसै सब जगते अपरंपर पुरख अतोली हर हर प्रगट कियो गुरु पूरे सिर वेचियो गुरु पहमोली हर जी अंतर बार तुम शरणागत तुम वड पुरख वडोली जन नानक अंदिन हर गुण गावे मिर सतगुर गुर वे चोली गौरी पूर्वी महला चौथा जग जीवन अपरंपर स्वामी जगदीशर पुरख विदाते जित मार्ग तुम प्रेरो स्वामी तित मार्ग हम जाते राम मेरा मन हर सेती राते सत संगत मिल राम रस पाया हर राम में नाम समाते रहाओ हर हर नाम हर हर जग अवखद हर हर नाम हर साते तिनके पाप दोख सब बिन से जो गुरमत राम रस खाते जिनको लिखत लिखे तुर मस्तक ते गुर संतोख सरनाते दुर्मत मैल गई सब तिनकी जो राम नाम रंग राते राम तुम आपे आप आप प्रभ ठाकुर तुम जेवड़ अवर न दाते जन नानक नाम।

हम मूढ़ मुग्ध अशुद्ध मत होते, गुर सतगुर के बचन हर हम जाने राव। जितने रस अनरस हम देखे, सब तितने फीक फीकाने। हर का नाम अमृत रस चाखिया, मिल सतगुर मीठ रस गाने। जिनको गुर सतगुर नहीं पेटिया, ते साकत मूढ़ दीवाने। तिनके कर्महीन तुर पाए, देख दीपक मोए कचाने। जिनको तुम दया कर मेलो, ते हर हर सेव लगाने। जन नानक हर हर हर जप प्रगते, मत गुरमत नाम समाने। गौड़ी पूर्वी महला चौथा, मेरे मन सो प्रभ सदा नाल है। स्वामी कहो किथे हर पहु नसी है, हर आपे बस ले प्रभ साचा। हर आप छदाए छुटी है, मेरे मन जप हर हर हर मन जपी है। सतगुर की शरणाई पज पो, मेरे मना गुर सतगुर पीछे छुटी है। रहाओ मेरे मन सेवो सो प्रभ सर्व सुख दाता। जित सेवे निज कर वसी है, गुरमुख जाए लहो कर अपना। कस चंदन हर जस कसी है, मेरे मन हर हर हर हर हर जस उत्तम। ले लाहा हर मन हसी है, हर हर आप दया कर देवे। ता अमृत हर रस चखी है, मेरे मन नाम बिना जो दूजे लागे। ते साकत नर जम कुटी है, ते साकत चोर जिना नाम विसारिया। मन तिनके निकट न फिटी है, मेरे मन सेवो अलख निरंजन नर हर। जित सेवे है लेखा छुटी है, जन नानक हर प्रभ पूरे किए। खिन मासा तोल न कटी है, गौड़ी पूर्वी महला चौथा। हमरे प्राण वसगत प्रभ तुमरे, मेरा जियो पिंड सब तेरी। दया करो हर दर्श दिखावो, मेरे मन तन लोच कनेरी। राम मेरे मन तन लोच मिलन हर केरी। गुर किरपाल कृपा किंचत गुर कीनी, हर मिलिया आए प्रभ मेरी। रहाओ जो हमरे मन चित है स्वामी, साबिद तुम हर जानो मेरी। अंदिन नाम जपी सुख पाए, नित जीवा आस हर तेरी। गुर सतगुर दाते पंथ।

आगे जो हर राखे त्यों ठाणे हम फूल चूक गुर कृपा तारो जन नानक कुतरे काडे। गौड़ी पूर्वी महला चौथा काम क्रोध नगर बहु परया मिर साधु खंडल खंडा है पूरब लिखत लिखे गुर पाया मन हर लिव मंडल मंडा है कर साधु अंजलि पुन वड्डा है कर दंडौत पुन वड्डा है राव सात हर रस साधन।

आया। हम अपराध पाप बोकी ने कर दुष्टी चोर चुराया। अब नानक शरणागत आए हर राखो लाज हर भाया। गौड़ी पूर्वी महला चौथा गुरमत बाजे शब्द अनाद। गुरमत मनुआ गावे वद पागी गुर दर्शन पाया। तन तन गुरु लिवलावे गुरमुख हर लिवलावे। रहाओ हमरा ठाकुर सतगुर पूरा मन गुर की कार कमावे। हम मल मल तोवे पाम गुरु के जो हर हर कथा सुनावे। हृदय गुरमत राम रसायन जुहवा हर गुण गावे। मन रसक रसक।

जन नानक कहो हर कृपा तारी, मत गुरमत नाम दृढ़ावे। राग गौड़ी माज महला चौथा, गुरमुख जिंदु जप नाम करम्मा, मत माता मत जियो नाम मुख रामा। संतोख पिता कर गुर पुरख अजन्मा, वद पागी मिल रामा। गुर जोगी पुरख मिलिया रंग माणी जियो, गुर हर रंग रतड़ा सदा निर्वाणी जियो। वड पागी मिल सुगड़ सुजानी जियो, मेरा मन तन हर रंग तिन्ना। आवो संतो मिल नाम जपाहा, रिच संगत नाम सदा लैलाहा जियो। कर सेवा संत।

ब्राह्मण करी हाजियो, मिल संत जना रंग माने रलिया जियो, गुर दीपक ज्ञान सदा मन बलिया जियो, हर तुठे टुल टुल मिलिया जियो, मेरे मन तन प्रेम लगा हर टोले जियो, मैं मेले मित्र सतगुरु वे चोले जियो, मन देवा संता मेरा प्रभ मेले जियो, हर विटले हो सदा कोले जियो, वस मेरे प्यारिया वस मेरे गोविंदा, हर कर कृपा मन वस जियो, मन चिंदियड़ा।

मन अन दिन अन ग्रह जियो हर पायणा वड पा गई मेरे गोविंदा नित लैला हा मन हस जियो हर आप उपाय हर आपे देखे हर आपे कारे लाया जियो इक खावे बस टोट ना आवे इक ना फक्का पाया जियो इक राजे तख्त बहे नित सुखिए इक ना भिख मंगाया जियो सब इको शब्द वर्तदा मेरे गोविंदा जन नानक नाम ते आया जियो गौड़ी माज महला चौथा मन माही मेरे गोविंदा हर रंग रता मन माही जियो हर रंग नाल ना लखिए मेरे गोविंदा गुरपुरा अलख लखाही जियो हर हर नाम परदासिया।

मेरा मन तन बहुत बहरा गया मेरे गोविंदा, हर बाजो तन कुम लैनी जियो, संत जना मिल पाया मेरे गोविंदा, मेरा हर प्रभु सज्जन सैनी जियो, हर आए मिलिया जग जीवन मेरे गोविंदा, मैं सुख विहानी रहनी जियो, मैं मेलो संत मेरा हर प्रभु सज्जन, मैं मन तन पुख लगाया जियो, हऊ रह ना सकूं बिन देखे मेरे प्रीतम, मैं अंतर बिरहो हर लाया जियो, हर राया मेरा सज्जन प्यारा, गुर मेले मेरा मन जीवाया जियो, मेरे मन तन आस

जियो। हर आपे भगत कराएंदा मेरे गोविंदा, हर भगता लोच मन पूरी जियो। आपे जल थल वरतदा मेरे गोविंदा, रब रहा नहीं दूरी जियो। हर अंतर बाहर आप है मेरे गोविंदा, हर आप रहा पर पूरी जियो। हर आत्म राम पसारिया मेरे गोविंदा, हर वेखे आप हदूरी जियो। हर अंतर वाजा कौन है मेरे गोविंदा, हर आप वजाए त्यों वाजे जियो। हर अंतर नाम निदान है मेरे गोविंदा, गुर सबदी हर कब गाजे जियो। आपे शरण पवाएंदा मेरे गोविंदा, हर भगत जना राख लाजे जियो। वड पागी मिल संगती मेरे गोविंदा, जन नानक नाम सिदका जय जियो। गौड़ी माज महला चौथा, मैं हर नामे हर बिरहो लगाई जियो। मेरा हर प्रभ मित मिले सुख पाई जियो, हर प्रभ देख जीवा मेरी माई जियो। मेरा नाम सखा हर पाई जियो, गुण गावो संत जियो। मेरे हर प्रभ केरे जियो, जप गुरुमुख नाम जियो भाग वडेरे जियो। हर हर नाम जियो प्राण हर मेरे जियो, फिर बहुड़ न पव जल फेरे जियो। क्यों हर प्रभु वेखा मेरे मन तन चाओ जियो। हर मेलो संत जियो मन लगा पाओ जियो, गुर सबदी पाए हर प्रीतम राओ जियो। वड पागी जप नाओ जियो, मेरे मन तन वडड़ी गोविंद प्रभ आसा जियो। हर मेलो संत जियो गोविंद प्रभ पासा जियो। सतगुर मत नाम सत।

इन विद कुशल होत मेरे भाई, क्यों पाई है हर राम सहाई। रहाओ कुशल ना गए मेरी सब माया, ऊंचे मंदर सुंदर छाया, झूठे लालच जन्म गवाया। हस्ती कोड़े देख विगासा, लस्तर जोड़े नेब खवासा, गल जेवड़ी हौमे के फासा, राज कमावे दैग सारी, माने रंग भोग बहुनारी, जो नरपत सुपने पे खारी। एक कुशल मोको सतगुरु बताया, हर जो किछ करे सो हर क्या पगता पाया, जन नानक हौमे मार समाया, इन विद कुशल होत मेरे पास।

कई जन्म गर्भ हिर खरिया, कई जन्म साफ कर उपाया, लख 84 जोन परमाया, साध संग पयो जन्म परापत, कर सेवा पद हर हर गुरमत, त्याग मान झूठ अभिमान, जीवत मरहे दर्द।

अविनाशी गुर के बचन कति जम फासी गुर का बचन जी के संग गुर के बचन रचे राम के रंग जो गुर दिया सो मन के काम संत का किया सत्कर्मान रहाओ गुर का बचन अटल अछेद गुर के बचन कटे परम पेद गुर का बचन कतो न जाए गुर के बचन हर के गुण गाए गुर का बचन जी के साथ गुर का बचन अनाथ को नाथ गुर के बचन नरक ना पवे गुर के बचन रसना अमृत रवे गुर का बचन प्रगट संसार गुर के बचन न आवे हार जिस जन होए आप कृपाल नानक सतगुर सदा दयाल गौड़ी ग्वारे री महला पंजवा जिन कीता माटी ते रतन गर्भ में राखिया जिन कर जतन जिन दीनी शोभा वड्याई किस प्रभ को आस पहर त्याई रमैया रेन

चाहे हो, गुरु उपदेश मने महले हो, जाको राम नाम लिव लागी, कहो नानक सो तन वड पागी, गौड़ी ग्वारे री महला पंजवा, सुन हर कथा उतारी मैल, महा पुनीत पय सुख सैल, वदे पाग पाया साज संग, पार ब्रह्म सो लागो रंग, हर हर नाम

सिर ऊपर ठाडो तवन राए, मीठी कर कर बिखिया खाए। हौ बंदो हौ साधो बैर, हमरी पूम कौन काले पैर। हौ पंडित हौ चतुर सियाण।

पहला पंजवा अनिक जतन नहीं होत छुटारा बहुत सियाणत आगल पारा हर की सेवा निर्मल हेत प्रभु की दरगे शोभा सेत मन मेरे गहो हर नाम का।

अगन शीत का लाह सुख, नाम जपत मन होवत सुख। उतर जाए तेरे मन की प्यास, पूर्ण होवे सगली आस। डोले नाही तुमरा चीत, अमृत नाम जप गुरमुख मीत। नाम औखद सोई जन पावे, कर कृपा जिस आप दिवावे। हर हर नाम जाके हृदय वसे, दुख दर्द ते नानक नसे। गौड़ी द्वारे री महला पंजवा, बहुत दर्ब कर मन ना अघाना। अनक रूप देख नहीं।

त्रिगतन त्रिग तन माया संग राते रहाओ जो बिगारी कैसिर दीजे दाम ओए खसमे कै गृह उन दुख सहाम जो सुपने हुए बैस

पुत्र कलत्र ग्रस्त का फासा, होन न पाये राम के दासा। कवन सो विद जित राम गुण गाए, कवन सो मत जित तरह ए माए राव। जो पलाई सो बुरा जाने, साच कहे सो बिखे समाने। जाने नाही जीत अर हार, इहो वलेवा साकत संसार। जो हला हल सो पीवे बौरा, अमृत नाम जाने कर कौरा। साध संग के नाही नेर, लख चौरासी परमता फेर। एक जाल पहाए पंखी, रस रस को करें।

प्रभु कृपा ते नाम से आये, प्रभु कृपा ते बंधन छुटे, तो कृपा ते हो मैं टूटे। तुम लावो तो लागे सेव, हम ते कछु न होवे देव। रहाओ खुद पावे ता गावा बाणी, खुद पावे ता सच वखाणी, खुद पावे ता सतगुर मया, सर्व सुखा प्रभु तेरी दया। जो तुद पावे सो निर्मल कर्मा, जो तुद पावे सो सच धर्मा, सर्व निदान गुण तुम ही पास, तू साहिब सेवक अरदास, मन तन निर्मल होए।

निमक न कृष्णा तेरी लाखे, हर रास्ता तू चाखे साद, चाखत होए रहे विस्माद। अमृत रसना पियो प्यारी, ए रस राती होए तृप्तारी। रहाओ हे जेवे तू राम गुण गाओ, निमक निमक हर हर हर त्याओ। आन न सुनिए कतहु जाइए, साध संगत वड पागी पाइए। आप पैर जेवे आराध, पार ब्रह्म ठाकुर आगाद। इहा उहा सदा सुहेली, हर गुण गावत रसन अमोली। बनस्पत मौली फल फूल पेगे, ए रस राती बोर न छोड़े। आन न रस कस लवे न लाई, कहो नानक गुर पे हैं सहाय। गौड़ी ग्वारे री महला पंजवा, मन मंदर।

कवन बापारी जाका उहां विसाहो, नाम रतन को व्यवहारी, अमृत भोजन करे आहारी रहाओ, मन तन अर्पी सेव करी जय, कवन सो जुगत जित कर पी जय, पाए लगो तज मेरा तेरे, कवन सो जन जो सौदा जोर है।

संगार ठाकुर नाम कियो उन्वर्तन त्रिपत अगावन हर कै दर्शन हर संग राते मन तन हरे गुरपुरे की सरनी परे रहाओ चरण कमल आत्म आधार एक निहारे आज्ञाकार एको बनज एको व्योहारी अवर न जाने बिन निरंकारी हर सोग दोहूं ते मुक्ते सदा अलिपत जोग हर जुगते दीसे सब में सबते रहते पार ब्रह्म का ओए ध्यान करते संतन की महिमा कवन वखानो अगाध बोध किछ मित नहीं जानो पार ब्रह्म मोहे कृपा।

0: से आया, मरम तुम्हारा गुरते पाया, सतगुर ते दृढ़िया एक एक है, नानक दास हर हर हर ते कह।
1: गौड़ी ग्वारेड़ी महला पंजवां व्यापत हरख सो

व्यापत पुत्र कलत्र संग्राता, व्यापत हस्त कोड़े अर बस्ता, व्यापत रूप जोबन मदमस्ता, व्यापत पोम रंक अर रंगा, व्यापत गीत नाद सुन संगा, व्यापत सेज महल सिगार, पंच दूत व्यापत अंधियार, व्यापत कर्म करे हो फासा, व्यापत ग्रस्त व्यापत उदासा, आचार व्यवहार व्यापत ही जात, सब किस व्यापत बिन हर रंग रात, संतन के बंधन काटे हर राय, ताको कहां व्यापै माए, तहु नानक जिन

सगल भगत जा का नाम आधार, सर्व व्यापत पूरन तनी जा की शोभा कट कट बनी। जिस सिमरत दुख डेरा कहे, जिस सिमरत जम किछु ना कहे, जिस सिमरत होत सूके हरे, जिस सिमरत डूबत पाहन तरे। संत सभा तो सदा जयकार, हर हर नाम जन

संत प्रसाद हर कीर्तन गाओ, संत प्रसाद सगल दुख मिटे, संत प्रसाद बंधन ते छुटे, संत कृपा ते मिटे मोह परम, साध रेण मज्जन सब कर्म, साध कृपाल दयाल गोविंद, साधा मैं ए हमरी जिंद, कृपा निध कृपाल ते आवो, साध संग ता बैठन पावो, मोहे निर्गुण को प्रभु कीनी दया, साध संग नानक।

पैर अब मत बिनसी दुष्ट बिगानी जब के सुनिया हर जसानी रहाओ सहज सुख आनंद निधान राख।

सो सुखदाता जे नाम जपावे कर कृपा तिस संग मिलावे रहाओ जिस होए दयाल तिस आप मिलावे सर्व निधान गुरु ते पावे आप त्याग मिटे आमन जाना साध के संग पार।

है और ब्रह्म परमेश्वर की आय है। गुरु पूरे ते मत पाए रहाओ करण करावन हार दयाल जी जम सगले प्रतपाल अगम अगोचर सद।

प्रभ सेवक साचा वे साहो गुरु पूरे राखे दे हाथ नानक पार ब्रह्म सम्राट गौड़ी द्वारे री महला पंजवा गुरु प्रसाद नाम मन लागा जन्म जन्म का सोया जागा अमृत गुण उचरे प्रभ बाणी पूरे गुरु की सुमत प्राणी प्रभ सिमरत कुशल सब पाए कर बाहर सुख सह सबाए रहाओ सोई पछाता जिन्हें उपाया कर कृपा प्रभ आप मिलाया बाँ पकड़ लीनो कर अपना हर हर कथा सदा जप जपना मंत्र तंत्र औखद पुने चार हर हर नाम जी प्राण आधार साचा तन पायो हर रंग दुतर करे साध के संग सुख बैसो संत सज्जन परवार हर तन खटियो जाका

हस्त पुनीत हुए तत्काल, दिलस जाए माया जंजाल, रसना रमो राम गुण नीत, सुख पावो मेरे पाई मीत। लिख लेखन कागद मसवाणी, राम नाम हर अमृत।

माया मगन नचुए मोह उदरे आप करे संसार राम नाम जप के संकार आप कमाओ अवरा उपदेश राम नाम हृदय प्रवेश जाके माथे एहो निदान सोई पुरख जपे भगवान आप तैर हर हर गुण गाओ कहो नानक हों।

बिचर आ गया तिचर पोगे पोग जले न पाये राम स्नेही किरत संजोग सती उठ होई रहाओ देखा देखी मन हट जल जाये प्रिय संग न पावे बहु जोन को आये शील संजम प्रिय आज्ञा माने किस नारी को दुख न जमाने कौ नानक जिन प्रयो परमेश्वर कर जानिया तन सती दरगे परवानिया गौरी द्वारे री महला पंजवा हम तनवंत पाग

भरपूर सतगुरु अपनी कौ बलिहार है, छोड़ न जाई सर पर तार है। रहाओ दुख रोग सोग बिसरे जब नाम, सदा आनंद जा हर गुण गाम। बुरा पला कोई ना कही जाए, छोड़ मान हर

रस हर रस है आयो सो अन रस ना ही लपटायो जाता तहया दर्दे चले सो किसको नजर ले आवे तले जाता सब किस ताका होए नानक ताको सदा सुख होए गौड़ी महला पंजवा जाके दुख सुख सम कर जापे ताको काड़ा कहाँ ब्यापे सहज आनंद हर साधु माहे आज्ञाकारी हर हर राय रहाओ जाके अचिंत वसे मन आए ताको चिंता कतहु नाहे जाके दिन स्यो मन से फरमा ताके कछु नाही डर जमा जाके हृदय दियो गुरु नामा कहो नानक ताके सगल निधाना गौड़ी महला पंजवा अगम रूप का मन में थाना गुरु प्रसाद किने विरले जाना सहज कथा के अमृत कुंटा जिसे

जिस कर कृपा सतगुरु मिले दयाल, तिस ही गुण तिन ही प्रभ जाता, जिसकी मान ले सुखदाता रहा दूजा। गौरी महला पंजवा, आपन तन नहीं जाके दरबा, राज मिलख नहीं आपन दरबा, आपन नहीं का को लपटायो, आपन नाम सतगुर के पायो रहाओ। सुत बनता आपन नहीं पाई, इष्ट मीत आप बाप ना माई, सोयना रूपा सुन नहीं दाम, हैवर गैवर आपन नहीं काम। कहो नानक जो गुरु बख्श मिलाया, इसका सब किसी

ताहे हर सा प्रीतम कर मन मीत प्राण आधार राखो सब चीत रहाओ। रे मन मेरे तू ताको सेव आद पुरख अपरंपर देव किस ऊपर मन कर तू आसा आद जुगाद जा का परवासा जाकी प्रीत सदा सुख होए नानक गावे गुर मिल सोए। गौरी महला पंजवा मीत करे सोई हम माना मीत के कर्तव्य कुशल

कहो नानक गुर मंत्र दृढ़ आया, केवल नाम हृदय माहि समाया। गौड़ी महला पंजवा, काकी माई काको बाप, नाम तारीख झूठे सब साथ, काहे को मूर्ख पकलाया।

वड़ा जिन राम लिवलाई रहाओ पूमिया पूम ऊपर लिख लुजे छोड़ चले कृष्णा नहीं बुझे कहो नानक ये तत् बिचारा बिन हर भजन नाही छुटकारा गौरी महला पंजवा पूरा मार्ग पूरा

पूर्व के अगकोट संत प्रसाद जन्म मरण के छोट संत का दर्श पूरन स्नान संत कृपा ते जपिए नाम रहाओ संत के संग मिटिया अंकार दृश्य आवे सब एक अंकार संत सो प्रसन्न आए वस पंचा अमृत नाम हृदय ले संचा कहो नानक जाका पूरा कर्म किस पेते साधु के चरण गौड़ी महला पंजवा हर गुण जपत कमल परगास है हर सिमरत त्रास सब नास है सामत पूरी जित हर गुण गावे वडे पाग साधु संग पावे रहाओ साध संग पाये निज नामा साध संग पूरन सब कामा हर की भगत जन्म परवान गुर कृपा ते नाम बखान कहो नानक सो जन परवान जा कै हृदय वसै भगवान गौड़ी महला पंजवा एक सों जाका मन राता जिसरी तिसे पराई पाता बिन गोविंद ना दिसे कोई करण करावन करता सोई रहाओ मने कमावे मुख हर हर बोले सो जन इत उत्कत है न डोले जाके हर तन सो सत्साओ गुर पूरे कर दीनो विसाओ जीवन पुरख मिलिया हर राया कहो नानक परम पद पाया गौड़ी महला पंजवा नाम भगत के प्राण आधार नामो तन नामो व्योहार नाम वडाई जन शोभा पाए कर कृपा जिस आप दिवाए रहाओ नाम भगत के सुख स्थान नाम रत सो भगत परवान हर का नाम जन को तारे साफ साफ जन नाम समारे कहो नानक जिस पूरा पाग नाम संग ताका मन लाग गौड़ी महला पंजवा संत प्रसाद हर नाम से आया तब के तावत मन तृप्ताया सुख विश्राम पाया गुण गाए श्रम मिटिया मेरी हति बलाए रहाओ चरण कमल अराद भगवंता हर सिमरन ते मिटी मेरी चिंता सब तज अनाथ एक शरण आयो ऊंच स्थान तब सहजे पायो दुख दर्द प्रम पौ नस्या करण हार नानक।

आओ हर कीर्तन सुने हर कीर्तन गावे तिस जन दुख निकट नहीं आवे हर की टहल कर जन सोहे ताको माया अगर न पोहे मन तन मुख हर

दुख बिन से सुख हर गुण गाए, गुरपूरा पेटिया लिव लाए, रहाओ हर का नाम दियो गुर मंत्र, मिटे वसूरे उतरी चिंत, अनद पए गुर मिलत कृपाल, कर कृपा का तेजम जाल, कहो नानक गुर पूरा पाया, ताते बहुर न व्यापे माया। गौड़ी महला पंजवा, रास लिया गुर पूरे आप, मन मुख को लागो सं

कहो नानक जा को कहे दयाला, साध संग मिल पजें गोपाला। गौड़ी महला पंजवा, कल कलेस गुर शब्द निवारे, आवन जान रहे सुख सारे, तय दिन से निरपो हर के आया, साध संग हर के गुण गाया, रहाओ चरण कवल रिद अंतर तारे, अग्न सागर गुर पार उतारे, बूढ़त जात पूरे गुर कांडे, जन्म जन्म के टूटे गांडे, कहो नानक किस गुर बलिहारी, जिस पेटत गत पई हमारी। गौड़ी महला पंजवा, साध संग ताकी सरनी परो, मंतन अपना आगे तरो, अमृत नाम पीवो मेरे पाई, सिमर सिमर सब तपत बुझाई, रहाओ तद अभिमान जन्म मरण निवारो, हर के दास के चरण नमस्कारो, सास सास प्रभ मने संभाले, सो तन संचो जो चाले नाले, तिसे प्राप्त जिस मत

अमृत दृष्ट संत जीवाए, काटे कष्ट पूरे गुरुदेव, सेवक को दीनी अपनी सेव, रहाओ मिट गई चिंत पुनी मन आशा, करी दया सतगुरु गुण ताशा, दुख नाठे सुख आए समाए, हील न परी जा गुर फरमाए, इच पुनी पूरे गुर मिले, नानक के जन सुख।

सगल रोग का दिन स्या खाओ। सैज सुभाए बोले हर बाणी, आज पहर प्रभ सुनरो प्राणी। दुख दर्द जम नेड़ न आवे, कहो नानक जो हर गुण गावे। गौड़ी महला पंजवा, पले दिन पले संजोग, जित पेटे पार ब्रह्म निर्जोग। ओ बेला को हों बल जाओ, जित मेरा मन जपे हर नाओ। रहाओ सफल मूरत सफल ओ परी, जित रसना उचरे हर हरी। सफल ओ माथा संत नमस्कार, चरण पुनीत चले हर मार्ग। कहो नानक भला मेरा।

गुरु का शब्द रास मन माहे, नाम सिमर चिंता सब जाहे, बिन भगवंत नाही अन कोए, मारे राखे को सोए रहाओ, गुरु के चरण हृदय उद्धार, अगन सागर जप उतरे पार, गुरु मूरख्यो लाए ध्यान, ईहा ऊहा पावे मान, सगल त्याग गुर शरणी आया, मिटे अंधेसे नान सुख पाया, गौड़ी महला पंजवा, जिस सिमरत दुख सब जाए, नाम रतन वसे मन आए, जप मन मेरे गोविंद की बाणी, साधु जन राम रसन वखाणी, रहाओ इक्कस बिन नाही दूजा कोए, जाकी दृष्ट सदा सुख होए, साजन मीत सखा कर एक, हर हर अक्षर मन में लेख, रव रया सरबत स्वामी, गुण गावे नानक अंतर जामी, गौड़ी महला पंजवा, तै में रचियो सब संसारा, तिस पौ नाही जिस नाम अधारा, पौ ना व्यापे तेरी सरना, जो तुझ पावे सोई करना, रहाओ सोग हरख में आवन जाना, तिन सुख पाया जो प्रभु पाना, अगन सागर महा व्यापे माया, से शीतल जिन सतगुरु पाया, राख ले प्रभु।

सगल कथा के अंतर जामी, करो अरदास अपने सतगुर पास, नानक नाम मिले सतरास। गौड़ी महला पंजवा, कण बिना जैसे थोथर तुखा, नाम भी होन सुने से मुखा, हर हर नाम जपो नित प्राणी, नाम भी होन त्रिग जे बिगानी, रहाओ नाम बिना नाही।

जो कुछ वर्तै सब तेरा पाना, हुक्म बूझै सो सच समाना, कर कृपा दीजै प्रभु दान, नानक सिमरै नाम निधान। गौड़ी मैला पंजवा ताका दर्श पाये वड पागी, जाकी राम नाम लिव लागी, जाके हर वस्या मन माही, ताको दुख सुपने भी नाही। राव सर्व निधान राखे जन माहे, ताके संग किलविक दुख जाहे, जन की महिमा कथि न जाए, पार ब्रह्म जन रहा समाये, कर कृपा प्रभु बिनो सुनी जय, दास की सूर नानक को दी जय। गौड़ी महला पंजवा हर सिमरत तेरी जाए बनाए, सर्व कल्याण वसे मन आए।

का निर्मलमंता सोड उपाव एक टेक रास महापदार्थ अमृत रस चास बिखम सागर ते जन तरे नानक जाको नगर करे गौड़ी महला पंजवा हृदय चरण कमल प्रभ तारे पूरे सतगुर मिल निस्तारे गोविंद गुण गावो मेरे पाई मिल साधु हर नाम से आई रहाओ दुलभ दे होई परवान सतगुर ते पाया नाम निशान हर सिमरत पूरन पद पाया साध संग तय परम मिटाया जत तत देखो तत रह।

चरण कमल हृदय उर तारी, मन तन तन गुर प्राण आधारी, सफल जन्म होवे प्रवान, गुर पार ब्रह्म निकट कर जान, संत तूर पाये वडपागी, नानक गुर पेटत हर सो लिव लागी। गौड़ी महला पंजवा। करे दो कर्म दिखावे होर, राम की दरगे बांदा चोर, राम रमे सोई रामाना, जल तल मैयल एक समाना, रहाओ अंतर बिख मुख अमृत सुनावे, जमपुर बादा चोटा खावे, अनित पर्दे में कमावे विकार, खिन में प्रगट हो है संसार, अंतर साच नाम रस राता, नानक किस कृपाल विदाता। गौरी महला पंजवा। राम रंग कदे उतर न जाए, गुरु पूरा जिस दे बुझाए, हर रंग राता सो मन साचा।

आनंद निवासे राम जना को राम परोसा नाम जपत सब मिट्यो अंदेसा रहाओ साध संग कछ पौ ना पराती गुण गोपाल गाये दिन राती कर कृपा प्रबंधन छोटे चरण कमल की दीनी ओट कहो नानक मन पई प्रतीत निर्मल जस की रे जननीत गौड़ी महला पंजवा हर चरणी जा का मन लागा दुख दर्द प्रमता।

सांस आनंदा जप जप जीवे परमानंदा नाम रास साध संग खाटी कहो नानक प्रभ अपदा काटी गौरी महला पंजवा हर सिमरत सब मिटे कलेश चरण कमल मन में प्रवेश उचरो राम नाम लख बारी अमृत रस पीवो प्रभ प्यारी रहाओ सुख सहज रस महा आनंदा जप जप जीवे परमानंदा काम क्रोध लोभ मद खोए साध के संग किलबित सब टोए कर कृपा प्रभ दीन दयाला नानक दीजे सागर वाला गौरी महला पंजवा जिसका दिया पैने खाए किस क्यों आलस क्यों बने माए खसम विसार आन कम लागे कौडी बदले रतन त्यागे रहाओ प्रभु त्याग लागत अन लोबा दास सलाम करत कत सोबा अमृत रस खावे खान पान जिन दिए तिसे न जाने स्वान कहो नानक हम लून हरामी बख्श ले हो प्रभ अंतरगामी गौरी महला पंजवा प्रभ के चरण मन माए ध्यान सगल तीर्थ मजन स्नान हर दिन हर सिमरन मेरे पाई कोट जन्म की मल ले जाए रहाओ हर की कथा हृदय माए बताए मन बाचत सगले फल पाए जीवन मरण जन्म परवान जाके हृदय वसै भगवान कहो नानक से जन पूरे जिना प्राप्त साधु पूरे गौड़ी महला पंजवा खादा पैन दा भू कर पाए किसनो जो है दूत धर्म राए किस क्यों बेमुख जिन जियो पिंड जीना कोट जन्म पर मैं बहुजूना रहाओ साकत की ऐसी है रीत जो किस तरह सगल विपरीत जियो प्राण जिन मन तन तारिया सोई ठाकुर मनो विसारिया बजे विकार लिखे बहु कागर नानक उदर कृपा सागर पार ब्रह्म तेरी शरणाए बंधन काट करे हरनाए रहाओ दूजा गौड़ी महला पंजवा अपने लोभ को कीनो मीत सगल मनोरथ मुक्त पद जीत ऐसा मीत करो सब कोए जाके बिरथा कोए न होए रहाओ अपने स्वाय हृदय ले तारिया दुख दर्द रोग सगल बिदारिया रसना गीदी बोलत राम पूर्ण होए सगले काम अनेक बार नानक बलिहारा सफल दर्शन गोविंद हमारा गौड़ी महला पंजवा कोट बिगन हिरे खिन माहे हर हर कथा साध संग सुनाहे पीवत राम रस अमृत।

औषध मंत्र तंत्र सब सार करने हार हृदय में तार सब सब परम पजियो पार ब्रह्म कौ नानक अटल ए धर्म गौड़ी महला पंजवा कर कृपा पेटे गुरसोई तित बल रोग न व्यापे कोई राम रमन करण तै सागर करण सूर फारे जम कागर रहाओ सतगुर मंत्र दियो हर नाम ए आसर पूरन पै काम जप तप संयम पूरी वडियाई गुर कृपाल हर पै साई मान मोह खोए गुर परम तेस नानक पसरे पार ब्रह्म गौड़ी महला पंजवा बिखे राज के अंदुला पारी दुख लागे राम नाम सितारी तेरे दास को तुही वड्याई माया मगन नरक ले जाई रहाओ रोग ग्रस्त सितारे नाओ दिख माते का ठौर न ठाओ चरण

0: कर कृपा प्रभ लय निवारे, ऐसा हर रस रमो सब कोए, सर्व कला पूरन प्रभ सोए। रहाओ महातप सागर संसार, प्रभ खिन में पार उतारन हार, अनित बंधन तोरे नहीं जाहे, सिमरत नाम मुक्त फल पाए, उकत स्यान किसके कछ नाहे, कर कृपा नानक गुण गाहे। गौड़ी महला पंजवा, थाती पाई हर को नाम, विकर संसार पूरन सब काम, वड पागी हर कीर्तन गाये, पार ब्रह्म तू देहता पाये। रहाओ हर के चरण हृदय उर्धार, पाव सागर चढ़ उतरे पार, साधु संग करो सब कोए, सदा कल्याण फिर दुख ना होए, प्रेम भगत पज गुणी निधान, नानक दरगे पाये मान। गौड़ी महला पंजवा, जल तल मैयल पूरन हर मीत, ब्रह्म बिन से गाए गुण गीत, उठत सोवत हर संग पहरुआ, जा के सिमरन जम नहीं डरुआ। रहाओ चरण कमल प्रभ हृदय निवास, सगल दुख का होया नास, आशा मान तान तन एक, साचे साकी मन में टेक, महागरीब जन साध अनाथ, नानक प्रभ राखे देहात। गौड़ी महला पंजवा, हर हर नाम मजन कर सूचे, कोट ग्रहण पुन फल मूचे। रहाओ हर के चरण हृदय में बसे, जन्म जन्म के किल विखनते, साध संग कीर्तन फल पाया, जम का मार्ग दृष्ट न आया, मन बच क्रम गोविंद आधार, ताते छुटियो बिक संसार, कर कृपा प्रभ कीनो अपना, नानक जाप जपे हर जपना। गौड़ी महला पंजवा, पौ शरणाई जिन हर जाते, मन तन शीतल चरण हर गाते, कै पंजन प्रभ मन ना बसाही, दरपत दरपत जन्म बहुत जाही। रहाओ जा के हृदय बसियो हर नाम, सगल मनोरथ ताके पूरन काम, जन्म जरा मिर्ग जिस वास, सो समरथ सिमर सास गिरास, मीत साजन सखा प्रभ एक, नाम स्वामी का नानक टेक। गौड़ी महला पंजवा, बार राख्यो हृदय समाल, कार आए गोविंद ले नाल, हर हर नाम संतन कै संग, मंतन राता राम कै रंग। रहाओ गुरु प्रसादी सागर तरिया, जन्म जन्म के किल विख सब हिरिया, शोभा सुरत नाम भगवंत, पूरे गुरु का निर्मल मंत, चरण कमल हृदय में जाप, नानक पेख जीवे प्रताप। गौड़ी महला पंजवा, तन एहो थान गोविंद गुण गाए, कुशल खेम प्रभ आप बसाए। रहाओ विपत तहां जहां हर सिमरन नाही, कोट आनंद जह हर गुण गाही, हर विसरे दुख रोग कनेरे, प्रभ सेवा जम लगे ननेरे, सोवड पागी निचल थान, जह जपिए प्रभ केवल नाम, जह जाइए ते नाल मेरा स्वामी, नानक को मिलिया अंतर जामी। गौड़ी महला पंजवा,
1: जो प्राणी गोविंद त्यावे, पढ़िया अनपढ़िया परम

रूपवंत सो चतुर सियाणा, जिन जन मान्या प्रभ का पाणा, जग में आया सो परवान,

सोल महारस हर अमृत की जय। रहाओ निर्मल उद्दक गोविंद का नाम, मज्जन करत पूरन सब काम। संत संगते गोष्ठ होए।

आज जुबाद प्रगट प्रताप, निंदक मोआ उपज वड ताप, इन मारिया जे रखे न कोए, आगे पाछे मंदी सोए, अपने दास राख।

साज तूर कर सुद मंजाई, अनक जला जे तो वै दे, मैल न उतरे सुद ना ते। सतगुर पेट्यो सदा कृपाल, हर सिमर सिमर कात्या पौ काल। मुकत पुगत जुगत हर नाओ, प्रेम भगत नानक गुण गाओ। गौड़ी महला पंजवा, जीवन पदवी हर के दास। जिन मिलिया आत्म प्रगास, हर का सिमरन सुन मन कानी। सुख पावे हर द्वार प्राणी, रहाओ आठ पैर से आइए गोपाल। नानक दर्शन देख निहाल, गौड़ी महला पंजवा। सांस पाई गुरु गोविंद पाई, पाप पाप दिन से मेरे पाई। रहाओ राम नाम नित रसन बखान, दिन से रोग पय कल्याण। पार ब्रह्म गुण अगम विचार, साधु संगम है निस्तार। निर्मल गुण गावो नित नीत, गई ब्याज उबरे जनमीत। मन बच क्रम

दुष्ट दूत परमेश्वर मारे, जन की कैद रखी करकारे, बादशाह सा सब वस्त्र दीने, अमृत नाम मारस पीने, निरपो होए।

का हर संग राते जम की नहीं त्रास, हर संग राते पूरन आस, हर संग राते दुख न लागे, हर संग राता अंग जागे, हर संग राता सहज कर वसे, हर संग राते परम पौ नसे, हर संग राते मत उत्तम होए, हर संग राते निर्मल सोए, कहो नानक तिनको बल जाए, जिनको प्रभ मेरा बिसरत नाही, गौड़ी मैला पन्नवा, उद्यम कर शीतल मन भये, मार्ग चलत सगल दुख गए, नाम जपत मन पय आनंद, रस गाए गुण परमानंद, खेम पया कुशल कार्य आए, केतत साध संग

अस्थिर पै बसे सुख आसन, गुर प्रसाद नानक सुख बासन। गौरी महला पंजवा, कोट मज्जन तीनो स्नान, लाख अरब खरब दीनो दान। जा मन वस्यो हर को नाम, सगल पवित्र गुण गाए गोपाल। ताप मिटे साधु शरण दयाल, रहाओ बहुत उर्द तप साधन सादे। अनिक लाभ मनोरथ लादे, हर हर नाम रसन आरादे। सिमरत सासत वेद बखाने, जोग ज्ञान सिद्ध सुख जाने। नाम जपते प्रभ सो मन माने, अगाध बोध हर अगम अपारे। नाम जपत नाम हृदय विचारे, नानक को प्रभ कृपा धारे। गौरी महला पंजवा, सिमर सिमर सिमर सुख पाया, चरण कमल गुर हृदय बसाया। गुरु गोविंद।

माई प्रभु की शरण उभरे सब कोए करण कराव पूर्ण सच सोए रहाओ अब मन बसिया करने हारा कै दिन से आत्म सुख सारा कर कृपा अपने जन राखे जन्म जन्म के

राम को बल पूरन पाई, ताके बिरथा ना व्यापे काई। रहाओ जो जो चितवे दास हरमाई, सो सो करता आप कराई। निंदक की प्रभ पत गवाई, नानक हर गुण निरपोगाई। गौड़ी महला पंजवा, उज बल वीर ब्रह्म सुख सागर। गर्त परत गह लेहो अंगुरिया, रहाओ श्रवण ना सुरत, नैन सुंदर नहीं आरत। द्वार रटत पिंगुरिया, दीना नाथ अनाथ, करुणा में साजन नीत।

सगल पदार्थ अष्ट सिद्ध नाम मां रस माए सो प्रसन्न पै केशवा से जन हर गुण गाए मात पिता सुत।

सर्व कल्याण सुख सच पावे रहाओ। बन बन खोजत फिरत बैरागी, बिजले काहू एक लिव लागी, जिन हर पाया सेवड पागी। ब्रह्मादित सन का दुख चाहे, जोगी जति सिद्ध हर आहे। जिसे प्राप्त सो हर गुंगा है, ताकि शरण जिन बिसरत नाही। वद पागी हर संत।

कौ संत मिले वडपागी रहाओ मन अर्पो तन राखो आगे मन की मत मोह सगल त्यागी जो प्रभु की हर कथा सुनावे अंदिन फिरो तिस पिछे विरागी पूरब कर्म अंकुर जब प्रगटे पेटियो पुरुष रसिक बैरागी मिट्यो अंधेर मिलत हर नानक जन्म जन्म की सोई जागी गौड़ी महला पंजवा निकसरे पंखी।

है कोई संत मिला वे नेरा रहाओ। सेवा करो दास दासन की अनक पांच किस करो निहोरा। तुला तार तोले सुख सगले बिन

कोई ऐसा संत सहज सुख दाता मोहे मार्ग दे बताई रहाओ। अंतर अलख न जाई लखिया विच पर्दा हो मैं पाई माया मोह सबो जग सोया तिहु परम कहो क्यों जाई। एका संगत इकत गृह बसते मिल बात न करते।

पाए, अंत उपाव करे नहीं पावे, बिन सतगुर शरण आए। जिनके बंधन काटे सतगुर, तिन साध संगत लिव लाए। पंच जना

खेद करें और बहुत संतावे हैं। आयो शरण तुहारे कर कर हारो अंत बहु पाती छोड़े कतहु नाही। एक बात सुनता की ओटा साध संग मिट जाहे कर कृपा संत मिले मोहतिन के तीरज पाया संति मंत दियो मोह निरपो गुर का शब्द कमाया जीत ले ओए महादुखादी सहज सुहेली बाणी कहो नानक मन पया परगासा पाया पद निर्वाणी। गौड़ी महला पंजवा ओ अविनाशी राया निर्भो संग तुम्हारे बसते इहो धर्म कहाँ ते आया रहाओ एक महल तू हुए असारो एक महल निवानो एक महल तू आपे।

रोजाने जैसा पेट करावे बाजीगर ओ तैसो ही साज आने अनक कोठरी बहुत पाप करिया आप हुआ रखवारा जैसे महल राखे तैसे रहना क्या हो करे बिचारा जिन कुछ किया सोई जाने जिन ए सब विद साजी कहो नानक अप

ज्यों किरकह हरियाओ पशुआ रहाओ। जो जाने तू अपने काजे सो संग ना चाले तेरे पशुआ। नांगो आयो नाग सुदासी फेर फिरो अरकाल ग्रसुआ। एक देख रे कसुम की लीला राज माच तिन्हों लोह।

जो मोहयो उन मोहनी बाला उसते कटे नाही रुच चसुआ जग ऐसा मोहे गुरह दिखायो तो शरण पर्यो तज गर्भ सुआ मार्ग प्रभ को

सदन सुहेले सर्व सुखा मैं तुझते पाए मेरे ठाकुर अगे अतोले वरन ना साको तुमरे रंगा गुण निधान सुख दाते अगम अगोचर प्रभ अविनाशी पूरे गुरते जाते प्रम्पो काट किए ने केवल जब के हूँ मैं मारी जन मरण को चू

महिमा पासी केतक गनिए जन पार ब्रह्म रंग राते सुख सहज आनंद तिना संग उन संसार अवर न दाते। जगत उदाहरण से ही आए जो जन दर्श प्यासा उनकी शरण परे सो तरिया संत संग पूर्ण आशा।

पै इकतरा एक के वस किए दस बैरागन आज्ञाकारी तब निर्मल जोगी थी परम जराए चराई विपूता पंथ एक करके

ऐसा जोगी वद पागी पे तै माया के बंधन काटे, सेवा पूज करो तिस मूरत की नानक तिस पग चाटे। गौड़ी महला पंजवा। अनूप पदार्थ नाम सुनो सगल त्याय ले मीता, हर औषध जा को गुर दिया ताके निर्मल चीता। रहाओ अंधकार मिट्यो किन तंते गुर शब्द दीपक पर दासा।

रंगा पूरन हुई मन की आशा गुरु के त्योहर रंगा नाम खजाना पगती पाया मन तन तृप्त

प्रवरासे पोत पोत भगतन संग जोरी प्रयो प्रयो नाम तेरा दर्शन चाहे जैसे दृष्ट ओ चंद चकोरी राम संत में भेद किछ नाही एक जन कई में लाख करोरी जा कहिए प्रगट प्रभु हुआ हम दिन कीर्तन रसन रमोरी तुम समरथ अपार अत ऊंचे सुखदाते प्राण अधोरी नानक को प्रभु की जय कृपा उन संतन के संग संगो।

हर नाम मेरा मन जाके संत प्रसाद नान खर पेटे मन तन शीतल त्राके गौरी महला पंजवा सह समायो देव मोको सतगुर।

भयो प्रगास सर्व उजियारा, गुरजान मने प्रगटायो, अमृत नाम पियो मन सत्या अनकै ठहरायो। मान आ गया सर्व सुख पाए, दुखे ठाउ गवायो, जो सो प्रसन्न पे प्रभु।

जिन तार ब्रह्मंड खंड हर ताको नाम जपी जय रे रहाओ मन की मत त्यागो हर जन हुकम बूझ सुख पाए रे जो प्रभ करे सोई फल मानो सुख दुख ओही त्याए रे कोट पतित उधारे खिन में करते बार न लागे रे दीन दर्द दुख पंजन स्वामी जिस पावे तिसे निवाजे रे

और सगल कथा प्रतिपारे रहाओ महा कष्ट काते खिन पीतर रसना नाम चितारे शीतल सांत सुख हर सरणी जलती अग्र निवारे गर्भ कुंड नरक के राख पव जल पार उतारे चरण कमल आराधत मन में जम की त्रास बिदारे पूरन पार ब्रह्म परमेश्वर ऊंचा अगम अपारे गुण गावत त्यावत सुख सागर जुए जन्म न हारे काम क्रोध लोभ मोहे मन लीनो निर्गुण के दातारे कर कृपा अपनो।

अमित जुगत नहीं पाया, गुर चाकर ले लाया, मारे पंच दिखा दिया, गुर कृपा के दल सा दिया, बख्शीश बजो मिल एक ना।

तेरे ओला नाम का, अवर जे कर्म करावनो तिन में पव है जाम का रहाओ, अवर जतन नहीं पाये वदे पाग हर क्या है।

तू गुर प्रसाद कर राज योग, हर रस जिन जन चाखिया ताकि कृष्णा लाखिया, हर विश्राम निध पाया सो

गहीर साध संगत मिल हर रवे हैं से गुण गहीर रहाओ जा को गुरमुख हृदय बुद्ध ताके कर तल नव निध सिद्ध जो जाने हर पब तनी किछ नाही ताके कमी करने हार पछानिया सर्व सुख रंग माया हर तन जाके गृह वसै कहो नानक तिन संग दुख नसै।

अज्ञानी मानुक पया जो नाही सो लो रहन अंधारी कारिया कवन जुगत जित पोरे प्रम तो हारिया।

सुख भय, अकाल पुरख अगाध बोध, सुनत जसो कोट अग खय, कृपा निज प्रभ मया तार, नानक हर हर नाम लय, गौड़ी पूर्वी महला पंजवा, मेरे मन शरण प्रभु सुख पाए, जा दिन बिसरे प्राण सुख दाता, सो दिन जात अजाए, रहाओ एक रैन के पावन तुम आए, बहु जुग आस बदाए, गृह मंदिर संपे जो दिसे, जो तरवर की छाए, तन मेरा संपे सब मेरी बाग मिलख सब जाए, देवनहारा बिसरियो ठाकुर, चिन्मय होत पराए।

सुंदर नारी अनेक प्रकारी पर गृह भिखारी बुरा पला नहीं सुझिए, बुरा पला नहीं सुझिए। अनेक बंधन माया परमत परमाया गुण निध नहीं जाया मन बिछे ही मैं लुझिए। जा को रे कृपा करे जीवत सोई मरे।

0: मैं कैसो कह पुकार नाम कह सुन रे मना कर कीर्तन होए उधार
1: राग गौड़ी माला।

किया। सतगुरु सब समाया रहाओ, लाठी भूख त्रिशन सब लाठी, चिंता सगल बिसारी, कर मस्तक गुर पूरे तरयो, मन जीतो जग सारी। त्रिप अधाए रहे रिद अंतर, दोलन ते अब चूके, अखुट खजाना सतगुरु दिया, तोट नहीं रे मुके। अचरज एक सुनो रे पाई, गुर ऐसी बूझ बुझाई, लाए परदा ठाकुर जो पेटियो, तो बिसरी तात पर आई। कहो ना जाई एहो अचंबो, सो जाने जिन चाखिया, कहो नानक सच पै बिगाता, गुर निधान हृदय ले राखिया। गौड़ी माला महला पंजवा, उबरत राजा राम की सरणी, सर्व लोक माया के मंडल, गिर गिर परते तरणी रहाओ, शास्त सिमरत वेद विचारे, माँ पुरखन यूं कहया, बिन हर भजन नाही निस्तारा, सूख न किन्हू लया। तीन पवन की लखनी जोरी, बूझत नाही लहरे, बिन हर भगत कहाँ स्थित पावे, फिर तो पहरे पहरे। अनक बिलास करत मन मोहन, पूरन होत न कामा, जलतो कभू न बूझत, सगल बिरसे बिन नामा। हर का नाम जपो मेरे मीता, यह सार सुख पूरा, साध संगत जन्म मरण निवारे, नानक जन की तू।

किछ इन्हें कमानो जब तब कछू न सादा दैदिस ले इहो मन दौरायो कवन कर्म कर बांदा मन तन तन भूम का ठाकुर हों इसका इहो मेरा परम मोह कर पूजत नाही ए पैखर पे पैरा तब इहो कहां कमावन परया जब इहो कछु ना होता जब एक निरंजन निरंकार प्रभ सब किछ आपे करता अपने कर्तव्य आपे जाने जिन इहो रचन रचाया कहो नानक करणहार है आपे सतगुरु परम चुकाया गौड़ी माला मैला पंजवा हर दिन अवर क्रिया बिरथे जब तब संजम कर्म कमाने एह ओरे मुँह से रहाओ बर्त नेम संजम में रहता तिनका आद न पाया आगे चरण और है पाई उहां कामना आया तीरथ नाए अर करनी प्रमता आगे ठौर न पावे उहां कामना आवे एह बिद ओ लोगन ही पति आवे चतुर्वेद मुख बचनी उचरे आगे महल न पाये बूझे नाही एक सुदाकर ओ सगली चाक चखाई है नानक कह तो यो बिचारा जे कमावे सो पार ग्रामी गुर से वो अर नाम त्यावो त्यागो मनो गुमानी गौड़ी माला पन्नवा माधो हर हर हर मुख कही है हम ते कछु न होवे स्वामी ज्यों राखो त्यों रही है रहाओ क्या किस करे के करने हारा क्या इस हाथ बिचारे जित तुम लावो तित ही लागा पूरन खत्म हमारे करो कृपा सर्व के दाते एक रूप लिव

पूजा अर्चा बंदन देवा जियो, दासन दास नाम जप लेवा जियो, बिनो ठाकुर पै कही है जियो, इच पुन्नी मेरी मन तन हरिया जियो, दर्शन देखत सब दुख पर हरिया जियो, हर हर नाम जपे जप तरिया जियो, एहो अजर नानक सुख सही है जियो। गौड़ी माज महला पंजवा, सुन सुन साजन मन विच प्यारे जियो, मन तन तेरा एहो जियो पेवारे जियो, विसरना ही प्रभ प्राण आधारे जियो, सदा तेरी शरण आई जियो, जिस मिले मन जीवे पाई जियो, गुरु प्रसादी सो हर हर पाई जियो, सब किछ प्रभ का प्रभ किया जाई जियो, प्रभ को सद बल जाई जियो, एहो निधान जपै वट पागी जियो।

पूरा पाया, सब दुख मिटाया जियो, आठ पैर गुण गाया जियो, रतन पदार्थ हर नाम तुम्हारा जियो, तू सच्चा साहु भगत मन जारा जियो, हर तन रात सच

जोर तुम्हारे सुख बसां सत शब्द निशान राव सबे गल्ला जातिया सुन के चुपकिया कद ही सुरत न लदिया माया मोहड़िया दे बुजार सारता से अखी जिखड़िया कोई जे मूर्ख लोभिया मूल न सुनी कहा इकस दो चहु क्या गणी सब इकत साध मुठी इक अद नाए रसियड़ा का विरली जाए उठी भगत सच्चे दर सोंदे आनंद करे दिन रात रंग रते परमेश्वर है जन नानक तिन बल जात।

कृत सोजी मन सोए अंचल गह के साध का तरना इव संसार पार ब्रह्म आराधी है उदरे सब परवार साजन बंग सो मित्र सो हर नाम हृदय दे अवगुण सब मिटाए के पर उपकार करे माल खजाना थ्यो कर हर के चरण निदान नानक जाच

साधो मन का मान त्यागो, काम क्रोध संगत दुर्जन की ताते एनस पागो, रहाओ सुख दुख दोनों समकर जाने और मान अपमाना, हर सोगते रह अतीता तिन जग तत पछाना, उस तत निंदा दो त्यागे खोजे पद निर्वाणा, जन नानक एव खेल कठन है किन्हों गुरमुख जाना, गौड़ी महला नावा साधो रचना राम बनाई, एक दिन से एक अस्थिर माने अचरज लख्यो न जाई, रहाओ काम क्रोध मोह बस कानी, हर मूरत बिसराई, झूठा तन सा

चरणाई गौड़ी महला नावा। प्राणी को हर जस मन नहीं आवे, एनिस मगन रहे माया में, कहो कैसे गुण गावे रहाओ, पूत मीत माया ममता स्यों, ए विद आप बंधावे, मिर्ग तृष्णा ज्यों चूठो इव जग, देखता उठतावे, फुगत मुकत का

ओ माया पुन भजन राम चित लावो, नानक कहत मुकट पंथ एहो, गुरुमुख होए तुम पावो। गौड़ी मैला नामा को माई पूलियो मन समझावे, वेद पुराण साध मग सुन कर निमक न हर गुण गावे। रहाओ दुर्लभ दे पाए मानस की बिरसा जन्म सिरावे, माया मोह महा संकट बन ता क्यों रुच उपजावे। अंतर बाहर सदा संग प्रभ ता क्यों निहो न लावे, नानक मुकुट ताहि तुम मानो जे कट राम समावे। गौड़ी महला नावा साधो राम शरण विश्रामा, वेद पुराण पढ़े को ए गुण सिमरे हर को नामा। रहाओ लोभ मोह माया ममता कुन औ बिकियन की सेवा, हरख सोग परस है जे नाहिन सो मूरत है देवा। सुर्ग नरक अमृत बिक ए सब क्यों कंचन अर पैसा, उस्तत निंदा ए समझा कह लोभ मोह फुन तैसा। दुख सुख ए बांधे जे नाहिन ते तुम जानो ज्ञानी, नानक मुक्त ताहे तुम मानो ए बिद को जो प्राणी। गौड़ी महला नावा मन रे कहां पयो तै बौरा, एनक औद कटे नहीं जाने पयो लोग संघौरा। रहाओ जो तन ते अपनो कर मान्यो, अर सुंदर गृह नारी इनमें कट से रोरे नाहिन देखो सोच बिचारी। रतन जन्म अपनो तै हारियो गोविंद दत्त नहीं जानी, निमख ना लीन पयो चरणन त्यों बिरसा औद सिरानी। कहो नानक सोई नर सुखिया राम नाम गुण गावे, और सगल जग माया मुहिया निरपय पद नहीं पावे। गौड़ी महला नावा नर अचेत पाप से डर रे, दीन दयाल सगल पै पंजन शरण ताहे तुम पर रे। रहाओ वेद पुराण जात गुण गावत ताको नाम ही है मो तर रे, पावन नाम जगत में हर को सिमर सिमर कसमल सब हर रे। मानस दे बौर ने पावे कछु उपाओ मुक्त का कर रे, नानक कहत गाय।

निज सिद्ध निर्मल नाम विचार पूरन पूर रहया बिखमार त्रिकुटी छूटी बिमल मजार गुर की मत जिए आई कार। इन विद राम रमत मन मानिया ज्ञान अंजन गुर शब्द पछानिया रहाओ एक सुख मानिया सहज मिलाया निर्मल बाणी परम चुकाया लाल पहे सूहा रंग माया नगर पही दिख ठाक रहाया उलट पही जीवत मर जा गया शब्द रवे मन हर क्यों ला गया रस संग्रह दिख पर हर त्या गया पाए बसे जम का पौ पा गया साज रहे बादंग अंकारा चित हर क्यों राता हुक्म अपारा जात रहे पत के आचारा दृष्ट पई सुख आ

सागो पाए भगत करी राचो हर नाए सिखिया दीखिया भोजन पाओ हुक्म संजोगी निज कर जाओ गर्भ गतं सुख आत्म त्याना जोत पई ज्योति माए समाना लिखत मिटे नहीं शब्द निशाना करता करना करता जाना न पंडित न चतर सियाना न फूलो न परम फुलाना कथो न कथनी हुक्म पछाना नानक गुरमुख सह समाना गौड़ी ग्वारे री महला पहला मन कुंचर काया उद्याने गुर अंकस सच शब्द निशाने राज द्वारे शोभ सुमाने चतुराई ने चीनिया जाए बिन मारे क्यों कीमत पाए रहाओ कर में अमृत तप कर ले नन्ना कार ना कोई करे राखे आप वड्याई दे नील अनिल अगन इत थाई जल निवरी गुर बूझ बुझाई मन दे लिया रहत गुण गाई जैसा कर बाहर सो तैसा बैस गुफा में आँखों कैसा सागर डूगर निरपो ऐसा मुए को कहो मारे कौन निडरे को कैसा डर कवन शब्द पछाने तीने पौन जिन कहया तिन कहन वखानिया जिन बूझिया तिन सहज पछानिया देख विचार मेरा मन मानिया कीरत सूरत मुक्त इक नाई कहीं निरंजन रहा समाई निज कर व्याप रहा निज ठाई।

सोए। कृष्णा अगन शब्द बुझाए, दूजा परम सहज सुभाए, गुरुमति नाम हृदय वसाए, साची बाणी हर गुण गाए। तन में साचो गुरमुख पाओ, नाम बिना नाही निज खाओ, प्रेम परायण प्रीतम राओ, नदर करे ता बूझे नाओ। माया मोह सर्व जंजाला, मन मुख कुचील कुछ तेज कराला, सतगुरु सेवे चूके जंजाला, अमृत नाम सदा सुख नाला। गुरमुख बूझे एक लीलाए, निज कर वासे साज समाए, जमन मरना ठाक रहाए, पूरे गुर के ए मत पाए। कथनी कथो ना आवे और, गुर कुछ देखिया ना ही दर होर, दुख सुख पाने तिसे रजाए, नानक लीज कह लिगलाए। गौड़ी महला पहला, दूजी माया जगत चितवास, काम क्रोध

तरण गगन ने देखो दोए नारी पुरुष सबाई लोए रव सस देखो दीपक उजियाला सर्व निरंतर प्रीतम बाला कर कृपा मेरा चित लाया सतगुरु मोको एक बुझाया एक निरंजन गुरुमुख जाता दूजा मार शब्द पछाता एको हुक्म वर्त सब लोई एक से सब ओपत होई राह दोवें खसम एको जान गुर के शब्द हुक्म पछाण सगल रूप वर्ण मन माही कहो नानक एको सालाही गौड़ी महला पहला अध्यात्म कर्म करे सा साचा मुक्त पेड़ क्या जाने काचा ऐसा जोगी जुगत विचार है पंच मार साच पुरधार है रहाओ जिसके अंतर साच वसावे जोग जुगत की कीमत पावे राम सस एको गृह उद्यान है करनी कीरत कर्म समान है एक शब्द एक पिछला मांगे ज्ञान ध्यान जुगत फट जागे पैरच रहे ना बाहर जाए कीमत कौन रहे लिवलाए आपे मेले परम चुकाए गुर प्रसाद परम पद पाए गुर की सेवा शब्द विचार हमें मारे करनी सार जब तब संजम पाठ पुराण कहो नानक अपरम परमान गौरी महला पहला हिमा गही व्रत शील संतोखं रोग ना व्यापे ना जम दोखं मुक्त पाए प्रभ रूप ना देखं जोगी को कैसा डर होए रूख बिरख गृह बार सोए रहाओ निरपौ जोगी निरंजन त्यावे अंदिन जागे सच विवलावे सो जोगी मेरे मन पावे सो जोगी मेरे मन पावे काल जाल ब्रह्म अग्नि जारे जरा मरण गत गर्व निवारे आप तरह पितरी निस्तारे सतगुरु सेवे सो जोगी होए पैरच रहे सो निरपो होए जैसा सेवे तैसो होए नर नहीं केवल निरपो नाओ अनाथे नाथ करे बल चाओ पुनरप जन्म नाही गुण गाओ अंतर बार एक हो जाने गुर के शब्दे आप पछाने साचे शब्द दर निशाने शब्द मरे तिस निज कर वासा आवे ना जावे चूके आसा गुर के शब्द कमल पर गासा जो दिसे तो आस निराशा काम क्रोध बिक भूख पे आसा नानक बिरले मिले उदासा गौरी महला पहला ऐसो दास मिले सुख होई दुख विसरे पावे सत सोई दर्शन देख पई मत पूरी अखट मज्जन चरने तूरी रहाओ नेत्र संतोखे एक लिव तारा जेवा सूची हर रसारा सत करनी अब अंतर सेवा मंत्र पास्या अलख अपेवा जय जय देखो तैसे साचा दिन बूझे जगरत जग काचा गुर समझावे सोजी होई गुरमुख बिरला बूझे कोई कर कृपा राखो रखवाले बिन बूझे पशु कहे बेताले गुर कहया अवर नहीं दूजा किस कहो देख करो अन पूजा संत हेत प्रभ त्रिपवन तारे आत्म चीन है सो तत विचारे साच हृदय सच प्रेम निवास प्रणवत नानक हमता के दास गौड़ी मेला पहला ब्रह्म गर्भ किया नहीं जानिया वेद की विपत पड़ी पछतानिया जह प्रभ सिमरे तही मन मानिया ऐसा गर्भ बुरा संसार है जिस गुर मिले तिस गर्भ निवार है रहाओ बल राजा माया अंकारी जगन करे बहु पार अपारी बिन गुर पूछे जाए प्यारी हरी चंद दान करे जस लेवे बिन गुर अंक ना पाए अपेवे आप पुलाए आपे मत देवे दुर्मत हरनाथ दुराचारी प्रभ नारायण गर्भ परहारी प्रहलाद उधारे कृपा तारी पूलो रावण मुगद अचेत लूटी लंका सीत समेत गर्भ गया बिन सतगुर हेत सहस बाहो मद कीट में खासा हरनाकस ले नखो विदासा दैत संगारे बिन भगत अभ्यासा जरा संद काल जमुन संगारे
रकत बीज काल नेम बिदारे दैत संगार संत निस्तारे आपे सतगुर शब्द विचारे दूजे पाए दैत संगारे गुरमुख साच पगत निस्तारे बूढ़ा दुर्योधन पत खोई राम न जानिया करता सोई जन को दुख पचे दुख होई जन में जय गुर शब्द न जानिया क्यों सुख पावे परम पुलानिया इस तिल पूले बौर पछतानिया कंस के चांडूर ना कोई राम ना छीनिया अपनी पत कोई बिन जगदीश ना राखे कोई बिन गुर गर्भ ना मेटिया जाए गुरमत धर्म तीरज हर नाए नानक नाम मिले गुण गाए गौड़ी महला पहला सोआ चंदन अंक चढ़ावो पाठ पटंबर पहर हटावो बिन हर नाम कहाँ सुख पावो क्या पहरो क्या ओट दिखावो बिन जगदीश कहाँ सुख पावो रहाओ कानी कुंडल गल मोतियन की माला लाल निहाली फूल गुलाला बिन जगदीश कहाँ सुख पाला नैन सलोनी सुंदर नारी खोर सिगार करे अति प्यारी बिन जगदीश पजे नित खुआरी दर कर महला सेज खाली एनक फूल बिछावे माली बिन हर नाम सो देह दुखाली हैवर गैवर नेजे वाजे लक्कर नेब खवासी पाजे बिन जगदीश चूठे दिवाजे सिद्ध कहावो रिद सिद्ध बुलावो ताज कुल है सिर खतर बनावो बिन जगदीश कहाँ सच पावो खान मलूक कहावो राजा अबे तबे कूड़े है पाजा बिन गुर शब्द ना सवरस काजा हो में ममता गुर शब्द विसारी गुरमत जानिया हृदय मुरारी प्रणवत नानक शरण तुम्हारी गौड़ी महला पहला सेवा एक ना जानत अवरे पर पंच ब्याज त्यागे कवरे पाय मिले सच साचे सचरे ऐसा राम भगत जन होई हर गुण गाय मिले मल तोई रहाओ ऊंदो कवल सगल संसार है दुर्मत अग्न जगत पर जा रहे सो उभरे गुर शब्द विचार है प्रिंग पतंग कुंचर अर मीना मृग मरे सह अपना कीना तृष्णा रात तत नहीं दीना काम चिते कामन हितकारी क्रोध विनाश है सगल विकारी पत मत खोवे नाम विसारी पर कर चीत मन मुख डोलाए गल जेवरी तंदे लपटाए गुरमुख छूटस हर गुण गाए जो तन विधवा पर को दे काम दाम चित पर वसे बिन फिर त्रिपत न कभू होई पर पर पोथी सिमरत पाठा वेद पुराण पढ़े सुन साटा बिन रस राते मन बौ नाटा ज्यो चात्रिक जल प्रेम प्यासा ज्यो मीना जल माहे उलासा नानक हर रस की तृप्तासा गौड़ी महला पहला हट कर मरे ना देखे पावे।

वेश करे बहु पसंद लगावे, नाम विसार बहुर पछतावे। तू मन हर जियो तू मन सुख, नाम विसार सह जम दुख। रहाओ चोवा चंदन अगर कपूर, माया मगन परम पद दूर। नाम विसार है सब कूड़ो कूर, नेजे वाजे तख सलाम। अद की तृष्णा व्यापे काम, बिन हर जाचे भगत ना नाम। वाद अहंकार नाही प्रभ मेला, मन दे पावे नाम सुहेला। दूजे पाए अज्ञान दुहेला, बिन दम के सौदा नहीं हाट। बिन

जिसको वाह वाह जे शब्द सुनावे, जिसको वाह वाह जे मेल मिलावे, वाह वाह जिसको जिसका इहो जियो, गुरु शब्द जी मत अमृत पियो, नाम वडाई तुद पाने दियो, नाम बिना क्यों जीवा माए, अनदिन जपत रहो तेरी शरणाए, नानक नाम रते पत पाए, कौड़ी मैला पहला हो मैं करत देखी नहीं जानिया, गुरुमुख भगत बिरले मन मानिया, हो करत नहीं सच पाई है, हो मैं जाए परम पद पाई है, रहाओ हो मैं कर राजे बहुत आवे, हो मैं खपे जन्म मर आवे, हो मैं निवरे गुर शब्द विचार है, चंचल मत त्यागे पंच संगार है, अंतर साच सहज कर आवे, राजन जान परम गत पावे, सच करनी गुर परम चुकावे, निरपो के करतारी लावे, हो कर मरना क्या पावे, पूरा गुर पेटे सोच अगर चुकावे, जेती है तेती क्यों नाही, गुरमुख ज्ञान पेट गुण गाही, हो मैं बंधन बंद पवावे, नानक राम भगत सुख पावे, गौरी मैला पहला प्रथमे ब्रह्मा काले करे आया, ब्रह्म कमल पयाल न पाया, आज्ञा नहीं लीनी परम पुलाया, जो उपजे सो काल संगारिया, हम हर राखे गुर शब्द विचारिया, रहाओ माया मोहे देवी सब देवा, काल न छोड़े बिन गुर की सेवा, ओ अविनाशी अलख पेवा, सुल्तान खान बादशाह नहीं रहना, नामो पूले जम का दुख सहना, मैं पर नाम ज्यों राखो रहना, चौधरी राजे नहीं किसे मुकाम, सा मरे संचे माया दाम, मैं तन जी जय हर अमृत नाम, रैयत मेहर मुकद

सेवा करें ठाकुर नहीं दिस है, पोखर नीर विरोली है, माखन नहीं दिस है। इस पद जो अर्थाए ले सो गुरु हमारा, नानक की ने आपको सो अपर अपारा, सब आपे आप वर्तदा आपे परमाया, गुर कृपा ते बूझिए सब गम समाया।

मन का सूतक दूजा भाओ, परने पूले आवो जाओ, मन सूतक कवे न जाए, जिचर शब्द न पीजे हर कहनाए राव। सबो सूतक जेता मो आकार, मर मर जमे वारो वार, सूतक अग्न पौने पानी माहे, सूतक भोजन जेता किस खाए, सूतक कर्म न पूजा होए, नाम रते मन निर्मल होए, सत गुर सेवे सूतक जाए, मरे न जन्मे काल न खाए, सातक सिमरत सोध देखो कोए, बिन नावे को मुक्त न होए, जुग चारे नाम उत्तम शब्द विचार, कल में गुरमुख उतरत पार, साचा मरे न आवे जाए, नानक गुरमुख रह समाए, गौड़ी मैला तीजा, गुरमुख सेवा प्राण अधारा, हर जियो राखो हृदय उर्धारा, गुरमुख सोबा सात द्वारा, पंडित हर पर तजो विकारा, गुरमुख पौजल उतरो पारा, रहाओ गुरमुख विचो हो मैं जाए, गुरमुख मैल न लागे आए, गुरमुख नाम वसे मन आए, गुरमुख कर्म कर्म सच होई, गुरमुख अहंकार जलाए दोई, गुरमुख नाम रते सुख होई, अपना मन प्रबोधो बूझो सोई, लोक समझावो सुने न कोई, गुरमुख समझो सदा सुख होई, मनमुख डंफ बहुत चतुराई, जो किस कमावे सो थाए न पाई, आवे जावे खौर न काई, मनमुख कर्म करे बहुत अभिमाना, बग जो लाए बहन चाना, जम पकड़िया तभी पछताना, बिन सतगुरु सेवे मुक्त न होई, गुर प्रसादी मिले हर सोई, गुरदाता जुग चारे होई, गुरमुख जात पत नाम।

राम पढ़ो मन करो विचार, गुर प्रसादी मैल उतार रहाओ। वाद विरोध ना पाया जाए, मन तन फीका दूजे पाए, गुर के शब्द सच लिवलाए। हो मैं मैला यो संसारा, नित तीर्थ नावे ना जाए अहंकारा, बिन गुर पेटे जम करे खुआरा। सो जन साचा जे हो मैं मारे, गुर के शब्द पंच संगारे, आप तरे सगले कुल तारे, माया मोह नट बाजी पाई, मन मुख अंध रहे लपटाई, गुरमुख अलिपत रहे लिवलाई। बहुते पेख करे पेख तारी, अंतर तिसना फिरे अंकारी, आप ना चीने बाजी हारी, कापड़ पहर करे चतुराई, माया मोह अत परम पुलाई, बिन गुर सेवे बहुत दुख पाई। नाम रते सदा बैरागी, ग्रही अंतर साच लिव लागी, नानक सतगुर सेवे सेवड पागी। गौड़ी महला तीजा, ब्रह्मा मूल वेद अभ्यासा, तिस्ते उपजे देव मोह प्यासा, त्रै गुण परमे नाही निज करवासा, हम हर राखे सतगुरु मिलाया, अनदिन भगत हर नाम दृढ़ाया। रहाओ त्रै गुण बाणी ब्रह्म जंजाला, पढ़ वाद वखाणे सिर मारे जमकाला, तत नाचीने बन्ने पंड पराला, मनमुख अज्ञान को मार्ग पाए, हर नाम विसारिया बहु कर।

परम पुनाए मनमुख अंधे सदा बिख खाए जम डंड सहे सदा दुख पाए जमुआ ना जो है हर की शरणाई हौ मैं मार सच लिवलाई सदा रहे हर नाम लिवलाई सतगुर सेवे से जन निर्मल पवित्ता मन स्यो मन मिलाए सब जग जीता इन विद कुशल तेरे मेरे नीता सतगुरु सेवे सो फल पाए हृदय नाम विच्चों आप गवाए अनहद बाणी शब्द बजाए सतगुरु ते कवन कवन नासी।

बंधन न टूटे मुक्त न पाए, मुक्त दाता सतगुरु जुगमाए, गुरुमुख प्राणी परम गवाए, सहज तुन उपजे हर लिव लाए रहाओ। त्रै गुण काले की सिरकारा, नाम न चेते उपावन हारा, मर जमे फिर वारो वारा, अंधे गुरु ते परम न जाई, मूल छोड़ लागे दूजे पाई, बिखा माता बिख माए समाई, माया तर मूल जंत्र परमाए, हर जियो विसरिया दूजे पाए, जिस नजर करे सो परम गत पाए, अंतर साच बार साच वर्ताए, साच न छपे जे को रखे छपाए, ज्ञानी बूझे सह सुबाए, गुरुमुख साच रहा लिवलाए, हों मैं माया शब्द जलाए, मेरा प्रभ साचा मेल मिलाए, सतगुरु दाता शब्द सुनाए, तावत राखे ठाक रहाए, पूरे गुरते सोजी पाए, आपे करता सृष्ट सिर्ज जिन गोई, तिस बिन दूजा अवर न कोई, नानक गुरमुख बूजे कोई, गौड़ी महला तीजा, नाम अमोलक गुरमुख पावे, नामो सेवे नाम सह समावे, अमृत नाम रसना नित गावे, जिसनो कृपा करे सो हर रस पावे, अंधिन हृदय जपो जगदीसा, गुरमुख पावो परम पद सुखा रहाओ। हृदय सुख पया प्रगास, गुरमुख गावे सच गुण दास, दासन दास नित होवे दास, गृह कुटुंब मैं सदा उदास, जीवन मुक्त गुरमुख को होई, परम पदार्थ पावे सोई, त्रै गुण मेटे निर्मल होई, सहजे साथ मिले प्रभ सोई, मोह कुटुंब स्यों प्रीत न होए, जा हृदय वस्या सच सोए, गुरमुख मन बेदिया अस्थिर होए, हुकम पचाने बूझे सच सोए, तू करता मैं अवर न कोए, तुझ सेवी तुझ ते पत होए, कृपा करें गावा प्रभ सोए, नाम रतन सब जग में लोए, गुरमुख बाणी मीठी लागी, अंतर बिकसे अंधिन लिव लागी, सहजे सच मिलिया प्रसादी, सतगुर पाया पूरे वड पागी, हों मैं ममता दुर्मत दुख नास, जब हृदय राम नाम गुणतास, गुरमुख बुद्ध प्रगति प्रभ जास, जब हृदय

सतगुर ते जो मोह फेरे ते वे मुख बुरे दिसन अंजन बदे मारियन फिर वेला ना लहन हर हर राखो कृपा तार सतसंगत मेलाए प्रभ हर हृदय हर गुणसार रहाओ से भगत हर पाव दे जो गुरमुख पाए चलन आप छोड़ सेवा करन जीवत मोए रहन जिसदा पिंड प्राण है तिसकी सिरकार ओहो क्यों मनो विसारी है हर रखिए हृदय तार नाम मिले पत पाई है नाम मने सुख होए सतगुर के नाम पाई है कर्म मिले प्रभ सोए सतगुर ते जो मोह फेरे ओए प्रम दे ना टिकन तरत असमान ना चलई विच विस्ता पहे पचन तिहो जग परम पुलाया मोट गौली पाए जिना सतगुर पेटिया तिन नेड़ ना पिटै माए सतगुर सेवन सो सोहणे होमै मैल गवाए शब्द रते से निर्मले चलने सतगुरु पाए हर प्रभ दाता एक तू आपे बख्श।

मन करहला गुरु गोविंद समाल रहाओ, मन करहला विचारिया मन मुख फाथिया महाजाल, गुरुमुख प्राणी मुक्त है हर हर नाम समाल, मन करहला मेरे प्यारिया सत्संगत सतगुर पाल, सत्संगत लग हर त्याये हर हर चले तेरे नाल, मन करहला वड पादिया हर एक नजर निहाल, आप छाए छुट्टी है सतगुर चरण समाल, मन करहला मेरे प्यारिया विच देही जोत समाल, गुरु नौ निज नाम विखा लिया हर दात करी दयाल, मन करहला तू चंचला चकराई छड़ विकराल, हर हर नाम समाल तू हर मुक्त करे अंतकाल, मन करहला बड पागिया तू ज्ञान रतन समाल, गुर ज्ञान खड़ग हत तारिया जम मारे अड़ा जम काल, अंतर निधान

जब यो मन में करत गुमाना तब यो बावर फिरत बिगाना जब यो हुआ सगल की रीना ताते रमैया कट कट चीना सहज सुहेला फल मस्कीनी सतगुर अपने मोहे दान दीनी रहाओ जब किसको यो जान समंदा तब सगले इस मेले फंदा मेर तेर जब इन्हें चुकाई तांते इस संग नहीं बहराई जब इन अपनी अपनी तारी तब इसको है मुश्किल पारी जब इन करने हार पछाता तब इसनो नाही किस ताता जब इन अपनो बांधियो मोहा आवे जाए सदा जम जोहा जब इसते सब बिन से परमा पेद नाही है पार ब्रह्मा जब इन किछ कर माने पेदा तब ते दुख दंड अर खेदा जब इन एको एक ही बूझिया तब ते इसनो सब किछ सूझिया जब एहो ता

कर कृपा जो सतगुर मिलियो, मन मंदिर में दीपक जलियो, जीत हार की सोजी करी, तो इस पर की कीमत परी। करन करावन सब किछ एक है, आपसे बुद्ध विचार विवेक है, दूर

जास जपत पाव अपदा जाए तावत मनुआ आवे ठाए। जास जपत फिर दुख ना लागे, जास जपत ए हो मैं पागे। जास जपत वस आवे पंचा, जास जपत हृदय अमृत संचा। जास जपत ए तृष्णा बुझे, जास जपत हर दरगे सिजे। जास जपत कोट मिटे अपराध, जास जपत हर होवे साध। जास जपत मन शीतल होवे, जास जपत मल सगली खोवे। जास जपत रतन हर मिले, बहुर ना छोड़े हर संग हिले। जास जपत कई बैकुंठ वास, जास जपत सुख सह निवास। जास जपत ए अग्न न पोहत, जास जपत एहो काल न जोहत। जास जपत तेरा निर्मल माथा, जास जपत सगला दुख लाता। जास जपत मुश्किल कछु न बने, जास जपत सुन अनहत तुने। जास जपत ए निर्मल सोए, जास जपत कमल सीधा होए। गुर शुभ दृष्ट सब ऊपर करी, जिसके हृदय मंत्र दे हरी। अखंड कीर्तन तिन भोजन चूरा, कहो नानक जिस सतगुरु पूरा। गौड़ी महला पंजवा, गुर का शब्द निरिद अंतर तारे। पंच जना स्यो संग निवारे, दस इंद्री कर राखे वास। ताके आत्मे होए प्रगास, ऐसी दृढ़ता ताके होए। जा को दया मया प्रभ सोए, रहाओ साजन दुष्ट जाके एक समान है। जेता बोलन तेता ज्ञान है, जेता सुनना तेता नाम, जेता पे

जा के सहज मन पयानंद ताको पेटिया परमानंद सहजे अमृत पियो नाम सहजे कीनो जी को दान सहज कथा में आत्म रसिया ताके संग अविनाशी वसिया सहजे आसन अस्थिर पाया सहजे अनहत शब्द बजाया सहजे ऋण चुनकार सुहाया ताके कर पार ब्रह्म समाया सहजे जाको पर्यो कर्मा सहजे गुर पेट्यो सच धर्मा जाके सहज पया सो जाने नानक दास ताके कुर्बाने गौड़ी मैला पंजवा प्रथमे गर्भ वास्ते तरिया पुत्र कलत्र कुटंब संग जुरिया पोजन अनेक प्रकार बहु कपरे सर पर गमन करेंगे बपुरे कवन स्थान जो कबहु ना तरे कवन शब्द जित दुर्मत हरे रहाओ इंद्रपुरी में सर पर मरना ब्रह्मपुरी नेचल नहीं रहना शिवपुरी का होएगा काला त्रैगुण माया बिनस बिताला गिर तर तरण गगन अरतारे रव सस पवन पावक नीरारे दिनस रैन बर्त अरपेदा शासत सिमरत बिन सेंगे बेदा तीरथ देव देहोरा पोथी माला तिलक सोच पाक होती तोती दंडौत प्रसादन पोगा गमन करे गो सगलो लोगा जात वर्ण तुर्क अर हिंदू पस पंखी अनेक जोन जिंदू सगल पसार दिसे पासारा बिनस जाए गो सगल आकारा सहज सिफत भगत तत ज्ञाना सदा आनंद नेचल सचताना तहां संगत साध गुण रसे अनपौ नगर तहां सदवसे तें पौ परमा सोग ना चिंता।

कहो नानक जिस कृपा करे नेचर थान साध संगतरे गौड़ी महला पंजवा। जो इस मारे सोई सूरा जो इस मारे सोई पूरा जो इस मारे तिसे वड्याई जो इस मारे तिसका दुख जाए ऐसा कोई जे दुबदा मार दवावे इसे मार राज जोग कमावे रहाओ। जो इस मारे तिसको पौना है जो इस मारे

सो तनवंता जो इस मारे सो पतवंता, जो इस मारे सोई जति, जो इस मारे तिस होवे गति, जो इस मारे तिसका आया गनी, जो इस मारे सो नहीं चलतनी, जो इस मारे सो वड पागा, जो इस मारे सो अंधिन जागा, जो इस मारे सो जीवन मुक्ता।

इस मारी बिन थाए न परे, कोट कर्म जाप तप करे, इस मारी बिन जन्म न मिटे, इस मारी बिन जमते नहीं छूटे, इस मारी बिन ज्ञान न होई, इस मारी बिन झूठ न तोई, इस मारी बिन सब किछ मैला, इस मारी बिन सब किछ जौला, जाको पै किरपाल कृपा निज, इस पै खलासी होई।

मन अपने मैं फिर चेत बिनस जाए माया के हेत हर अविनाशी तुमरे संग मन मेरे रच राम के रंग जा के काम उतरे सब भूख जा के काम ना जो है दूत जा के काम तेरा वड गमर जा के काम होवे तू अमर जा के चाकर को नहीं दान जा के चाकर को नहीं बान जा के दफ्तर पूछे न लेखा ताकि चाकरी करो विशेखा जा के ऊन नाही काहू बात एक है आप अनेक है पात जा की दृष्ट होए सदा निहाल मन मेरे करता की काल ना को चतुर नाही को मूड़ा ना को हीन नाही को सूरा जित को लाया तित ही लागा सो सेवक नानक जिस पागा गौड़ी महला पंजवा बिन सिमरन जैसे सर्प आर जारी त्यों जीवे साकत नाम बिसारी एक निमख जो सिमरन में जिया कोट दिन सला

बोलें कूर साकत मुखकारा, बिन सिमरन गर्दब की न्याई, साकत थान परिष्ट फिराई, बिन सिमरन कूकर हर काया, साकत लोभी बंद न पाया, बिन सिमरन है आत्म काती, साकत नीचे तिस कुल नहीं जाती, जिस पया कृपाल तिस सत्संग मिलाया, कहो नानक गुर जगत कराया, गौड़ी महला पंजवा, गुर के बचन मोह परम गत पाई, गुर पूरे मेरी पैज रखाई, गुर के बचन से आयो मोह नाओ, गुर प्रसाद मोह मिलिया छाओ रहाओ, गुर के बचन सुन रसन वखाणी, गुर कृपा से अमृत मेरी बाणी, गुर के बचन मिटिया मेरा आप, गुर की दया ते मेरा वड प्रताप, गुर के बचन मिटिया मेरा परम, गुर के बचन पेखियो सब ब्रह्म, गुर के बचन कीनो राज जोग, गुर के संग तरिया सब लोग, गुर के बचन मेरे कार्य सिद्ध, गुर के बचन पाया नाव निद, जिन जिन कीनी मेरे गुर की आशा, तिसकी कटिये जम की फासा, गुर के बचन जागिया मेरा कर्म, नानक गुर पेटिया पार ब्रह्म, गौड़ी मैला पंजवा, तिस गुर को सिमरों सास सास, गुर मेरे प्राण सतगुर मेरे

हर रंग रंगो, जप जेवा हर एक मंगो, राव तज हो मैं गुर ज्ञान पजो, मिल संगत तुर कर्म लिखियो, जो दी सह सो संग न गयो, साकत मूड लगे पच मोयो, मोहन नाम सदा रव रहे हो, कोट मदे किने गुरमुख ले हो, हर संतन कर नमो नमो, नौ निद पावे अतुल सुखो, नैन अलोवो साध जनो, हृदय गावो नाम निदो, काम क्रोध लोभ मोह तजो, जन्म मरण दो ते रहे हो, दुख अंधेरा करते मिट्यो, गुर ज्ञान दृढ़ायो दीप बलियो, जिन सेव्या सो पार परयो, जन नानक गुरमुख जगत तरयो। महला पंजवा गौड़ी, हर हर गुर गुर करत परम गए, मेरे मन सब सुख पायो, रहाओ बल तो जल तो तौ क्या, गुर चंदन शीत लायो, अज्ञान अंधेरा मिट गया, गुर ज्ञान दीपायो, पावक सागर गहरो, चर संतन नाव तरायो, ना हम कर्म ना कर्म सुच, प्रभ गह पूजा अपायो, पौ खंडन दुख पंजनो, भगत वचल हर नायो, अनाथ नाथ कृपाल दीन, समरथ संत ओटायो, निर्गुनी आरे की बेनती, देहो दर्श हर आयो, नानक शरण तुहारी ठाकुर, सेवक द्वारे आयो। गौड़ी महला पंजवा, रंग संग बिखिया के पोगा, इन संग अंध ना जानी, हौं संचो हौं खाटता सगली अवध बिहानी, रहाओ हौं सूरा प्रधान हो, को नाही मुझे समानी, जो बनवंत अचार कुलीना, मन में होए गुमानी, जो उलझायो बाद बुद्ध का, मर्त्या नहीं विसरानी, पाई मीत बंदव सके, पाछे तिन्हों को संपानी, जित लागो मन बासना, अंत साई प्रगटानी, आंग बुद्ध सुच कर्म कर, ए बंधन बंदानी, दयाल पुर

करवास नाही पुछो सखी सहेलिया, बिन नाम प्रीत प्यार नाही वसे साथ सुहेलिया। सच मन सज्जन संतोख मेला, गुरमति सो जानिया, नानक नाम ना छोड़े सातन नाम सहज समानिया। मिल सकी सहेलड़ियो हम पिर रावे हा, गुर पुछ लिखोगी जियो शब्द स्नेहा। शब्द साचा गुर दिखाया मन मुखी पछतानिया, निकस जातो रह अस्थिर जाम सच पछाणिया। साच की मत सदा नौतन

शंकर साजने आया, मिलवर नारी मंगल गाया, गुण गाए मंगल प्रेम रहसी, मुंद मन उमा हो, साजन रहन से दुष्ट व्यापे, साच जप सच लाहो, कर जोड़ सातन करे बिनती, रैन दिन रस पिनिया, नानक पिर तन करे।

रहेगी ना बिना प्रभ वे परवाहे। तन ना बाजो रह न साके बिखम रहन कनेरिया। नह नींद आवे प्रेम पावे सुन बेनंती मेरिया। बाजो प्यारे कोई न सारे एक लड़ी कुर लाए। नानक सा तन मिले।

सब दे सुहावे ता पत पावे, दीपक देह उजारे सुन सखी सहेली साच सहेली साचे के गुण सारे, सतगुर मेली ता फिर रावी बिगसी अमृत बाणी नानक सा तन।

हर प्रीत प्यारे शब्द विचारे किसी का सो होवे पुन दान अनेक नावन क्यों अंतर मल तोवे नाम बिना गत कोई ना पावे हाथ निग्रह बेबाने नानक सच कर।

तेरा मैल सच्चा जियो, नाम सच्चा वापारो, नाम का वापार मीठा, भगत लाहा अंदिनो, जिस बाज वखर कोई ना सूजे, नाम लेवो खिन खिनो, परख लेखा नदर साची, कर्म पूरे पाया, नानक नाम

आतन बिनो करे जियो हर के गुण सारे खिन पल रह न सके जियो बिन हर प्यारे बिन हर प्यारे रह न सके गुर बिन महल न पाई है जो गुर कहे सोई पर की जय तिसना अग्न बुझाई है हर साचा सोई तिस बिन अवर न कोई बिन सेवे सुख न पाए नानक सा तन मिले मिलाई जिसनो आप मिलाए तन रैन सुहेलड़िए जियो हर स्यों चित लाए सतगुर सेवे पाओ करे जियो विच्चों आप गवाए हर गुण गाए अन दिन लागा पाओ सुन सखी सहेली जी की मेली गुर के शब्द समाओ हर गुण सारी ताकंत प्यारी नामे तरी प्यारो नानक कामन ना प्यारी राम नाम गलहारो तन एक लड़ी जियो बिन ना प्यारे दूजे पाए मुठी जियो बिन गुर शब्द करारे बिन शब्द प्यारे कौन

नानक कामन सदा रंग राती हर जियो आप मिलाए। ता मिलिए हर मेले जियो हर बिन कौन मिलाए। बिन गुर प्रीतम अपने जियो कौन परम चुकाए। गुर परम चुकाए यूं मिलिए माए तासा तन सुख पाए। गुर सेवा बिन कोर अंधार बिन गुर मग न पाए। कामन रंग राती सहजे माती गुर कै शब्द विचारे। नानक कामन हर वर पाया।

चित लाये, सदा सुहागण जा सतगुर सेवे, गुर के अंक समाये, गुर शब्द मेला ता फिर रावी, लाहा नाम संसारे, नानक कामण ना प्यारी, जा हर के गुण सारे, सातन रंग माने जियो अपने नाल प्यारे, एनस रंग राती जियो गुर शब्द विचारे, गुर शब्द विचारे हों मैं मारे, इन विद मिलो प्यारे, सात अन सुहागन सदा रंग राती, साचे नाम प्यारे, अपने गुर मिल रही है अमृत गई है, दुबदा मार निवारे, नानक कामन हर वर

अंदिन दुख निवारे, अंतर महल फिर रावे कामन, गुरमती विचारे, अमृत नाम पिया दिन राती, दुबदा मार निवारे, नानक सच मिली सुहागन, गुर कै हेत अपारे, आवो दया करे जियो प्रीतम अति प्यारे, कामन बिनो करे जियो सच शब्द सिगारे, सच शब्द सिगारे हों मैं मारे, गुरमुख कार सवारे, जुग जुग एको सच्चा सोई, बूझे गुर विचारे, मनमुख काम व्यापी मोह संतापी, किस आगे जाए पुकारे, नानक मनमुख थाउ न पाए, बिन गुर अत प्यारे, मुंद एयानी पोली निगुणिया जियो, फिर अगम अपारा, आपे मेल मिलिए जियो, आपे बख्शनहारा, अवगुण बख्शनहारा, कामन कंत प्यारा, कट कट रहा समाई, प्रेम प्रीत पाए भगती पाई है, सतगुरु बूझ बुझाए, सदा आनंद रहे दिन राती, अंग दिन रहे लिवलाई, नानक सहजे हर

माया सर सबल वर्त जियो, क्यों कर दुत्तर तरिया जाए। राम नाम कर बोहता जियो, शब्द खेवट विच पाए, शब्द खेवट विच पाए हर आप लंगाए। इन विद दुत्तर तरिए, गुरुमुख भगत प्राप्त होवे, जीव त्या यो मरिए। खिन में राम नाम किल विख काटे, पए पवित्र शरीरा, नानक राम नाम निस्तारा, कंचन पए मनूरा। स्त्री पुरुष काम व्यापे जियो, राम नाम की विद नहीं जानी। मात पिता सुत पाई खरे प्यारे जियो, डूब मोए बिन पानी, डूब मोए बिन पानी गत नहीं जानी। हो मैं ताप संसारे, जो आया सो सबको जासी, उबरे गुर विचारे। गुरमुख होवे राम नाम वखाणे, आप तरह कुल तारे। नानक नाम वसे कट अंतर, गुरमत मिले प्यारे। राम नाम बिन को थिर नाही जियो, बाजी है संसारा। दृढ़ भगत सच्ची जियो, राम नाम वा पारा, राम नाम वा पारा अगमा पारा। गुरमती तन पाईए, सेवा सुरत भगत के साची, विच्चों आप गवाईए। हम मतहीन मूरख मुगत अंधे, सतगुरु मार्ग पाए। नानक गुरमुख शब्द सुहावे, अंदिन हर गुण गाए। आप सराय करे आप जियो, आपे शब्द सवारे। आपे सतगुर आप शब्द जियो, जुग जुग भगत प्यारे। जुग जुग भगत प्यारे हर आप सवारे, आपे भगति लाए। आपे दाना आपे बीना, आपे सेव कराए। आपे गुण दाता अवगुण काटे, हृदय नाम वसाए। नानक सद बलिहार।

आज गवाए सदा हर रस पाए जहाँ हर पाए रसना सबक सुहाए नाम प्याए सदा सुख पाए नाम रहे लिवलाए नामे उपजे नामे दिन से नामे सच समाए नानक नाम गुरमती पाई आपे ले लवाए ए विदानी चाकरी पिया जियो तन छोड़ परदेश सिधाए दूजे किने सुख न पायो पिया जियो बिख्या लोग लुवाए बिख्या लोग लुभाए परम पुलाए ओ क्यों कर सुख पाए चाकरी विदानी खरी दुखाली आप वेच धर्म गवाए माया बंधन टिके नाही छिन छिन दुख संताए नानक माया का दुख तदे चूके जा गुर शब्दी चितलाए मन मुख मुकुट गवार पिरा जियो शब्द मन ना वसाए माया का परम अंग पिरा जियो हर मार्ग क्यों पाए क्यों मार्ग पाए बिन सतगुरु पाए मन मुख आप गणाए हर के चाकर सदा सुहेले गुर चरणी चित लाए जिसनो हर जियो कृपा करे सदा हर के गुण गाए नानक नाम।

मन आस दर्श निमानिया सास सास ना करी विसरे पल मूरत दिन राते नानक सारंग ज्यों प्यासे क्यों मिलिए प्रभु दाते। एक बिनो करो जियो सुन कंत प्यारे मेरा मन तन मोह लिया जियो देख चलत तुम्हारे चलता तुम्हारे देख मोही उदास तन क्यों ती रहे गुणवंत ना दयाल बाला सर्व गुण पर पूरे फिर दोष ना ही सुख दाते हो विछड़ी बुरे आरे बिनवंत नानक दया तारो कर आवो नहा प्यारे। हो मन अर्पी सब तन अर्पी अर्पी सब देसा हो सिर

मनो चिंदिया पाया दिन रैन रलिया करे कामन मिटे सगल अंदूसा बिनवंत नानक कंत मिलिया लोड़ते हम जैसा मेरे मन अनंद भया जियो वजी वादाई कर लाल आया प्यारा सब तिखा बुझाई मिलिया ता लाल गोपाल ठाकुर सखी मंगल गाया सब मीत बंदप हरख उपजिया दूध ठाउ गवाया अनहत वाजे वजे कर में फिर संग सेज विछाई बिनवंत नानक सहज रहे हर मिलिया कंत सुखदाई।

आवे जहाँ साध संत एकत्र हो गए तहाँ तुझे त्यावे कर दया मया दयाल स्वामी हो दीन कृपारा बिनवंत नानक दर्श प्यासे मिल दर्शन सुख सारा। मोहन तेरे बचन अनूप चाल निराली मोहन तू माने एक जी अवर सब राली माने ता एक अलेख ठाकुर जिने सब कल तारिया तुद बचन गुर कह वस किया आद पुरख बनवारिया। तू आप चलिया आप रहया आप सब कल तारिया बिनवंत नानक पैज।

जपैन दाना जमपाल तिन को लगे नाही जो एक मन प्यावे मन बचन कर्म जे तुद आराधे से सबे फल पावे मल मूत मूड जे मुग्ध होते से देख दर्शो ज्ञाना बिन वंत नानक राज निचल पूरन पुरख भगवाना मोहन तू सुफल फलिया।

बेअंत गुण तेरे कथे न जाहे, सतगुरु पुरख मुरारे बिनवंत नानक टेक राखी, जित लग तरिया संसारे। गौरी महला पंजवां श्लोक। पतित असंख

छंत जप मना तू राम नारायण गोविंदा हर माधो त्याए मना मुरार मुकंदे कटिये काल दुख पातो दुख हरण दीन शरण श्री तार चरण कमल आराध्य जम पंख बिखरा अगन सागर निमक सिमरत साधिये कल मले दहता शुद्ध करता दिन सिरैन आरादो बिनवंत नानक करो कृपा गोपाल गोविंद माधो सिमर मना दामोदर दुख हर पै पंजन हर राया श्री रंगो दयाल मनोहर भगत वचल बिरदाया पगत वचल पुरख पूरन मने चिंदिया पाई है तम अंग कूप ते उधार है नाम मन वसाई है सुर सिद्ध गण गंधर्व मुन जन गुण अंक भगती गाया बिनवंत ना

बिनवंत नानक करो कृपा, समरथ सब कल धारी। गुण गाओ मना अचुत अविनाशी, सबके ऊंच दयाला। दिसंबर देवन को एक सर्व करे प्रतपाला, प्रतपाल महादयाल दाना। दया तारे सब किसे, काल कंटक लोभ मोह नाशे। जी जाके प्रभु बसे, सो प्रसन्न देवा सफल सेवा। पई पूरन काला बिनवंत नानक।

मैं लह हर संत मान त्याग कर भगत गौरी मोहे साधु मंत सखी वस आया फिर छोड़ न जाई ते रीत पली भगवंत नानक जरा मरण पे नरक निवार पुनीत कर किस जंत सुन सखिए ए पली बेनंती ए हो मतांत पकाई है सहज सुभाए उपाद रहत होए गीत गोविंद गाय कल कलेश मिटे क्रम नाशे मन चिंदिया फल पाये पार ब्रह्म पूरन परमेश्वर नानक नाम ते आई है सखी इच्छ करी नित सुख मनाई प्रभ मेरी आस पुजाए चरण प्यासी दर्श बैरागन पेखो थान सवाए खोज लहो हर संत जना संग समरथ पुरख मिलाए नानक तिन मिलिया सुरजन सुखदाता सेवड पागी माए सखी नाल वसा अपने ना प्यारे मेरा मन तन हर संग हिलिया सुन सखिए मेरी नींद भली मैं आप नड़ा फिर मिलिया प्रम खोयो सांत सह स्वामी परगास तया कौल खिलिया वर पाया प्रभु।

परमेश्वरा गुरुदेव सखा अज्ञान पंजन गुरुदेव बंधक सहोदरा गुरुदेव दाता हर नाम उपदेश है गुरुदेव मंत्र निरोधरा गुरुदेव शांत सत बुद्ध मूरत गुरुदेव पारस परस्परा गुरुदेव तीरथ अमृत सरोवर गुरु ज्ञान मजन अपरंपरा गुरुदेव करता सब पाप हरता गुरुदेव पतित पवित्र करा गुरुदेव आद जुग जुग गुरुदेव मंत्र हर जप उदरा गुरुदेव संगत प्रभ मेल कर कृपा हम मूढ़ पापी जित लग तरा गुरुदेव सत गुर पार ब्रह्म परमेश्वर गुरुदेव नानक हर नमस्कारा श्लोक आपे किया कराया आपे करने जोग नानक एको रव रहा दूसर हुआ न होग पौड़ी ओं सात सतगुर नमस्कार आद मद अंत निरंकार आपे सुन आपे सुख आसन आपे सुनत आप ही जासन आपन आप आपे उपायो आपे बाप आप ही मायो आपे सुखम आपे अस्त।

रहत आज्ञा दृढ़ जा कह उसन सीत समसर सबता कह ज्ञानी तत् गुरुमुख बिचारी नानक जाको कृपा धारी। श्लोक आमन आए सृष्ट में बिन बूझे पस्तोरे नानक गुरुमुख सो बुझे जाके पाग मथोर। पौड़ी या जुग में एक को आया जन्मत मोयो मोनी माया गर्भ कुंट में उर्द तप करते सास सास सिमरत प्रभ रहते उर्ज परे जो छोड़ छदाना देवन हार मने बिसराना तारो कृपा जिसे गुसाई कित उत नानक तिस बिसरो नाही। श्लोक आव

ने ए साजन कछ कहो उपाया, जाते तरो विषम ए माया, कर कृपा सत्संग मिलाए, नानक ताके निकट न माए। श्लोक। किरत कमावन शुभ अशुभ कीने, तिन प्रव्याप, पस आपन हो।

जोड़ा ते रंग एक कै नानक गूड़ा रंग पौड़ी रारा रंगो या मन अपना हर हर नाम जपो जप रसना रे रे दरगे कह न को आओ बैठ आदर सुख देव ओआ महली पावे तू बासा जन्म मरण न होए बिनासा मस्तक कर्म लिखियो तुर जाके हर संपै

कौ रस राते अहं बुद्ध माया मदमाते या माया में जन्म मरना जो जो हुक्म तिवे त्यों करना को ऊन न को पूरा को सुगर न को मूरा जित जित लावो तित

एक आप अवर न हो, हो अनहार होत सद आया, ओ आपका अंत ना काहू पाया। कीत हस्त में पूर समाने, प्रगत पुरख सब ठाऊ जाने, जाको दीनो हर रस अपना, नानक गुरमुख हर हर तें जपना। श्लोक आत्म रस

पौड़ी आया सफलताओं को गनिए जास रसन हर हर जस पन्ने आए बसे साधु के संगे आम दिन नाम त्यावे रंगे आवत सो जन नामे राता जाको दया मया विदाता एक आवन फिर जोन ना आया नानक हर के दर्श समाया श्लोक यास जपत मन होए आनंद बिन से दूजा पाओ दुख दर्द किसना बुझे नानक नाम समाओ। पौड़ी जैया जारो दुर्मत दो किसे त्याग सुख सहजे सो यैया जाए परो संत सरना जे आसर एया पव जल तरना यैया जन्म न आवे सो एक नाम ले मने परो यैया जन्म न हारिये गुर पूरे की टेक नानक ते सुख पाया जाके ही रे एक। श्लोक अंतर मन तन बस रहे पीत ऊत के बीत गुर पूरे उपदेशया नानक जपिये नीत। पौड़ी अंदिन सिमरो तास को जो अंत सहाय होए ए बिखिया दिन चार छे छार चलियो सब कोए ताको मात पिता

खट शास्त्र होएंगे आता, पूरक कुंभक रेचक कर्म आता, ज्ञान ध्यान तीर्थ स्नानी सोम पाक अपरस उद्यानी, राम नाम संग मन नहीं एता, जो कछ तीनो सौ अनेता, ओ आते उत्तम गनो चंडाला, नानक जे मन बसे गोपाला। श्लोक कुंट चार दह दुष्प्रमे, कर्म किरत की रेख, सुख दुख मुक्त जोन नानक लिखियो लेख। पौड़ी तत्ता कारण करता सो, लिखियो लेख न मेटत को।

खर्च खजाना नाम तंग या भगतन की रास खिमा गरीबी आनंद सहज जपत रहे गुणतास खेले बिकसे अनब स्यो जा को होत कृपाल सदीव गनीव सुहावने राम नाम गृह माल खेद न दुख न दान ते।

गुर प्रसाद सिमरत रहे जाहू मस्तक पाग, नानक आए सफल के जाको प्रिय सुहाग। श्लोक कोखे शास्त्र देव सब आन न कस्तो कोए, आप जुगा दी हुन।

जटकत ओही समाहे, फूले को मन जो आवे सरना, नाम तत्कल मह पुनः चरना, काल काल अनिक पछतावे, बिन हर भगत कहाँ थित पावे, कोल महारस अमृत ते पिया, नानक हर गुरु जाको दिया। श्लोक गाने काले सब दिवस सास।

अनेक जोन जन्मे मरे आत्म राम न चीन ज्ञान ध्यान ताहू को आए कर कृपा जे आप दिवाए गणती गणी नहीं को छूटे काची गागर सर पर फूटे सो जीवत जे जीवत जपया करगत पै नानक ने छपया श्लोक चित चित वो चरणार बिंद ऊद कवर बिग शांत प्रगट

चार कुंट दह दुष्कम आयो पई कृपा तब दर्शन पायो। चार विचार बिन सो सब दुआ साध संग मन निर्मल हुआ।

ते छच्छा चार हो तेरे संता अपनी कृपा करो भगवंता। छाड़ सियानप बहु चतुराई संतन की मन टेक टिकाई छार की पुत्री परमगत पाई नानक जाको।

पौड़ी। सज्जा चूरन मिटे तुम्हारो, राम नाम स्यों कर व्योहारो, चूरत चूरत साकत मुआ, जा कह हृदय होत पाओ बिया। चरह कसम मल पाप तेरे मनुआ, अमृत कथा संत संग सुनुआ, चरह काम क्रोध दुष्टाई, नानक जा को कृपा गुसाई। श्लोक। यतन करो तुम अनक विद।

नानक मनो न बिसरे गुण निद गोविंद राय। पौड़ी टहल करो तो एक की जाते बिरथा न कोए।

पावन बिन नामे सुख नाहे, तलहे जाम के दूत ते जो साधु संग समाहे। बार बार जाऊं संत सदके, नानक पाप बिना से कद के। श्लोक ठाक ना होती तिन्हों दर, जे हो वो सो प्रसन्न। जो जन प्रभ अपने करे, नानक ते तन तन।

या डेरा को श्रम कर काले जा का तसू नहीं संग चाले। ओ आडेरा की सो मित जाने जा को दृष्ट पूरन भगवान डेरा ने चल सच।

नानक नाम ते आईए कारज आवै रास पौड़ी। तद्दा तावत तो मिटै संत संग होए बास तुरते कृपा।

नहीं जाके मन तन नाम बसाही नाम निधान गुरुमुख जो जपते बिख माया में ना ओए खपते नन्ना कार ना होता ता कहो नाम मंत्र गुर दीनो जा कहो निध निधान हर अमृत पूरे तें बाजे नानक अनहद तूरे श्लोक

कौड़ी। पत्ता परमित पार न पाया, पतित पावन अगम हर राया। होत पुनीत कोट अपराधु, अमृत नाम जपे मिल साधु। पर पच त्रोह मोह मिटनाई, जाको राखो आप गुसाई। पाँच सौ छ

आवै बांध्यो आपन हों हों बंदा दोष देत आगे को अंधा बात चीत सद रही सियानप जिसे जनाबो सो जाने नानक श्लोक तै पंजन अग दुख नास मने अराद भरे संत संग जेरिद बस्यो नानक तेना प्रमे पौड़ी पब्बा परम मिटावो अपना या संसार सगल है सुखना परमेश्वर नर देवी देवा परमेश्वर साधिक ब्रह्मेवा परम परम मानुख डह काए दुत्तर महाभिकम ए माए गुरु

मन मूर्ख कह करे पुकार। जो मांगे तो मांगे बिया, जाते कुशल न काहू थिया। मांगन मांगता एक मांग, नानक जाते।

दुख सुख ओआ के समत विचारा, नरक सुर्ग रहत अवतारा। ताहू संग ताहू निर्लेपा, पूरन कट कट पुरख विशेखा। ओआ रस में ओआहू सुख पाया, नानक लिपत नहीं ते माया। श्लोक। यार मीत सुन साजनो, बिन हर छूटन नाहे। नानक ते बंधन कटे, गुर की चरणी पाहे। पौड़ी। यैया जतन करत बहु विदिया, एक नाम बिन कह लोस दिया। याहू जतन कर होत छुटारा, वाहू जतन साध संगारा। या उबरन तारे सबको, वाहे जपे बिन उबर न हो। याहू तरन तारन समराथा, राख लेहो निर्गुण नरनाथा। मन बच कर्म जे आप जवनाई, नानक ते मत प्रग

पावे खसमता ओआ सुख देता पार ब्रह्म ऐसो अगनता असंख खते खिर बख्शन हारा नानक साहिब सदा दियारा। श्लोक सत कहो सुन मन मेरे शरण परो हर राए उकत सियानक सगल त्याग नानक ले समाए। पौड़ी ससा सियानक छाड़ एयाना हिकमत हुकम न प्रपति आना सहस पाठ करें चतुराई संग तुहारे एक न जाए। सो सो जप दिन राती रे जी चले तुहारे साथी साध सेवा लावे जे आपे नानक ताको दुख न।

पौड़ी। हेरो काट काट सगल कै पूर रहे भगवान, होवत आए सद सदीव दुख पंजन गुर ज्ञान। हौ छुटकै होए आनंद ते, हौ नाही ते आप, हटे दुख जन्म मरन संत संग परताप। हित कर नाम दृढ़ दयाला, संते संग होत कृपाला, पूरे कछु न किन्हू किया, नानक सब कछ प्रभु।

बेगाना अल्प मत जियो पिंड जिन सुख दिए ताहे न जानत तत। लाहा माया तारने दैद स्टूडन जाए देवन हार दा पार प्रभ निमख न मने बसाए। लालच झूठ बिकार मोह या संपे मन माहे लंपट चोर निंदक महा तिन्हों संग बिहाए। खुद पावे ता बख्श ले खोटे संग खरे नानक पावे।

पाव जल ते काडू प्रभु नानक तेरी टेक पौड़ी। खेलत खेलत आयो अनक जोन दुख पाए, खेद मिटे साधु मिलत सतगुरु बचन समाए। खिमा गई सच संचयो खायो अमृत नाम, हरि कृपा ठाकुर भई अनद सुख विश्राम। खेत निबाही बहुत लाभ कर आए पतवंत, खरा दिलासा गुर दिया आए मिले भगवंत। आपन किया करें आप आगे पाछे आप, नानक सो सराही है जे कट कट रहा ब्याप। श्लोक आए प्रभ शरणागति कृपा निद दयाल, एक अक्षर हर मन बस्त नानक होत निहाल। पौड़ी अक्षर में त्रिभवन प्रभ धारे, अक्षर कर कर वेद विचारे। अक्षर शास्त्र सिमरत पुराना, अक्षर नाद कथन वख्याना। अक्षर मुकुत जुगत पै परमा, अक्षर कर्म कीर्त सुच परमा। दृष्टमान अक्षर है जेता, नानक पार ब्रह्म निर्लेपा। श्लोक हाथ कलम अगम मस्तक लिखावती, उर्ज रहो सब संग अनूप रूपावती। पुस्तक कह न जाए।

गुरुदेव दाता हर नाम उपदेश है, गुरुदेव मंत्र निरोधरा, गुरुदेव शांत सत बुद्ध मूरत, गुरुदेव पारस परस्परा, गुरुदेव तीरथ अमृत सरोवर, गुर ज्ञान मज्जन अपरंपरा, गुरुदेव करता सब पाप हरता, गुरुदेव पतित पवित्र करा, गुरुदेव आद जुगाद जुग जुग, गुरुदेव मंत्र हर जप उदरा।

प्रभु के सिमरन दुख जन नसे, प्रभु के सिमरन काल पर हरे, प्रभु के सिमरन दुश्मन तरे, प्रभु सिमरत कछ बिघन न लागे, प्रभु के सिमरन अन दिन जागे, प्रभु के सिमरन पौ न व्यापे, प्रभु के सिमरन दुख न संतापे, प्रभु के सिमरन साध के संग सर्व निधान नानक हर रंग, प्रभु के सिमरन रिद्ध सिद्ध नौ निध, प्रभु के सिमरन ज्ञान ध्यान तक बुद्ध, प्रभु के सिमरन जप तक पूजा, प्रभु के सिमरन बिनसै दूजा, प्रभु के सिमरन तीर्थ स्नानी, प्रभु के सिमरन दरगे मानी, प्रभु के सिमरन होय सो भला, प्रभु के सिमरन सो फल फला, से सिमरन जिन आप सिमराए, नानक का कहला गुरु पाए, प्रभु का सिमरन सबसे ऊंचा, प्रभु के सिमरन उदरे मूचा, प्रभु के सिमरन तृष्णा बुझे, प्रभु के सिमरन सब किछ सुझे, प्रभु के सिमरन नाही जम त्रासा, प्रभु के सिमरन पूर्ण आशा, प्रभु के सिमरन मन की मल जाए, अमृत नामृत माहि सुनाए, प्रभु जी बसे साध की रसना, नानक जन का दासन दसना, प्रभु को सिमरे से तनवंते, प्रभु को सिमरे से पतवंते, प्रभु को सिमरे से जन प्रवान, प्रभु को सिमरे से पुरुष प्रदान, प्रभु को सिमरे से बेमोहताजे, प्रभु को सिमरे से स्वर्ग के राजे, प्रभु को सिमरे से सुखवासी, प्रभु को सिमरे सदा अविनाशी, सिमरन ते लागे जिन आप दयाला, नानक जन की मंगैर वाला, प्रभु को सिमरे से परोपकारी, प्रभु को सिमरे तिन सद बलिहारी, प्रभु को सिमरे से मुख सुहावे, प्रभु को सिमरे तिन सुख बिहावे, प्रभु को सिमरे तिन आत्म जीता, प्रभु को सिमरे तिन निर्मल रीता, प्रभु को सिमरे तिन अनंत घनेरे, प्रभु को सिमरे बसे हर नेरे, संत कृपा ते अनदिन जाग, नानक सिमरन पूरे भाग, प्रभु के सिमरन कारज पूरे, प्रभु के सिमरन कभो न झूरे, प्रभु के सिमरन हर गुण बानी, प्रभु के सिमरन सहज समानी, प्रभु के सिमरन निश्चल आसन, प्रभु के सिमरन कमल विगासन, प्रभु के सिमरन अनहद गुणकार, सुख प्रभु सिमरन का अंत न पार, सिमरे से जन जिन को प्रभु मया, नानक तिन जन सरनी पया, हर सिमरन कर पगत प्रगटाए, हर सिमरन लग बेत उपाय, हर सिमरन तय शुद्ध जति दाते, हर सिमरन नीच चौकुंट जाते, हर सिमरन तारी सर करना, सिमर सिमर हर कारण करना, हर सिमरन कियो सगल अकारा, हर सिमरन मैं आप निरंकारा, कर कृपा जिस आप बुझाया, नानक गुरुमुख हर सिमरन तिन पारा श्लोक, दीन दर दुख पंजना, कट कट नाथ अनाथ, शरण तुम्हारी आयो, नानक के प्रभु साथ, अष्टपदी, जय मात पिता सुत नीत न भाई, मन उहा नाम तेरे संग सहाई, जय मां प्यान दूत दम दले, ते केवल नाम संग तेरे चले, जय मुश्किल होवे अत भारी, हर को नाम खिन माए उदारी, अनित पुने चरण कर्त नहीं तरे, हर को नाम कोट पाप पर हरे, गुरुमुख नाम जपो मन मेरे, नाम पावो सुख घनेरे, सगल सृष्ट को राजा दुखिया, हर का नाम जपत हो सुखिया, लाख करोरी बंदना करे, हर का नाम जपत निस्तर है, अनेक माया रंग सिखना बुझावे, हर का नाम जपत आभावे, जे मार के हो जात केला, ते हर नाम संगोत सोएला, ऐसा नाम मन सदा ते आई है, नानक गुरुमुख परम गत पाई है, छूटत नहीं कोट लखबाही, नाम जपत ते पार कराही, अनेक बिगन जह आए संगारे, हर का नाम तत्काल उधार है, अनेक जोन जन्मे मर जाम, नाम जपत पावे विश्राम, हौ मैला मल कहु न धोवे, हर का नाम कोट पाप खोवे, ऐसा नाम जपो मन रंग, नाम पाये साध के संग, जे मार्ग के गने जाय न कोसा, हर का नाम उहा संग तोसा, जे पैंदे महा अंग गुबारा, हर का नाम संग जियारा, जहां पंख तेरा को न सियानू, हर का नाम तह नाल पहचानू,
जय महा प्याम सतत बहु काम तै हर के नाम की तुम ऊपर शाम जहाँ त्रिखा मन तुझ आकर्ष है तै नानक हर हर अमृत बरख है भगत जना की बरकर नाम संत जना के मन विश्राम हर का नाम दास की ओट हर के नाम उदरे जन कोट हर जस पर संत दिन रात हर हर औसत साढ़ समात हर जन के हर नाम निधान पार ब्रह्म जन की नो दान मन तन रंग रते रंग एक है नानक जन के बिरत विवेक है हर का नाम जन को मुक्त जुगत हर के नाम जन को तृप्त भूत हर का नाम जन का रूप रंग हर नाम जपत तब करे न भंग हर का नाम जन की वडियाई हर के नाम जन शोभा पाई हर का नाम जन को भोग जोग हर नाम जपत पछवाए वियोग जन वाता हर नाम की सेवा नानक पूजे हर हर देवा हर हर जन के माल खजीना हर तन जन को आप सब दीना हर हर जन के ओट सतानी हर प्रताप जन अवर न जानी ओत पोत जन हर रस राते सुन समाद नाम रसमाते आठ पैर जन हर हर जपे हर का पगत प्रकट नहीं छपे हर की पगत मुक्त बहु करे नानक जन संकेते तरे पार जात ए हर को नाम काम तेन हर हर गुण गाम सबसे उत्तम हर की कथा नाम सुनत दर्द दुख लखा नाम की महिमा संत रिद रसे संत प्रताप दीर्घ सब नसे संत का संग वड भागी पाये संत की सेवा नाम ध्याये नाम तुल कछ अगर न होए नानक गुरमुख नाम पावे जन कोए श्लोक बहु शास्त्र बहु सिमृति पेखे सर्व टंडोल पूजस नाही हर हरे नानक नाम अमोल अष्टपदी जात पात ज्ञान सब ज्ञान खत शास्त्र सिमृत वख्यान योग अभ्यास कर्म धर्म क्रिया सगल त्याग बन मदे फिरिया अनेक प्रकार की ये बहु जतना पुन दान हो में बहु रतना शरीर कटाए हो मैं कर राती वर्त नेम करे बहु पासी नहीं तुल राम नाम विचार नानक गुरमुख नाम जपिया एक बार नौ खंड पृथ्वी फिरे चिरजीव महा उदास कपि सरथीव अगन माए होमत प्राण कनक अश्व है वर भूम दान न्योली कर्म करे बहु आसन जैन मार्ग संजम अच्छादन निमख निमख कर शरीर कटावे तो भी हो मैं मेल न जावे हर के नाम संसर कछ नाहे नानक गुरमुख नाम जपत जप पाहे मन कामना तीरथ दे छुटे गर्भ गुमान न मन ते हुटे सोच करे दिन और रात मन की मैल न तनते जात इस देही को बहु साधना करे मन से कभू न बिख्या करे जल तो वह बहु दे अनीत शुद्ध कहा होए काची वीत मन हर के नाम की महिमा ऊच नानक नाम उदरे पतित बहुमूच बहुत श्यांत जम का पौ व्याप है अनेक जतन कर प्रसन्ना ध्याप है पेट अनेक अगर नहीं बुझे कोट उपार दर गहनी सिजय छूट अपना ही ऊप बयाल मोह व्याप है माया जाल अवर करतूत सगली जमदान गोविंद पदन बिन तिल नहीं माने हर का नाम जपत दुख जाए नानक बोले सह सुभाए चार पदार्थ जे को मांगे सात जना की सेवा लागे जे को अपना दुख मिटावे हर हर नाम हृदय सदगावे जे को अपनी शोभा लोरे साध संग ए हो मैं चोरे जे को जन्म मरण से डरे सात जना की सरनी परे जिस जन को प्रभु दर्श प्यासा नानक ताके बल बल जासा सगल पुरुख में पुरुख प्रदान साफ संग जाका मिटे अभिमान आपस को जो जाने नीचा सो गनिये सबसे ऊंचा जाका मन होए सगल की रीना हर हर नाम तिन कट कट चीना मन अपने ते बुरा मिटाना देखे सगल सृष्ट साजना सुख दुख जन सम दृष्टेता नानक पाप पुन नहीं लेता निर्तन को

कर जामे अपनी गत मिट जानो आपे आपन संग आप प्रवराते तुमरी उस्तक तुमते होए नानक अवर न जानस कोए सर्व कर्म में श्रेष्ठ कर्म हर को नाम जप निर्मल कर्म सगल क्रिया में उत्तम क्रिया साध संग जुर्मत मल हिरिया।

कुमार या बार व्यवस्था तुझे प्यार है दूध पर जोवन पोजन सुख सूद बिर पया ऊपर साख सैन मुख पियाओ बैठ को देन यो निर्गुण गुण कछु न बूझे बख्श लियो तो नानक सीजे जे प्रसाद तर ऊपर सुख बसे सुत प्रात मीत बनता संग हसे जे प्रसाद पीवे सीता।

मुला जे परसाल पोगे सब रसा सगल समग्री संग साथ बसा दीने हस्त पाव कर नेत्र रसना तिसे त्याग अवर संग रचना ऐसे दोख मूड अंग व्यापे नानक काज लेहो प्रव्यापे आद अंत जो राखन हार तिस्यों प्रीत न करे गवार जाकी सेवा नवनिध पावे तास्यों मूड़ा मन नहीं लावे।

पचे। जो छदना सो अस्थिर कर माने, जो होवन सो दूर कराने। छोड़ जाए किसका श्रम करे, संग समाई किसका हरे। चंदन लेप उतारे धोए, गर्द प्रीत पसंद संग होए। अंधकूप में पतित विकराल, नानक काट लियो प्रभु दयाल। करतूत पशु की मानस जात, लोक पचारा करे दिन रात। बाहर पेट अंतर मल माया, छप सुनाए कछ करे छिपाया। बाहर ज्ञान त्याग स्नान, अंतर व्यापे लोभ सुहान। अंतर अगन बाहर तन सुहा, गल पाथर कैसे करे अथाह। जाके अंतर बसे प्रभ आप, नानक ते जन सहज समात। सुन अंधा कैसे मार्ग पावे, कर गए लियो और निभावे। कहां बुझारत बूझे डोरा, निष्कैय तो समझे पोरा। कहां विषण पद गावे गुंग, जतन करे तो भी सुरभंग। कह पिंगल पर्वत पर भवन, नहीं होत उहा उस गवन। करतार करुणा में दीन बेनती करे, नानक तुमरी कृपा करे। संग सहाई सो आवे ना चीत, जो बैराई तासो प्रीत। बलुआ के गृह पीतर बसे।

त्याहो जुगत बिहाने कई जन्म नानक राख लियो आपन कर करम। तू ठाकुर तुम पै अरदास जियो पिंड सर तेरी रास। तुम मात पिता हम बार तेरे तुमरी कृपा में सूख गनेरे।

सारा। जाके मन लागा प्रभ मीठा, सर्व सुख ताहु मन बूठा। जिस जन अपना हुकुम मनाया, सर्व थोक नानक तिन पाया। अगनत साओ अपनी देरास, खात पीत बरते अनत उलास। अपनी अमान कछ बहुर सावले, अज्ञानी मनी रोस करे। अपनी प्रतीत आप ही खोए।

मन हर के नाम की प्रीत सुखदाई, कर कृपा नानक आप ले लाई। मिथ्या तन तन कुटुंब सबाया, मिथ्या हो मैं ममता माया।

भगवान अस्थिर भगत साध की शरण, नानक जप जप जीवे हर के चरण। मिथ्या श्रवण पर निंदा सुने, मिथ्या हस्त पर दर्प को हिरे। मिथ्या नेत्र पेखत पर

आए। गोविंद भजन बिन बिरथे सब काम, जो किरपन के निरारख दाम। तन तन के जन जे कट बस्यो हर नाओ, नानक ता कह बल बल जाओ। रहत अवर कछ अवर कमावत, मन नहीं प्रीत मुखो गंध लावत। जानन हार प्रभु प्रवीन, बाहर पेख न काहू पीन। और उपदेश आप न करे, आवत जावत जन में मरे। जिसके अंतर बसे निरंकार, तिसकी सीख करे संसार। जो तुम पाने तिन प्रभु जाता, नानक पुंजन चरण पर आता। करो बेनती पार ब्रह्म सब जाने, अपना किया आपे माने। आपे आप तर्क निबेरा, किसे दूर जनावत किसे बुझावत नेरा। उपाव स्यान सगल ते रहते, सब कछ जाने आत्म की रहते।

अष्टपदी। जे प्रसाद शक्ति अमृत खाए तिस ठाकुर को रख मन माहे, जे प्रसाद सुगंध तन लावे तिसको सिमरत परम गत पावे, जे प्रसाद बसे सुख मंदर तिसे त्याए सदा मन अंदर, जे प्रसाद दे संग सुख बसना आठ पैर सिमरो तिस रसना, जे प्रसाद रंग रस भोग नानक सदा त्याई त्यावन जोग, जे प्रसाद पात

सब ताके जे प्रसाद तुझको ना पहुंचे मन साथ साथ सिमरो प्रभु ऊचे जे प्रसाद पाई दुर्लभ दे नानक ताकी भगत करे जे प्रसाद अपूखन कहरी जय मन ते सिमरत क्यों आलस की जय जे प्रसाद अस्वहस्त अस्वारी मन किस प्रभु को कभू ना बिसारी।

मेरा साध के संग पाए नाम रतन, साध के संग एक ऊपर जतन, साध की महिमा बरने कौन प्राणी, नानक साध की शोभा प्रभ माए समानी, साध के संग अगोचर मिले, साध के संग सदा प्रफुल्ल है।

आपे जाने साध बढ़ाई, नानक साध प्रभु बने आई। साध के संग न कभू धावे, साध के संग सदा सुख पावे। साध संग बस्त अगोचर लहे, साधु के संग अजर सहे। साध के संग बस है थान ऊंचे, साधु के संग महल पहुंचे। साध के संग दृढ़ सब धर्म, साध के संग केवल पारब्रह्म। साध के संग पाए नाम।

होए अष्टपदी। ब्रह्मज्ञानी सदा निर्लेप जैसे जल में कमल अलेप, ब्रह्मज्ञानी सदा निर्दोख जैसे सूर सर्व को सोख।

सदासमदर्शी ब्रह्म ज्ञानी की दृष्ट अमृत वर्षी, ब्रह्म ज्ञानी बंधन से मुक्ता, ब्रह्म ज्ञानी की निर्मल जुगता, ब्रह्म ज्ञानी का पूजन ज्ञान, नानक ब्रह्म ज्ञानी का ब्रह्म ज्ञान।

नानक ब्रह्म ज्ञानी को सदा नमस्कार। ब्रह्म ज्ञानी सब सृष्टि का करता, ब्रह्म ज्ञानी सब जीव नहीं मरता, ब्रह्म ज्ञानी मुक्त जुगत जी का दाता, ब्रह्म ज्ञानी पूर्ण पुरुष विदाता, ब्रह्म ज्ञानी अनाथ का नाथ, ब्रह्म ज्ञानी का सब ऊपर हाथ, ब्रह्म ज्ञानी का सगल आकार, ब्रह्म ज्ञानी आप निरंकार, ब्रह्म ज्ञानी की शोभा ब्रह्म ज्ञानी बनी, नानक ब्रह्म ज्ञानी सर्व का तनी। श्लोक उर्दारे जो अंतर नाम, सर्व में पेख है भगवान, निमख निमख ठाकुर नमस्कार है, नानक ओ अपरस सगल निस्तार है।

ऐसी जुगत नानक रामदास। प्रभु की आज्ञा आत्म हितावै, जीवन मुक्त सो कहावै। तैसा हरख तैसा उसोग, सदा अनंत नहीं वियोग। तैसा स्वर्ण तैसी उस माटी।

अरे अष्टपदी कई कोट होए पुजारी, कई कोट आचार व्यवहारी, कई कोट पहे तीर्थवासी, कई कोट वन क्रमे उदासी, कई कोट वेद के स्रोते, कई कोट तपीसर होते, कई कोट आपम ध्यान तारे, कई कोट कब काब विचारे, कई कोट नरसन नाम ध्यावे, नानक करते का अंत न पावे, कई कोट पहे अभिमानी, कई कोट अंत अज्ञानी, कई कोट कृपन कठोर, कई कोट अभिज आत्म निकोर, कई कोट पर दर्द को हिरे, कई कोट पर दुख न करे, कई कोट माया श्रम माहे, कई कोट परदेश परमाहे, जित जित लाभ हो तित तित लगना, नानक करते की जाने करता रचना, कई कोट सिद्ध जति जोगी, कई कोट राजे रस भोगी, कई कोट पंखी सर्प उपाए, कई कोट पाथर बिरख मिट जाए, कई कोट पवन पानी बैसंतर, कई कोट देश भूमंडल, कई कोट सस्यर सूर नक्षत्र, कई कोट देवदान इंद्र सिर छत्र, सगल समग्री अपने सूत धारे, नारक जिस जिस पावे तिस तिस निस्तारे, कई कोट राजस्ताम सातक, कई कोट वेद पुराण सिमरत हर शास्त्र,

नानक आप अलिपत रहा भरपूर। कई कोट पताल के वासी, कई कोट नरक सुर्ग निवासी, कई कोट जन्मे जीवे मरे, कई कोट बोझो नी फिरे।

दिन में थाप उठा पुनहारा, अंत नहीं किस पारा वारा। हुक्मे तार अदर रहावे, हुक्मे उपजे हुक्म समावे। हुक्मे ऊंच नीच व्यवहार, हुक्मे अनेक रंग प्रकार। कर कर देखे अपनी वडियाई।

जो पावे सो कार करावे, नानक दृष्टि अवर न आवे। कहो मानक ते क्या होए आवे, जो तिस पावे सोई करावे। इसके हाथ होए ता सब पिछले, जो तिस पावे सोई करे। अनजानत भिक्षा में रखे, जे जानत आपन आप बचे। पर में पूला दे दिस्तावे, निमक माए चार कुंट फिर आवे। कर कृपा।

गुरु प्रसाद नानक सच कहे। कबू होए पंडित करे बखान, कबू मोहन तारी लावे ध्यान, कबू तट तीर्थ स्नान, कबू सिद्ध साधक मुख ज्ञान, कबू कीट हस्त पतंग होए जिया, अनेक जोन पर मैं परमिया, नाना रूप जो स्वादी दिखावे, जो प्रभ पावे तिवे न चावे, जो

राष्ट्रपदी जिसके अंतरराग अभिमान सो नरक पाती होवत स्वान। जो जाने में जो बनवंत सो होवत विस्ता का जंत।

फार अनित तपस्या करे अंकार नरक सुरग फिर फिर अवतार अनित जतन कर आत्म नहीं द्रवे हर दरगे को कैसे गवे।

जब लग मोह मगन संग माए तब लग धर्म राय देश जाए प्रभु कृपा ते बंधन टूटे गुरु प्रसाद नानक हो छूटे सहस खटे लख उठतावे तृप्त न आवे माया पाछे पावे अनेक भोग दुखिया के करे न तृप्तावे खप खप मरे बिना संतोष नहीं को राजे सुपन मनोरथ बिरथे सब काजे।

समाए आप उपदेश है समझे आपे रचिया सब के साथ आप कीनो आपन विस्तार सब कछ उसका ओ करने हार उस पे तिन कहो किस होए थाम सनंतर एक कैसोए अपने चलित आप करने हार कौतुक करे रंग अपार मन में आप मन अपने माहे नानक कीमत कह न जाए सत सत सत प्रभु स्वामी गुरु प्रसाद किने वख्यानी सच सच सच सब कीना कोट मदे किने बिरले चीना पला पला।

और अष्टपदी संत के दुखन आरजा कटे हैं, संत के दुखन जमते नहीं छुटे, संत के दुखन सुख सब जाए, संत के दुखन नरक में पाए, संत के दुखन मत होए मलीन, संत के दुखन सो बाते हीन, संत के हते को रखे न कोए, संत के दुखन थान प्रस्त होए, संत कृपाल कृपा जे करे, नानक संत संग निंदक भी तरे, संत के दुखन ते मुख पवे, संत के दुखन कागजों लवे, संत के दुखन सर्प जोन पाए, संत के दुखन त्रिगत जोन किरमाए, संत के दुखन तृष्णा में जले, संत के दुखन सबको छले, संत के दुखन तेज सब जाए, संत के दुखन नीच निचाए, संत दुखी का थाव को नाहे, नानक संत पावे तो ओए भी जत पाहे, संत का निंदक महा अपताई, संत का निंदक खिंट करना पाई, संत का निंदक महा त्यारा, संत का निंदक परमेश्वर मारा, संत का निंदक राजते हीन, संत का निंदक दुखिया अर्दीन, संत के निंदक को सर्व रोग, संत के निंदक को सदा बिजोग, संत की निंदा दुख में दुख, नानक संत पावे ता उसका भी होए मोख, संत का दुखी सदा अपवित, संत का दुखी किसे का नहीं मित, संत के दुखी को दान लागे, संत के दुखी को सब त्याग, संत

नानक संत पावे तां ले मिलाए। संत का दोखी अदबीच से टूटे, संत का दोखी किते काज ना पहुंचे। संत के दोखी तो उद्यान बरमाइए, संत का दोखी उजड़ पाइए। संत का दोखी अंतर ते थो था, जो सांस बिना मृतक की लो था। संत के दोखी की जड़ किछ ना है, आपन बीज आपे ही खाए। संत के दोखी को अवर ना राखन हार, नानक संत पावे ताले उबार। संत का दोखी यूं बिललाए, जो जल बिहून मछली तड़फड़ाए। संत का दोखी भूखा नहीं राजे, जो पावक ईंधन नहीं त्रापे। संत का दोखी छुटे अकेला, जो बुआर तिल खेत माहे दुएला। संत का दोखी तरम ते रहत, संत का दोखी सब मिथ्या कहत। कीर्त निंदक का तुरही पया, नानक ज्योतिष पावे सोई थिया। संत का दोखी बिगड़ रूप होए जाए, संत के दोखी को दरगह मिले सजाए। संत का दोखी सदा सहकाइए, संत का दोखी ना मरे ना जीवाइए। संत के दोखी की पूजे ना आशा, संत का दोखी उठ चले निराशा। संत के दोख ना त्रिष्टे कोए, जैसा पावे तैसा कोई होए। पया किर्त न मेटे कोए, नानक जाने सच्चा सोए। सब कट तिसके ओ करने हार, सदा सदा तुसको नमस्कार। प्रभ की उस्तत करो दिन रात, तिसे ते आवो सास विरास। सब कछ वरते तुसका किया, जैसा करे तैसा कोथिया। अपना खेल आप करने हार, दूसर कौन कहे विचार। जिसनो कृपा करे तिस आपन नाम दे, बड़ पागी नानक जन से श्लोक।

नानक दुख परम पौ जाए। अष्टपदी मानुक की टेक बिरती सब जान, देवन कोई कै भगवान, जिस कह दिए।

अरबिंद का हर करम श्रवण हर कथा हर दरगह नानक पूजल मथा बड़पागी ते जन जग माहे सदा सदा हर के गुण गाहे राम नाम जो करें विचार से तनवंत गनी संसार मन तन मुख बोले हर मुखी सदा सदा जानो ते सुखी एक को एक एक पछाने इत उत कियो सो जी जाने नाम संग जिसका मन मानिया नानक तिने निरंजन जानिया गुर प्रसाद आपन आप सुजै तिसकी जानो तृष्णा बुझै साध संग हर हर जस कहत सर्व रोग ते ओ हर जन रहत अंगन कीर्तन केवल ख्यान ग्रस्त में सोई निर्वाण एक ऊपर जिस जन की आशा तिसकी कटिए जन की फासा पार ब्रह्म की जिस मन भूख नानक किसे न लागे दुख जिसको हर प्रभु मन से त्यावे सो संत सुहेला नहीं बुलावे जिस प्रभु अपना कृपा करे सो सेवक कहो किसते डरे जैसा सा तैसा दृष्टाया अपने कार्य में आप समाया सोदत सोदत सोदत सीजिया गुर प्रसाद तक सब बुझिया जब देखो तब सब किस मूल नानक सो सुखम सोई अस्थूल न किस जन्म न किस मरे आपन चलित आप ही करे आवन जावन दृष्ट अंदृष्ट आज्ञाकारी तारी सब श्रेष्ठ आपे आप सगल में आप अनेक जुगत रखाप उथाप अविनाशी नाही किस खंड तारण तार रहे हो ब्रह्मंड अलक अभेद पुरख प्रताप आप जपाए तनानक जाप जिन प्रभु जाता सो शोभावंत सगल संसार उदर तिन मंत प्रभु के सेवक सगल उदारन प्रभु के सेवक दूप विसारन आपे मेल ले कृपाल गुर का सब जप पे निहाल उनकी सेवा सोई लागे जिसनो कृपा करें बट पागे नाम जपत पावे विश्राम नानक तिन पुरुष को उत्तम करमान जो किछ करे सो प्रभ के रंग सदा सदा बसे हर संग सहे सुबाए होवे सो होए करने हार पछाने सोए प्रभ का किया जन मीठ लगाना जैसा सा तैसा दृष्टाना जिसते उपजे तिस माहि समाए ओए सुख निदान उन्हू बने आए आप उसको आप दीनो मान नानक प्रभ जन एक को जान श्लोक सर्व कला भरपूर प्रभु बिरथा जाननहार जाके सिमरन उदरी नानक तिस बलिहार अष्टपदी टूटी गांडन हार गोपाल सर्व जिया आपे प्रतपाल सगल की चिंता जिस मन माहे तिसते बिरथा कोई नाहे रे मन मेरे सदा हर जाप अविनाशी प्रभ आपे आप आपन किया कछु न होए जे सो प्राणी लोचे कोए किस दिन नाही तेरे किछ काम गत नानक जप एक हर नाम रूपवंत होए नाही मोह प्रभ की जोत सगल कट सो है तनवंता होए क्या को गर्भ है जा सब किस किसका दिया दर्भ आप सूरा जे को कहावे प्रभ की कला बिना कह धावे जे को होए बहदा तार किस दिन हार जाने गावार जिस गुर पर साल तू टहो रोग नानक सोजन सदा अरोग जो मंदर को थामे थमन त्यों गुर का शब्द मने अस्थमन ज्यो पाखान नाल चढ़ तरे प्राणी गुर चरण लगत निस्तर ज्यो अंधकार दीपक प्रगास गुर दर्शन देख मन होए विगास जो महा उद्यान में मार्ग पावे क्यों साधु संग मिल जोत प्रगटावे तिन संतन की बाचो तूर नानक की हर लोचा पूर मन मूरख काहे बिल लाइये पूर्व लिखे का लिखिया पाइये दुख सुख प्रभ देवन हार अवर त्याग तू तिसे चितार जो कछ करे सोई सुखमान पूला काहे फिरे अजान कौन बख्त आई तेरे संग लपट रहे रस लोभी पतंग राम नाम जप हृदय माहे नानक पद से ती कर जाहे जिस वक्र को लैन तू आया राम नाम संतन कर पाया तज अभिमान लो मन मोल राम नाम हृदय में तोल लाभ के संत संचाल अवर त्याग दिखिया जंजाल
तन तन कहे सब कोए, मुख उजल हर दरगह सोए, क्यों व्यापार बिरला व्यापार है, नानक ता कह सब बलिहार है। चरण साध के तोय तोय पियो, अरब साध को अपना जियो, साध की तूर करो स्नान, साध ऊपर जाइए कुर्बान, साध सेवा वड पागी पाइये, साध संहर कीर्तन गाइये, अनेक विघन पे साधु राखे, हर गुण गाय अमृत रस चाखे, ओट गई संतें दर आया, सर्व सुख नानक ने पाया, मृतक को जीवालनहार, पूखे को देवत आधार, सर्व निधान जा की दृष्टि माहे, पूर्व लिखे का लेना पाए, सब किस किस का ओ करने जोग, किस दिन दूसर हुआ न होग, जप जन सदा सदा दिन रहनी, सबसे ऊंच निर्मले करनी, कर कृपा जिसको नाम दिया, नानक सोदन निर्मल थिया, जाके मन गुर की प्रतीत, किस जन आवे हर प्रवचीत, भगत भगत सुनिए ते लोए, जाके हृदय को होए, सच करनी सचता की रहत, सच हृदय सतमुख कैत, साची दृष्ट साचा आकार, सच वर्ते साचा पासार, पार ब्रह्म जिन सच कर जाता, नानक सोदन सच समाता। श्लोक रूप न रेख न रंग किछ, त्रिगुण ते प्रभु भिन्न, तिसे बुझाए नानका, जिस होवे सो प्रसन्न। अष्टपदी।

स्थान जैसा दिन आवे तैसा नानक जान। नाना रूप नाना जाके रंग नाना देख करें एक रंग नाना विद कीनो विस्तार प्रभ अविनाशी एकंकार। नाना चलत करे खिन माहे पूरे ओ पूरन सब ठाए नाना विद करदंत बनाई अपनी कीमत आपे पाए। सब कब तिसके सब तिसके ठाओ जब जब जीवे नान खरनाओ। नाम के तारे सगले जंत नाम के तारे खंड ब्रह्मंड नाम के तारे स्मृत वेद पुराण नाम के तारे सुनन ज्ञान ध्यान नाम के तारे आगाश पताल नाम के तारे सगल आकार नाम के तारे पुरिया सब भवन नाम के खंग उदरे सुन श्रवन। पर कृपा जिस अपने नाम लाए नानक चौथे पद में सो जनगत पाए। रूप सत जा का सत स्थान पुरुष सत केवल प्रधान करतूत सत सत जा की बाणी सत पुरुष सब माए समानी। सत कर्म जा की रचना सत मूल सत सत उत्पत्त सत करनी निर्मल निर्मली जिसे बुझाए किसे सब पली। सत नाम प्रभ का सुखदाई विश्वास सत नाम गुर ते पाई। सत बचन साधु उपदेश सत ते जन जा कह रे प्रवेश सत निरत बूझे जे कोए नाम जपता की गत होए। आप सत की आसव सत आपे जाने अपनी मित गत जिसकी सृष्टि हो करने हार और न बूझ करत विचार करते की मित न जाने किया नानक ज्योतिष पावे सो वर्तिया। बिस्मन बिस्म पे बिस्माद जिन बूझिया किस आया स्वाद प्रब के रंग रात जन रहे गुर के बचन पदार्थ लहे। ओए दाते दुख का तनहार जाके संग करे संसार जन का सेवक सो वड पागी जन के संग एक लिव लागी। गुन गोविंद कीर्तन जन गावे गुर प्रसाद नानक फल पावे। श्लोक आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी बे सच। अष्टपदी चरण सत सत प्रसन्हार पूजा सत सत सेवदार दर्शन सत सत देखनहार नाम सत सत त्यावनहार। आप सत सत सबधारी आपे गुण आपे गुणकारी शब्द सत सत प्रभक्ता सुरत सत सत जस सुनता। बुझनहार को सत सब होए नानक सत सत प्रभ सोए। सत स्वरूप हृदय जिन मानिया करण करावन तिन मूल पछानिया। जहाँ कह हृदय विश्वास प्रग आया सत ज्ञान तिस मन प्रगटाया। कहते निर्भो होए बसाना जिसते उपजा तिस माय समाना। बस्त माए ले बस्त गदाई ताको पिन न कहना जाई। बूझे बूझन हार विवेक नारायण मिले नानक एक। ठाकुर का सेवक आज्ञाकारी ठाकुर का सेवक सदा पुजारी। ठाकुर के सेवक के मन प्रतीत ठाकुर के सेवक की निर्मल रीत। ठाकुर को सेवक जाने संग प्रभ का सेवक नाम के रंग। सेवक को प्रभ पालन हारा सेवक की राखे निरंकारा। सो सेवक जिस दया प्रभ धार है नानक सो सेवक साथ साथ समार है। अपने जन का प्रदाता कह अपने सेवक की सर पर राख है। अपने दास को दे बढ़ाई अपने सेवक को नाम जपाई। अपने सेवक की आप पत राख है ताकि गतमित कोई न लाख है। प्रभ के सेवक को ना पहुँचे प्रभ के सेवक पूछते ऊँचे। जो प्रभ अपनी सेवा लाया नानक सो सेवक दैन प्रगटाया। नीकी कीरी महकल राख है पसंद करे लश्कर कोट लाख है। जिसका साफ न काटत आप ताको राष्ट्र देकर हाथ। मानस जतन करत बहुपात तिसके कर्तव्य से जात। मारे न राखे और न कोए सर्व जिया का राखा सोए। काहे सोच करे रे प्राणी जप नानक प्रभ अलख विडाणी। बारंबार बार प्रभ जपी है पी अमृत मन तंत्र पी है। नाम रतन जिन गुरमुख पाया किस किस अवर नाही दृष्टाया। नाम तन नामो रूप रंग नामो सुखर नाम का संग।
नाम रस जो जन तृष्काने मंथन नामे नाम समाने उठत बैठत सोवत नाम कहो नानक जन कै सब काम बोलो जस जे बै दिन रात प्रभ अपने जन की नीदात करह भगत आत्म कह चाहे प्रभ अपने सो रह समाये जो हो आहो वत सो जाने प्रभ अपने का हुक्म पछाने तिसकी महिमा कौन बखानो तिसका गुण कह एक न जानो आठ पैर प्रभ बसे हजूरे कहो नानक से जन पूरे मन मेरे तिन की ओट ले मंथन अपना तिन जन

पार्थमिता में अवश्य आप सगली छाड़ तिस जन की तू सेवा नाग आवन जान न होवी तेरा नानक तिस जन के पूजो सब तेरा। श्लोक सत पुरख जिन जानिया सत गुर तिसका नाम तिसके संग सिख उदरे नानक हर जिन गाव। अष्टपदी सतगुर सिख की करे प्रतपाल सेवक को गुर सदा दयाल सिख की गुर दुर्मत मल हिरे गुर बचनी हर नाम उचरे सतगुर सिख के बंधन काटे गुर का सिख विकार ते हाटे सतगुर सिख को नाम तन दे गुर का सिख वड़ पागी है सतगुर सिख का हल्क पलक सवार नानक सतगुर सिख को जी नाल समार गुर के गृह सेवक जो रह गुर की आज्ञा मन में सह आप उसको कर कछ न जनावे हर हर नाम हृदय सत्यावे मन बेचे सतगुर के पास तिस सेवक के कार्य रास सेवा करत होए ने कामी किसको हो प्राप्त स्वामी अपनी कृपा जिस आप करे नानक सो सेवक गुर की मतले बीस विश्वे गुर का मन माने सो सेवक परमेश्वर की गत जाने सो सतगुर जिस हृदय हर नाओ अनेक बार गुर को बल जाओ सर्व निदान जी का दाता आठ पैर पार ब्रह्म रंग राता ब्रह्म में जन जन में पार ब्रह्म एक आप नहीं कछ भरम सह स्यान लया न जाइए नानक ऐसा गुर बड़ पागी पाइये सफल दर्शन पेखत पुनीत परसत चरण गत निर्मल रीत पेखत संग राम गुण गवे पार ब्रह्म की दरगे गवे सुनकर वचन करन आघाने मन सुन तो खातम कपियाने पूरा गुर अख्यो जाका मंत्र अमृत दृष्ट पेखे हो संत गुण बेअंत कीमत नहीं पाए नानक जिस पावे तिस लय मिलाए जीवा एक पुस्तक अनेक सतपुरुष पूरन विवेक काहू बोल न पहुँच प्राणी अगम अगोचर प्रभ निर्वाणी निराहार निर्वैर सुखदाई ताकि कीमत किने न पाई अनेक भगत बंधन मुक्त करे चरण कमल हृदय सिमरे सब बलिहारी सतगुरु अपने नानक जिस पर साथ ऐसा प्रभ जपने क्यों हर रस पावे जन कोए अमृत पीवे अमर सो होए उस पुरख का नाही कदे विनाश जाके मन प्रगटे गुण पास आठ पैर हर का नाम ले सच उपदेश सेवक को दे मोह माया के संग न लेप मन में राखे हर एक अंधकार दीपक प्रगासे नानक परम मोह दुख सहते नासे तपत माए ठाट वरताई अंध भया दुख नाठे भाई जन्म मरण के मिटे अंदेशे साधु के पूर्ण उपदेशे पहुंचू का निरपौ हो बसे सगल व्याध मन से खैनते जिसका साथ तिन कृपा भारी साध संग जप नाम मुरारी ठित पाई चूके परम गवन सुन नानक हर हर दस श्रवण निर्गुण आप सरगुण भी ओही कलाकार जिन सगली मोही अपने चरित प्रभ आप बनाए अपनी कीमत आपे पाए हर बिंदु जाना ही कोए सर्व निरंतर एक को सोए ओत पोत रव्या रूप रंग कहे प्रभा साध कै संग रच रचना अपनी कल तारी अनेक बार नानक बलिहारी। श्लोक साथ न चाले बिन भजन दिखिया सगली चार हर हर नाम कमावना नानक इहो दमसार। अष्टपदी संत जना मिल करो विचार एक सिमर नाम आधार अवर उपास सब मीत विसारो चरण कमल में उधार करण कारण सो प्रभ संगरथ दृढ़ कर गहो नाम हर वत यो तन संचो हो वो भगवंत संत जना का निर्मल मंत एक आस राखो मन माहे सर्व रोग नानक मिट जाहे जिस तन को चार कुंठ उठ भावे सो तन हर सेवा ते पावे जिस सुख को नित बांचे मीत सो सुख साधु संग परीत जिस शोभा को करे पली करनी सा शोभा पज हर की सरनी अनेक उपावी रोग न जाए रोग मिटे हर औखद लाए
सर्व निदान में हर नाम निदान, जप नानक दरगह परवान। मंत्र बोधो हर कहनाए, दैज स्थावत आवे ठाए, ताको बिघन ना लागे कोए, जा कह हृदय बसे हर सोए। कल पाती ठांडा हर नाओ, सिमर सिमर सदा सुख पाओ, पौ बिन से पूरन होए आस, भगत पाए आत्म प्रगास। चित कर जाए बसे अविनाशी, कहो नानक काटी जम फासी। तत विचार कहे जन साचा, जन्म मरे सो काचो काचा। आवागमन मिटे प्रभु सेव, आप त्याग शरण गुरुदेव। त्यों रतन जन्म का होए उधार, हर हर सिमर प्राण आधार। अनेक उपाव न छूटन हारे, सिमरत सास वेद विचारे। हर की पगत करो मन लाए, मन बंशत नानक फल पाए। संग ना चाल तेरे धना, तू क्या लगता में मूर्ख मना। सुत मीत कुटम अर्बनता, इनसे कहो तुम कर्म सना था। राज रंग माया विस्तार, इनसे कहो कर्म छुटकार। अहस्ती रथ असवारी, चूठा डंप चूट पासारी। जिन दिए तुस बुझे ना बेगाना, नाम विसार नानक पछताना। गुर की मत तू ले आने, पगत बिना धो डूबे स्याने। हर की पगत करो मन मीत, निर्मल होए तुम्हारे चीत। चरण कमल राखो मन माहे, जन्म जन्म के किल बिछ जाए। आप जपो अगरा नाम जपाओ, सुनत कह करैत गत पाओ। सार भूत सत हर को नाओ, सह सुभाए नानक गुण गाओ। गुण गाव तेरी उतरस मैल, बिनस जाए हो मैं विख फैल। हो है अचिंत बसे सुखनाल, साफ ग्रास सर नाम समाल। छाड़ स्यान सगली मना, साफ संग पावे सत धना। हर पूंजी संच करो व्यवहार, इहां सुख दरगे जयकार। सर्व निरंतर एको देख, कहो नानक जाके मस्तक लेख। एको जप एको सलाह, एको सिमर एको मन आहे। एक के गुण गाव अनंत, मंथन जाप एक भगवंत। एक को एक एक हर आप, पूरन पूर रहो प्रव्याप। अनेक विस्तार एक ते भये, एक अराज प्राशक गए। मंथन अंतर एक प्रवराता, गुरु प्रसाद नानक एक जाता। श्लोक फिरत फिरत प्रभु आया, परया को शरणाए। नानक की प्रभु बेनती, अपनी पगति लाए। अष्टपदी जाचक जन जाचे प्रदान, कर कृपा देवो हर नाम। साजना की मांगो तूर, पार ब्रह्म मेरी सरदा पूर। सदा सदा प्रभु के गुण गावो, साथ साथ प्रभु तुम्हें ध्यावो। चरण कमल सो लागे प्रीत, भगत करो प्रभु की नित नीत। एक ओट एको आधार, नानक मांगे नाम प्रसार। प्रभु की दृष्टि महा सुख होए, हर रस पावे बिरला कोए। जिन चाख्या से जन तृप्ता में, पूरन पुरख नहीं डोलाने। सुवर भरे प्रेम रस रंग, उपजे चाव साध के संग। परे शरण आम सब त्याग, अंतर प्रगास अम दिन लिवलाग। बड़ पागी जपिया प्रभु सोए, नानक नाम रति सुख होए। सेवक की मनसा पूरी भई, सतगुर ते निर्मल मत लई। जन को प्रभु होयो दयाल, सेवक की नो सदा निहाल। बंधन काट मुक्त जन भया, जन्म मरण दुख क्रम गया। इच्छ पुनी सरदा सब पूरी, रव रया सब संग हजूरी। जिस पासा तिन लिया मिलाए, नानक भक्ति नाम समाए। सो क्यों बिसरे जे काल न पाने, सो क्यों बिसरे जे की आ जाने। सो क्यों बिसरे जिन सब किछ दिया, सो क्यों बिसरे जे जीवन जिया। सो क्यों बिसरे जे अगन में राखे, गुरु प्रसाद को बिरला लाखे। सो क्यों बिसरे जे बिखते काडे, जन्म जन्म का टूटा गांडे। गुरपूरे तत यह बुझाया, प्रभु अपना नानक जन त्याया। साजन संत करो यो काम, आम त्याग जपो हर नाम। सिमर सिमर सिमर सुख पावो, आप जपो अवरह नाम जपाओ। पगत पाए तरी है संसार, बिन पगति तन हो सी चार। सर्व कल्याण सुख निज नाम, बूढ़त जाप पाए विश्राम। सगल दुख का होत नाश, नानक नाम जपो गुणकास।
उपजी प्रीत प्रेम रस चाओ, मन तन अंतर एही सुआओ। नेत्रों पेक दर्श सुख होए, मन विकसे साध चरण तोए। भगत जना के मन तन रंग, बिरला को पावे संग। एक बस दी जय कर मया, गुर प्रसाद नाम जप लया। ताकि उपमा कहीं न जाए, नानक रहया सर्व समाए। प्रभु संग दीन दयाल, भगत वचल सदा कृपाल। अनाथ नाथ गोविंद गोपाल, सर्व कटा सर्व कृपाल। आद पुरकारण करतार, भगत जना के प्राण आधार। जो जो जपै सो हुए पुनीत, भगत पाए लावे मनहित। हम निर्गुनियार नीच अजान, नानक तुमरी शरण पुरख भगवान। सर्व वैकुंठ मुक्त मोक्ष पाए, एक निमित हर के गुण गाए। अनेक राज भोग बढ़ियाई, हर के नाम की कथा मन भाई। बहु भोजन का प्रसंगीत, रसना जपती हर हर नीत। फली सो करनी सो बातनवंत, हृदय बसे पूरन गुरमंत। साध संग प्रभु देव निवास, सर्व सुख नानक प्रगास। श्लोक सर्गुण निर्गुण निरंकार, सुन समाधि आप। आपन किया नानका, आपसे ही फिर जाप। अष्टपदी जब अकार यो कचना दृष्टे ताप, पाप तुम तब कहते होता। जब तारी आपन सुन समाद, तब बैर विरोध के संकमात। जब इसका वरण चेन ना जापत, तब हर्क शोक कोक्ष व्यापत। जब आपन आप पार ब्रह्म, तब मोह कहा किस होवत भरम। आपन खेल आप वर्ती जा, नानक करने हार न दूजा। जब होवत प्रभ केवल तनी, तब बंद मुकत को किसको बनी। जब एक है हर अगम अपार, तब नरक स्वरूप को कौन अवतार। जब निर्गुण प्रभ सह सुवाए, तब शिव सकट को कित ठाए। जब आपे आप अपनी जोत धरे, तब कौन निडर कौन कत डरे। आपन चलित आप करने हार, नानक ठाकुर अगम अपार। अविनाशी सुख आपन आसन, तह जन्म मरण को कहां विनाशन। जब पूरन करता प्रभु होए, तब जम की त्रास कहो किस होए। जब अवगत अगोचर प्रभु एका, तब चित्र गुप्त किस पूछत लेखा। जब नाथ निरंजन अगोचर अगादे, तब कौन छुटे कौन बंधन बांधे। आपन आप ही अचर जा, नानक आपन रूप आप ही ऊपर जा। जय निर्मल पुरुष पुरुष पत होता, तह बिन मैल कहो क्या तोता। जय निरंजन निरंकार निर्वाण, तह कौन कौमान कौन अभिमान।

कहिया चेरा बिस्मर बिस्म रहे बिस्माद नानक अपनी गत जानो आप जय अचल अछेद अभेद समाया उहा किसे व्यापत माया आप उसको आपे

निहारा बहु बेअंत ऊचते ऊंचा नानक आपस को आते पहुंचा जह आप रचियो प्रपंच आकार त्यो गुण में कीनो विस्तार पाप पुन तह पई कहावत कौ नरक कौ सुर्ग बंछावत आल जाल माया जिंजाल होमे मोह परम तय पार दुख सुख मान अपमान अनेक प्रकार की योग ख्यान आपन खेल आप कर देख है खेल संकोच है तो नानक एक है जय अवगत भगत है आप जय पसरे पासा संत प्रताप दो पास का आपे धनी उनकी शोभा उन्हों बनी आपे कौतक करे अनंत सोज आपे रस को गन निर्जोग जिस पावे तिस आपन ना इलावे जिस पावे तिस खेल खिलावे बेसुमार अथा अगनत अतोले ज्यों बुलावो त्यों

नानकिए को पसरिया दूजा कह विस्तार। अष्टपदी आप कथे आप सुनने हार आपे एक आप विस्तार जात स्थावे ता श्रेष्ठ उपाय अपने भाणे ले समाए सुनते पिन नहीं किछ होए आपन सूत सब जगत करोए जाको प्रभ जियो आप बुझाए सच नाम सोई जन पाए सो संदर्शी तत्का देता नानक सगल श्रेष्ठ का जेता जी जंत्र सबका कह हाथ दीन दयाल अनाथ को नाथ जिस राखे तिस कोई न मारे सो मुआ जिस मनो बिसारे तिस तज अगर कहा को जाए सब सिर एक निरंजन राय जी की जुगत जाके सब हाथ अंतर बाहर जानो साथ गुण निदान बेअंत अपार नानक दास सदा बलिहार पूरन पूर रहे दयाल सब ऊपर होत कृपाल अपने कर्तव्य जाने आप अंतर जामी रहो व्याप प्रतपाल है जी अनुभव पात जो जो रचियो सो तिस एहतियात जिस पावे तिस लय मिलाए पगत करे हर के गुण गाए मन अंतर विश्वास कर मान्या करन हार नानक इक जान्या जन लागा हर एक कहनाए तिसकी आसना बिरथी जाए सेवक को सेवा बने आए हुकम बूझ परम पद पाए किसते ऊपर नहीं विचार जाके मन बसया निरंकार बंधन तोर पए निर्वैर अन दिन पूजे गुर के पैर ए लोक सुखी ए पर लोक सुहेले नानक हर प्रभ आपे मेले साध संग मिल करो आनंद गुण गावो प्रभ परमानंद राम नाम तक करो विचार दुर्लभ देखा करो उदार अमृत वचन हर के गुण गाओ प्राण तरन का यह सुहाओ आठ पैर प्रत्येक खोनेरा मिटे अज्ञान बिन से अंधेरा सुन उपदेश हृदय बसाओ मन इच्छे नानक फल पाओ हलत पलत दोए लिहो सवार राम नाम अंतर उधार पूरे गुर की पूरी दीखिया जिस मन बसे तिस साच परीखिया मन तन नाम जपो लिवलाए दुख दर्द मंगते पहुँचाए सच व्यापार करो व्यापारी दरगे निभे खेप तुम्हारी एका टेक रखो मन माहे नानक दौर न आवे जाए किसते दूर कहा को जाए उभरे राखन हार ध्याए निरपौ जपै सकल पौ मिटे प्रभ कृपा ते प्राणी छुटे जिस प्रभ राखे तिस नाही दुख नाम जपत मन होवत सुख चिंता जाए मिटे अंकार तिस जन को कोई न पहुंचन हार सिर ऊपर ठाडा गुर सूरा नानक ताके कारज पूरा मत पूरी अमृत जाके दृष्ट दर्शन पेखत कुदरत श्रेष्ठ चरण कमल जाके अनूप सफल दर्शन सुंदर हर रूप तन सेवा सेवक प्रवान अंतर जामी पुरख प्रदान जिस मन बसे सोत निहाल ताके निकट नावत काल अमर पे अमरा पद पाया साथ संग नानक हर ध्याया। श्लोक ज्ञान अंजन गुर दिया अज्ञान अंधेर विनाश हर कृपा ते संत भेटिया नानक मन प्रगास। अष्टपदी संत संग अंतर प्रगीठा नाम प्रभु का लागा मीठा सगल समग्री एक स्पट माहे अनक रंग नाना दृष्टा है नवनिद अमृत प्रभ का नाम देही मैं इसका विश्राम सुन समाद अनहत तहनाद कह न जाई अचरज विस्माद तिन देखिया जिस आप दिखाए नानक तिस जन सो जी पाए सो अंतर सो बाहर अनंत कट कट व्याप रहा भगवंत तरण माए आकाश त्याल सर्व लोक पूरन प्रताल बम तिन पर्वत है पार ब्रह्म जैसी आज्ञा तैसा करम पौन पानी बह संतर माहे चार कुंट बह दिसे समाहे तिसते पिन नहीं को ठाओ गुर प्रसाद नानक सुख पाओ वेद पुराण सिमृत में देख ससियर सूर नक्षत्र में एक बाणी प्रभ की सबको बोले आप अडोल न कभू डोले सर्व कला कर खेल खेल मोल न पाये गुणे अमोल सर्व ज्योत में जाकी ज्योत तार दे ओ स्वामी ओत पोत गुरु प्रसाद धर्म का नाश नानक तिन में यो विश्वास
संत जना का पेखन सब ब्रह्म, संत जना के हृदय सब धर्म, संत जना सुने शुभ वचन, सर्व व्यापी राम संग्रचन, जिन जाता तिसकी यह रहत, सत बचन साधु सब कहत, जो जो होए सोई सुख माने, करण करावन हार तब जाने, अंतर बसे बार भी ओही, नानक दर्शन देख सब मोही, आप सत किया सब सत, तिस तब ते सगली उत्पत, तिस पावे ता करे विस्तार, तिस पावे ता एकंकार, अनेक कला लखी न जाए, जिस पावे तिस रहे मिलाए, कवन निकट कवन कही है दूर, आपे आप भरपूर, अंतर्गत जिस आप जनाए, नानक तिस जन आप बुझाए, सर्व भूत आप वर्तारा, सर्व नैन आप देखनहारा, सगल समग्री जा का तना, आपन जस आप ही सुना, आवन जान एक खेल बनाया, आज्ञाकारी की नीमाया, सब कह मद अलिप तो रहे, जो किस कहना सो आपे कहे, आज्ञा आवे आज्ञा जाए, नानक जा पावे ता ले समाए, इसते हो सो नाही बुरा, ओरे कहो किने कछ करा, आप भला करतूत अतने की, आपे जाने अपने जी की, आप साच तारी सब साच, ओत पोत आपन संगराच, ताकि गतमित कहीं न जाए, दूसर होए तासो जी पाए, तिस ताकि या सब परवान, गुर प्रसाद नानक हो जान, जो जाने तिस सदा सुख होए, आप मिलाए लय प्रसोए, ओ तनवंत कुलवंत पतवंत, जीवन मुक्त जिस हृदय भगवंत, तन तन तन जन आया, जिस पर साथ सब जगत तराया, जन आवन का ए सुहाओ, जन के संचित आवे नाओ, आप मुक्त मुक्त करे संसार, नानक किस जन को सदा नमस्कार। श्लोक पूरा प्रभु आराध्या, पूरा जा का नाम, नानक पूरा पाया, पूरे के गुण गाओ अष्टपदी, पूरे गुर का सुन उपदेश, पार ब्रह्म निकट कर देख, साथ साथ सिमरो गोविंद, मन अंतर की उतरे चिंद, आस अनित्या गोतरंग, संत जना की तूर मन मंग, आप छोड़ बेंती करो, साध संग अग्न सागर करो, हर तन के पर ले हो पंडार, नानक गुर पूरे नमस्कार, खेम कुशल सहज आनंद, साध संग पज परमानंद,

अनेक गोपाल दमोदर दीन दयाल दुख पंजन पूरन कृपाल सिमर सिमर नाम बारंबार नानक जी का यह आधार। उत्तम श्लोक साध के बचन अमलीक लाल ए रतन सुनत कमा।

जय जय शब्द अनाहद वाजे, सुन सुन अनद करे प्रभु गाजे। प्रगटे गोपाल महंत कै माथे, नानक उदरे तिन कै साथे

साध संग लैन सो प्रसन्न भय गुरुदेव पूर्ण होई सेवक की सेव आल जंजाल बिकारते रहते राम नाम सुन रसना कहते कर प्रसाद दया प्रभधारी नानक निभी खेप हमारी प्रभु की उस

होए प्रधान पुरख प्रगट सब लोए सबसे ऊंच पाए अस्थान बहु न होवे आवन जान हर तन काढ़ चले जन सोए नानक जिसे प्राप्त होए खेम शांत रिद्ध नव निद बुद्ध ज्ञान सर्व तह सिद्ध

पास सुंदर चतुर तत्व का बेता सुंदर सी एक दृष्टेता ए फल तिस जन के मुख भने गुरु नानक नाम बचन मन सुने एहो निधान जपे मन कोए सब जुग में ताकी गत होए गुण गोविंद नाम धुन बाणी सिमरत शास्त्र वेद बखाणी सगल मतात केवल हर नाम गोविंद भगत के मन विश्राम कोट अपराध साध संग मिटे संत कृपा से जमते छुटे जाके मस्तक कर्म प्रभ पाए साध शरण नानक ते आए जिस मन

जाने दुख रोग बिन से पे परम साध नाम निर्मलता के कर्म सबते ऊंचता की शोभा बनी नानक ए गुण नाम सुखमणि सबते ऊंचता की शोभा बनी नानक ए गुण नाम सुखमणि।

उठत बैठत हर पजो साधु संग परीत नानक दुर्मत छुट गई पार ब्रह्म बसे चीत। श्लोक तीन ब्यापे जगत को तुरिया पावे कोय नानक संत निर्मल पये जिन मन वसिया सोए। पौड़ी तृतीया त्रै गुण बिखे फल कब उत्तम कब नीच नरक सुर्ग प्रमतो कणो सदा संगारे मीच। हरक सोग सहसा संसार हौ हौ करत बिहाये जिनकी ये तिसे न जाननी चित में अनक उपाय। आद ब्याद उपाद रस कभो न टूटे ताप पार ब्रह्म पूरन तनी नह बूझे परताप। मोह परम बूढ़त कणो महानरक में वास कर कृपा प्रभ राख।

पौ बिन से अमृत रसे रंग रते निरंकार दुख दारद अपवित्रता नासे नाम आधार। सुर नर मुन जन खोजते सुख सागर गोपाल मन निर्मल मुख उजला हो।

अनुसार जन्म मरण बहु जोन प्रमण कीने कर्म अनेक रचनहार ने सिमरियो मन ना विचार विवेक पाओ भगत भगवान संग माया लिप्त न रंच नानक बिरले पाये जो ना रचे परपंच। श्लोक खट शास्त्र ऊंचो कहे अंत न पारावार भगत सो है गुण गावते नानक प्रभ के द्वार। पौड़ी खस्तम

नारद मुन जन सुख व्यास जस गावत गोविंद रसगी दे हर्षो बीदे भगत रचे भगवंत। मोह मान प्रम दिन सियो पाई शरण दयाल चरण कमल मन तन बसे दर्शन देख निहाल। लाभ मिले तो ताहिरे साध संग निवलाए खाट खजाना गुण निध हरे नानक नाम त्याए। श्लोक संत मंडल हर जस कथ

आए पंडार संत संगत में पाई है अंत न पारावार। आप तजो गोविंद पजो शरण परो हर राय, दुख हरे पव जल तरे मन चिंदिया फल पाए। आठ पैर मन हर जपे सफल जन्म परवा।

अष्ट सिद्ध नव निध सगल पदार्थ पूरन बुद्ध कवल प्रकाश सदा आनंद निर्मल रीत निरोधर मंत्र सगल धर्म पवित्र।

हर नाम न जपें करत विपरीत, पर त्रै रमे बकें साध निंद, करन न सुनही हर जस बिंद। हिरे पर दर्ब उदर कहताई, अगर न निवरे तृष्णा न बुझाई, हर सेवा बिन ए फल लागे, नानक प्रभु बिसरत मर जमे अपागे। श्लोक। दस दिस खोजत मैं फिरियो, जत देखो तत सोए, मन बस आवे नानका, जे पूरन कृपा होए। पौड़ी। दसवीं दस द्वार बस कीने, मन

एकादशी निकट पेखो हर राम, इंद्री बस कर सुनो हर नाम, मन संतोख सर्व जी दया, इन विद वर्त संपूर्ण भया, तावत मन राखे इकठाए, मन तन शुद्ध जपत हर नाए, सब में पूर रहे पार ब्रह्म, नानक हर कीर्तन कर अटल एव धर्म।

द्वादशी दान नाम स्नान, हर की भगत करो तज मान, हर अमृत पान करो साध संग, मन तृप्ता से कीर्तन प्रव रंग, कोमल बाणी सबको संतोख है, पंच भू आत्मा हर नाम रस कोख है, गुर पूरे ते ए नेचो पाये, नानक राम रमत फिर जोन न आई है। श्लोक तीन गुणा में व्यापिया पूरन होत न काम, अतित उदाहरण मन बसे नानक छूटे नाम। पौड़ी त्रौदशी तीन ताप संसार, आवत जात नरक अवतार, हर हर भजन नाम मन में आयो, सुख सागर प्रभ निमख न गायो, हरख सोग का देह कर बांधियो, दीर्घ रोग माया आसादियो, दिने विकार करत श्रम पायो, नैनी नींद सुपन बरड़ायो, हर विसरत होवत ए हाल, शरण नानक प्रभु।

कुंठ प्रभ आप सगल पवन पूरन प्रताप दशे दिशा रविया प्रभ एक करण आकाश सब में प्रभ एक जल थल वन पर्वत पाताल परमेश्वर तें बसें दयाल सूक्ष्म स्थूल सगल भगवान।

नाम दुर्मत मिटी हो मैं छुटी सिमरत हर को नाम। शरण गई पार ब्रह्म की मिटिया आवागमन आप तरे आप कुटुंब स्यो गुण गोविंद प्रभ रमन। हर की टहल कमावनी जपिए प्रभु का नाम गुर पूरे ते पाया नानक सुख विश्राम। श्लोक पूरन कब होना।

मन चिंदे फल पाया। नानक हर गुण गाए पौड़ी, कोई गावे को सुने कोई करे विचार, को उपदेश है को दृढ़ है तिसका होए उदार। किलबिख का तय होई निर्मला, जन्म जन्म मल जाए, हलत पलत मुख ऊ

सतगुर पुरख दयाल है, जिसनो समत सब कोए, एक दृष्ट कर देखदा मन पावनी ते सिद्ध होए। सतगुर विच अमृत है, हर उत्तम हर पद सोए, नानक कृपा ते।

सारंग स्यों गुरुमुख हर गुण तास जन नानक हर शरणागति हर मेले गुर साबास। पौड़ी तू करता पुरख अगम है किस नाल तू वड़ी है तुद जेवड होए सो आखी है तुद जेहा तू है पड़ी है तू कट कट एक वर्तदा गुरुमुख पर गड़ी है तू सच्चा सब सदा खसम है सब दू तू चढ़ी है तू करें सो सच्चे।

जन नानक सुख सवन। महला चौथा, सतगुर दाता दयाल है जिसनो दया सदा होए, सतगुर अंदरों निर्वैर है सब देखे ब्रह्म इक सोए। निर्वैरा नाल जे वैर चलाएंदे तिन विच्चों तिस्तिया न कोए, सतगुर सबना दा कला मनाएंदा तिसदा बुरा क्यों होए। सतगुरु नो जेहा को इच्छदा तेहा फल पाए कोए, नानक करता।

जिस साहिब पावे तिस बख्श ले सो साहिब मन पानी जे को उस दी रीस करे सो मूर अजानी जिसनो सतगुरु मेले सो गुण रवे गुण आख वखानी नानक सच्चा सच है बुझ सच समानी। श्लोक महला चौथा। हर सत निरंजन अमर है निरपल निर्वैर निरंकार जिन जपिया एक मन एक चित तिन लत्ता हो मैं पार जिन गुरमुख हर आराध्या तिन संत जना जयकार कोई निंदा करे पूरे सतगुरु की तिसनो फिट फिट कहे सब संसार। सतगुरु विच आप वर्तदा हर आपे रखन हार तन तन गुरु गुण गावदा तिसनो सदा सदा नमस्कार जन नानक तिन को वारिया जिन जपिया सिरजनहार। महला चौथा। आपे तरती साजियन आपे आकाश विच आपे जंत उपायन मुख आपे दे गिरास सब आपे आप वर्तदा आपे ही गुणतास जन नानक नाम त्याय तू सब किलविक कटे तास। पौड़ी। तू सच्चा साहिब सच है सच सच्चे पावे जो तुद सच सलाह दे तिन जम कंकर नेड़ ना आवे तिनके मुख दर उजले जिन हर हृदय सच्चा पावे कूड़ यार पिछा सटियन कूड़ हृदय कपट महा दुख पावे मोह काले कूड़ यारिया कूड़ यार कूड़ो होए जावे। श्लोक महला चौथा। सतगुर तरती तर्म है तिस विच जेहा को बीजे तेहा फल पाए गुर सिखी अमृत बीजिया तिन अमृत फल हर पाए ओना हलत पलत मुख उजले ओए हर दरगह सच्ची पहनाए इकना अंदर खोट नित खोट कमावे ओह जेहा बीजे तेहा फल खाए जहां सतगुर सराफ नदर कर देखे स्वावगीर सब उगर आए ओए जेहा चितवें नित तेहा पाएन ओए ते हो जेहे देव जाए नानक दोही श्री खसम आपे वरत है नित कर कर दे।

जो निंदा करे सतगुर पूरे की सो साचे मार पचाया एहो अखर तिन आख्या जिन जगत सब उपाया। महला चौथा साहिब जिसदा नंगा पुखा होवे तिसदा नफर किथों रज खाए जे साहिब कै कर वथ होवे सो नफरे हथ आवे अनहोंदी किथों पाए। जिसदी सेवा कीती फिर लेखा मंगिए सा सेवा औखी होई नानक सेवा करो हर गुर सफल दर्शन की फिर लेखा मंगे न कोई पौड़ी। नानक विचार है संत जन चार वेद कहन दे भगत मुख है ते बोल दे से वचन हो वंदे प्रगट पहारा जापदा सब लोग सुनन दे सुख ना पायन मुगद नर संत नाल खान दे ओए लोचन ओना गुणे नो ओए अंकार चरण दे ओए विचारे क्या करें जा पाग तुर मंदे जो मारे तिन पार ब्रह्म से किसे ना संदे वैर करें निर्वैर नाल धर्म न्याय पचंदे जो जो संत सरापिया से फिरे पवंदे पेड़ मुंडा हूं कटिया तिस नाल सुकंदे। श्लोक महला चौथा अंतर हर गुरु त्याए दा वड़ी वड़ियाई कुछ दित्ती पूरे सतगुरु कटे नाही एक तिल किसे दी कटाई। सच साहिब सतगुरु के वल है ता चक चक मरे सब लोकाई निंदका के मोह काले करे हर करते आप वदाई। ज्यों ज्यों निंदक निंद करे त्यों त्यों नित नित चढ़े सवाई जन नानक हर आराध्या तिन पैरी आन सब पाई। महला चौथा सतगुर सेती गणत जे रखे हलत पलत सब तिसका गया नित चहिया पाए चगू सुटे चखदा चखदा चढ़ पया नित उपाव करे माया तन कारण अगला तन पी उड़ गया।

सब पाप जगते का तिन सिर लया, उस अगे पिछे कोई नाही, जिस अंदर निंदा मोह अंब पया, जे सोयने नो ओ हाथ पाए ताखे हूँ सेती रल गया, जे गुर की सरनी फिर ओह आवे ता पिछले अवगुण बख्श लिया, जन नानक अंदिन नाम से आया, हर सिमरत किलविक पाप गया। पौड़ी तू है सच्चा सच तू, सब दू ऊपर तू दीवान, जो तुद सच त्याय दे सच सेवन सच्चे तेरा मान, ऊना अंदर सच मुख उजरे सच बोलन सच्चे तेरा तान, से भगत जिन्नी गुरमुख सा लाया।

पूरा सतगुरु से हुन सतगुरु मारे जे मेलन नो बहुते आलोची है ना दे मिलन करतारे सत संगत तोई ना लहन विच संगत बुर विचारे कोई जाए मिले हुन ओना नो तिस मारे जम जंदारे गुर बाबे फिटके से फिटे गुर अंगद की ते

कोई पुत्र सिख सेवा करे सतगुरु की, तिस कार्य सब सवारे, जो इच्छे सो फल पाए सी, पुत तन लक्ष्मी खर मेले हर निस्तारे, सब निधान सतगुरु विच जिस अंदर हर उर्धारे, सो पाए पूरा सतगुरु जिस लिखिया लिखत लिलारे, जन नानक मांगे तूर तिन जो गुर सिख मित प्यारे। महला चौथा, जिनको आप दे वड्याई, जगत दी आपे आन तिनको पैरी पाए, डरिए ता जे किछ आप दू कीचै, सब करता अपनी कला वधाए, देखो पाई इहो अखाड़ा हर प्रीतम सच्चे का, जिन अपने जोर सब आन निवाए, अपने भगता की रख करे, हर स्वामी निंदका दुष्टा के मोह काले कराए, सतगुरु की वड्याई नित चढ़े सवाई, हर कीरत भगत नित आप कराए, अन दिन नाम

जपो गुर सिखो हर करता सतगुर करी वसाए। सतगुर की बाणी सत सत कर जानो गुर सिखो हर करता आप मोह कढाए। गुर सिखा के मोह उजले करे हर प्यारा गुर का जयकार संसार सबद कराए। जन नानक हर का दास है हर दासन की हर पैज रखाए। पौड़ी तू सच्चा साहिब आप है सच था हमारे। सच पूंजी नाम दृढ़ाए प्रवण जारे थारे। सच सेवे सच वणंज लें गुण कथे निरारे। सेवक पाए से जन मिले गुर शब्द सवारे। तू सच्चा साहिब अलख है गुर शब्द लिखारे। श्लोक महला चौथा जिस अंदर ताप पराई होवे किसदा कदे न होवी पला। उस दे आखे कोई न लगे नित ओजारी पुकारे खला। जिस अंदर चुगली चुगलो वजे कीता करत्या उसदा सब गया। नित चुगली करे अनहोंदी पराई मोह कड न सके उसदा काला भया। कर्म तरती शरीर कल युग विच जेहा को बीजे तेहा को खाए। गला ऊपर तपावस न होई विच खादी तत्काल मर जाए। पाई वेखो न्याओ सच करते का जेहा कोई करे तेहा कोई पाए। जन नानक को सब सोजी पाई हर दर किया बाता आप सुनाए। महला चौथा होंदे प्रतख गुरु जो बिछड़े तिनको दर टोई नाही। कोई जाए मिले तिन निंदका मोह फिके थुक थुक मोह पाही। जो सतगुर फिटके से सब जगत फिटके नित पंबल पूसे खाई। जिन गुरु गोपिया अपना से लेंदे तहा फिराई। तिनकी पुख कदे ना उतरे नित पुखा पुख कुकाही। ओना दा आखिया को ना सुने नित हौले हौल मराही। सच गुर की वड्याई वेख ना सकनी ओना अगे पिछे थाओ नाही। जो सतगुरु मारे तिन जाय मिले रेंदी खोंदी सब पत दुआई। ओए अगे कुश्ती गुर के फिटके जे उस मिले तिस कुष्ट उठाही। हर दिन का दर्शन ना करो जो दूजे पाए चित लाही। कुर करते आप लिख पाया तिस नाल क्यों चारा नाही। जन नानक नाम अराध तू तिस अपड़ को ना सकाही। नावे की वड्याई।

तिसको जगत निविया सब पैरी पया जस वर्त्या लोई तिसको खंड ब्रह्मंड नमस्कार करें जिसके मस्तक हाथ करया गुर पूरे सो पूरा होई गुर की वड्याई नित चढ़े सवाई अपर को नास कोई जन नानक हर करते आप बैठ क्या आपे तैज रखे प्रभ सोई पौड़ी काया कोट अपार है अंदर हट नाले गुरमुख सौदा जो करे हर वक्त संभाले नाम निदान हर वणजी है हीरे परवाले विण काया जे होर से तन खोज दे से मूड बेताले से उजड़ परम पवाये ज्यो चार मिर्ग पाले श्लोक महला चौथा जो निंदा करे सतगुर पूरे की सो औखा जग में होया नरक कोर दुख खू है ओथे पकड़ को टोया कूक पुकार को ना सुने ओ औखा होय होय रोया ओन हलत पलत सब गवाया लाहा मूल सब खोया ओ तेली संदा बलद कर नित पल के उठ प्रभ जोया हर वेखे सुने नित सब किछ तिद्दू किछ गुज्जा ना हो।

चरण तोया गुर सतगुर पिछे तर गया जो लोहा कार संगोया जन नानक नाम से आए तू जप हर हर नाम सुख होया। महला चौथा वडभागिया सोहागनी जिना गुरमुख मिलिया हर राय अंतर जोत प्रगासिया नानक नाम समाए पौड़ी एवं शरीर सब धर्म है जिस अंदर सच्चे की विच जोत गुहज रतन विच लुक रहे कोई गुरमुख सेवक कड्डे कोत सब आत्म राम पछाणिया ता इक रविया इको ओत पोत इक देखिया इक मन्या इको सुनिया श्रवण स्रोत जन नानक नाम सलाहे तू सच सच्चे सेवा तेरी होत श्लोक महला चौथा सब रस तिन कह हृदय है जिन हर वस्या मन माहे हर दरगे ते मुख उजले तिनको सब देखन जाहे जिन निरपो नाम से आया तिनको को कोई नाहे हर उत्तम तिनी सरेविया जिनको तुर लिखिया आहे ते हर दरगे पहनाई है जिन हर उठा मन माहे कोय आप करे सब कुटम स्यो तिन पिछे सब जगत छदाहे जन नानक को हर मेल जन तिन वेख वेख हम

से जंत भय हरि आवले, जिनी मेरा सतगुरु देखिया जाए। तन तन पिता तन तन कुल, तन तन सो जननी जिन गुरु जनिया माए। तन तन गुरु जिन नाम आराध्या,

0: सच सच्चा सतगुर अमर है जिस अंदर हर उर्धारिया। सच सच्चा सतगुरु पुरख है जिन काम क्रोध बिख मारिया। जान डिठा पूरा सतगुरु ता अंदरों मन साधारिया। बलिहारी गुर आपने सदा सदा कुंवारिया। गुरमुख जिता मन मुख हारिया। गुरमुख जिता मन मुख हारिया। श्लोक महला चौथा। कर कृपा सतगुर मेलियुन मुख गुरमुख नाम त्याय सी। सो करे जी सतगुर तावसी गुरपूरा करी वसाय सी। जिन अंदर नाम निदान है तिनका पौ सब गवाए सी। जिन रखन को हर आप होए होर के ती चक चक जाए सी। जन नानक नाम त्याय तू हर हालत पलत छोड़ाए सी। महला चौथा। गुर सिखा के मन पाव दी गुर सतगुर की वड्याई। हर राखो पैज सतगुरु की नित चढ़े सवाई। गुर सतगुर के मन पार ब्रह्म है पार ब्रह्म छड़ाई। गुर सतगुर तान दीवान हर तिन सब आन निभाई। जिन्नी दिखा मेरा सतगुर पाव कर तिन के सब पाप गवाई। हर दरगे ते मुख उजले बहु शोभा पाई। जन नानक मंगे तूर तिन जो गुर के सिख मेरे पाई। पौड़ी। हौ आप सलाही सिर्फ सच सच सच्चे की वड्याई। सलाही सच सलाह सच सच कीमत किने न पाई। सच सच्चा रस जिन्नी चखिया से तृप्त रहे आघाई। एहो हर रस से ही जान दे ज्यो गूंगे मिठाई खाई। गुर पूरे हर प्रभ सेविया मन वजी वधाई।
1: श्लोक महला चौथा। जिना अंदर उमर थल से ही जानन सूलिया। हर जाने से ही बिरहो हौ तिन विट्टों सद कुम कोलिया। हर मेलो सज्जन

सच्चा शब्द पतार है सदा सदा रावे। ज्यो उबली मजी ठह रंग गह गहा त्यों सच्चे नो जियो दे। रंग चलू ले अतरती।

सत संगत में हर उस्तत है, संग साधु मिले प्यारिया। ओए पुरख प्राणी तन जन है, उपदेश करें पर उपकारिया। हर नाम दृढ़ावे हर नाम सुनावे, हर नामे जग निस्तारिया। गुर वेखण को सब कोई लोचे, नव खंड जगत नमस्कारिया। तुद आपे आप रखिया सतगुर विच, गुर आपे तुद सवारिया। तू आपे पूजे पूज करावे, सतगुर को सिरजन हारिया। कोई विछड़ जाए सतगुरु पासों, तिस काला मोह जम मारिया। तिस अग्गे पिछे टोई नाही, गुर सिखी मन विचारिया। सतगुरु नो मिले सही जन उबरे, जिन हृदय नाम समारिया। जन नानक के गुर सिख पुतो, हर जप्यो हर निस्तारिया। महला तीजा, हौ मैं जगत पुलाया, दुर्मत बिखिया बिकार। सतगुर मिले ता नदर होए, मन मुख अंध अंधियार। नानक आपे मेल ले, जिसनो शब्द लाए प्यार। पौड़ी, सच सच्चे की सिफत सलाह है, सो करे जिस अंदर पिजे। जिन्नी इक मन इक अरादिया, तिनका कंध ना कबहू छिजे। तन तन पुरख सवास है, जिन सच रसना अमृत पिजे। सच सच्चा जिन मन पामदा, से मन सच्ची दरगह लिजे। तन तन जन्म सचियारिया, मुख उज्जल सच करिजे। श्लोक महला चौथा, साकत जाए निवे गुर आ गए, मन खोटे कूड़ कूड़ आरे। जा गुर कहे उठो मेरे पाई, बह जाए कुसर बगुलारे। गुर सिखा अंदर सतगुर वरते, चुन कड्डे लद्दो वारे। ओए अग्गे पिछे बह मोह, छुपाइन ना रलनी खोटे आरे। ओना दा पख सो उथे नाही, जाए कूर लैन पेडारे। जे साकत न रखावाये, लोचिये बिख कड्डे मुख उगलारे। हर साकत सेती संग न करियो, ओए मारे सिरजन हारे। जिसका यो खेल सोई कर वेखे, जन नानक नाम समारे। महला चौथा, सतगुर पुरख अगम है, जिस अंदर हर उर्धारिया। सतगुरु नो अपड़ कोई ना सके, जिस वल सिरजन हारिया। सतगुरु का खड़क संजो हर भगत है, जित काल कंटक मार विडारिया। सतगुरु का रखन हारा हर आप है, सतगुरु के पिछे हर सब उबारिया।

पौड़ी सच सुत्या जिनी आराध्या जा उठे ता सच चवे से विरले जुग में जानिए जो गुरमुख सच रवे हौ बलिहारी तिन कौ जे अंदिन सच लवे जिन मंतन सच्चा पामदा से सच्ची दरगे गवे जन नानक बोले सच नाम सच सच्चा सदा नवे। श्लोक महला चौथा। क्या सवना क्या जागना गुरमुख ते परवान जिना सास गिरास ना विसरे से पूरे पुरख प्रदान करमी सतगुर पाई है।

मुख उजले जे नित उठ समालेन। महला चौथा सतगुर सेविए अपना पाये नाम अपार। पौजल डुबदिया कढ ले हर दात करे दातार। तन तन से सहा है जे नाम करे व्यापार। वन जारे

जन भगत है सच सच्चा जिनी अरादिया, जिन गुरमुख खोज टंडोलिया तिन अंदरों ही सच ला दिया। सच साहिब सच जिनी सेविया, काल कंटक मार तिनी साध्या। सच सच्चा सब दू वड़ा है, सच सेवन से सच रला दिया। सच सच्चे नू

रंग सुभाए सतगुर सेती मन रता रखिया बणत बनाए जिहवा सालाहे ना रजई हर प्रीतम चित लाए नानक नावे की मन पुख है मन तृप्त है हर रस खाए पौड़ी सच सच्चा कुदरत जानिए दिन राती जिन बनाया सो सच सलाही सदा सदा सच सच्चे किया वड्याईया सलाही सच सलाह सच सच कीमत किने न पाया जा मिलिया पूरा सतगुरु ता हाजिर नदरी आईया सच गुरमुख जिनी सलाहया तिना पुखा सब गवाईया। श्लोक महला चौथा। मैं मन तन खोज खोजेंदिया सो प्रभ लद्दा लोड़ विस्त

गुरमुख जापै शब्द लिव लाए, हर नाम सुन मन्ने हर नाम समाए, जो तिस पावे सो करे कराया, नानक वजदा जंत वजाया। पौड़ी। तू करता सब किछ जानदा, जो जी अंदर वरतै, तू करता आप अगणत है, सब जग विच गणतै, सब कीता तेरा वरतदा, सब तेरी बणतै, तू कट कट इक वरतदा, सच साहिब चलतै, सतगुरु नो मिले सो हर मिले, नाही किसे परतै। श्लोक महला चौथा। एहो मनुआ दृढ़ कर रखी है, गुरमुख लाई है चित, क्यों सास गिरास विसारी है, बहंदिया उठदिया नित, मरण जीवन की चिंता गई, इहो जीड़ा हर प्रभु वस, ज्यों पावे त्यों

0: नानक पूरब लिखिया कमाए पौड़ी।
1: जिनके चित्त कठोर है से बह ना सतगुर पास, ओथे सच वर्तदा कूड़ियारा चित उदास। ओए वल छल कर चत कट दे फिर जाए बह कूड़ियारा पास, विच सच्चे कूड़ न गड्डे मन वेखो को निर्जास। कूड़ियार कूड़ियारी जाए रले सच्चार सिख बैठे सतगुर पास। श्लोक महला पंजवा, रहंदे खोंदे निंदक मारियन कर आपे आहर, संत सहाई नानका।

आपो आपनी आपे पछतानी अजराइल फिरस्ता तिन पीड़े कानी। श्लोक महला पंजवा। सेवक सच्चे साह के सेई परवान, दूजा सेवन नानका से पच पच मोए।

मन मुख मूलों पुल्या विच लब लोभ अंकार झगड़ा कर दिया अंदिन गुदर शब्द ना करें विचार शुद्ध मत करते सब हिरलई बोलन सब विकार दित्ते किते ना संतोखिये अंतर तिसना बहु अज्ञान अंध्यार नानक मन मुखा ना।

गुरमुख ज्ञान विवेक बुद्ध होए, हर गुण गावे हृदय हार परोए, पवित्र पावन परम विचारी, जे उस मिले तिस पार उतारी, अंतर हर नाम वासना समाणी, हर दर शोभा महा उत्तम बाणी, जे पुरुष सुने

सतगुर आखे सो कार कमावन, सो जप कमावे गुर सिक्खा की काल सच्चा थाए पावे। बिन सतगुर के हुक्मे जे गुर सिक्खा पासों कम कराया लोड़े, तिस गुर सिख फिर नेड़ ना

जे बिन सतगुर के मन मने कम कराए सो जंत महा दुख पावे पौड़ी। तू सच्चा साहिब अत वड्डा तुह जेवड़ तू वड वड्डे जिस तू मेले सो तुद मिले तू आपे बख्श लह लेखा छड़े जिसनो तू आप मिलाएंदा सो सतगुर सेवे मन।

हर हर नाम जो जन जपै सो आया परवान, तिस जन के बलिहारण जिन पजिया प्रभ निर्वाण, जन्म मरण दुख कटिया हर पेटिया पुरख।

मन तन नित पावो, नाम सुने नाम संग्रह नामे लिव लावो, गृह तन सब पवित्र होए, हर के गुण गावो, हर नाम

तू सब में एक वर्तदा सब माहे समाना थान थनंतर रव रहा जी अंदर जाना साध संग मिल पाये मन सच्चे पाना नानक प्रभ सर।

काम क्रोध लोभ मोह संग सादा पखे, कर कृपा प्रभ आपनी हर आप परखे, नानक चलत ना जापनी को सके न लखे। श्लोक महला पंजवा। नानक सोई दिन सुहावड़ा, जित प्रभ आवे चित, जित दिन विसरे पार ब्रह्म, फिट पलेरी रुत। महला पंजवा। नानक मित्राई तिस स्यों, सब किछ जिसके हाथ।

जिस सिमरत सुख पाई है सब तिखा बुझाई, कर सेवा पार ब्रह्म गुर पुख रहे न काई, सगल मनोरथ पुन्या अमरा पद पाई, तुद जेवड तू है पार ब्रह्म नानक शरणाई। श्लोक महला पंजवा। डिठड़ो हब ठाए ऊन न काई जाए, नानक लद्दा तिन सुआओ जिना सतगुर पेटिया। महला पंजवा। दामनी चमत्कार त्यों वरतारा जग के, वत्स सुहावी साए नानक नाउ जपंदो तिस्तणी पौड़ी। सिमरत शास्त्र सोध सब किने कीव न जानी, जो जन पेटे साध संग सो हर रंग माणी, सच नाम करता पुरख ए रतना खानी, मस्तक होवे लिखिया हर सिमर पराणी, तोसा दिच्चे सच नाम नानक मेहमानी। श्लोक महला पंजवा। अंतर चिंता नैनी सुखी मूल न उतरे पुख, नानक सच्चे नाम बिन किसे न लथो दुख। महला पंजवा। मुठड़े से ही साथ जिन्नी सच न लद्या, नानक से साबास जिन्नी गुरमिल इक पछाणिया पौड़ी। जिथे बैसन साध जन सो थान सुहंदा, ओए सेवन समरथ अपना बिनसे सब मंदा, पतित उदाहरण पार ब्रह्म संत वेद कहंदा, भगत वत्सल तेरा बिरद है जुग जुग वर्तंदा।

मर गए मर भी न सके मूल, वेमुख होए राम ते जो तस्कर ऊपर सूल। पौड़ी सुख निधान प्रभ एक है अविनाशी सुनिया, जल थल मैयल पूरिया कट कट हर पणिया, ऊंच नीच सब एक समान कीट हस्ती बनिया, मीत सखा सुत बंद पो सब तिस दे जनिया, तुस नानक देव।

0: पौड़ी।
1: ओथे अमृत वंडी है सुखिया हर करने, जम के पंथ न पाए फिर ना ही मरने, जिसनो आया प्रेम रस से ही जरने, बाणी उचरे साध जन अम्यो चले चरने, पेख दर्शन नानक जीव्या मन अंदर तरने। श्लोक महला पंजवा। सतगुर पूरे सेवे दुखा का होए नास, नानक नाम आराध्य कार्य आवे रास। महला पंजवा। जिस सिमरत संकट छुटे अनद मंगल विश्राम, नानक जपिए सत।

विखय कौरतन सगल माहे जगत रही लपटाए नानक जन विचारिया मीठा हर का नाओ पौड़ी। ए निशानी साधकी जिस पेटत तरिये जम कंकर नेड़ ना आवई फिर बहुड़ ना मरिये पव सागर संसार बिख सो पार उतरिये हर गुण गुम्फो मन माल हर सब मल पर हरिये।

लालच अटिया नित फिरे स्वार्थ करे न कोए जिस गुर पेटे नानका तिस मन वसिया सोए पौड़ी सबे वस्तु कौड़िया सच्चे नाव मिठा साध आया तिन हर जना चख सादी डिठा पार ब्रह्म जिस लिखिया मन तिसे उठा एक निरंजन रव रहा पाव दोया कुठा हर नानक मंगे जोड़ कर प्रभ देवे तुठा। श्लोक महला पंजवा।

पंजवा वत लगी सच्चे नाम की जो बीजे सो खाए तिसे प्राप्त नानका जिसनो लिखिया आए। महला पंजवा मंगना ता सच एक जिस तुस देवे आप जित खादे मन तृप्ति है नानक साहिब दात। पौड़ी लाहा जग में से खटे जिन हर तन रास दुतिया पाओ ना जाननी सच्चे दी आस नेचल एक सरेविया होर सब विनाश पार ब्रह्म जिस विसरे तिस

जीवन पद निर्वाण इको सिमरिए, दूजी नाही जाए किन बिद तीरिए, डिठा सब संसार सुख ना नाम बिन, तन तन होसी चार जाने कोए जन, रंग रूप रस बाद के करें प्राणिया, जिस पुलाए आप तिस कल नहीं जानिया, रंग रते निर्वाण सच्चा गावही, नानक शरण द्वार जे तुद पावही पौड़ी, जम्मन मरण ना तिन को जो हर लड़ लागे, जीवत से परवान।

दह दिशा जल पर्वत बन राए, जिथे डिठा मृत को इल बैठी आए। पौड़ी जिस सर्व सुखा फल लोड़िए, सो सच कमावो, नेड़े देखो पार ब्रह्म इक नाम ते आवो। ओए सगल की रेण का हर संग समावो।

एक जैसा जन मैं किया सर्व कला समरथ जियो हमारा खनी है हर मंतन संदड़ी वत। महला पंजवा जेकर गए

तुद ना छोड़ा मूल, हर छोड़न से दुर्जना, पढ़े दोज कैसूल। पौड़ी सब निधान कर जिस दे, हर करे सो होवे, जप जप जीवे संत जन, पापा मल तोवे, चरण कमल हृदय वसे, संकट सब खोवे, गुरपुरा जिस पेटी है, मर जन्म ना रोवे, प्रभ दर्श प्यास नानक घणी, कृपा कर देवे। श्लोक डखना महला पंजवा। पोरी परम वंजाए, प्री मोहब्बत हिक तू, जिथों वंजे जाए, तिथाऊ मौजूद सोए। महला पंजवा, चढ़ के कोड़े कुंद

पंजवा जाचक मंगे नित नाम साहिब करे कबूल नानक परमेश्वर जजमान तिसे भुख ना मूल। पौड़ी मन रत्ता गोविंद संग सच भोजन जोड़े प्रीत लगी हर नाम स्यों।

14 अब मोहे जलत राम जल पाया, राम उदक तन जलत बुझाया, रहाओ मन मारण कारण बन जाये, सो जल बिन भगवंत न पाये, जे पावक सुर

तू सतगुर हौ नौ तन चेला, कह कबीर मिल अंत की बेला। गौरी कबीर जी जब हम एको एक कर जानिया, तब लोगे काहे दुख मानिया। हम अपत्ते अपनी पत खोई, हमरे खोज परो।

नगन फिरत जो पाए जोग, बन का मिर्ग मुक्त सब होग। क्या नांगे क्या बांधे चाम, जब नहीं चीनस आत्म राम। रहाओ मूड मुंडाए जो सिद्ध पाई, मुक्ति पेड़ न गैया काई। बिंद राख जो तरिये पाई, खुश रह क्यों ना परमगत पाई। कहो कबीर सुनो नर पाई, राम नाम बिन किन गत पाई। गौरी कबीर जी संध्या प्राप्त।

मिल पाथर की कर ही सेव, कहो कबीर भगत कर पाया, पोले पाए मिले रघुराया। गौड़ी कबीर जी गर्भवास में कुल नहीं जाती, ब्रह्म बिंद ते सब उत्पाती, कहो रे पंडित बामन कब के होए, बामन कह कह जन्म मत खोए। रहाओ जो तू ब्राह्मण ब्रह्मणी जाया, तो आन बाट काहे नहीं आया, तुम कत ब्राह्मण।

राजा रंक दोउ मिल रोई है, जो पैरसना राम न कहबो, उपजत बिनसत रोवत रहबो। रहाओ जस देखी है तरवर की छाया, प्राण गए कौ का की माया। जस जंती मह जियो समाना, मुए मर्म को का कर जाना। हंसा

लाज न मरो कहो कर मेरा, अंक की बार नहीं कच तेरा रहाओ। अनक जतन कर काया पाली, मरती बार अगन संग जाली, चोआ चंदन।

ता सुख बिसरे परमानंदा, कूटा एक पंच पनिहारी, टूटी लाज परे मतहारी, कहो कबीर एक बुद्ध बिचारी, ना ओ कूटा ना पनिहारी। गौड़ी कबीर जी। अस्थावर जंगम कीट पतंगा, अनेक जन्म किए बहुरंगा, ऐसे कर हम बहुत बसाए, जब हम राम गर्भ होए आए। रहाओ जोगी जति तपि ब्रह्मचारी, कबहू राजा छत्रपत कबहू पेखारी, साकत मरे संत सब जीवे, राम रसायन रसना पीवे। कहो कबीर प्रभु कृपा की जय, हार परे अब पूरा दी जय। गौड़ी कबीर जी की नाल रलाए लिखिया महला पंजवा। ऐसो अचरज देखो कबीर, दद के पोले बिरोले नीर, रहाओ हरी अंगूरी गधा चरे, नित उठ हाते ही गय मरे, माता पैसा अमुहा जाए, कुद कुद चरे रसा तल पाए। कहो कबीर प्रगट पई खेड, ले ले को चूगे नित पेड, राम रमत मत प्रगटी आई, कहो कबीर गुरसो जी पाई। गौड़ी कबीर जी पंच पदे। ज्यों जल छोड़ बाहर पयो मीना, पूरब जन्म हों तप का ही ना, अब कहो राम कवन गत मोरी, सजीले बनारस मत पई थोरी। रहाओ सगल जन्म शिवपुरी गवाया, मरती बार मगहर उठ आया, बहुत बरस तप किया काशी, मरन पया मगहर की बासी, काशी मगहर संबिचारी, ओछी पगत कैसे उतरस पारी, कहो गुर गज शिव सब को जाने, मुआ कबीर रमत श्री रामे। गौड़ी कबीर जी। चोआ चंदन मर्दन अंगा, सो तन जले काठ के संगा, इस तन तन की कवन बढ़ाई, तरन परे उर्वार न जाई। रहाओ रात जे सोवे दिन करे काम, एक खिन लेह ना हर को नाम, हाथ ता डोर मुख खायो तंबोर, मरती बार कस बांध्यो चोर, गुरमत रस रस हर गुण गावे, रामे राम रमत सुख पावे। कृपा करके नाम दृढ़ाई, हर हर बात सुगंध बसाई, कहत कबीर चेतरे अंदा, सत राम झूठा सब तंदा। गौड़ी कबीर जी तिप दे चार तुके, जमते उलट पए है राम, दुख बिन से सुख कियो विश्राम, बैरी उलट पए है मीता, साकत उलट सुजन पए चीता, अब मोहे सर्व कुशल कर माने।

कोट उपाद उलट पाई सुख सह समाद आप पछाने आपे आप रोग न व्यापे तीनों ताप। अब मन उलट सनातन हुआ तब जानिया जब जीवत मुआ कहो कबीर सुख सह।

जिन राम जानिया तिने पछानिया, ज्यो गूंगे साकर मन मानिया, ऐसा ज्ञान कथे बनवारी, मन रे पवन दृढ़ सुख मन नारी, रहाओ सो गुर करो जे बहुर न करना, सो पद रहो जे बहुर

है मोल। अब मोहे राम अपना कर जानिया, सह सुभाए मेरा मन मानिया। रहाओ ब्रह्म कथ कथ अंत न पाया, राम भगत बैठे कर आया। कहो कबीर चंचल मत त्यागी, केवल राम भगत निज पागी। गौड़ी कबीर जी जिहे मरने सब जगत तरासिया, सो मरना गुर शब्द प्रगासिया। अब कैसे मरो मरना।

आग। कौड़ी कबीर जी जाके हर सा ठाकुर भाई मुक्त अनंत पुकारण जा।

सो निर्मल निर्मल हर गुण गावे, सो पाई मेरे मन भावे। रहाओ जे कट राम रहा परपूर, तिनकी पग पंकज हम तूर।

पापी मन है मार कवन सिद्ध थापी कवन सो मुन जो मन मार है मन को मार कहो किस तार है रहाओ मन अंतर बोले सब कोई मन मारे बिन पगत न होई कहो कबीर जो जाने पेओ मन मधुसूदन त्रिभुवन देओ गौरी कबीर जी ओए जो दिसे अंबर तारे किन ओए चीते चीतन हारे कहो रे पंडित अंबर कास्यो लागा बूजे बूजन हार सवागा रहाओ सूरज चंद करें उजियारा सब में पस

कहो कबीर हर चरण दिखावो, पाछे ते जम क्यों ना पठावो। गौड़ी कबीर जी आपे पावक आपे पवना, जा रहे खसम ता राखे कवना। राम जपत तन जर की ना जाए, राम नाम चित रहा समाए रहाओ। काको जरे काए हुए हान, नटवट खेले।

सुख मांगत दुख आगे आवे, सो सुख हमो न मांगिया पावे। विख्या अजो सुरत सुख आसा, कैसे हुई है राजा राम निवासा। रहाओ इस सुख ते शिव ब्रह्म डराना, सो सुख हमो साच कर जाना। सनकादिक नारद मुन सेखा, तिन भी तन में मन नहीं पेखा। इस मन को कोई खोजो पाई, तन छूटे मन कहाँ समाई। गुर प्रसादी जय दियो नामा, भगत के प्रेम इन्हीं है जाना। इस मन को नहीं आवन जाना, जिसका परम गया तिन साच पछाना। इस मन को रूप ना रेखिया काई, हुक्मे जोया हुक्म बूझ समाई। इस मन का कोई जाने।

चेतक सिद्ध पहले लागे रहाओ साधक सिद्ध सगल मुनहारे एक नाम कल्प कर तारे जो हर हरे सो हुए नाना कह कबीर राम नाम पछाना।

सो सम्राट निज पत है दाता, कह कबीर पूरन जग सोई, जाके हृदय अवरना कोई। कौन को पूत पिता को काको, कौन मरे को दे संतापो, हर ठग

कह कबीर ठग स्यो मन मानिया, गई ठगोरी ठग पहचानिया। अब मोको पै राजा राम सहाय, जन्म मरण कट परम गत पाई। रहाओ साधु संगत दियो रलाए, पंच दूत ते लियो छड़ाए। अमृत नाम जपो जप रसना, अमोल दास कर लीनो अपना। सतगुर कीनो पर उपकार, काड लीन सागर संसार। चरण कमल

जल सल पूर रहे प्रभ स्वामी, जत पेखो तत अंतर जामी, अपनी भगत आप ही दृढ़ाई, पूरब लिखत मिलिया मेरे पाई, जिस कृपा करे तिस पूरन साज, कबीर को स्वामी गरीब निवाज। जल है सूतक थल है सूतक, सूतक ओ पत होई, जन्मे सूतक मुए फुन सूतक।

कोई। कुशल कुशल करते जग बिन सह, कुशल भी कैसे होई रहाओ। माटी के कर देवी देवा, तिस आ गए जियो देही, ऐसे पितर तुम्हारे कही।

गौड़ी। जीवत मरे मरे फुन जीवे ऐसे सुन समाया, अंजन माए निरंजन रही है बौड़ न पवजल पाया। मेरे राम ऐसा खीर बिलोई है, गुरमत मनुआ अस्थिर राखो, इन विद अमृत पियोई है रहाओ। गुर के बाण बजर कल छेदी, प्रगटिया पद पर गासा, सकत अंधेर जेवड़ी प्रम चूका, नेचल शिव कर बासा। तिन बिन बाणे तनुख चढ़ाई है, इहो जग बेदिया पाई, दह दिस बूढ़ी पवन चुलावे, डोर रही लिवलाई। उन मन मनुआ सुन समाना, दुबदा दुर्मत पागी, कहो कबीर अनुपो इक देखिया, राम नाम लिवलागी। गौड़ी बैरागन तिप दे, उल्टत पवन चक्र खट पे दे, सुरत सुन अनरागी, आवे न जाए मरे न जीवे, तास खोज बैरागी। मेरे मन मन ही उल्ट समाना, गुर प्रसाद अकल पई अवरे, नातर था बेगाना रहाओ। निवरे दूर दूर फुन निवरे, जिन जैसा कर्म

रात दिन सते नाही, जल नहीं पवन पावक फुन नाही, सतगुर तहां समाही। अगम अगोचर रहे निरंतर, गुर कृपा ते लहिए, कहो कबीर बल जाओ गुर अपने, सत संगत मिल रही है। गौड़ी पाप

ऐसा नायक राम हमारा सगल संसार कियो बन जा रहा रहाओ काम क्रोध दोए पै जगाती मन तरंग बटवा।

पंडित गुणी सूर हम दाते ए कहें बद हम ही। जिसे बुझाए सोई बूझे बिन बूझे क्यों रही है, सतगुरु मिले अंधेरा चूके इन विद मानक लही है। तज बावे दहने बिकारा हर पद दृढ़ कर।

गज नव गज दस गज इक्कीस पुरिया एक तनाई साठ सूत नव खंड बेहतर पाट लगो अधिकाई गई बुनावन माहो कर छोड़े जाए जुलाहो रहाओ गजी न मिनिए तोल न तुलिए पाचन शेर अढ़ाई।

महोए। जित कट नाम ना उपजै, फूट मरे जन सोए। सावल सुंदर रामैया मेरा मन लागा तोहे। रहाओ साध मिले सिद्ध पाये, के एहो जोग के भोग दो।

कर्म कर्म करते बहु संजम अहं बुद्ध मन जा रहे रे सास ग्रास को दातो ठाकुर सो क्यों मनो विसारे रे हीरा लाल।

उनमत मान हिरियो मन माही, गुर का शब्द न तारियो रे। स्वाद लुभत इंद्री रस प्रेरियो, मदरस लैत बिकारियो रे। कर्म पाग संतन संगाने, कासट लोह उधारियो रे। तावत जोन जन्म प्रम थाके, अब दुख कर हम हारियो रे। कह कबीर गुर मिलत महारस, प्रेम भगत निस्तारियो रे। गौड़ी काल भूत की हस्तनी मन बौरा रे, चलत रचियो जगदीश। काम सुआए गज बस परे, मन बौरा रे अंकस कहो शीस। बिखे बाच हर रात समझ मन बौरा रे, निरपय होए न हर पजे। मन बौरा रे गयो न राम जहाज, राव मरकट मुष्टि अनाज की। मन बौरा रे लीनी हाथ पसार, छूटन को सहसा परया।

تم کر لاکھ کوٹ اسو ہستی، ہم کر ایک مراری گوڑی۔ ज्यों कप के कर मुष्ट चनन की लुब्ध ना त्याग दयो, जो जो कर्म किए लालस्यों ते फिर ग्रह परयो, भगत बिन बिरथे जन्म गयो, साध संगत भगवान भजन बिन कहीं ना सच रहो रहाओ। ज्यों उद्यान कुसुम प्रफुल्लत किन्हें ना कराओ लयो, तैसे प्रमत अनेक जून में फिर काल हयो। या तन जोबन अर सुत दारा पेखन को जो दयो, तिन ही माए अटक जो उर्जे।

गुर ओट लयो गौड़ी। पानी मैला माटी गोरी, इस माटी की पुत्री जोरी, मैं ना ही कछ आए न मोरा, तन तन सब रस गोविंद तोरा। रहाओ इस माटी में पवन समाया, झूठा परपंच जोर चलाया, किन्हू लाख पांच की जोरी, अंक की बार गगरिया फोरी। कह कबीर इतने

लागत पवन खसम बिसरायो, जीरा हर के गुना गाओ रहाओ। गर्भ जोन में उर्द तप करता, पौ जठर अगर मैं रहता। लख चौरासी जोन प्रम आयो, अब के छुटके ठौर न ठायो। कहो कबीर पज

दास रमैया गुण गाये जाते पाये परम निधान रहाओ। क्या जप क्या तप संजमो क्या व्रत क्या स्नान जब लग जुगत न जानिए पाओ भगत भगवान। संपै देख ना हरखिए विपत देख ना रोए ज्यों संपै त्यों

0: गौड़ी
1: पंथ निहारे कामनी लोचन परी ने उसाता पूर्णा पीजे पग न खिसे हर दर्शन की आशा उड़ो न कागा कारे बेग मिली जय अपने राम प्यारे रहाओ कह कबीर जीवन पद कारण हर की भगत करी जय एक आधार नाम।

वृंदावन मन हरण मनोहर कृष्ण चरावत गाऊ रे जाका ठाकुर तुही सारंग कर मोहे कबीरा नाऊ रे गौड़ी पूर्वी बा।

परम प्रगट होए नाचो, या माया के डांडे सूर के सन्मुख रंगते डरपे, सती के सांचे पांडे डगमग छाड़ रे मन बहुरा, अब तो जरे

उनमें प्रमथ नंद बहु था कोरे भगत हेत अवतार लियो है पाग बड़ो बपरा कोरे। तुम जो कहत हो नंद को नंदन नंद सो नंदन का कोरे तरन आकाश दसो दिस नाही तब यो नंद कहाँ थोरे रहाओ।

दिखे रोग पै बंधन पागे मन निज कर सुख जाना ना। एक सुमत रत जान मान प्रभ दूसर मने ना अनाना। चंदन बास पे मन बासन त्याग कट्यो अभिमाना ना। जो जन गाए त्याए जस ठाकुर तास प्रभु है थाना ना। ते बड़ पाग बस्यो मन जाके कर्म प्रदान मथाना ना। काट सकत